फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज रात है जिलहज की 11 और मई की 28 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान अमन माहदे से पूरे खित्ते की हकीकी इक़्तिसादी सलाहियत को बरोए कार लाया जा सकेगा। कुवैत में जारी अमन कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा है। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ ईद की मुबारकबाद का तबादला करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम जारी रखेगी। मुल्क दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले 1998 में किए गए एटमी धमाकों की याद में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। सदर और वजीर आजम ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुसल्ला फौज को उनकी पेशावराना महारत पर खिराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड की खवातीन टीमों के दरमियान से मुल्की T20 सीरीज आज डबलिन में शुरू होगी। खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मसूद पज़िश्कियान ने टेलीफोन किया। दोनों खुशगवार माहौल में ईद की मुबारकबाद का तबादला किया और इस पुरमसरत मौके पर एक दूसरे के लिए दोनों ममालिक के अवाम के ईरान के सदर ने खित्ते में अमन के कयाम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल सईद मरतबा फिर यकजहती का इजहार किया। ईरान के सदर ने खित्ते में कयाम अमन के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम इज्जत के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि अमन माहदे से ईरान की हकीकी मौशी सलाहियत को फरोग मिलेगा और पूरा खित्ता इससे मुस्तफीद होगा। वजीर आजम ने कहा कि बरादर और हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन बहाल होने के बाद दोनों वजीर आजम शरीफ ने ईद उल अजहा के मौके पर कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद अल हमाद अल मुबारक अस सबाह को भी टेलीफोन किया। उन्होंने ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद का तबादला किया और इस पुरमसरत मौके पर दोनों मुल्कों के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुवैत पर हमलों की मजम्मत और

कोक स्टूडियो सीजन 10 बिल क्लिंटन की जानिब से $5 अरब की पेशकश।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिल्म और स्टेज अदाकारा, टीवी की मेजबान और गुलुकारा मेघा। मेरी तरफ से FM 101 के तमाम लिसनर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: sonaya tebe.
1: سنت رهيو FM 101 101.

0: to One Above, FM 101.
1: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बनें।

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान अमन माहदे से पूरे खित्ते की हकीकी इक़्तिसादी सलाहियत को बरूए-कार लाया जा सकेगा। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ ईद की मुबारकबाद का तबादला करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम जारी रखेगी। मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले 1998 में किए गए एटमी धमाकों की याद में आज यौमे तकबीर मनाया जा रहा है। सदर और वजीर आजम ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुसल्ला फौज को उनकी पेशा वाराना महारत पर खिराज तहसीन पेश किया है। खबरों की तफसील। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को ईद उल अजहा के मौके पर ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पजिशकियान ने टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने दोस्ताना और खुशगवार माहौल में ईद की मुबारकबाद का तबादला किया और इस पुरमसरत मौके पर दोनों ममालिक के अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईरान के सदर ने खित्ते में अमन के कयाम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने मौजूदा बहरान में कीमती ईरानी जानों के नुकसान पर ईरानी क्यादत और अवाम के साथ एक मरतबा फिर यकजहती का इजहार किया। ईरान के सदर ने खित्ते में कयाम अमन के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरानी कौम के वकार और इज्जत के मुताबिक होगा।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 140,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मेयारी इलाज की सहूलियत फराहम करना है, ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने, ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
2: I love FM 101.

to One Above, FM 101.

आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन मौज मेला हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइन शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

0: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिल्म और स्टेज अदाकारा, टीवी की मेजबान और गुलुकारा मेघा। मेरी तरफ से FM 101 के तमाम लिसनर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: tebe. सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: हर इंसान का हक है कि उसकी जिंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
0: सुनते रहिए FM 101।

आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन मौज मेला हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: Freak Socks. And now you are tuned into
1: FM 101.
2: Wait, what is that?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइन शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

0: ईद का खुसूसी शो।
1: ईद मुबारक पंजाबी स्पेशल।
0: सुनियो ईद मुबारक।
2: चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं तो वात सदके जवा सुनियो।
1: ईद के रंग FM 101 के संग,
0: और ईद का दिन है
1: जिनमें होगा आपके पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ ढेर सारा हल्ला गुल्ला,
0: शोखियाँ, शरारतें
1: और आपके दिलों को छू लेने वाले गीत,
0: तो फिर सुनना ना भूलिएगा।
1: ईद के पहले दो रोज FM 101 की खसूसी ट्रांसमिशन।

FM 101.1.

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
1: हमसे है रोशन ये जहां,
2: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: हर इंसान का हक है कि उसकी जिंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगी
3: आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: हर इंसान का हक है कि उसकी जिंदगी रोशनियों

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 140,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है? अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मेयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है, ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल लाहौर के तवसुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने, ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
6: And now you are tuned into
7: FM 101.
8: FM 101.

0: This is FM 101.
1: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
2: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
1: चांद रात स्पेशल
2: भलकते कैसा ये चांद निकला।

आपकी खुशियों में आपके ज़ौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन मौज मेला हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: फलक पे कैसा ये चांद निकला।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बरास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.
1: Tune in to One Above FM 101.
2: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
3: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज.
2: चांद रात स्पेशल
3: भलकते कैसा ये चांद निकला

0: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक.
1: हेलो लिसनर्स, रिलैक्स, अनमाइंड एंड लेट द वाइब्स टेक ओवर. लेडीज लाउंज स्टार्ट्स नाउ विद योर फेवरेट आरजे रुबीना वजाहत.
2: आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान. ईद स्पेशल ट्रांसमिशन मौज मेला हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल. तो सुनते रहें FM 101.
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
1: म्यूजिक, लॉकर एंड रियल टॉक, ऑल वेटिंग फॉर यू ऑन लेडीज लाउंज विद योर फेवरेट आरजे सुबिया शफीक.
3: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
4: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज.
3: स्पेशल
4: फलक पे कैसा ये चांद निकला,

वापस। आपकी आरजी रुबीना वजाहत की अभी एक आवाज है, अभी ये आवाज जो है हम आवाज होगी जुबिया शफी के साथ। वो यकीनन रास्ते में है और रेडियो की तरफ जो है वो भाग रही होंगी, जैसे कहते हैं ना कि सरपट भागना, बिल्कुल इसी तरह से होगी। आप सबको जितने भी सुनने वाले हैं, जहां जहां मेरी आवाज माइक इस तवसत से आप तक पहुंच रही है, आप तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का सेकेंड डे है, ईद के सेकेंड डे पर यकीनन पहला दिन भी बहुत स्पेशल गुजरा होगा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने तमाम सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में। इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान की ट्रांसमिशन आपके साथ रही है, सुबह से लेकर रात तक तमाम ट्रांसमिशन आप तक पहुंची है। हमारी तमाम मैनेजमेंट और जितने भी जो आरजेज हैं उन सब की तरफ से और हमारी तरफ से और तमाम जितने भी सुनने वाले हैं उनकी तरफ से, उन लोगों को जो रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक। और इन तमाम सुनने वालों में मैं अपना नाम कैसे भूल सकती हूँ, सो मुझे कहते हैं रुबीना वजाहत और रुबीना वजाहत की तरफ से तमाम सुनने वालों को ईद का स्पेशल डे सेकेंड डे बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, और बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को बड़ा बनाने के लिए बड़ापन दिखाना पड़ता है। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि हम सिर्फ बात करते हैं और बात करते ही रहते हैं कि जी लड़ाई झगड़े ख़त्म करने हैं, अना को ख़त्म करना है और अपनी वो जो मैं है, खू है, उसको ख़त्म करना है। लेकिन कहते हैं ना कि छोटी ईद वो जो मीठी ईद होती है, और मीठी ईद तो एक उसकी अपनी ही वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम बड़ी ईद की बात करते हैं तो देखेंगे बड़ी ईद हमें एहसार कुर्बानी का जो है वो दर्स देती है। और हर साल अगर हम बात करते हैं कि ये ईद जो है वो हम बेसिकली किस लिए मनाते हैं, ये ईद जो है वो जो ईद कुर्बान है, ये कुर्बान के लिए क्यों इसको कहा जाता है, इसलिए ताकि हम अपनी तमाम जो चीज़ें हैं, जो हमने अपनी अना रखी है और जितने भी हमने अपने अंदर खदशात रखे हुए हैं, उन चीज़ों को हमने सेक्रीफाइस कर देना अल्लाह ताला की राह में। और एक और चीज़ कहते हैं कि जैसे सुन्नत इब्राहिमी है और उसमें देखें कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कीमती जो चीज़ क्या थी, उनका बेटा, ठीक है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला की राह में जो है वो पेश कर दिया था। सो ये ईद हमें बताती है कि आपने अपनी कीमती चीज़ को अल्लाह ताला की राह में क्या करना है, कुर्बान कर देना है। और इंसान, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो आज इंसानों के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है, आज सबसे कीमती चीज़ उनके लिए उनकी अपनी ज़ात, उनकी मैं, उनकी अना और ये सब चीज़ें हैं। और हम चाहे जितना मर्ज़ी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन इन चीज़ों से हम अपना, वो जिसे कहते हैं ना कि हम अपना दामन छुड़ा नहीं सकते, अपनी आंखें चुरा नहीं सकते। सो अगर आपने अपनी कीमती चीज़ जो है उसको सेक्रीफाइस करना है, तो फिर सबसे पहले आपने अपनी इस ज़ात को, कि आपने जो चीज़ सोची है, जो एक लैंडमार्क, जो स्टिग्मा आपने बना लिया है दूसरों के बारे में, आपने उसको एक साइड पे रख देना है। आपने अपने जितने भी, वो जिसे कहते हैं ना कि आप हक पर होते हुए अपने उस मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएं, तो ये सबसे कीमती चीज़ है। सो आपने इस चीज़ को जो है वो याद रखना है और अपने आप को दस्तबरदार कर देना है उन तमाम खराफात से, उन तमाम मुश्किल से, उन तमाम परेशानियों से, उन तमाम लड़ाई झगड़ों से और अनापरस्त चीज़ों से, कि जो आपको दूसरों से क्या कहते हैं डिफरेंट करती हैं और कहती हैं कि आपने इनसे हट कर रहना है, दूर रहना है। बहुत सारी बातें होंगी, 11:09 हुआ चाहते हैं और आज का दिन इस लिहाज से भी ख़ास है कि क्योंकि आज 28 साल मुकम्मल हो चुके हैं योम तकबीर जो है वो जोश व जज्बे से, पूरी मिल्लत मिल्ली जोश व जज्बे से जो है वो मनाया जा रहा है। इस लिहाज से भी ये ईद की जो खुशियाँ हैं दोबाला हो चुकी हैं, क्योंकि माशाल्लाह से अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान जो है वो नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। और अल्लाह ताला की रहमत हमेशा साथ रहनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला की रहमत होती है तो फिर कभी भी किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से मजबूत हाथों में है। और हम कैसे भूल सकते हैं कि वो शेर हमें याद आ जाता है कि अकवाम के हाथों में है, अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं आते आते एक चीज़ सोचती जा रही थी, मैंने कहा कि मैं ये बात ज़रूर जाके करूँगी, क्योंकि कल का जो दिन था तो वो कहते हैं कि आराम का फुकदान था और सफाई का भी फुकदान था। कल की बात, घरों में जो है ना वो हर तरफ जो है वो एक गहमा गहमी थी और माशाल्लाह से कुर्बानी हो रही थी, गोश्त बन रहा था और इसके साथ साथ तकसीम के लिए भी जो है ना वो शॉपिंग बैग्स तैयार किए जा रहे थे। और हर तरफ डेफिनेटली जब आप काम कर रहे होते हैं और एक बड़ा काम होता है और ख़ास तौर पे जब बड़े जानवर कुर्बान किए जाते हैं तो आपको सब तरफ आलाइशें और सब चीज़ें नज़र आती हैं, तो इस वजह से वो चीज़ चल रही थी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो काबिले, जिसके कहना चाहिए कि काबिले तारीफ़ है, वो ये चीज़ थी कि गंदगी जो है ना उस तरीके से नज़र नहीं आई है। मतलब बाहर रोड्स पर सारी रोड्स बहुत क्लीन थी और इसमें

हम अपनी गवर्नमेंट का इसमें बड़ा हाथ है, और अगर हम गवर्नमेंट पंजाब की बात करते हैं तो बड़ा दखल है इनका, और ख़ासतौर पे जो मरियम नवाज सीम साहिबा, इन्होंने इसके लिए बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई थी, और उस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बाकायदा इम्प्लीमेंट भी हुआ, और वो इम्प्लीमेंट हमें नज़र भी आया। आज भी जब मैं आ रही थी और मैंने आते हुए देखा कि कोई भी हमें इस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आई हैं, मतलब रोड्स क्लीन थीं, और बस ये है कि आगे भी आज का दिन भी बहुत अच्छे से गुजर जाए और कल का दिन भी अच्छे से गुजर जाए, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पर जो है ना हिदायत की गई हैं और इकदाम किए गए हैं कोई ख़ास तौर पर, ताकि इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और हमें जो है ना वो साफ़ सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा पाकिस्तान नज़र आता रहे। और इसमें हम लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमने अपने घरों को साफ़ रखना है, अपने गली मोहल्लों को साफ़ रखना है, अपने पाकिस्तान को साफ़ रखना है, और सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ रखना है।

चलिए जनाब, 11:12 हुए चाहते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि एक अदद ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और इस ट्रैक के बाद वापस पलट कर आते हैं। वो तमाम लोग जो कल बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थक के चूर हो के सो चुके हैं, उनके लिए ये वाला ट्रैक। आहा, इसको सुनते हैं, वापस पलट कर आते हैं।

All right, जनाब, एक फूल मोती है मार की जगह सुनिए, और मैं आपसे कहूंगी कि अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो आप उठ जाइएगा, क्योंकि हम आ चुके हैं और हमारा साथ आपके साथ रहने वाला है ठीक दिन के 1 बजे तक।

कसम से फूल मार के जगाया जाए तो वैसे ही इंसान का दिल चाहता है कि वो उठ जाए, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमें जगाया जाता था ना तो फूल वाली कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि पता क्या होता था, बल्कि ये होता था कि हमें जो है ना वो ठीक ठाक किस्म की डांट पड़ती थी कि उठ जाओ, पता नहीं चल रहा, दिन हो गया है, सूरज निकल आया है, ये करना था, वो करना था। अच्छा, हर घर में इस तरह की आवाज़ें तो गूंज रही होती है ना सुबह के टाइम पे जगाने के लिए, ख़ास किस्म के जो है ना वो टूल्स होते हैं बहुत सारे घरों में टूल्स होते हैं, कहीं पर जो है ना वो पानी के साथ, कहीं पर पंखा बंद कर दिया जाता है, अब तो खैर एसी वाला ज़माना है, एसी या कूलर बंद कर दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है कि मतलब अगर सर्दी हो तो जगाने के लिए ब्लैंकेट खींच लेते हैं कि जी आप उठ जाओ, या फिर कर्टन्स पीछे कर देते हैं। अच्छा, जो बहन भाई होते हैं ना ये भी बड़े मैं कहती हूँ पौंची भी हस्तियाँ होती हैं, ये इस तरह से जगाती है, इनका जगाने का जो स्टाइल होता है ना वही सबसे हटके होता है, कोई ना कोई शरारत, कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर लेनी है, या फिर कभी जो कपड़े रात को आयरन करके रखे ना वो लेके घूम के ये भी मैं ये बस पहनने लगी हूँ या मैं ये करने लगी हूँ। आप यकीन करें ऐसे नींद गायब होती है कि इतनी मेहनत से सारा कुछ कर करा के रखा है तो अब ये कह रही कि मैं आराम से पहनने लगी हूँ, तो फिर क्या होता है एक सेकेंड में उठ जाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, और यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से भी तब्दील हो रही हैं, क्योंकि जब मेरे साथ भी इस तरह होता है कि जब कभी मतलब अपनी मदर की तरफ जाने का मुझे इत्तेफाक हो और वहाँ पर कभी इस तरह से हो ना कि कभी स्टे करने का इत्तेफाक हो और कभी ऑफिस जाना हो या कहीं पर मतलब मुझे मीटिंग में जाना हो वहाँ से, तो क्या होता है कि अब मैंने कोई कपड़े आयरन करके रखे हैं तो मुझे जगा रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ। अच्छा, अभी बड़ा टाइम है मैं उठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अपने मदर के घर में तो थोड़ा सा सुकून मिलता है कि इंसान थोड़ी सी नींद अपनी 5 मिनट की ज़रा ज़्यादा ले लेता है। तो बहन क्या करती थी, अब तो खैर अब नहीं है, इनके थोड़ी देर पहले की बात है, जब मतलब बहन की शादी नहीं हुई थी तब तक की बात है, तो वो कभी मेरे कपड़े पकड़ के कह देती थी कि बस अब तो मैं ये पहन लेती हूँ, आज तो ये वाला सूट क्या हुआ, क्या बात है, मैं एकेडमी में यही पहन के चली जाती हूँ, फिर मेरी उठने वाली आनियाँ जानियाँ होती थी देखने वाली। आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, और खासतौर पे अगर ईद के दिन है तो ईद के दिनों में क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारी तरीके हो सकते हैं जगाने के, मजेदार सी चीज मैंने बनाई है और या बनी भी आई है तो मैं ये खुद ही खा लूंगी, क्योंकि ईद के दिन जो कलेजी बनती है ना तो उसका ये होता है कि या तो घर में बुलाया जाता है और घर में दावत कर दी जाती है और बहुत सारे लोग जो है एक जगह पर बैठ के मज़े से खाते हैं, कोई नान मंगवा लेते हैं, कोई खमीरी रोटी आ जाती है, कोई तंदूरी रोटी आ जाती है, क्योंकि इतनी गर्मी में फिर इतने सारे लोगों का जो है वो घर में रोटियों का पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो क्या करते हैं कि ज़्यादातर तंदूर के साथ रब्ता किया जाता है और वहाँ पर जो है ना वो बेचारे जो मर्द हज़रात हैं ना उनकी एक लंबी लाइन लग जाती है कि चलें जी अब वहाँ से तंदूर से रोटियाँ भी लेकर आएँ, और समटाइम ऐसा होता है कि घर के जो छोटे होते हैं ना उनका बड़ा अमल दखल होता है, वो भाग भाग के बेचारे जा के चीज़ें कर रहे होते हैं, फिर ऊपर लेमन डाल के, फिर उसके बाद हरी मिर्चें काट के, अदरक काट के, तो क्या ही चस्कों के साथ जो है ना वो कलेजी खाई जा रही होती है। और बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि वो बाकायदा पैक करके, तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके ना जो घर के साथ नेबर्स वगैरह होते हैं अपने औस पड़ोस उनमें भी भिजवाते हैं, और बड़ी अच्छी रिवायत है, आल्दो के बहुत सारी जगहों पर ये रिवायात उस तरह से नहीं है, नापैद हो चुकी हैं, लेकिन जहाँ पर हैं मैं कहती हूँ कि आई रियली अप्रिशिएट कि आपने अपने दस्तरखान में दूसरों का भी हिस्सा रखा। अब सारी चीज़ें खुद ही तो नहीं खा लेनी ना। ऑलराइट लिसनर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज 28 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि आज अगर हम डेट की बात करते हैं तो 28 मई है 2026 है, दिन है आज। आप सीरियसली बिलीव करें मेरे मुंह से एकदम से मंगल निकलने लगा था, और वैसे आज क्या दिन है ऑलराइट सामने से इशारे भी हो रहे होते हैं तो अच्छा लगता है, साथ साथ गाइड किया जा रहा होता है, साथ साथ बताया जा रहा होता है। एनीवेज स्टूडियोज की घड़ी बता रही है कि 11:22 बज के 22 मिनट हो जाते हैं,
और पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमेशा हर पाकिस्तानी दुआगो रहता है और अल्लाह ताला इसको इज्जत दे, सलामती दे और बहुत ज़्यादा तरक्की दे। हमारी खुशियों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे और यहाँ पर रहने वालों के घरों में जो लोग रहते हैं उनके दिलों में बसने वाली जो जितनी भी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको पॉजिटिव वे में जो है ना वो उनको उसको लेकर चलने की तौफीक भी दे और इसके साथ साथ वो सारी ख्वाहिशात इस तरह की हों कि उसमें पाकिस्तान का नाम हमेशा सरबुलंद रहे। यानी कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जो है ना कुछ ऐसे काम करें कि हम पाकिस्तान की सरबुलंदी का बाइस बने। तो क्यों ना पाकिस्तान के लिए एक अदद मिली नगमा सुनते हैं। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। और हमने देखा कि अल्लाह ताला ने हमेशा पाकिस्तान को हमेशा गैर मामूली सलाहियतों से भी नवाजा है। यहाँ की मट्टी बहुत जरखेज़ है, यहाँ के अजहान जो हैं वो बहुत जरखेज़ हैं।

0: एम 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
1: हेलो लिसनर्स, रिलैक्स, अनमाइंड एंड लेट द वाइब्स टेक ओवर। लेडीज लाउंज स्टार्ट्स नाउ विद योर फेवरेट आरजे रुबीना वजाहत। Music, laughter, and real talk. All waiting for you on Ladies Lounge with your favorite artist Subia Shafiq.
2: आपकी खुशियों में आपके ज़ौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 Radio Pakistan. ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।
3: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
4: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइन शोज।
3: चांद रात स्पेशल,
4: फलक पे कैसा ये चांद निकला,

0: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक.
1: Hello listeners, relax, unwind and let the vibes take over. Ladies Lounge starts now.
2: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
3: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइन शोज.
2: चांद रात स्पेशल
3: भलकते कैसा ये चांद निकला

0: को पहुंचने देते। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा ख्याल रखी। इसके साथ साथ जो है ना वो अपनी अनाओं पे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार कि जिन्होंने ना कहने की हद तक बहुत हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लेकिन अपनी अना कुर्बान नहीं की। अपने वालिदैन के साथ लाजमी तौर पर सुलह रहमी करें। अपने वालिदैन को हम जितने भी रिश्ते, मुझे लगता है कि हम जितने भी रिश्ते निभा लें, हम रिश्ते जितने भी बना लें, ना वालिदैन का नेमुल बदल है और ना ही कोई उन जैसा है। आप दुनिया में किसी की भी तरफदारी करके अपने वालिदैन को गलत कह लेंगे ना तो वो फिर भी आपको रिग्रेट सारी उम्र रहेगा। इसलिए ये वक्त है जिस टाइम पे वो आपके साथ है, उनका साथ ज़रूर दें, उनके साथ बात करें। अगर किसी बात पे उनकी कोई बात आपको ठीक नहीं लग रही तो भी प्यार से समझाएं। इस पर थोड़ा सा हमारे साथ शामिल होना है आपने, बता दें आप ही।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: नाश्ता तो मैंने किया हुआ
1: मैंने पता क्या किया, मैंने पता क्या खाया है।
0: हाँ जी,
1: मैंने कल जो है वो स्वीट डिश बनाई थी और आज जल्दी जल्दी आते आते
0: वही खाई है,
1: दो तीन चम्मच बस खाए और उसके बाद मैंने निकलने की है क्योंकि आपको पता है दूर से आना होता है और फिर ये था कि कहीं लेट।
0: अच्छा, आपका घर भी तो काफी दूर है ना।
1: हाँ, चांद पे रहती हूँ।
0: चांद
1: पे परियां रहती हैं।
0: हाँ बिल्कुल, आज हम परी को जमीन पे ले आए हैं। और आपके कुछ पैगाम हैं वो सामने हैं मेरी, उनको मैं साथ में शामिल करूंगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। इसके साथ साथ मुझे कोई रेसिपी तो बताएं, जरा इंस्टेंट सी रेसिपी बताएं, कोई खाने पकाने की।
1: इंस्टेंट रेसिपी जरूर आपके साथ शेयर करूंगी लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बता दूँ कि अमारा बेग हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई।
0: ओके,
1: और सब सुनने वालों को ईद मुबारक कह रही थी। और इसके साथ साथ जो तारिक साहब है, मोहम्मद तारिक, वो कुवैत से हमारे साथ आए और कहते हैं कि मैंने कहा ईद कैसी गुजरी, कहते परदेसियों की ईद कैसी हुई होगी। सो हम चाहते हैं कि आपकी जो परदेस में है उनकी भी ईद अच्छी हो। वैसे इतनी कोई फर्क की बात नहीं है जूबिया, आप तो यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए
0: भाई यहाँ परदेस
1: पर भी परदेसी है क्योंकि अगर आप एक दूसरे के घरों में नहीं जाते, एक दूसरे को पूछते नहीं है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते,
0: दीवार के साथ परदेस है,
1: हाँ तो फिर आप समझे कि आप परदेस में है। सो इसलिए ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप समझे कि आप सेम है वहाँ से। तो फिर भी ये जब छुट्टी होती है ना तो कॉल्स वगैरह कर लेते हैं अपने मतलब फैमिली में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये होता है कि पास है ना तो वो पास होने की वजह से ना इंसान फॉर ग्रांटेड ले लेता है बहुत सारी चीज़ों को।
0: मुझे लगता है कि घर छोटे होने के साथ दिल भी छोटे हो गए हैं।
1: घर बड़े हुए हैं बल्कि जुबिया,
0: नहीं पहले घर भी बड़े होते थे दिल भी बड़े होते थे, अब घर भी थोड़े कंजस्टेड हो गए हैं। हाँ। और दिल भी कंजस्टेड हो गए हैं। अब अगर आप शहरों की बात करते हैं ना, आप शहरों की बात करते हैं तो वो हिसाब नहीं है जो पहले हुआ करता था। मतलब जिनके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन अब ना थोड़ा मुझे लगता है कि कंजस्टेड चीज़ें हो गई हैं, तो उसके साथ साथ ना दिलों में भी थोड़ी सी जो है ना वो इस तरह के मामलात आ गए हैं। अच्छा जी, कुछ पैगाम हैं उनको शामिल करें, ताकि इनके पैगाम शामिल ना करो तो ये कहते हैं कि भाई तुम पढ़ते तो है नहीं हो,
1: तुम
0: पढ़ते तो है नहीं हो, तो असी नहीं करते। अमरजा चौधरी साहब, बहुत सारे स्टिकर्स, थैंक यू सो मच, आपको ईद मुबारक। मुनाजर महमूद मुनाजर हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे रुबीना वजाहत मैम, हाँ यू वेलकम, ईद मुबारक मुनाजर महमूद मुनाजर फ्रॉम कतर। अच्छा कुछ मुल्कों में पता है आज ईद है, कुछ मुल्कों में आज ईद का पहला दिन है।
1: अच्छा।
0: तो उन तमाम को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक, और जिन मुल्कों में ईद का दूसरा दिन है उन तमाम को तो ईद मुबारक है,
1: ईद का दूसरा दिन
0: बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, और हमारे साथ कौन मौजूद हैं, मुनाजिर हैं आरजे जुबिया में, अस्सलाम वालेकुम आरजे जुबिया में, वालेकुम अस्सलाम। एम रजा चौधरी साहब ने बड़ी ही कोई मज़े की पुलाव की प्लेट हमारे तक भेजी है जिसमें दो हरी मिर्चें डाली हुई हैं, लेग पीस ऊपर पड़ा हुआ।
1: ये जुबिया रजा भाई ने एक हरी मिर्च आपके लिए भेजी और दूसरी भी आपके लिए भेजी।
0: अच्छा, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, मैं हरी मिर्च बहुत शौक से खाती
1: हूँ। रजा भाई आपकी जो हरी मिर्च भेजी है ना आपने वो हमें मिल गई है।
0: थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद हफीजुर रहमान भक्कर, रेहाना खान भक्कर से ईद मुबारक। अच्छा, हफीजुर रहमान की आइडिया और रेहाना खान हमें सुन रही है, भक्कर से कहती हैं ईद मुबारक,
1: खैर मुबारक।
0: अच्छा जी, मोहम्मद हफीज हैं हमारे साथ ईदगाह जनूबी बकर से, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मोहम्मद तारिक हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक,
1: खैर मुबारक। और कवल नास हैं आरजे रुबीना, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ कवल नास का फिर मैसेज आया है, शमसी रेडियो लिसनर क्लब वालों की तरफ से सबको ईद मुबारक।
0: मोहम्मद तारिक कहते हैं जी कौन सो रहा है, कौन सो रहा है,
1: अच्छा
0: कौन सो रहा है, मुझे तो नहीं पता कौन सो रहा है, मैं तो जाग रही हूँ। मोहम्मद तारिक आप बताएं कौन सो रहा है, कहते हैं तमाम खूबसूरत सवातों को अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। इरफान अल्लाह हमारे साथ, पीस बी अपॉन यू एंड द मर्सी ऑफ अल्लाह एंड हिज ब्लेसिंग, हाउ आर यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी आर फाइन, आप बताएं।
1: बिल्कुल फाइन और अल्हम्दुलिल्लाह, और चाहते भी हैं कि हम फिट फाट रहें क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है ना वो जिस तरह से तेज़ हो रही है, बिल्कुल ज़ुबिया थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का सिप लेती हैं और उसके बाद फिर जो है वो माइक पर आ जाती हैं। ज़ुबिया मेरे पास भी बॉटल है, मुझे याद आ गया है, आपको देख रही थी
0: इसीलिए याद करवा रही
1: मुझे बिल्कुल, और मेरे साथ बॉटल पड़ी है लेकिन मैं उसको देख नहीं रही थी, लेकिन मैं ज़ुबिया को देख रही।
0: अच्छा एक और चीज़ जो मैंने बताती चलूँ कि हम ना बहुत सारी चीज़ें इनटेक करते हैं जिसमें पानी हम पीने की कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन वाटर, ये हम बनाते हैं, तो उसमें ना मैं लस्सी आप बना के अगर बोतल में डाल लें ना तो मैं कहती हूँ चस हो जाए। और लस्सी भी कौन सी, दही थोड़ा दही, पानी बहुत ज़्यादा और हल्का सा नमक, और उसमें आप बर्फ मिला लें, आप उसको ठंडा कर लें और आप सारा दिन, कल ना मैंने बोतल बिल्कुल नहीं पी।
1: अच्छा
0: कल हमारे घर मोस्टली लोगों के घर जो होती है ना दावत होती है, बड़ी दावत होती है, मेरे हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, साथ साथ लोग रहते हैं, तो मेरे मामू के घर नाश्ता होता है, तो नाश्ते में जो है ना वो बड़ी हर साल बड़ी रज के जो है ना वो बदएहतियाती होती है।
1: अच्छा।
0: अब मैंने इस दफा ना तहिया किया हुआ था यार, नहीं मैं पिछले 3-4 महीने से थोड़ी सी ना मेहनत कर रही हूँ अपने पे, और मैंने ईद पे वो मेहनत को जाया नहीं करना।
1: okay.
0: तो मैंने कल सुबह के टाइम मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मैंने ना नान नहीं खाने, कहते रोटी बना देते, मैंने कहा यार मैंने रोटी भी नहीं खानी, मैं सैलेड खा लूंगी, सालन खा लूंगी और दही खा लूंगी, मेरा मूड नहीं था खाने का, दिल होता तो मैं खा लेती। अच्छा उसके बाद मैंने बोटल्स नहीं पी, किसी किस्म की कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी मैंने। अच्छा उसमें मैंने क्या किया कि सुबह के टाइम दही की लस्सी बना ली। अब वो दही की लस्सी को ना मैंने खूब वो पतला कर लिया और उसको भरी वो 2.5 लीटर की जो बोतल होती है ना उसमें मैंने उसको डाल के फ्रिज में रख दिया, मैंने कल सारा दिन वो पी। अच्छा उससे दो चीज़ें हुई, एक तो ये कि आपकी गट हेल्थ बड़ी, आपको पीस पीस सा फील हो रहा होता है, ठंडा ठंडा फील हो रहा होता है, कोई किसी किस्म की तलखी नहीं हो रही होती, दूसरा गर्मी नहीं लग रही होती।
1: हाँ, ये तो जबरदस्त बात है।
0: तो ये इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पर, ये जो जून जुलाई तक महीना, ये जो जून जुलाई अगस्त है ना इसमें आपने ये रेसिपी
1: डाल दी। वैसे मुझे ना एक बात याद आ गई, थोड़ी सी फनी सी है लेकिन आपकी इजाजत हो तो शामिल कर लूं।
0: हुकुम जी।
1: मेरी ना मुलाकात किसी ऐसे न्यूट्रिशन से हुई कि जिन्होंने कहा कि जी उन्होंने बड़ी काफ़ी लंबी तकरीर की कि आपने ना ये जो सब्जियां हैं, सलाद है, ये वो चीज़ें खानी हैं, ठीक है? तो अच्छा मैं ना सुन रही थी, वो किसी और को कह रहे थे क्योंकि मुझे तो उनको बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरी हेल्थ तो आपको पता ही है, मतलब
0: सही
1: है सब कुछ, ठीक है ना, वो अल्लाह की तरफ से ही मैनेज है क्योंकि मेरा जो वॉक का टाइम होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है,
0: ठीक हो गया।
1: सो ये चीज़ें ना मुझे स्पेशल नहीं करनी पड़ती, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा वो ना उनको काफ़ी लंबी उन्होंने स्पीच की और उसके बाद ना जो उनको बता रहे थे ना कहते अच्छा तो इससे क्या होगा, थोड़ी हेल्दी थी खातून, कहती इससे ये होगा कि आप ना मतलब पतली हो जाएंगी, कहती मुझे ये बताएं, अब पंजाबी थी वो जरा, कहती पट्ठे ते जानवरों नु बांधे ने, कहते हाँ, कहते ते पट्ठे क्यों बांधे ने, कहते इसलिए कि उनकी सेहत रहे, कहते ते फिर पट्ठे ही ऐसी खाइए ते असी ते और मोटे हो जाएंगे।
0: अच्छा कुछ लोगों का ये भी वो होता है ना कि
1: अच्छा मैं सुन रही थी और यकीन करें दोनों की बातों को सुन के मैंने इतना इंजॉय किया, मैंने कहा हम लोग आम रूटीन में ये बात कर रहे होते हैं और वो कोई न्यूट्रिशन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उन्होंने सिंपल बात कर दी कि पट्ठे जानवरों को डाले जाते हैं कि ये सेहतमंद हो, कहते ऐसी काम होंगे तो ऐसी और हो जाएंगे। सो बहुत शुक्रिया आप तमाम लिसनर्स का। रियाज भट्टी हमारे साथ आ चुके हैं, रियाज भट्टी फ्रॉम शाहदरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, जबरदस्त ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, और शो को पसंद कर रहे हैं और कुछ नाम आए हैं मोहम्मद हफीज ने भेजे हैं। अच्छा ये नाम आपने शामिल किए,
0: आपके नाम जो हैं वो सब तक पहुंच गए और सब वालेकुम अस्सलाम भी कह देंगे, खैर मुबारक भी कह देंगे।
1: हबीब मलिक हैं, खलील मलिक हैं, अली रहमान हैं, मुल्तान से गुल यासीन नास हैं, वेलकम टू द शो, हमारी तरफ से आपको और तमाम सामईन को ईद उल अज़हा और यौम तकबीर बहुत मुबारक हो। और पता है आज 28 मई है, आज ज़ुबिया
0: आज 28 मई,
1: ठीक है, और 28 मई यानी कि 28 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, पाकिस्तान को माशाल्लाह से एक दिफा जो हमारा है वो मजबूत हाथों में है, दिफाई कुव्वत बन चुकी है, एटमी कुव्वत बन चुकी है, और हम इस पर जितना शुक्र करें अपने रब का वो कम है।
0: बिल्कुल ऐसी है जी। कंवल नाज हमारे साथ, आज ज़ुबिया आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, कंवल आपको भी बहुत ईद मुबारक, कैसी गुजरी आपकी ईद और ये बताएं कि कैसा रहा ईद का पहला दिन और दूसरा दिन आज है, तो क्या प्लान है आपके ये भी मुझे बताइएगा। कहती हैं कैसी गुजर रही है ईद, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, कल का दिन तो सारा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा काम में गुजरा, मुझे पहली ईद है ये जिसमें पता चला कि कुर्बान ईद पे काम करना ऐसे होता है, वरना मैं नहीं किचन शिचन के पास पास से भी नहीं गुजरती। अच्छा। दूर दूर ही रहती हूँ। आहा सज्जाद अली लाडला आ गए लड़के, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सद बिस्मिल्लाह जी आया नु सलाम टू द शो। उम्मीद करता हूँ आप दोनों ग्रेट आरजे ठीक ठाक होंगी, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे और कोई दुख आपके कोई दुख पास ना आए आमीन, और उम्मत की तमाम बेटियों माँ के नसीब अच्छे करे। ओके बहुत शुक्रिया सजा, थैंक यू सो मच। और मुझे ये बताओ लड़के कैसी गुजरी तुम्हारी ईद, खूब कसाई बने या फिर बस देखा ही गोश्त होते हुए? मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें एक गाने की तरफ बढ़ना है, ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, कोई अच्छा सा ट्रैक लगाए। हाँ
1: जी बिल्कुल, मैंने ट्रैक जो है वो उसको लाइन
0: अप किया है वो आप तमाम के लिए।
1: मैसेजेस जब हमने शामिल किए हैं तो सिर्फ एक मैसेज रह गया अकबर खान का, कराची से हमारे साथ हैं। कराची में भी अच्छी खासी गर्मी होगी, वैसे सी व्यू पे जाकर थोड़ा सा गर्मी को कम कर लेते।
0: अच्छा आपको पता है कराची में गर्मी, मुझे पहले मैं समझती थी कराची में तो बहुत शदीद गर्मी होती है, अब मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कराची में गर्मी हमारी तरह की नहीं होती।
1: अच्छा
0: वहाँ अगर हमारी तरह की गर्मी हो ना तो वो लोग तो बीमार हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: वहाँ एक्चुअली ये है कि समंदर है तो हवा जो है वो चलती रहती है,
1: मौत दिल रहता है।
0: एग्जैक्टली तो इस तरह ये जो हम लोग हैं ना, हम लोग तो मुझे लगता है कि सूरज के बिल्कुल ही पास चले जाते हैं, हाथ से के आ जाते हैं। शामिल हो जाइएगा, कॉल कीजिएगा 0422111001।

0: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
1: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
2: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
1: चांद रात स्पेशल
2: भलकते कैसा ये चांद निकला,

0: जनाब ईद चांदों से भर गई है और स्टूडियोज में भी बहुत सारे चांद जो है वो बारी बारी आते जा रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर दो चांदनियां मौजूद है।
1: ईद मुबारक।
0: और हम भी आपको ईद मुबारक कहते हैं और तहे दिल से कहते हैं।
2: जी बिल्कुल, ईद मुबारक कहते हैं आपको। और अच्छा रुबीना, अगर हम बात करते हैं ईद की और चांद रात की जैसे बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो अच्छा इस दफ़ा थोड़ा सा मुझे इसमें कमी फील हुई, अदरवाइज चांद रात तो मुझे लगता है चांद रात ही होती है ना।
0: हाँ बिल्कुल,
2: लेकिन कुर्बान ईद पे, कुर्बान ईद पे अक्सर कहा जाता है कि यार नहीं पहले ही पता होता है 10 दिन पहले, मतलब कि इस दिन ईद है, तो ये इसकी कोई वो इतनी वो नहीं होती चांद रात की। लेकिन मुझे लगता है जब हम छोटे थे बहुत, अभी कुछ टाइम पहले तक भी, वो एक चाम जो होता था ना चांद रात का, वो रहता ही था। लेकिन इस दफा मुझे उसमें कोई पता नहीं, अब मेरी तरफ से कोई कमी थी
0: नहीं, हकीकत में ऐसा मैंने भी फील किया है,
2: है ना।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे
2: कि मतलब चांद रात की वो चाम नहीं था। मैं मार्केट में गई, अक्सर होता है कि चांद रात वाले दिन आप बाजार में निकलते हो, देखते हो कि कोई इस तरह के मामलात, रश वगैरह या कोई
0: विंडो शॉप, मेहंदी के लिए और
2: कुछ सब कुछ खरीद लेते हो, तो आप बच्चों की कोई चीज रह गई होती है, आप उसको खरीदने के लिए चले जाते हो, कोई झुमके, कोई चूड़ियां, कोई इस तरह की चीज।
0: इस वजह से भी जाते हैं ताकि हम बाहर की वो तमाम रौनकों को भी
2: देख सके। लेकिन इस दफा इतनी रौनक मुझे ना बाजारों में नहीं, फिर शायद ये भी कहा गया कि नहीं चांद रात को ना, ये जो कुर्बान ईद की चांद रात होती है इसमें मंडियों में रश होता है, वहां रौनकें होती हैं, बाजारों में नहीं। लेकिन हमने तो बाजारों में भी अच्छी खासी रौनकें देखी हुई हैं, तो इस दफा मुझे वो कहीं ना कहीं पे कमी लगी कि चांद रात जो कुर्बान ईद की चांद रात थी वहां पे जो है वो ये सारी चीजें चल रही थी। तो आपने भी हमारे सुनने वालों से हम पूछेंगे कि आप भी हमें बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे बचपन की ईदों का जिक्र भी करेंगे कि हम जब छोटे होते थे तो वो एक अलग सा चाम जो होता था वो हमारी एक अलग से हमारी अच्छा सबसे ज्यादा ये होता था कि यार ईद आएगी ना, तो हम मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है कि छोटी ईद पे बहुत सारे पैसे मिलते थे, तो बड़ी ईद जब आती थी तो मेरे अब्बा जो हैं वो पैसे दे देते थे।
0: अच्छा।
2: मेरे मामू पैसे दे देते थे, तो वो इतना ना फील नहीं होता था, तो हमने कहना यार फलान ही दे रहा फलान, तो उन्होंने कहना ये ना ये गोश्त की ईद होती है ना। लेकिन इतने हम पैसे ले लेते थे जिससे हम जो है ना वो पूरा दिन खाते भी थे।
0: अच्छा, यानी कि छोटे भी नहीं थे।
2: छोटे नहीं थे, तो वो कहते थे बच्चों को, हम कहते थे बच्चों को तो देने चाहिए ना पैसे।
0: वैसे कल ना जुबिया, कल ना हमारी दावत थी, हम लोग कहीं गए हुए थे,
2: ठीक है,
0: फाइनली हमें भी जाना पड़ा, अदरवाइज तो मैं किचन में ही पाई जाती हूँ।
2: अच्छा
0: अच्छा, जब गए ना तो वहाँ पर जिनके घर में गए हुए थे मेरे हस्बैंड, उनकी फ्रेंड है वो ना,
2: ठीक

0: हम और मुझे आके कि मामा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अल्लाह पता नहीं क्या बात करनी है। कहती है वो मुझे कह रही थी कि ये बच्चे छोटे हैं तो ये हमसे कहीं ईदी ना मांग ले, इनको बातों में हमने लगा के रखना है। तो मैंने कहा देखो खुद भी छोटे छोटे से हैं लेकिन देखो इनमें अभी भी ये एहसास की जिम्मेदारी आ चुकी
1: है
0: कि हमने जो है वो बड़े हैं, हमने ईदी देनी है।
1: जेन ज़ी की जहाँ हम बहुत सारी बात करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी उनकी ये सही बात है ये ठीक बात नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि वो ना वक्त से पहले ये समझदार हो गए हैं। शायद सोशल मीडिया ने, शायद हमारे जो एटमॉस्फेयर है, शायद हमारी जो एक माहौल है, उसने हमें बहुत ज़्यादा समझदार कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को वक्त से पहले समझ गए हैं। और मुझे लगता है कि इसके इसमें रोल ये भी बहुत ज़्यादा है कि पहले जो था वो एक अरसे बाद एक चीज़ देखने को मिलती थी, फैमिली की बात कर लो या कहीं पे भी बात कर लो, अब इन्होंने ना इतनी जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें देख ली हैं ना।
0: हाँ।
1: इनको समझदारी है भाई, हर हालात से निपटना आ गया है ना इनको।
0: कहते हैं ना कि जल्दबाजी होती जा रही है इनके अंदर, और
1: ये भी होती जा रही है, जैसे कोविड आया तो इन्होंने हर तरह के हालात में खुद को एडजस्ट करना सीख लिया है। तो ये एडजस्ट करना ही एक पॉइंट होता है कि आप कहाँ पे खुद को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम कर लिया है कि वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं है ना तो हम जुगाड़ सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे।
0: असल में यही बात है कि वो जो जुगाड़ सिस्टम है ना उन्होंने उसको मजबूत कर लिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि उनको कहीं पर भी किसी भी हालात में अपने आप को लेकर चलना, सर्वाइव करना।
1: एग्जैक्टली, और अल्टरनेट बहुत ज्यादा आ गए है ना, अल्टरनेटिव सिस्टम बड़े ज्यादा आ गए हैं किसी भी मामले में, रिश्तों के मामले में भी, चीजों के मामले में भी, दोनों चीजों में वो अल्टरनेट जो है ना वो उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है और वो उसको उस तरह से लेकर चल रहे हैं। इसी तरह अगर ईद की हम बात करते हैं तो ईद पे भी बहुत सारे प्लान हुए होते हैं। अच्छा, एक लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि यार ईद तो सोने के लिए होती है ना, तो वो एक चांद रात को सारी रात आपने घूमना है फिरना है। अब लोग ना ईद नहीं मनाते, अब लोग ना चांद रात अक्सर मनाते हैं कि चांद रात में आपने, अगर लड़कों की हम बात करते हैं तो वो गेट टुगेदर करते रहते हैं, दोस्तों यारों में बैठे रहते हैं। कुर्बान ईद की अगर बात करते हैं तो कुर्बान ईद वाले दिन कुर्बानी करते हैं और उसके बाद बस सो गए, तो वो सारी बात है, वो एक सारा सिस्टम होता है। लेकिन अगर छोटी ईद की हम बात करते हैं तो छोटी ईद पे भी यही सारे मामला देखने को मिलते हैं कि चांद रात सुबह 4-5 बजे तक जो है वो चल रही होती है और उसके बाद सुबह 8-9 बजे के बाद जो है वो गलियां और बाजार सब बच्चे बच्चे छोटे घूम फिर रहे होंगे। अदरवाइज सारी दुनिया जो है ना वो मुझे लगता है 90% लोग तो इस बात पे ही अमल कर रहे हैं कि हाँ जी जी ईद का दिन जो है ना वो सोके गुजारना। अच्छा। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा
0: बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने सोके नहीं गुजारना बिल्कुल, और हम जाग रहे हैं और हमें पता है कि कौन कौन से मैसेजेस जो प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बता देते हैं कि वो भी शामिल हो सकते हैं।
0: बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। सो आपने करना क्या है, 042 कोड लगाना है अगर आप मोबाइल से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: हाँ, हम आपके कॉल भी लेंगे,
0: 1-000-101, और इसके साथ साथ मैसेजेस अगर आप करना चाहते हैं, अगर करना चाहते
1: हैं, अगर करना चाहते हैं, नहीं नहीं करें भाई, करें
0: वाले हाथ नहीं
1: करें, मैसेजेस करें, कमेंट करें हमें, और हम आपके कमेंट लाजमी तौर पे शामिल करेंगे। सज्जाद अली लाडला हमारे साथ, आप बताएं, ग्रेट आरजी, आप दोनों की ईद मुझे लगता है किचन में गुजरी। भाई मेरी कल की ईद का दिन जो पहला दिन था वो तो सारा दिन ही किचन में गुजरा, सुबह 12-1 बजे से लेकर आप कह लो कि रात के 11-12 बजे तक मैं किचन में ही थी।
0: सही,
1: तो इसी तरह दिन गुजरा है मेरा।
0: ओके, किंग फजल खान काकर भी आ चुके हैं। किंग फजल खान काकर ठीक हो गया, मुझे लगा ये दो नाम अलग अलग हैं। सो आप वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। और उस्मान मुगल हैं, उनकी कॉल आई थी और उन्होंने जो है वो तमाम सुनने वालों को सलाम कहा और ईद मुबारक कहा था, कहते हैं कि बड़ा जानवर था और मैंने खुद किया था, और खुद इसलिए किया था क्योंकि मौसमी कसाई जो हालात करते हैं पैदा कर देते हैं और बाद में जो वहाँ पर जो गंदगी फैला देते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम खुद ही कर लें, और साथ साथ हमने साथ सब कुछ क्लियर भी कर दिया।
1: वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मौसमी कसाई से जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ में ना वो मुझे पहले चीज़ों का वक्त के साथ जब आप भरे होते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। मुझे एक और चीज़ पता चली कि आप जो गोश्त पकाते हो ना उसके पकने में उसकी जो कटाई हो रही होती है जब वो कसाई जो है वो उसके हिस्से कर रहे होते हैं उसका भी बड़ा अमल दखल होता है, पता है
0: जी, ऐसे ही है।
1: वो कच्चा रह जाए ज्यादा, एक कुछ गोश्त जो होते हैं ना वो सही पकते नहीं है तो उसमें भी उसका बड़ा,
0: बोटी का साइज कैसा बनाना है, जो पीस है ना उसको आड़ा करना है, तिरछा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ एक चीज और भी बहुत होती है इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि कुछ लोग जो है ना वो जब जो मौसमी कसाई है वो जब गोश्त बना रहे होते हैं ना तो वो कुछ खास किस्म की ना उनमें चर्बी के कुछ हिस्से होते हैं वो उसको या तो उतार देते हैं जिसको जिसने गुलाना होता है या फिर उसके साथ लगी रहने देती है जो उसको हार्ड कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जिसमें जब प्रेशर में डालते हैं तो फिर वो प्रेशर ही लगता रहता है, सारा दिन प्रेशर लगता है और आपने प्रेशर

0: नहीं लगाना, आप बहुत कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं और रुबिया मेरे ख्याल में कॉल्स शामिल कर लेते हैं।
1: एक दो मैसेजेस पढ़ते हैं, एक गाना लगाते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर कॉल लेंगे। क्या ख्याल है आपका? मलिक वसीम अवान हमारे साथ है मुंडा सियालकोटी, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कौन है हमारे साथ? मैं तो सोने की तैयारी कर रहा था अभी, पर अचानक अचानक पता लगा कि ग्रेट आरजे आए हैं, तो मैंने
0: मुल्तवी कर दिया, इरादा मुल्तवी कर दिया।
1: सजाद, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। कोई नहीं, वो कहते हैं ना जो सोते हैं वो खोते हैं, और खोते हैं खो देते हैं खो देते हैं। हाँ, आप गलत समझ रही है, मैंने गलत बात की
0: कि कोई इससे पहले की कुछ और खो जाते हैं
1: खो जाते हैं। बिल्कुल, आप जी हमें हमेशा शामिल हो सकते हैं एफएम गौर ओवन के ऑफिशियल पेज पे, जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट कीजिएगा और कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। यहाँ मेरे ख्याल से हम एक गाना लगाएंगे, गाने के बाद वापस आएंगे और फिर आपकी कॉल्स लेंगे। जिन्होंने कॉल करनी है उनको बताते चलिए, 04221100101 हमारा डायलिंग नंबर। और जीशान रोकड़ी को शामिल कर रही है रबीना की नहीं?
0: हाँ जी बिल्कुल, उनको शामिल किया जा रहा है और इसके साथ साथ असद इकबाल को जरूर शामिल करना चाहूंगा।
1: हमारा बेग को पसंद है जीशान रोकड़ी, वो अक्सर इसकी फरमाइश करती है, हमारा बेग दिस इज फॉर यू।
0: ओके, हमारा बेग ये आपके लिए। और असद इकबाल लाहौर से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, फर्स्ट टाइम कॉल किया है असद, थैंक यू सो मच। और जो बातें आपने की हैं हम आके वापस
1: सिरदा सौदा कर बैठे,
0: ऐसी बकरे दा सौदा कर बैठे।
1: अच्छा हुआ सौदा या नहीं, अच्छा रेट अच्छा बना लेती हैं आप वैसे?
0: नहीं,
1: रेट करना आता है आपको?
0: हाँ कोशिश होती है, लेकिन
1: बार्गेनिंग कर लेती हैं?
0: नहीं इतनी ज्यादा नहीं,
1: नहीं होती,
0: नहीं इतनी ज्यादा नहीं,
1: मुझसे भी नहीं होती, लेकिन मैंने जो चीज ना लेनी हो ना उसमें मैं टका के बार्गेनिंग करती हूँ,
0: लेकिन मेरी अम्मी बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती है।
1: चलिए जी सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक, फिर हम वापिस आते हैं आगे करते हैं।

0: खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

0: ईद का खुसूसी शो
1: ईद मुबारक पंजाबी स्पेशल
0: सुनियो ईद मुबारक
2: चन चन दे सामने आ गया चन चन दे सामने आ गया मैं तो बात सदके जावा सुनियो
1: ईद के रंग FM 101 के संग
0: और ईद का दिन है
1: जिनमें होगा आपके पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ ढेर सारा हल्ला गुल्ला
0: शोखियाँ शरारतें
1: और आपके दिलों को छू लेने वाले गीत
0: तो फिर सुनना ना भूलिएगा
1: ईद के पहले दो रोज FM 101 की खसूसी ट्रांसमिशन
3: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया
4: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है
5: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है
6: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है
7: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
8: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है
9: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
10: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें मतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान महकमा सेहत व आबादी हुकूमत पंजाब
3: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया
11: जी वेलकम बैक दिस इज FM 101 लाहौर लाइव स्टूडियो इट्स मी जुबिया शफीक और जी बात कर रहे हैं हम कुर्बान ईद के हवाले से बात कर रहे हैं हम कि आपकी ईद सो के गुजरी या फिर खा पी के गुजरी और ये भी हम बात कर रहे हैं कि दावतों का सिलसिला जारी है किसी के घर जा रहे हैं या फिर आपके घर में दावत हो रही है हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद है 04-111-000 डायलिंग नंबर है और जी देखते हैं लाइन पे कौन है अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कमल नाज हमारे साथ मौजूद हैं
12: हेलो
11: जी जी आपकी आवाज आ रही है हमना आप हमें सुन रही हैं सुन पा रही हैं हमें जी जी मैं सुन रही हूँ
12: मेरी फसल कॉल काटी गई थी मैं इतना रोई थी बाद में बैठ के
11: ओहो क्यों क्यों रोई थी आप
12: क्योंकि अक्सर मेरे भैया मामा में कॉल ही नहीं लगती है मैं कल भी सारा दिन रेडियो के साथ ही थी और कॉल ही नहीं लगती है
11: सही सही
13: इतने कीमती आंसू लड़की कॉल के लिए उतार निकाल देती हूँ
12: आपकी कभी बहुत बहुत ईद बारी किन का सुनती रहती हूँ कॉल नहीं कभी मैंने कॉल नहीं की किसी आ रही है उसको बहुत कम करती हूँ
13: जब करती हैं तो फिर रोने लग पड़ती हैं हम ना ईद कैसी गुजरी
12: कल का दिन भी अच्छा गुजरा आज का दिन भी कल भी कुर्बानी की थी आज भी कुर्बानी हो रही थी
13: किस कलर का ड्रेस बनाया इस दफा हमना ने
12: जी
13: किस कलर का ड्रेस बनाया देखा अब हमने नहीं हमना काटी रोना नहीं तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कहती है मेरी कॉल करती
11: है मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा एनीवेज कोई मसला नहीं लाइन पर एक और कॉलर है अस्सलाम वालेकुम
14: वालेकुम अस्सलाम
11: कौन बात कर रही है
13: कौन बात कर रही है बिस्मा कैसी हो लड़की
14: आपने मुझे पहचान लिया सेकंड
13: टाइम मैंने पहचान लिया मैंने पहचान लिया मेरे से जो एक दफा बात कर लेते हैं मैं उसको पहचान लेती हूँ बहुत अच्छे से कैसी हो
14: मैं ठीक हूँ
13: कैसी गुजरी ईद
14: ना ईद बहुत अच्छी गुजरी है ना किसी घर दावत थी ना किसी को दावत दी है बस घर में ही बोर होते हुए गुजर रही है
13: तो दावत दे देनी थी अगर किसी ने आपको दावत नहीं दी तो
11: कह रही थी दी भी नहीं ना किसी ने तो इसलिए हमने भी नहीं दी
13: ये सही है अच्छा है ये
11: बिस्मा मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं खाया
14: हाँ जी आपको कैसे पता
13: आपकी बातों से पता चल रहा है
11: एनर्जी लेवल बता रहा है
14: नाश्ता नहीं किया सुबह से
13: अच्छा बिस्मा मुझे ये बताओ कि ईद का कैसा ड्रेस बनाया
14: ईद का था ग्रीन कलर में
13: और पहना भी वो कि बस प्रेस करके रख दिया
15: बस वो कल मैंने शाम के टाइम पहना था और आज मैंने पहना हुआ स्काई कलर का और नीचे जो ट्राउजर है।
13: अरे वाह, ये तो तुमने मेरी मेरे साथ मैचिंग कर ली, ट्विनिंग कर ली, ट्विनिंग।
16: हाँ बिल्कुल,
15: व्हाइट कलर की लेस लगी हुई है, मतलब स्काई कलर का सिंपल और लेस है,
16: यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया।
13: यहाँ मेरी जो लेस है ना वो भी स्काई कलर की ही है।
15: और जो आपका ट्राउजर है वो व्हाइट कलर का?
13: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैंने स्काई, मैंने फुल स्काई ड्रेस जो है ना वो बनाया है,
16: ये फुल स्काई वे हुई हुई है,
13: स्काई वे हुई हुई है।
15: बिल्कुल
13: ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। चले बिस्मा, थैंक यू सो मच।
15: एक बात बताऊं?
13: दो बता दे।
15: चांद रात को हम गए ना पार्लर, वहाँ पे इतना रश, वहाँ पे इतना रश, ठीक है, तो वहाँ पे मेहंदी मैंने कहा मैंने लगवानी है, तो वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम लगा।
13: ये कोई मसला हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे कॉल, हमारी कॉल जा रही है कि एक मिनट से ज्यादा हम किसी भी कॉलर से
16: मुझे
13: बात
16: लग रहा है, क्योंकि ये फिर आप जो है ना वो थोड़ा।
13: एनीवेज जी, आप हमें मैसेजेस करें और कमेंट करें एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे, आप हमारी पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट शामिल कर रहे हैं हम, और इसके साथ साथ 04221000101। अस्सलाम वालेकुम जी,
16: पर एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
17: वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम 101 के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम।
16: वालेकुम अस्सलाम। शमी मापी आ गई हैं इचरा से।
17: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
16: क्या ईद मुबारक।
17: खैर मुबारक, खैर आप लोगों को भी बहुत बहुत
16: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक।
17: हाँ जी,
16: तो पका लिए सारे खाने, देगे वो क्या कहते हैं बिरयानी और कौरमे और सारा कुछ बना लिया, दम पुख्त बिरयानी?
17: अभी नहीं, अभी बन रहा है।
16: अच्छा, अभी बन रहा है, ठीक है, बस तैयार रखें, बस तैयार रखें। मैं अपनी प्लेट लेकर आ रही हूँ, जूबिया भी साथ ही।
17: जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुबह प्रोग्राम खत्म होता तो आ जाइएगा।
16: बिल्कुल ठीक
17: है, आ जाए। तो सब सुनने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरे तारिक भाई को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और हनी भाई को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हनी,
16: बहुत शुक्रिया आपका।
17: और कोई अच्छा सा पुराना सा गाना प्ले कर दें।
16: अच्छा।
17: ये ईद का दिन है, गले हंस के लगा लो मुझको।
16: अच्छा ठीक है, मैं इसको सर्च करती हूँ, ठीक है।
17: हाँ।
13: ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा रुबीना, अगर हम बात करते हैं कुर्बान ईद की, तो ये गर्मियों में आती है अक्सर, मतलब यही मामलात चलते हैं।
16: मैंने तो अक्सर ही क्या, मैंने इसको देखा ही गर्मियों में है।
13: आपने इसको देखा ही गर्मियों में, ठीक हो गया। आगे आगे मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद जाके जो है ना ये
16: पता नहीं कब से सुन रहे हैं, अभी तक तो नहीं आया वो टाइम।
13: थोड़ा सा मौसम चेंज में आएगी, लेकिन जितना ज़्यादा ये गर्मियों में आती है उसके बावजूद बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, तो उनमें जैसे गोश्त, वैसे कहते हैं कि गर्मियों में इतना ज़्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो बड़ा ही एक तो लजीज होता है, दूसरा ये होता है कि वो इससे आपको वो वाली प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली कहे जाते हैं गोश्त खाने से, इससे नहीं होते। ये भी कुछ चीज़ें जो हैं वो होती हैं, लेकिन इसमें ये भी हमें साथ में ख्याल रखना होता है कि हम जो जिस चीज़ को जितना कुक जिस तरीके से कर रहे हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा एहतियात करें। अब गोश्त तो हमने बनाना ही है, लेकिन उसको कुक करने का प्रोसेस जो है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल कर देते हैं
16: जी।
13: तो वो थोड़ा कम, वो थोड़ा जितना नेचुरल साइड पे रह के हम चीज़ें कर सकते हैं, तो वो आपको नहीं लगता
16: कि
13: वो ज़्यादा
16: इसी तरह से, क्योंकि नमकीन गोश्त हर घर में बनता है। और आपने क्विक रेसिपी की बात की थी, तो जो क्विक रेसिपी है वो कुछ इस तरह से है कि आपने गोश्त लिया, उसको धोया, साफ सुथरा किया, और उसके बाद उसके साथ जो हल्की सी चर्बी होती है ना थोड़ी सी, बस वो आपने रहने देनी है, और आपने उसको जो है ना हल्का सा नमक डाल के उसे पकने के लिए रख देना है, ठीक है,
13: ठीक है।
16: कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। आपने रख दिया और उसके बाद सिर्फ नमक थोड़ा सा डाला आपने उसको, आपने पकने के लिए थोड़ा पानी डाल के रख दिया। जब वो पक जाता है इतने में कि पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा सा रह जाता है, जब आपने देख लिया कि गोश्त गल गया है, तो उसके अंदर आपने क्या डालना है, सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च डालनी है,
13: ठीक है।
16: और आपने उसको क्या करना है, हल्का सा भूनना है,
13: ठीक है।
16: आप बिलीव करें, और उसके बाद जब
13: लहसुन अदरक
16: कुछ भी नहीं डालना,
13: लहसुन अदरक
16: कुछ भी नहीं, टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डालना। और ये नमकीन गोश्त की खास रेसिपी है,
13: ठीक है,
16: उससे ये होगा कि जब आप उसको मतलब ये बन गया ना और आपने काली मिर्च डाल के तो उसको हल्का सा भून लेना है और फिर अपनी प्लेट में निकालना है, वहां पर आप उस पर गार्निशिंग के लिए लेमन डाल दें, अदरक डाल दें, जो भी आपने कटिंग करके करना है, धनिया पुदीना ये वो सब चीजें कर लें। लेकिन यकीन करें जूबिया उसको फोक सिखाएं, चम्मच सिखाएं, हाथ सिखाएं, इतना बहुत मजे का होगा और वो इतना ज्यादा सेहतमंद होगा।
13: आर्टिफिशियल चीजें जितनी भी हम इंक्लूड करते जाएंगे ना वो आर्टिफिशियल प्रोसेस में ही चीजें चली जाएंगी।
16: मैं बनाती ही हूँ, ठीक है, और इसको और ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा था।
13: वेरी गुड,
16: क्योंकि ज़ायरा इतनी पहले आ गई थी इस यूनिवर्सिटी में तो मेरी तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी।
13: अच्छा।
16: हाँ, बहुत ज्यादा बुरे हालात थे मेरे, क्योंकि कहाँ फर्स्ट ईयर का लेवल था और कहाँ मतलब कोई बुरे हालात थे, मुझे कुछ भी नहीं आता था। और इनके घर में ये था कि इनके घर में दावतें चलती थी बड़ी बड़ी खास, और बनाती मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ थी बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है उनको अल्लाह ताला सलामत रखे, लेकिन नाम मेरा कर देती थी कि इसने बनाया।
13: अच्छा।
16: और मुझे पता भी नहीं होता था किसी को बनाया किस तरह से है। इवन के एक दो ने जब पूछा ना कि बेटा आप इतनी छोटी सी और आपने ये बना लिया कैसे बनाया, तो अब बेटे को क्या बताओ, क्या बताओ क्या डाला है बीच में। तो इस तरह के बड़े लतीफे मेरे साथ चले कि बनाया कुछ था और रेसिपी मैंने किसी और चीज़।
13: अच्छा, ये भी चीज़ एक सीखने की है कि पहले जो मदर इन लॉ होती थी या जो आपकी सिस्टर इन लॉ होती थी वो इस इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा करती थी। अब क्या होता है कि अब अच्छी चीज़ बन जाए सही बहू से, तारीफ हो जाए सही, उसमें कोई ना कोई कीड़ा कोई ना कोई खामी निकल ही आती है कि भाई यार ये जो है ना ये इसने इस तरह बनाया है और इसके में ये खामी है। तो मुझे लगता है एक दूसरे को समझ के एक दूसरे को जो है वो अप्रिशिएट करके चलना चाहिए। और आप जब किसी को इसमें, अच्छा मैं ये बात स्पेसिफिकली सिर्फ बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रही, मैं आपकी मदर इन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रही हूँ कि अगर हम अपनी अम्मियों की, मेरी अम्मा 100 किस्म की ऐसी बात होती है जो डांट देती हैं और वजह कोई भी नहीं होती।
16: हाँ, बिल्कुल, बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
13: कभी हमारे घर में कोई शादी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसमें क्या होता है, या कोई भी ले लेते हैं कॉल हम, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना तो उसमें ये होता है कि अम्मा मेरी का अलहदा से बीपी हाई हुआ होता है।
16: अच्छा।
13: वो काम देख कर के ये काम टाइम पे हो जाए, उनको होता है कि टाइम से पहले जो है ना वो काम हो जाना चाहिए। तो इस तरह का जब कोई भी मामला होता है तो वो ना बड़े गुस्से में होती है तो वो हम सारे बहन भाइयों को ना एवं डांट रही होती है, बाद में फिर कहेंगी अच्छा मेनू ना समझ नहीं आई।
16: अच्छा।
13: तो हम उस टाइम पे वो चीजें भी तो मतलब इग्नोर कर देते हैं या हम जो है वो उन चीजों को बर्दाश्त करते हैं ना। तो जब हम ससुराल में जाते हैं, हमारी बच्चियां ससुराल में जाती है तो वहां जाके ये चीज की होती है इसने इस तरह देखा हो जाएगी, देखा इस तरह इस बात पे जो है वो बहसें हो जाती।
16: अच्छा, ज़ुबिया एक चीज इसमें ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चियों को ये सीख दे के भेजते हैं कि आप ये स्कूल में थे, आप ये यूनिवर्सिटी में हैं और वहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखनी भी हैं।
13: बिल्कुल ऐसे।
16: अब क्या होता है कि तुझे कोई देखे सही, तू आगे सानू दस, तू कली नहीं है, तू लावारिस नहीं।
13: Exactly.
16: ये वाली सोच जब लेके बच्ची जाएगी तो फिर यही होगा,
13: बहुत सारी चीजें।
16: ज़ुबिया मेरे ख्याल में कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो, जर्मनी से हमना हमारे साथ हैं।
13: हमना रोई तो नहीं आज,
16: लग गई। चलो कोई नहीं, जल्दी से पहले इसे पहले कि आप फिर रोएं कॉल कटे आप बात कर लें जल्दी से।
18: और ज़ुबिया पे आपको पहले सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, सभी सुन
13: रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
18: तो मैं अब प्रोग्राम सुनती रहती हूँ, मुझे कॉल नहीं करती क्योंकि और 15-20 दिन तक हमने चले जाना है, छुट्टियाँ मेरी खत्म हो गई।
13: अच्छा जी।
18: हाँ
13: अच्छा, हमना क्या खाया, स्पेशल क्या खाया है?
18: मैंने क्या खाया है? मैं नहीं खाती मटन बिल्कुल।
13: हवा से जिंदा रहती हो लड़की।
18: मुझे हमक आती है।
13: हमक आती है, ओके। तो हमक के बगैर का गोश्त बनाया करे ना, हमक वाला ना।
18: नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाती। मैं यानी कि कल भी कुर्बानी हुई है, आज भी मैं कल भी सारा दिन रूम में रही हूँ, लॉक किया हुआ था, बाहर कुर्बानी होती रही है। फिर शाम को 6 बजे मैं बाहर निकली और डैडी ने पापा को बोला बाहर ले जाओ और खाना खिला के घर आ गई रात को।
13: ओके हो गया, ठीक हो गया।
16: वो आप ना यखनी बना लिया करो, पी लिया करो, खाया ना करो, सिर्फ पी लिया करो।
13: उसको उसमें से भी हमक आएगी,
16: आप उसमें नमक डाल दो, हमक नहीं आएगी।
13: मंडे को प्रोग्राम में और कुछ कहोगी इससे पहले कॉल कट जाए फिर तुम रोने लग पड़ो? चलो बस मैं सुन रही हूँ, करो फिर, और की गल करनी है
18: रेडियो पे, बात ही नहीं करनी आती।
13: شروع میں نہیں آتی تو کرنی پھر بندہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتا ہے.
18: اور آپ پوچھ رہی تھی میں نے کون سا ڈریس ڈالا, جب میری کال کٹ گئی ہے نا تو میں نے نا وائٹ کلر کا ڈریس بنایا تھا.
13: ویری گڈ, ویری گڈ,
16: کمال.
18: اتنی گرمی تھی, اتنی گرمی تھی, میں نے ڈالا اور میں نے فوراً سے بس باہر سے جیسے آئی اتار کے میں نے ہینگر کر دیا. میں نے کہا نہیں ڈالنا, بہت گرمی ہے باہر, تو ابھی کیونکہ ابھی میں چھت پہ ہوں اور سورج صاحب جو ہے نا, اوہ مائی گاڈ,
16: وہ بھی چھت پہ ہیں, دونوں چھت پہ ہیں. سورج, چلو
13: ہم نا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کا کال کرنے کا, دوبارہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو جی,
16: تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.
13: اچھا اگر بات کریں نا ہم روبینہ, بات کریں ڈریسز کی کہ گرمیوں کے, تو گرمیوں میں ہلکے کلر کے کپڑے پہننے چاہیے. اور میں نے نا تین اپنے جوڑے جو ہے نا وہ پریس کر کے رکھی, اور یقین جانتی ہے تینوں ہلکا کلر تھا, مطلب لائٹ لائٹ کلر. لیکن میرا بلیک کلر کا ایک ڈریس لٹکا ہوا تھا, میں نے کل وہ پہن لیا رینڈملی. تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو
16: پھر لگ پتا گیا زوبیا کو, زوبیا کو لگ پتا گیا. اور اس وقت ایک عدد کمرشل کا ٹائم ہے, سو ہم کمرشل کے بعد واپس پلٹ کر آتے ہیں. سٹے ٹیون ایف ایم 101.
19: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر, پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند. اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ. اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ. اے ای پاور, دی الٹیمیٹ پاور سولوشن.
20: ہم سے ہے روشن یہ جہاں,
21: ہم سے ہے

0: ऑल राइट वेलकम कहते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ईद स्पेशल मेरे साथ यानी कि रुबीना वजाहत के साथ। और मेरे साथ कौन है? मेरे साथ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ जूबिया भी हैं।
1: जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जी ईद स्पेशल और आज कुर्बानी का दूसरा दिन है। हमारे साथ ही कॉलर मौजूद हैं और देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम, कंवर नाज़ बोल रही हूँ।
1: जी कंवर, कैसी हैं? ईद मुबारक।
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। और आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका
2: जी। और आपकी ईद कैसी गुजरी आप बताएं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी और अच्छी गुजर रही है। अभी तो गुजर रही है, अभी तो एक दो दिन है और इस दफ़ा तो लॉन्ग वीकेंड है ना, तो ईद अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह, बाकी के दिन भी अच्छे गुजरेंगे। क्या कहेंगी कंवर?
2: मैं ये कहूँगी वही ईद के दिन है, अपना तो ख्याल रखते हैं, दूसरों का भी रखें और सबके लिए खुशी का सबब बने, अपनी मसरूफियात में से दूसरों के लिए टाइम निकालें
1: और गोश्त भी निकालें।
2: बिल्कुल ठीक है आपने कहा, बड़ी लोग अक्सर कह देते हैं ना ईद ही नहीं मिलती, तो गोश्त तो लोगों को मिल ही जाता है, ईद ही नहीं मिली तो यही है ना। हाँ जी, और चेल्सी ग्रुप वालों की तरफ से भी सबको बहुत
1: बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कमल, बहुत शुक्रिया आपका जी। ईद मुबारक। अच्छा जी, कुछ पैगामात हैं हमारे पास, हम उनको साथ में शामिल करती हैं। ज़िया खान हमारे साथ, जबरदस्त प्रोग्राम माशाल्लाह, लाइव भी सुन रहा हूँ। ओके ज़िया, थैंक यू सो मच जी। सजाद अली लाडला है, कहते हैं जब कॉल नहीं मिलती बंदा रोता है और फिर अचानक कट हो जाए, मासूम लोग मेरे जैसे सब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते हैं मैं। हमारे साथ जी अमर रमेश कुमार हैं, बकरा ईद का दूसरा दिन मुबारक कबूल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान गुज्जर हमारे साथ मौजूद जी, ईद मुबारक कहते हैं।
0: कॉल ले, मैंने कॉल ले ली थी, मैंने कहा इससे पहले कि कोई और रोए। अस्सलामुअलैकुम।
1: सही हो गया
3: जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब आप बताइएगा, ईद कैसी गुजरी आपकी?
3: माशाल्लाह जी बहुत अच्छी गुजरी है ईद तो। आज सुबह जो मैंने देखा ना, तो उसके बहुत मुझे डराना महसूस हो रहा है। हमारे बिल्कुल सामने घर है गुजरों का,
1: ठीक है।
3: मैंने छोटा सा बच्चा जो छोटा सा लेकर पाला था,
1: ठीक है,
3: तो माशाल्लाह 7 मन का वो अब हो गया था।
1: 7 मन का, ठीक है।
3: हाँ जी, तो माशाल्लाह उसने जो बच्चे ने ना बहुत प्यार से पाला था, अब जब विवाह करने लगे ना उसको, तो वो उसको प्यार कर रहा था, वो रो रहा था और बेड़े जो बच्चे की आंखों में भी आंसू आए थे।
1: आई हाई।
3: और इतना प्यार विवाह किया तो वो फिर बहुत होया, जिसने पाला था ना वो भी बहुत होया कि मैंने प्यार से बहुत प्यार से पाला था। कुर्बानी का मकसद ही यही है, हकीकत जो मकसद है उस जानवर से इतना प्यार करो कि
1: बिल्कुल प्यार करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं,
3: वो अपना महसूस हो हमको ये अपना।
1: बिल्कुल ऐसे है शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की रुबीना, कि कुर्बानी का मतलब ये है कि आपने अपनी पसंदीदा चीज, अपनी मन पसंद चीज अल्लाह की राह में। अब जिस जानवर को, ये तो बहुत सारी मजबूरियां होती है ना, जिसमें हम बाज़ दफ़ा वो नहीं, जानवर पहले नहीं ला सकते, जिसे पहले नहीं कर सकते। अच्छा रुबीना को बहुत जल्दी जल्दी है कॉल, आए सही मैं उठाऊं सही,
0: कर ले कर ले। जितने तरीके से जिस तरह से वो कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि हर बंदा खुश हो, जल्दी जल्दी कॉल्स मिलती जाए। अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन बात कर रहे हैं?
4: नईम बलोच बात कर रहा हूँ, लाहौर से।
0: नईम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक, क्या कहना चाहेंगे?
4: आपको भी ईद मुबारक और आपके साथ के जो बैठे हैं उनको भी ईद मुबारक। मैं सारे लिसनर्स को भी ईद मुबारक कहना चाहता हूँ और एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग साबे हैसियत होते हैं और जो मतलब कुर्बानी करते हैं, तो उनसे मेरा ये पैगाम है कि जो गरीब लोग जिनको हम गोश्त बांटते होते हैं, तो कोशिश करें, क्योंकि पहला जो ईद का दिन होता है उस दिन तो यू नो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने गोश्त देना होता है, जो गरीब लोग होते हैं जिन्होंने कुर्बानी की उनको, तो जो लोग उस दिन गोश्त घर में अगर रख सकते हैं, उनके फ्रिज में इतनी जगह है या डीप फ्रीजर में, तो वो रख दिया करें, वो कोशिश किया करें कि 2-3 दिन बाद ठहर के दिया करें गोश्त, तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि पहले दिन अगर उनको 10 किलो गोश्त इकट्ठा हो जाएगा तो वो तो खराब हो जाएगा, वो ना सारा खा सकते हैं ना सारा रख सकते हैं, तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास जगह है तो आप गोश्त को रखें, 2-4 दिन बाद ठहर के दे दें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात।
4: चलिए, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।
1: अच्छा इसमें रुबीना ये बात भी होती है कि गोश्त जब हम तकसीम कर रहे होते हैं ना, तो ये जहन में होता है कि सबका हिस्सा उन तक पहुंचा के अपना जो है वो उसको स्टोर कर लिया जाए, तरतीब से रख लिया जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा ना ये इस चीज पे इम्प्लीमेंट इस वजह से ज्यादा जो है वो नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, उन्होंने साथ में एक और चीज की कि अगर आपके पास जगह है, हाँ। अच्छा कुछ पैगाम हैं उनको मैं साथ में शामिल लाजमी तौर पर कहना चाहूंगी। रमजान गुजर है, वो कहते हैं कि मैं भी सुन रहा हूँ, खुश आमदीद आदाब अर्ज है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद कहते हैं, मिस जी आपकी बातें एंड हो गई, उसके बाद मैं कॉल मिलाऊ लगता है नहीं मिलेगी क्योंकि आपके ब्यूटीफुल बातें
0: कम नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, ठीक है ना।
1: बहुत शुक्रिया। कहते हैं
0: लुबे लुबाबे की
1: बात कहते हैं, मिस जी आपके शो में, बस एक आपके शो में ही ऑन एयर कॉल क्यों नहीं मिलती। रमजान को जो ये किसे कह रहे हैं आप, ये भी बताएं। थैंक यू सो मच जी। सज्जाद कहते हैं, जबरदस्त शो, ग्रेट आरजे, सलामत रहे। आज 4/4 8 चांद लग गए, मैं कहनी आप 15-20 लग जाने चाहिए देने। तो थैंक यू सो मच सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
0: मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी,
1: ओके
0: माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आपका मैसेज, वो जो लेटर है वो भी मेरे पास है और मैंने उसको पढ़ा है और यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा।
1: मुझे नहीं वो लेटर अभी तक
0: मुझे मिल गया और अच्छा। मैंने बकायदा जो है ना वो प्रोग्राम में अनाउंस भी करूंगी और अच्छा, उसकी कुछ चीजें मैं शेयर भी करूंगी। मैंने उसको बड़ी तवज्जो से पढ़ा था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, राइटिंग बड़ी अच्छी एक सीक्वेंस में चल रही थी,
1: ठीक हो गया।
0: और वो जिसे कहते हैं ना कि फ्रंट और बैक, वो सारी चीजें बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा। थैंक यू सो मच। आपका भी
1: कॉलर लेते हैं
0: और कॉल देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम
1: जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से?
5: वाबदा कॉलोनी गुडू स्लैश मोर से मोहम्मद हनीफ शाह।
1: मोहम्मद हनीफ शाह, ईद मुबारक।
5: खैर मुबारक आपको, तमाम सुनने वालों को और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से दिल की खास गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू।
5: और प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका आवाज बिल्कुल कम आ रही है।
0: आवाज कम आ रही है, आवाज तो यहाँ पर तो हमें ठीक है,
5: यहाँ पे बहुत कम आ रही है।
1: चलिए पता करवाते हैं हम ये भी।
5: आज जो लोग कहते हैं ना कि हनीफ क्या कह रहे हैं आवाज कम नहीं आती, उनको रिक्वेस्ट है कि 666 पे जैज रेडियो सुनकर देखें, वहाँ पे आपको कैसी आवाज आ रही है।
0: अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया,
1: ठीक हो गया,
0: बहुत शुक्रिया सर,
1: हनीफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, थैंक यू।
0: यहाँ पर एक अदद कमर्शियल का टाइम
1: और फिर सॉन्ग भी लगाते हैं, फिर हम वापस आएंगे।
6: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
7: हमसे है रोशन ये जहां,
6: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: और आई जनाब वेलकम कहते हैं वंस अगेन, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप लेडीज दो टू लेडीज हैं यहाँ पर और प्रोग्राम है ईद स्पेशल। ईद की ट्रांसमिशन आप तक पहुँच रही है रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाहौर स्टूडियो से और हमारे साथ लाइन पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से आप दोनों को वेलकम, खुशामदी जी अनु, कैसी हैं आप दोनों और आपको ईद मुबारक।
1: बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर वाफियत से जिंदगी के मामला सर अंजाम दे रहे हैं। क्या हुआ हमारा?
3: अच्छा हमारा जब आती है ना ऐसे लगता है कोई बहुत ही दुखी बंदी कोई जो है ना वो।
1: हमारा क्या हुआ है मुझे बताएं ना जरा, किसने किया मुझे बस नाम बता दो।
2: दुखी?
1: हाँ दुखी किसने किया?
2: उसके कान लंबे करेंगी।
1: लंबे क्या करूंगी मैं, कान ही उतार दूंगी ताकि वो आपकी बात सुन के कुछ कहे ना।
2: कोई सुखी नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुखी हूँ।
1: अच्छा अच्छा चलो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। ईद कैसी गुजरी है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। और मैंने ना मल्टी कलर का सूट पहना था। रूबिया बात कर रही थी ना सूट के हवाले से, ड्रेस के हवाले से, किस कलर का। अगर मेरी भी कॉल ना मिलती मैंने भी रोने लग जाना था, मैं इसलिए सैड हुई थी।
1: हालांकि जूबिया गवाह है कि मैं फटोफट कॉल्स अटेंड कर रही हूँ,
3: बात कर रही होती है और वीना ठक कॉल लेके आती
1: है। अटेंड कर लेते हैं बाद में बात कंप्लीट होती है और साथ ही जो है ना वो शामिल हो जाएंगे।
2: शो का मजा भी तब आता है जब लाइव कॉल साथ साथ चल रही है। हाँ। और थैंक यू सो मच आपने जिशान रोक देखी।
3: थैंक यू सो मच हमारा ईद मुबारक।
1: अल्लाह हाफिज।
3: अच्छा रुमीना अगर मेहंदी की बात करें हम तो मेहंदी पता है आपको वो आजकल अच्छा इस दफा ईद पे ट्रेंड थोड़ा सा हाँ वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। पिछले साल मेहंदी का ट्रेंड आया था कुर्बान ईद पे, बकरे बकरियां ऊंट और गाय और पता नहीं क्या
1: क्या जानवर हाथों में बांधे हुए थे।
3: कल मैं एक रील देख रही थी तो उसमें लिखा हुआ था मेहंदी जाया मत करें, धोने तो आपने बर्तन ही है।
1: अच्छा वैसे हकीकत भी ये पार्लर में इतना टाइम लगाते हैं उसके बाद बिचारी वो जो बालों में स्ट्रीक्स करवाए हैं या फिर जो भी मतलब इस तरह के बालों को स्टाइल अप किया हुआ है उसके बाद वो बिचारी किचन में बैठी हुई
3: जुड़ा करके वो भी ओहो चले ये भी तो कभी-कभी होता है ना।
1: राइट सो दिस इज ब्यूटी।
3: हां हां बिल्कुल बिल्कुल
1: चले जी इजाजत मिल गई है जुबिया। ये हमारा प्रॉब्लम
3: है, हमें कमेंट कर सकते हैं फिर 101 के ऑफिशियल पेज पे आपने जाना है, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पे कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ?
4: मलकम सीमोवाल मुड़ा सियालकोट से बात कर रहा हूँ। मलकम सीमोवाल की तरफ से पूरे लाहौर को पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। पूरे सियालकोट की तरफ से पूरे लाहौर को ईद मुबारक माशाल्लाह, क्या हाल है आपका?
3: खैर मुबारक। मलिक वसीम अवान मुझे ये बताएं कि ये सियालकोट में मौसम कैसा है?
4: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है, आज सुबह बारिश भी हुई थी
3: माशाल्लाह,
4: मौसम बहुत ठंडा हो गया है माशाल्लाह। और इस टाइम में जो ना हैड मरला सुना है आपने?
3: किसका
4: हैड मरला?
3: हैड मरला सुना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सुना हुआ है।
4: उसके अपना पुल के ऊपर खड़ा हूँ माशाल्लाह, ठंड ठंड हुआ है।
3: अरे वाह कमाल, कमाल कमाल जबरदस्त जबरदस्त। चलें बहुत
4: शुक्रिया रुबीना वजह साहबा और अपना जोबिया शेख साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह।
3: थैंक यू जी, थैंक यू,
1: शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़,
4: अल्लाह ने के बाद जज़ाकअल्लाह।
3: एक अदद गाने की तरफ अब हमने भरना है, गाना सुनवाना है आपको, देखते हैं कौन सा गाना लगाती है आप।
1: ये मुझे लगता है कि ये वाला प्ले करते हैं, देखते हैं जुबिया, देखते हैं और सुनते हैं।
3: उम्मीद पे दुनिया कायम है,
1: उम्मीद पे दुनिया कायम है।

0: All right, welcome back. वक्त हो चुका है 1:05 और आज है जी 28 मई 2026 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आरजे जुबिया शफीक एंड आरजे रुबीना वजाहत सॉरी और मैं यहाँ पे थोड़ा सा छापा मार के शामिल हुआ मैं हुआ द डॉक्स और प्रोग्राम तो खैर इन दोनों का था, ईद पे नॉर्मली कंबाइन शोज ही होते हैं तो बावजह बड़ी ईद की मसरूफियत के कोई शामिल नहीं हो पाया, ज़रा इस दफ़ा प्रॉपरली जिस तरह से होते हैं। मेरा ख्याल है लाहौर वाले सारे खुद ही आरजेस मेल आरजेस खुद ही बकरे की कुर्बानी करते हैं।
1: जिस तरह किसाइयों की सूरत हाल है ना, जिस तरह उन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, मुझे लगता है कि खुद कुर्बानी सीख लेनी चाहिए करनी।
0: नहीं हूँ नहीं सीख सकती
2: जो सर पे पड़ी है ना, तो मुझे लगता है फिर भी उनसे
1: बात भी नहीं सीख सकते।
0: आप दोनों मुर्गी अब भी पहले से बात करना
1: चले इस साल के दरमियान में हम ये सारी चीजें सीखेंगे तो फिर एंड तक कर सकते हैं। खुद
0: ऐसे करते हैं हम FM पे ना, अब कुर्बानी की क्लासेस भी
1: क्लासेस चल रही है, उनसे बात भी नहीं सीख सकते।
0: आप दोनों मुर्गी अब भी पहले से बात करना
1: चले इस साल के दरमियान में हम ये सारी चीजें सीखेंगे तो फिर एंड तक कर सकते हैं। खुद
0: ऐसे करते हैं हम

0: कोई भी शामिल हो सकता है, और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिर्फ FM 101 लाहौर सर्च करना है और फेसबुक पे, जहां 18,000 फॉलोअर नज़र आएंगे, जिस पेज के वो ओरिजिनल पेज है जी हमारा, और उस पेज पे आपको फॉर्म मिल जाएगा अवेलेबल, ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप फॉर्म को डाउनलोड करके भी स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर स्टेशन के नाम पे अरसाल कर सकते हैं। और ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ हम आपको ट्रेनिंग ये सिखाएं कि जी आपने रेडियो पे आरजे कैसे बनना है, हम आपको ट्रेनिंग ये देंगे कि आपने बोलना कैसे,
1: अपनी बात कन्वे कैसे करनी है।
0: हाँ, डिजिटलाइजेशन के लिए आप चैनल बनाते हैं, कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट, एनीथिंग, व्हाट एवर यू वांट टू सेल, इवन इफ योर आइडियाज और इमोशंस का इजहार भी, आपने किस तरह से बात का कम्युनिकेट करना है, वी विल टेल यू हाउ टू कम्युनिकेट। और इंशाल्लाह इसका मेरा ख्याल है 16 तारीख बनती है, तारीख जरा तानू कंफर्म कर दें। हाँ
1: जी,
0: यस, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of June। सो उम्र की कैद जो है वो 28 साल है, बाकी जो कुछ लोगों ने एंटर किया था उन लोगों ने भी कहा जी हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन आपने जो है बैचलर लगाई है इसकी। मैंने कहा जी इंटर वाले भी भेज दें और उनका हम इंटरव्यू कर लेंगे।
1: नहीं, जो 28 साल से थोड़े से ऊपर चले गए हों
0: वो फिर थोड़े से ऊपर, वो फिर सीनियर सिटीजन हो गए वो प्रोफेशनल हो गए, प्रोफेशनल के लिए अलग हम प्लान कर रहे हैं,
1: उनके लिए अलग क्लासेस होंगी,
0: उनके लिए अभी ये पहले स्टार्ट कर लें, विल प्लान डेफिनेटली, और भी लोग हैं उनका सिर्फ संडे बेस पे हमको बनाने का सोच रहे हैं। एनीवेज वंस अगेन जी, ईद का दूसरा दिन मुबारक, और रुबीना का शो हाईजैक हो गया, रुबीना खामोशी से देखनी है क्यों है मेरे नाल, और मैं बस ऐसे ही आया और लुच डाल दिया। शहजाद नमान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद जी। आबिद अली मर्दान से थैंक यू वेरी मच, आपके रात में भी मैसेज आते हैं, दिन में भी आते हैं, आप कैसे कर लेते हैं, आपको भी ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। हाँ जी, आप बताएं आपने ईद के दिन फिर क्या कुर्बानी की रुबीना, किसी सूट की कुर्बानी दी, मेकअप किट की कुर्बानी दी?
2: नहीं सर, मेकअप की नहीं की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से सादगी के साथ जो है ना वो ईद को सेलिब्रेट की।
0: सादगी कहाँ मिली थी, मैं भी मिलना चाहता हूँ उसे।
2: सर सादगी मिल जाती है, आंखें बंद करें तो वो सादगी मिल जाती है।
0: नहीं, मैं
1: आंखें खोल के
0: नहीं मिल सकती सादगी, पता नहीं कितने रहती है, कैसी देखने में,
2: आप बताए
0: कैसी है देखने में, खूबसूरत है
2: दिल की आंखों से
0: देखे। अच्छा, दिल की आंखों से, दिल की आंखों कितनी
1: आंधी। अच्छा जी, जिन्होंने जो हमें सुन रहे हैं वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पे कमेंट करके शामिल हो जाएं। आज हमारे साथ आज ही डॉक्स मौजूद हैं,
0: एंड यू कैन कॉल अस 042-111-0102-111-0000-101, एंड आई हैव अ कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: दो
0: मरतबा आपको पता, दो दफा कॉल करने पे टैक्स लगता।
3: मैं क्या, बड़े भाई आए हैं तो फिर सलूट तो बनते है ना, ईद मुबारक तो कहना बनता।
0: अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। सुनाए ईद कैसी रही?
3: बहुत जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी।
0: चलें चलें, और कुछ कहना चाहेंगे?
3: और यही कहना चाहूंगा कि अपने मजहब से, इंसानियत से और वतन से प्यार करें, सब कुछ ठीक।
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त हो गया, और सुनाएं।
3: आपके पूरी मैनेजमेंट को सल्यूट और सबको सलाम।
0: हाय हाय हाय, कुछ सुनाई दियो फिर जान दे।
3: अच्छा नहीं है सासे नजाकत इस कदर,
0: हाय हाय,
3: शीशा अगर बनोगे तो पत्थर ही आएगा।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी।
3: अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और तंदरुस्ती वाली जिंदगी दे, अल्लाह ने के बान पे सदा जीवे सोना पाकिस्तान।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रुबीना आप खामोश हो गई हैं, क्या चक्कर?
2: बिल्कुल खामोश नहीं हुई, मैं कह रही हूँ कि आप बात कर रहे हैं, और क्योंकि इतनी देर से हम प्रोग्राम को लेके चल रहे थे, और मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारे लिसनर्स हैं कि जो आपको सुनना चाहेंगे।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
4: जी सर, डॉग्स آپ کو اور میڈم روینہ کا اور ڈاکٹر زبیہ شفیع کو میری طرف سے عید مبارک.
0: تھینک یو ویری مچ جی, آپ کو بھی عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک.

0: कौन है हमारे साथ
1: जी? आपका छोटा भाई, दरमियाना भाई, जो मर्जी कह लें, उस्मान मुगल।
0: उस्मान मुगल साहब, क्या हाल हैं? ठीक है, आप खैरियत से?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपकी आवाज सुनिए, मैं और ठीक हो गया हूँ।
0: अच्छा
1: जी,
0: मैं राती भी बड़ी देर आवाज सुनाई सी।
1: नहीं, तुसी सुनाई राती, लेकिन मैं राती सुनी लेट, 11:30 बजे तो बाद सुनी थोड़ी बात।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: क्योंकि 8:30 बजे फ्री हुए थे, तो उसके बाद मैं सो गया था, फिर 11:30 बजे आंख खोली जाए तो आपकी फिर आवाज सुनी थी मैंने।
0: सुनाए, कुर्बानी कैसी रही?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम आपने किया सेम टू यू।
0: अच्छा,
1: तो जब से हम कुर्बानी कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, और इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रेब नहीं है। मशीन आपकी आंखों के सामने चल रही है। छोटा ग्लास 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, बड़ा पियो 5 रुपए का।
0: बनैन लेन जाते हो, बनैन लेके आते हो, पान लगो पेंदी नहीं, लान लगो लेंदी नहीं। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
2: अच्छा, हम ना थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कुर्बान ईद की, चांद रात की। तो चांद रात नहीं होती कुर्बान ईद पे?
0: ये तो बुढ़िया ने दसना होता है, मेहंदी शेंदी ला के दसना होता है कि है कि नहीं है। हमें तो यही पता होता है, हम तो देख रहे होते हैं, अच्छा सुबह पहले इनू करना है या इनू करना है, चुड़ियां तेज हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये चटाई किथे पई है, बुढ़ी किधर है, अच्छा सुबह मैंने ट्राउजर कौन सा पहनना है यार, अच्छा जेड़ा दोबारा जो तो स्मेल आ जाएगी, खराब हो जाएगा, फिर दोबारा ना पहन सकूं। मेरे तो जहन में ये चल रहा होता है, अच्छा जल्दी सो जाऊं यार, सुबह उठना है 5:30 बजे उठना है, 6:30 बजे वाली नमाज पढ़नी है, उसके बाद कुर्बानी शुरू करनी है। उस वक्त दिमाग में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी भी 1-2 बजे से पहले सो नहीं पाया मैं।
3: नहीं तो अकेले आप करते हैं या साथ
0: है? नहीं नहीं, साथ होते हैं जी, भाई होता है मेरा।
3: अच्छा,
0: माशाल्लाह मेरे भांजे भी बड़े हो गए।
3: अच्छा, मतलब
0: और मेरा एक दोस्त है, मेरा क्राइम पार्टनर शुरू से रहा है, कल वो भी 11 बजे पहुँच गया था, UK चला गया हुआ था और सरप्राइजिंगली आया।
3: अच्छा,
0: बड़ा बहुत अच्छा लगा, हर दफा वो लाजमी साथ होता है, मिल के हम करते हैं।
3: तो सीखा किसने किससे?
0: मैंने अपने अब्बा से सीखा और उनके साथ करता था, फिर वो हज पे गए एक दफा, तो मैंने और अपना मेरा दोस्त था पुराना, मेरा पार्टनर था बासत, उसने हमने बकरा जो है ना पहली दफा किया और बकरे के गोश्त का अच्छा खासा कीमा बनाया हमने। लेकिन उधर से फिर सीखना शुरू कर दिया ना, फिर उधर से हमने कमाई भी की, पैसे भी कमाए लोगों के बकरे करके भी।
3: अच्छा, ये भी काम किया?
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, गड्डी च बह के कसाई जाते सी।
3: अच्छा,
2: ये अभी थोड़ी देर पहले हम कसाईयों की बात कर रहे थे, वो जिन कसाईयों की आप बात कर रही थी, तो स्टार्ट में ऐसे ही कसाई होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखता है बंदा, कि सीख के ट्रेंड होके जाता है।
0: नहीं, वो जो कसाई के पास जाता है वो तो ट्रेंड हो ही जाता है ना, वहाँ पे कसाई तो ट्रेंड करते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, हम बात कर रहे थे कि ईद पे बहुत सारे कसाई होते हैं, कुछ कसाई जो होते हैं वो अनाड़ी होते हैं,
0: मौसमी
2: कसाई,
0: मतलब मौसमी कसाई, हम भी मौसमी थे, बेड़ा गर्क करते थे तो अपने पहले जानवर का। अब्बा जी तो बहुत सख्त थे ना, साथ सर पे बैठ रहे ना,
3: मतलब सिखाते हुए,
0: और सर पे बैठ जाना कि ए बूटी छोटी कार, इसको ऐसे काटो, इसको यहाँ से काटो, इसको ऐसे करो ऐसे करो, और वो पूरी गाय उन्होंने करनी।
3: अच्छा।
0: हम 3 लोग होते थे और सारा दिन लगा रहना, 6 बजे तक उन्होंने कहना चलो भाई बैठे रहो, साथ साथ उन्होंने बनवाना है और खुद भी बनाया जाना है, इट्स लॉन्ग एक्सरसाइज।
3: फिर उसके बाद शॉपिंग बैग तैयार करने होते हैं,
0: वो कम बहुत।
2: अच्छा, शॉपिंग बैग तो वो फीमेल्स तैयार करती आई थी?
0: नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ डिवीजन करते थे, ये हिस्से बना दिए, 7 हिस्से बन गए।
3: सही।
0: अब इसमें से कौन किसको क्या जाना है वो फिर अम्मा जाने, उनका काम जाने। एनीवे जी, यू कैन टेल अस, आप ईद कैसे मनाते हैं? अगर आप में से कोई नाड़ी कसाई है मुझे फोन करें और मेरे साथ राबता करें और हम मिलकर पार्टी
2: बनाएंगे, टीम बनाएंगे।
3: और मैं चाह रही हूँ कि हम भी कमाई फिर करें ना इसमें, हमारी भी फिर अर्निंग।
0: मेरा ख्याल है FM 101 की फीमेल आरजेस की अगर कसाई की टीम हो रेट ज्यादा होगा, साढ़े को बुढ़िया बकरा कराना है तो फिर मेरा ख्याल है 1,00,000 रुपया।
2: अच्छा, नहीं, ये मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है, ये कहना आसान है, ये
0: नहीं, तुसी गल्ला सुना सुना के बकरा मार देना। अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो
0: हेलो,
4: आपको ईद मुबारक।
0: जी आपको भी ईद मुबारक। फरीद जी कैसी हैं आप? वो मुझे किसी ने बताया था आप मेरा नाम भूल गई थी।
2: हाँ जी फरी जी वो कौन है आपके बड़े आरजी उनका नाम भूल गया मुझे।
4: बात सुने मेरी बात सुने, जब मैंने उसका ना नाम भूला था ना तो मैं अपने प्राइस बोर्ड ना आज साहब चेक कर रहे थे तो मेरा ना 1500 से 18000 का बोर्ड निकला है उसी टाइम निकला है।
0: बस तो मेरा नाम भूलने की बरकतें हैं, आप मुझे भूलेंगी तो देखें कितने फायदे होंगे फिर आप।
4: ज्यादा होता तो फिर मैंने ना वो ही काम करना था जो आपको पहले कहा बना देना था।
0: चलो
4: अल्लाह ताला हिम्मत देगा, कोई बात नहीं, हम वन वन के साथ हैं। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, तो आपकी दादी के लिए दुआ है, आपकी अम्मी के लिए, आप उनको ना हज कराएं, आप खुद भी हज के लिए जाएं, और हमारे लिए ना कोई बहू ले आए, आपकी मेहरबानी है। आइंदा साल वो आपको ना टापर में ना गोश्त वगैरह डाल के इससे बना देगी,
0: मेरे से बना देगी,
4: आपके थ्रू से बनाएगी, हम उसे काम करवाने के लिए लेके आएंगे,
0: काम करवाने के लिए। ऐसे करके कोई नहीं मनेगी, हूं तो कदी नहीं मनेगी, मैं उन्हें कह रहा काम वाली रखनी है।
4: कोई बात नहीं, आप करें तो तेज तैयारी करें, मेरी तो नोटों वाली कॉपी भी खराब हो गई है, जब आपके ऊपर से मैंने लिखावर करनी है
0: आप मुझे दे दें।
4: आपको नहीं देनी,
0: चले उसको मैं कॉपी कर रहा होता हूँ। ओके जी वेलकम किया कवल नाज ने, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है तुहानू कुड़ियां होने का बड़ा फायदा है, इन्ने मैसेज आंदे ने मेनू कोई मुंह ही नहीं लांदा।
2: नहीं अच्छा आपको कॉल्स बड़ी आती है ना, हमने जब भी मेरे पास जब भी कोई कॉल आती है तो कहते हैं आरजे डॉक्स को कॉल करें, कभी मिलती क्यों नहीं है। और इसकी तो मैं खुद मैंने कॉल कर करके एक दिन कॉल की और मैंने मुझे लगता है कोई 55 मिनट कॉल की और एक अटेम्प्ट नहीं हुई।
0: अच्छा?
2: उस 55 मिनट में फिर मुझे दुख समझ आया ये लिसनर्स का ये जो कॉल करते हैं।
3: आपने 55 मिनट की और मैंने 2 घंटे सीरियसली सर कॉल नहीं मिली।
0: अच्छा बहरहाल मेरे वो प्लेटफॉर्म चल रहा है, इस्लामाबाद वाली पोस्ट, लाहौर वाली पोस्ट, मेरा अपना, और फिर शायद इस वजह से डिवाइड हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
5: जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अली क्या हाल चाल है?
0: बड़ी मेहरबानी जी, कौन साहब है हमारे साथ?
5: जनाब मैं मोहम्मद आमिर बात कर
0: रहा हूं। आमिर साहब आपको ईद मुबारक।
5: आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यकीन करें मैंने अभी रेडियो लगाया ना, आपकी आवाज़ सुनी है, मैंने कहा नहीं अब उस्ताद जी को फोन ना करे तो ये तो बड़ी बुरी बात है। यकीन करे मैं जितना आपका फैन हूँ ना, बहुत बड़ा फैन हूँ, कभी कभार मैं रात को आपको कॉल करता रहता था।
0: थैंक यू।
5: और माशाल्लाह आपकी जो तीन बंदों की जोड़ी है ना, अल्लाह सलामत रखे।
0: आज आपको दोबारा मिलेंगे जी रात को तीनों।
5: कितने बजे?
0: आज करेंगे 10-12 का शो इंशाल्लाह।
5: अरे इंशाल्लाह मैं जरूर सुनूंगा जी। यकीन करे मैं आप तीनों का तो बहुत बड़ा फैन, और खासकर आप तो उस्तादों के उस्ताद हैं।
0: थैंक यू।
5: आपके तो क्या कहने हैं,
0: आपकी मोहब्बत है।
5: आपको जिस रूप में भी सुन लेना, जिस रूप में भी सुने वही कम है।
0: थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत है आमिर भाई।
5: बाकी आपके साथ बैठी हुई हमारी अच्छी लेडीज, इन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक, क्योंकि माशाल्लाह ये भी अपना टाइम निकाल के घर से यहाँ बैठी हुई है।
0: वो कहती है अगली दफा से हमने कुर्बानी किया करनी है और हम 1,00,000 रुपया एक बकरे का लेंगी।
5: अरे माशाल्लाह।

0: जो काबू नहीं आता फिर वो कहंदे ने जिथे भी फड़िया जाए बन के उथे ही कर दियो।
1: अच्छा,
0: तो वो फिर लॉन में ही पकड़ा उधर ही वहीं पे दरख्त के साथ बांध के वहीं पे कर दिया, क्योंकि उसे तो फिर आप ला ही नहीं ना सकते स्पॉट पे
1: जी।
0: तो उसके साथ काफी टीम होती है ना, तो वो फिर एक लंबा प्रोसेस है। और गाय की खाल उतारना, गोश्त बनाना एक बड़ा लेंथी।
2: गाय की कुर्बानी ज्यादा मुश्किल है या ऊंट की?
0: ऊंट अगले साल करने का मूड है, इंशाल्लाह अगले साल बताऊंगा। ऊंट की वजह से मुश्किल है, तो अगले साल इरादा है इंशाल्लाह। ऊंट जब अपने हाथों से बनाएंगे ना फिर पता चलेगा,
1: हम फिर जाके देखेंगे भी
0: इंशाल्लाह। हेलो हेलो हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ?
4: हमारा बेग।
3: मैं हमारा बेग बात कर रही हूँ
0: सर। अच्छा, वो रात के शो में थी, मैं भूल गया, मैं समझा रात वाला शो मेरा कंटिन्यू है।
3: तो मैंने पता कॉल क्यों की है, मैंने कॉल इसलिए किया, आप रात को कह रहे थे बैल का मैं 10,000 लेता हूँ, बकरे का 15, तो अब आप 1,00,000 कह रहे हैं।
0: नहीं, ये खवातीन कह रही है, खवातीन ये जुबिया और रुबीना कह रही है अगले साल से हमने करना है और हम पैसे लिया करेंगी 1,00,000 रुपया बकरे का।
3: अच्छा,
0: हाँ
3: तो बैल का?
0: बैल
2: 5,00,000।
0: 5,00,000 मेरा ख्याल है।
2: अच्छा, मुझे लगता है ये भी दौर आ जाना है जिसमें रेडीमेड, जैसे वो दूसरी चीज रेडीमेड मिलती है ना, तो ये भी रेडीमेड एक वक्त आना है कि हाँ।
3: कल शाम को ना अरहम भाई बने हुए थे कसाई।
0: अच्छा,
3: वो अली भाई का जो
0: लगते भी
3: है। तो वो लगे हुए थे कसाई बन के आगे, तो वो लगे हुए थे, वो तो भाई बहुत बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे थे।
0: अच्छा,
2: इससे भी बड़ी?
3: वो हाँ जी,
2: मैं कह रही हूँ हमारा इससे भी बड़ी डिमांड कर रहे थे।
3: वो तो पता नहीं कितने पैसे कमा रहे थे, वो कह रहे थे मेरी 1-1, 3-3, 4-4 लाख तो मैं एक दिन में कमाता हूँ।
0: नहीं, वो मैं भी अक्सर कमा लेता हूँ, बाद में अम्मी उठा देती हूँ, उठ जा दफ्तर जाने।
2: चलो हमारा थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया।
3: मुझे मेरी आंख खुल गई, लेकिन मैंने कर दिया था पूरा कंप्लीट।
0: ओ, मैं कह रहा हूँ छा गई हमारा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। सजाद अली लाडला, मेरी खुद की कॉल नहीं मिलती सर के शो में, आप मिलाए ना कॉल आज देखे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब लियाकत साहब, सदियों के बाद आपकी कॉल मिली है, कैसे हैं आप?
5: शुक्र अल्लाह, आप बताएं। ठीक है माशाल्लाह,
0: मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, यकीन करें।
2: इसी पे भी वो इंप्लीमेंट किया है उस?
0: नहीं, इन्होंने छोटी ईद पे जिस तरह से मेरे रिक्वेस्ट करने पे 200 रुपया पर सूट कम किया, मैं बड़ा राजी हूँ। लियाकत साहब बिग फैन, आपने किस दिन मेरे शो में तशरीफ लाना है, ठीक है
5: इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं माशाल्लाह। आप तो वैसे ही सितारे हैं, अभी तो सब ही होते हैं, ठीक है, लेकिन आपका मकाम तो वो फिर जबरदस्त है।
0: आपकी मेहरबानी है, आपको ऐसे लगता है
5: जी? जी, तो माशाल्लाह देखे कुर्बानी, वो आपने अभी भी बताया था और पिछले साल भी मैंने सुना था कि कुर्बानी आप ही करते हैं माशाल्लाह।
0: जी जी,
5: तो इधर उधर से ऑर्डर कोई नहीं आता आपके लिए?
0: टाइम ही नहीं होता जी, पहले होता था, पहले वो वालिद साहब आते तो कुर्बानी, फिर दोस्तों का पूरा गैंग था, वो मिलके ना 5-6 हम सुबह सुबह अपना शुरू करना और 10-11 बजे तक फ्री होके ना फिर इधर उधर चले जाते थे। अभी फिर जाहिर है अपने जानवरों के साथ, अब देखें कल मुझे 8:30 हो गए, बड़ा टाइम
5: हो गया। हिम्मत ही रखे हो, इस तरह ही आप करते रहे, शो भी करते रहे, कुर्बानी भी करते रहे और हमारी तरफ भी आते रहे।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप अगली दफा मुझे बुला लेना, अच्छा रेट देंगे तो मैं आ जाऊंगा। छुरी फेरन दे, छुरी फेरन दे पैसे थोड़े घटा लेने हैं ना जी, छोड़ो बाकी तुसी कितों और बनवा लेना।
5: आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे
0: ऐसे कर लें कुछ, जरा अगली दफा है मैं रेट निकालता हूँ।
5: सही हो गया,
0: थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। मेरा ख्याल है बैक टू बैक कॉल्स ऐसे कभी नहीं ली मैंने, कभी होता है कभी ले लेता हूँ। हेलो,
2: आज वो भी कॉल कर रहे हैं जिनकी आपके शो में कॉल नहीं मिलती ना, वो कहते हैं थे
0: नहीं आपके लिसनर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
6: वालेकुम अस्सलाम,
0: कौन है हमारे साथ? मैं वैसे क्या वैसे हाँ, ये बिस्मा क्या हाल है? मैं ऐसे कैसे ही रहूँ, आप सारे बड़े हो जाए, मैं ऐसे रहूँ?
4: कह रही थी जो भी आपकी को कि आपके शो

0: से कॉल ही नहीं मिलती। तो जो भी आपकी कल मेरी बात हुई इनके साथ पूरे 9 मिनट से भी ज्यादा, तो मैं बहुत खुश।
1: कहती मैं छोटी थी बड़ी हो गई आपका शो सुनते सुनते। मैं
0: तो अच्छा मैं आपको बता रही थी ना मेरा बैलेंस खत्म हो गया, तो मैंने पापा को कहा कि मुझे ना बैलेंस जल्दी से करवा दे, तो जो है ना आप आ गए अचानक से, तो सरप्राइज था हमारे लिए।
2: छापा था ये छापा?
0: हाँ ये छापा इन्होंने मारा है, तो वाह मैं हैरान हूँ कि आरजे जोक तो वो भी इसका ही।
1: ईद है ना जी, ईद पे फिर बनता है
2: बिल्कुल ऐसे। हाँ जी,
0: वो एक राज की रानी होती है ना, ये मतलब ये राज के राजा हैं।
1: आए, आए। आपको पता है पौधा है वाकई
2: रात के राजा का?
1: हाँ ये पौधा भी है,
2: रात की रानी सुना था।
1: हाँ राजा भी होता है, रानी अगर है तो राजा तो हो गई ना। रानी कल्ली थोड़ी है, वो किसी पौधे के साथ ये थोड़ी लिखा होता है बेवा रात की रानी। बेवा तो नहीं लिखा, इसका मतलब राजा एग्जिस्ट करता है अभी।
0: दान
1: दान बिस्मा दान। आपकी कुर्बानी कब हो रही है?
0: क्या
1: आपकी कब हो रही कुर्बानी?
0: हमने इस बार वो हिस्सा
1: नहीं नहीं, नहीं आपकी आपकी
0: मेरी कुर्बानी। वो किस लिहाज से?
1: भाई लड़कियों की कुर्बानी होती है, शादी हो जाती है।
0: अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं हो सकती है। ना मैं करवाना चाहती हूँ। हाँ शादी के बाद ना लड़कियों के जो सपने होते हैं सारे, उसके ख्वाब होते हैं, उस पर पानी फिर जाता है भाई। उन लड़कों के तो ख्वाब होते हैं, कहीं जो यंग लड़के होते हैं उनके भी ख्वाब होते हैं, जब उनकी शादी होती है बेचारे वो भी रोते हैं। तो
1: बस इसीलिए मैं कहता हूँ ना ही करो, रह नहीं दे।
0: हाँ तो आप क्यों नहीं करे, आप तो बड़े हैं ना।
1: मैं इसीलिए ख्वाब सारे टूट जाएंगे ना मेरे। चलो विस्मा थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी।
0: एक मिनट एक मिनट जी, आप भी हमारी तरह अनमैरिड है ना?
1: आहो
2: आहो
0: फिर आप इन्हें करे ना, आप दोनों फिर हम करेंगे।
2: बस इसी इंतजार में रहो फिर, वैसे ही रह जाओगी लड़की।
1: उस दिन दोनों ने बुढ़िया हो जाना फिर।
0: लड़कों की खैर होती है, आप रहने दें, आप ख्वाब देखें अपने, ठीक है?
1: ओके
0: तो क्या कहते हैं जो भी आपकी, आपने उस दिन जब तो बतानी थी, ठीक है? मैं सारा शो बड़े आराम से हैंड्री सेट करके बैठ गई, मैंने कहा अभी बताती हैं तो बतानी है इन्होंने, आपने बताई नहीं, आप भूल गई।
2: क्या बताएं?
0: याद है आपको, आपने वो बताना था कि जो इस्लामाबाद स्टेशन से जो आज भी हमारे शो बैठे जैसे नाथ ही रहे, गजेंद्र त्यानी भाई हैं, उनके शो में हमारी कॉल नहीं मिलती, वो एक नंबर बताते हैं 051-111-0101, ठीक है? इस नंबर पे हम इतनी कॉल्स करते हैं तो कोई नहीं मिलती, और वहाँ पे ना ऐसे कॉलिंग का ऑप्शन आता है, कॉलिंग मीन्स के जैसे हम जैसे आज के शो में मैं कॉल करी थी ना, तो वो बिजी बोलती है, या फिर जब साफ लगती है तो टू होता है, तो उधर ऐसे नहीं हो रहा था।
1: उधर कॉल जा रही होती है ना, उधर एक्चुअली चार लाइन है, 051 वाला जो नंबर है हमारा FM 101 इस्लामाबाद वाला, वहाँ पे चार लाइन है, जब आप कॉल करते हैं कॉल मिल जाती है, लेकिन अब वो चार लाइनें ब्लिंक हो रही होती हैं। आरजे ने कोई एक बटन दबाना है ना, वो एक नंबर दबाना है, एक उसने लाइट पे क्लिक पुश करना है, तो उधर जो भी कॉलर है उससे वो बात कर लेता है। अब ये पता नहीं होता कि किस पे आ रही
0: है।
1: चलो अब आपकी मेरे शो में मिल गई है ना
2: बिस्मा, ये दूसरी दफा मिल गई आपकी कॉल, अब
0: पहले
2: भी बात हुई है, अब तो ये गिला नहीं बनता ना।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रहे,
1: थैंक यू,
0: आप ऐसे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, आते रहे, हमसे मिलते रहे, बातें करते रहे, हम आपसे करते रहे।
1: थैंक यू वेरी मच बिस्मा, और आप इंशाल्लाह आ रही हो, मेरा ख्याल है हमारे पास इंटर्नशिप में है।
0: मैं आ रही हूँ, मैं मम्मा से ना वो अभी आजू की आपकी कह रही थी ना कि हम अपने माँ बाप को नहीं ऐसे अगर बुलाए करें, मैं उनसे नाराज थी तो मेरा मुझे रोना आना शुरू हो गया, वो कहते हैं बाद में रिग्रेट होता है ये वो, तो मैं आप देखो आपको मैं आपसे बातें कर रही हूँ पर मम्मा से बात नहीं कर रही, तो वो मैंने जब इनकी बात सुनी है ना तो मैंने कब जाती हूँ मम्मा को, मम्मा से बात करती हूँ, फिर मैंने परमिशन भी तो लेना है ना, तो
1: हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच बिस्मा, थैंक यू,
0: थैंक यू
1: जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बिस्मा ने भी कहा इतना अरसा मेरी कॉल नहीं ना मिली, हूँ जो मिलेगी मैं सारे
2: मैंने
1: टेक द लास्ट कॉल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: कौन है जी?
2: सरदार अली लाडला।
3: हमारे चाहने वालों को ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक जी आपके चाहने वालों को
3: भी ईद मुबारक, हमें ठुकराने वालों को भी ईद मुबारक, और हमें अपनाने वालों को ईद मुबारक।
1: कितने लोगों ने अपनाया आपको?
3: को भी ईद मुबारक, और हमें गुल देने वालों को भी ईद मुबारक।
1: रेडियो तो बंद कर लें, पीछे से आपकी आवाज अच्छी आ रही है।
3: और हमारे
2: वो अपनी खुद भी तो सुन रहे हैं।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है सजाद?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और वेलकम टू द शो, और ईद मुबारक आपको।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
3: और अजय जोबी अशफीक और अजय बिनल जहाँ को भी ईद मुबारक, और तमाम
2: फैमिली।
3: मेरी कॉल लग गई सर, आपसे भी बात होगी।
2: कैसी गुजरी ईद सजाद आपकी?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजरी, और नींद आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहा, और अभी शो सुन रहा हूँ तो नींद उड़ गई मेरी।
2: ठीक हो गया। और कुछ कहोगे?
3: मैं पूछना चाह रहा था सर, आपने कैसे कपड़े पहने और किस तरह आपकी ईद गुजरी?
1: मैंने जाली वाला सूट पहना, गोटा लगा हुआ है नीचे, मैंने जो है ना उसके वो भी पहनी है,
2: दुपट्टा भी है साथ, दुपट्टा
1: पटियाला सलवार पहनी है साथ,
2: गुस्सा है सर।
3: सर आपने जाली वाला सूट पहना तो क्या सर अंजम की, अंजमन की रूह आ गई?
1: हाँ अंजमन की रूह आ गई।
3: तो फिर आप पर्ची सलवार भी पहने?
2: वो तो ट्रेंड पुराना हो गया है ना सजाद, तो
1: पिछले साल मैंने वो पहन के बड़ा झाड़ू लगाया था। फर्शी सलवार बनी इसलिए थी, उसका पर्पस ये था, जो घर च कुड़ियां कहंदे सी झाड़ू लांदे हुए लक दुखदा है, उन्होंने इन्वेंट की फर्शी सलवार, और उन्होंने कहा अभी फर्शी सलवार पहन के ना खवातीन घर के पूरे अंदर फिरा करें, झाड़ू लग जाया करें, वो फिर ये ट्रेंड में आ गया ना। फिर पिछली दफा दुनिया ने बड़ा एंजॉय किया पहन के, तो उन्हें पता चला कि ये तो झाड़ू लगाने के लिए, इसलिए वो जल्दी आउट हो गई।
2: अच्छा जब कोई ट्रेंड आता है तब हर बंदा उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है, वो उसको सूट करे या ना करे,
1: करना ट्रेंड तो ट्रेंड यही है ना, पहले ट्रेंड की डेफिनेशन और थी, अभी ट्रेंड की डेफिनेशन यही है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, ट्रेंड है ना, करना पड़ेगा।
4: हाँ जी, तो मैंने भी करना।
1: जी सजाद बड़े अच्छे बाद आपसे बात हो रही है।
3: मुझे बहुत खुशी हो रही है, ईद की खुशियाँ जो है दुबला हो गई है, और मैं कह रहा हूँ शो को आठ नहीं आज 16 नहीं यानी कि 100 चांद लग गए हैं आप भी।
1: क्या बात है, क्या बात है, छा गए हो लड़के।
3: और सर मैं फिर इस खुशी में थोड़ा सा
1: गुनगुनाओ
3: आपके लिए, आप सब के लिए ना।
1: जी जी
3: एक मेरा यारा एक हो दियारी बस यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है यही मेरी जिद भी, दिल विच साहस है मेरी, हो रूठ नू मनाना नहीं वे कभी भी ना रूठना तुम जैसे, आपा बस सीखे यारी लगाना जब से जुड़ी है जान तुझसे, ओ यारा मेरे खैर मंगदा मैं तेरी,
1: क्या बात
3: मोहब्बते यारा मैं मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब से यारा खैर मंगदा मैं तेरी।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सजाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सजाद, यू आर द लास्ट कॉलर जी।
2: ओके
1: ले जी, मैं अब आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, मेरा ख्याल आधा घंटा कर लिया, क्लोजिंग रिमार्क्स आप देंगी, मैं गाना लगाऊंगा ताकि गाने के दौरान ये तय कर लें अब इन्होंने बात क्या करनी है, क्योंकि सारे इनके वो मोमेंटम तोड़ तोड़ दिया मैंने, पता नहीं ये क्या बात कह रहे थे
4: सर, बल्कि ज्यादा मजा आया, क्यों सूबिया? वो जो चीजें इस तरह से चल रही होती है ना, और ये जो छापा कह रहे हैं ना ये बड़ा खुशगवार छापा था।
1: अच्छा जी।
4: और ऐसा खुशगवार छापा फिर दोबारा से जरूर कीजिए
2: अगले साल।
4: पहले प्रोग्राम में तो हम होते हैं ना, ट्यूजडे को मेरा प्रोग्राम होता है ठीक है 11 से 1 बजे तक आपके साथ होती हूँ, और मंडे को जो है वो जूबिया होती हैं आपके साथ।
2: बिल्कुल ऐसी है।
1: मंडे वाले दिन आप करती 11 से 1, आप कब करती? ट्यूसडे को आप करती हैं। पीर और मंगल, रुबीना और जूबिया, क्या बात है जी। इनके लाइक्स और इन्हें तो मेनू नहीं आंदे यार। मैं भी सोच रहा हूँ मैं अपना नाम लड़कियों वाला रख लूँ, फिर शायद आ जाए, फिर यहाँ फोटो लड़कियों वाली लगाना शुरू कर दूँ।
2: नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको कॉल ज़्यादा आती है ना, आपके फैन फॉलोइंग ज़्यादा है।
4: दिल रख रहे हैं।
2: हाँ।
1: इस तरह से नहीं, मैं नहीं रख रहा। हाँ। मैं आज गोश्त रखूंगा। अरे जी, थैंक यू वेरी मच, दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ एंड आई गॉट टू गो जी। मैं जरा ऑफिशियल टास्क के सिलसिले में आया था, मैंने कहा थोड़ा सा कंबाइन शो कर लूँ, थोड़ी आपसे गपशप हो जाए, अपने फेलो आर्टिस्ट के साथ भी थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ। और वंस अगेन जी, मुबारक हो, रात को मुलाकात होती है 10 से 12। मैं आज डॉक्स और जानजम और रहमान अनवर विल जॉइन यू टुनाइट, स्टे ट्यून्ड। क्लोज करेंगे आज रुबीना एंड जूबिया शफीक।

0: जी बिल्कुल, डांस वांस कर ले और आप भी थोड़ा सा डांस कर चुके होंगे, क्योंकि कुर्बानी जब हो रही होती है ना तो फिर ये डांस ऑलरेडी चल रहा होता है, कभी ये पकड़ कभी वो पकड़, क्योंकि आरजे डॉग्स जिस तरह से बता रहे थे कि किस तरह से जो है ना वो मैं सोच रहा होता हूँ रात को ही प्लान कर लेता हूँ कि मुझे सुबह जो है ना वो मुड्डी किधर से उठानी है, मुझे चटाई कहाँ से बिछानी है और मुझे कौन से वाले ड्रेस जो है वो सिलेक्ट करने हैं। वो जैसे हम कहते हैं ना कि लेडीज सिलेक्ट करती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लेडीज सिलेक्ट करती हैं, जेंट्स भी सिलेक्ट करते हैं। हाँ, ये कि मौका मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है ना। सो ये मौके
1: के लिए जानवर कुर्बान करने के लिए ड्रेस सिलेक्ट हो रहा होता है,
0: ठीक है ना। सो हम सिलेक्ट करते हैं कि जी सुबह हमने कौन सा ड्रेस पहन के ना चूल्हे के और हांडी के आगे खड़े होना है, चूल्हा हांडी जो है ना वो संभालनी। सो बिल्कुल इसी तरह से वो भी ये चीजें सोच रहे होते हैं। और एनीवेज बहुत अच्छा लगे आज का प्रोग्राम और खासतौर पे चार चांद रियली लगे हैं। आई अप्रिशिएट कि जिस तरह से आरजे डॉग्स जो है हमारे प्रोग्राम में आए और वो तशरीफ लाए, वो पधारे यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने जो मतलब जैसे प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग लेवल जो है ना उसको मजीद बूस्टअप किया। और तमाम लिसनर्स का बहुत शुक्रिया कि जो प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और अभी तक स्टिल रूबिया आप देख रहे हैं कि स्टिल कॉल्स आ रही हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी हमारे जाने का वक्त हुआ चाहता है क्योंकि हमने भी तो कुछ खाना है ना।
0: बिल्कुल खाना है और ये जाने का वक्त वो है कि जो आपसे इजाजत लेनी है।
1: हाँ बिल्कुल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आप तमाम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैसेजेस किए, जिन्होंने कॉल्स की। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सबसे कीमती चीज़ वही होती है कि आप अपना वक्त किसी को देते हो, तो आप अपना वक्त निकाल के हमें सुनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कुर्बानी के जानवर के साथ, उसकी कुर्बानी के साथ अपनी अनाओं को भी कुर्बान करें। उस घर में कुर्बानी का हिस्सा ज़रूर भेजें जहाँ खासकर आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और हम बाज़ दफ़ा रुबीना इस वजह से भी नहीं भेज पाते कि पता नहीं सामने वाला बंदा रखेगा कि नहीं रखेगा, तो इस चीज़ को साइड पे कर दें। नहीं रखेगा तो क्या हुआ वापस?
0: नहीं, मुझे लगता है सुबिया हर कोई रखेगा, ये सोच नहीं होगी मेरा ख्याल में।
1: वही ना, लेकिन एक माइंड में एक चीज़ चल रही होती है,
0: जैसे कहते हैं ना आन दे, बस आन दे, ये माइंड सेट डिलीवर हो चुका है।
1: और हकदारों तक उनका हक लाजमी तौर पे पहुंचाएं, अपने डीप फ्रीजर बिल्कुल ना भरें, रखें ठीक है, कुछ एक हिस्सा रखना तो आपने है ही, लेकिन जो चीजें आपने भेजनी है वो उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। और हमें दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, और ईद की खुशियों को अपने अपनों के साथ अच्छे से गुजारें।
0: बहुत खूब। और मैं इस पे सिर्फ थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सफेद पोश लोग होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि इन्होंने की है, और वो अपना एक भरम रख के चल रहे होते हैं और हम कहते हैं कि जिन्होंने की और इन्होंने पूरा डीप फ्रीजर जो है वो भर लिया। हकीकत ये होती है कि उन बेचारों ने नहीं की होती। सो ये चीज़ें जो होती है ना वो एहसास की चीज़ होती है, इसको एहसास की नज़र से देखा करें, समझा करें। एनीवेज अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जूबिया जो है वो साइन आउट कर चुकी हैं, बहुत अच्छा कमाल का शो था। और लास्ट पे जो है ना वो तमाम जो भी लिसनर्स हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और वो तमाम लोग जिन्होंने इतनी कोशिश की और कॉल्स नहीं मिल सकें, उनको भी कहेंगे कि आप हमारे साथ हैं और हमें आपके होने का एहसास जो है वो बार बार जो है वो हो रहा था। वो तमाम मैसेजेस जो अगर प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और वो जो कि रह गए हैं, सो सबको हम कहेंगे कि कोई मसला नहीं, आपके प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में जो है मैसेज शामिल हुए आपके, और ये आपका और हमारा मिलकर कंबाइन शो था जिसको आपने खूबसूरत बनाया अपने साथ से, अपने फीडबैक से। थैंक यू सो मच। और वंस अगेन आरजे डॉग्स का बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम में शामिल हुए और हमारे प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा बनाया और अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। और इससे यह भी हमें चीज़ पता चली कि किस तरह से जो मतलब अगर फादर के साथ जो बच्चे हैं उनका टाइम स्पेंड होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और वो तमाम सीख जो है वो आगे जो है वो बड़ा पे करती है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो है वो चीज़ें आगे काम आ रही हैं, सो आप भी अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपको ये नेमत मिली हुई है, तो आप इस नेमत को जो है वो बिल्कुल इस नेमत को ज़ाया मत करें, इसके एक एक लम्हे को ज़ाया ना करें, बल्कि इसके एक एक लम्हे को जो है वो कीमती जाने, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं कि जो ना जाने कब आपकी आपके साथ चलते चलते जो है ना आंखों से ओझल हो जाएंगे, फिर आप सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। ये जो शादियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, घर की शादियाँ हो गई उसके बाद अपनी दूसरी लाइफ की तरफ चले जाते हैं, तो फिर जो पहली वाली जिम्मेदारियाँ होती हैं ना उससे आंखें चुरा लेते हैं। ये आंखें चुराने वाला जो काम है ना, इसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप जितना मर्जी आंखें बंद कर दें आपकी जान छूटने वाली नहीं है, और इस चीज़ के लिए हमें हमारे रब ने भी कह दिया है। सो इन तमाम चीज़ों को एक साइड पे करें और अपने वालिदैन का जो एहतराम और उनका जो मुकाम है ना वो किसी को भी मत दें। हर रिश्ते को साथ लेकर चलें, लेकिन अपने पेरेंट्स का जो मुकाम है, जो रिश्ता है, उसको हमेशा अपनी नज़र में रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रुबीना वजादी साइनिंग ऑफ। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से और मेरी सारी फैमिली की तरफ से, इवन के بہت بہت عید مبارک. اور میں اپنی بیٹی کی طرف سے بھی کہوں گی کیونکہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے میری طرف سے بھی سب کو عید مبارک کہنا ہے. آپ کے لیے بہت ساری عید مبارک آئی ہے اس کی طرف سے بھی, سو اس کو بھی قبول کیجیے گا. ڈھیروں ڈھیر خوشیاں آپ کے گھروں میں اتریں, آمین سم آمین. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, پاکستان میں رہنے والے ہر گھر کو سلامت رکھے اور ہر گھر میں اپنی رحمتوں کی بارش کرے. بہت خیال رکھیے گا. روبینہ وجاد اٹس فائنلی سائننگ آف. ٹیک کیئر, بائے اینڈ اللہ حافظ.

0: के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइन शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

0: ईद का खुसूसी शो।
1: ईद मुबारक पंजाबी स्पेशल।
0: सुनियो ईद मुबारक।
2: चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं दुआ तो सदके जावा सुनियो।
1: ईद के रंग FM 101 के संग,
0: और ईद का दिन है
1: जिनमें होगा आपके पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ ढेर सारा हल्ला गुल्ला,
0: शोखियाँ, शरारतें
1: और आपके दिलों को छू लेने वाले गीत।
0: तो फिर सुनना ना भूलिएगा
1: ईद के पहले दो रोज FM 101 की खसूसी ट्रांसमिशन। ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
0: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
1: चांद रात स्पेशल,
0: भलकते कैसा ये चांद निकला,

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: Tune in to One Above, FM
9: 101. आपकी खुशियों में आपके जौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
9: आपकी खुशियों में आपके जौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। 1998 में मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले कामयाब एडमी तजुर्बात की याद में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। सदर मुमलकत ने आज़रबाईजान के साथ मुख्तलिफ शोबों में कसीर जहती तआवुन मजीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। अफगान तालिबान रजीम को आलमी सतह पर बैक वक्त इंसानी हकूक की पामाली और बिगड़ते हुए मौशी बहरान के हवाले से शदीद तनकीद का सामना है। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड की खवातीन क्रिकेट टीमों की सह मुल्की T20 सीरीज आज डबलिन में शुरू होगी।
1: This is FM 101.1.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहार, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: ईद का खुसूसी शो।
1: ईद मुबारक पंजाबी स्पेशल।
0: सुनियो ईद मुबारक।
2: चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं तो वाट सुत के जमा सुनियो।
1: ईद के रंग FM 101 के संग,
0: और ईद का दिन है
1: जिनमें होगा आपके पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ ढेर सारा हल्ला गुल्ला,
0: शोखियाँ, शरारतें
1: और आपके दिलों को छू लेने वाले गीत।
0: तो फिर सुनना ना भूलिएगा
1: ईद के पहले दो रोज FM 101 की खसूसी ट्रांसमिशन।

0: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइन शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

0: ईद का खुसूसी शो।
1: ईद मुबारक पंजाबी स्पेशल।
0: सुनियो ईद मुबारक।
1: ईद के रंग FM 101 के संग
0: और ईद का दिन है
1: जिनमें होगा आपके पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ ढेर सारा हल्ला गुल्ला,
0: शोखियाँ, शरारतें
1: और आपके दिलों को छू लेने वाले गीत।
0: तो फिर सुनना ना भूलिएगा
1: ईद के पहले दो रोज FM 101 की खसूसी ट्रांसमिशन।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

0: ईद का खुसूसी शो।
1: ईद मुबारक पंजाबी स्पेशल।
0: सुनियो ईद मुबारक।
2: चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं तो वाट सदके जवा सुनियो थीरियो ईद मुबारक।
1: ईद के रंग FM 101 के संग,
0: और ईद का दिन है
1: जिनमें होगा आपके पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ ढेर सारा हल्ला गुल्ला,
0: शोखियाँ, शरारतें
1: और आपके दिलों को छू लेने वाले गीत।
0: तो फिर सुनना ना भूलिएगा
1: ईद के पहले दो रोज FM 101 की खुसूसी ट्रांसमिशन।
2: ईद मुबारक, सुनियो ईद मुबारक।
3: दिस इज FM 101।
4: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
5: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
6: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
7: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
8: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
9: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
10: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
11: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

0: खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

आपकी खुशियों में आपके ज़ौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्प लाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
9: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
8: स्पेशल
9: फलक पे कैसा ये चांद निकला,

0: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।
0: सुनते रहिए FM 101।

0: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: आपकी खुशियों में आपके ज़ौक के ऐन मुताबिक आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
2: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
1: स्पेशल
2: फलक पे कैसा ये चांद निकला,

0: ईद का खुसूसी शो।
1: ईद मुबारक पंजाबी स्पेशल।
0: सुनियो ईद मुबारक।
2: चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं दुआ तो सदके जावा सुनियो।
1: ईद के रंग FM 101 के संग,
0: और ईद का दिन है
1: जिनमें होगा आपके पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ ढेर सारा हल्ला गुल्ला,
0: शोखियाँ, शरारतें
1: और आपके दिलों को छू लेने वाले गीत,
0: तो फिर सुनना ना भूलिएगा
1: ईद के पहले दो रोज FM 101 की खसूसी ट्रांसमिशन।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: देखे तो जो इधर

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
2: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
1: चांद रात स्पेशल
2: फलक पे कैसा ये चांद निकला,

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको फिर मिलके गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइब नुकसान

0: We'll be back after this short commercial break.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक.
1: सुनते रहिए FM 101. सुनते रहिए FM 101.
3: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
1: सुनते रहिए FM 101.
3: 13.
1: सुनते रहिए FM 101.
3: 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक.
0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद. अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ. AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ. AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन.
5: हमसे है रोशन ये जहां,
6: हमसे है

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
3: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज
2: चांद रात स्पेशल
3: भलकते कैसा ये चांद निकला

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन मौज मेला हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

Assalamu alaikum and assalamu alaikum FM 101. FM 101 Radio Pakistan Lahore se jana mujhe kehte hain aapki RJ aapki host aapki to Shiba Malik aapke saath aur aap sun rahe hain Lahore on hai Eid second day. Eid ka dusra din yani taru taru and like that. वो आपको मुबारक हो. 5:19 हो चुके हैं और मेरा और आपका साथ रहने वाला है पूरे 7 बजे तक. वाई दिस डे कॉल टरू, ये दिन टरू क्यों कहलाता है आपने मुझे बताना है. अच्छा जी, आज के दिन के हवाले से 28 मई है और यौम तकबीर है. आप सभी लोगों को पता है कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए ऑफकोर्स. एंड वी आर पाकिस्तानी, वी आर सो प्राउड के वी आर हैविंग दैट सच जिसको कहते हैं एटमी ताकत होने की हैसियत से रिकग्निशन जो है वो हमारी हुई, तो उसको भी शो में डिस्कस करेंगे. प्लस ईद का दूसरा दिन है तो कितना गोश्त खा लिया, कितना गोश्त बांटा है, कितना अपने फ्रिज में भर लिया है, एंड लेट्स गेट ऑनेस्ट, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे. प्लस म्यूज़िक रहेगा, नए पुराने गाने मिक्स रीमिक्स एंड देन कुछ बहुत पुराने कुछ नए, नो काइंड ऑफ कोशिश करेंगे लाइव कॉल्स लें अगर तो अच्छा चलेगा हमारा शो तो ज़रूर लेंगे लाइव कॉल. वाई पोस्ट सो लेट, सीरियसली अच्छा तो पोस्ट लेट हो गई बस, बिकॉज पोस्ट तो मैंने लगा दी थी लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ गए मुझे, तो इसलिए उसको फिर देर हो गई, फिर मुझे खुद ही कहना पड़ गया, देर ही कर दी मैंने भी आते आते कसम से. एनीवेज आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फर्स्ट क्लास हैं, मज़े में हैं और उम्मीद है कि आपने तबीयत जो है वो ख़राब नहीं करवा ली अपनी. मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कि जब भी गोश्त किसी के घर से भी आ रहा है पेट आपका अपना है, फ्रिज भी आपका अपना है, सो जस्ट ट्राई कि आप जो हैं वो उतना ही खाएं जितना आपका स्टमक भी बर्दाश्त कर सके. आपको पता है कि बड़ी ईद के बाद काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान ना, ठीक है, हाथों हौला रख के. ओके अच्छा जी, प्रोग्राम को बकायदा जो है वो शुरू करेंगे एंड हियर वी आर गोना बिगिन शो.

ऑफिस वेलकम बैक ओके जी. सो जब लाइव शो कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिक्स हेडफोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी आ रही. फिर मुझे उसको चेंज करना पड़ा. उसकी जो हमारे पैनल में पिन लगती है वो काम नहीं कर रही थी. फिर आई वॉज जस्ट लाइक अच्छा ठीक है ओके. और ऐसे होता है जब कभी कभी हम हमारी साइड से थोड़ी सी डिले हो रहा होता है लोग कह रहे होते हैं ए BGM चली जा रहा है. BGM किसी वजह से चलता है. अच्छा जी हम सब लोगों को पता है कि 28 मई जो है हम यौम तकबीर उसको क्यों कहते हैं. एक अजमत का दिन उसको क्यों मानते हैं. बिकॉज 28 मई को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के ज़िला चागी में जो है 1998 में अपना जो है वो एक जौहरी तजर्बा किया था. और फिर पता चल गया था पूरी दुनिया को मुस्लिम दुनिया का ये पहला मुल्क बन गया था पाकिस्तान जो है. और एक एटमी हैसियत से कि हमारे पास जो है हम सलाहियत रखते हैं कि हम एटमी ताकत हैं. इस हवाले से जो है ऑब्वियसली मिली नगमा प्रोग्राम में शामिल करेंगे. यौम तकबीर के हवाले से म्यूज़िक भी ऐड करेंगे. और सारे लोग जो हैं मैं कहती हूँ ना कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जस्ट व्हेन वी रियली फील दैट बीइंग पाकिस्तानी वी आर सो प्राउड व्हेन वी आर जस्ट मूविंग. और बहुत सारी रीजन्स हैं जिसपे लोग हमें कहते थे हाँ पाकिस्तानी अच्छा ओके. तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे लोग कहते हैं पाकिस्तानी वेरी स्ट्रांग खतरनाक. और एक और चीज भी कहते हैं कि खूबसूरत होते हैं पाकिस्तान के लोग. Alright जी. सो 28 मई है और यौम तकबीर है. तो तकबीर नगमा उस हवाले से जो है मैं प्ले करने जा रही हूँ. स्टिक अराउंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग. आरजे शिबा मलिक FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर. एंड हियर वी गो.

0: Alright, जी, अभी आपने सुना है तकबीर नगमा 28 मई के हवाले से. हम सबको पता है इट इज़ वेरी स्पेशल डे, हम सब के लिए बड़ा ही ख़ास दिन है. और 28 मई को पाकिस्तान ने जो है वो बलूचिस्तान में, सब लोगों को पता है कि चागी के मुकाम पर 1998 में एक तारीखी जौहरी तजर्बा किया था, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को हम लोगों ने बताया है कि हम एटमी सलाहियत जो है वो रखते हैं. और इसके साथ साथ जो है व्हेन योर फोन इज़ रियली ट्राइंग टू के मैं भी ऐड हो जाऊं शो में, तो पाकिस्तान जो है दुनिया का सातवां और मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क बन गया था जिसने ये जोहरी तजर्बा किया है. और एक एटमी हैसियत से जो है प्रोमिनेंट, एक प्रोमिनेंट तरीके से जो है वो दुनिया में जाहिर हुआ था और अपनी प्रोमिनेंट हैसियत को उसने मनवाया था दुनिया को. तो ये वो वाला दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं यौम तकबीर के नाम से 28 मई को. एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग दैट. और हम इसी हवाले से जो है मैंने अभी ये नगमा भी प्ले किया था. एंड व्हेन आई वाज नगमे से पहले जब मैं बोल रही थी तो एक अजीब चीज़ ये हुई कि माइक, हमारा पहला वाला माइक नहीं चल रहा था. देन आई वाज ट्राइंग टू यूज़ इट सेकेंड वन. होती हैं इस तरह की चीज़ें भी, हो जाती हैं जब लाइव शो कर रहे होते हैं. एनी वेज सो हैव वी गोना गो एंड विद दैट रिमिक्स. लाहौर ऑन है, ईद सेकेंड डे, सेलिब्रेशंस आर गोइंग ऑन, 5:35 ऑन अ डायल, एंड हियर वी गो विद दिस.
1: पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा

दार्जी शिवा मलिक, ईद का सेकेंड डे वी आर सेलिब्रेटिंग, और व्हाट इज़ द रूटीन, क्या हो रहा है आज के दिन के हवाले से? अच्छा, कल मैंने वो जो वीडियो बनाई थी, कुछ लोग जो हैं उसके ऊपर कह रहे थे मुझे देख के, हमारे प्रोड्यूसर ने भी देखी, तो कहते शिबा हनिया सियानिया गल्ला कितों कर लेती। मैं हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा सर आपने भी वीडियो देखी है? तो कहने लगे हाँ मैंने भी देखी है। तो मैंने कहा, कहते मैसेज तो ये बहुत अच्छा दिता सी, पर इनिया सियानिया गल्ला तुमने आंदिया कितों ने? मैं कहा सर अब आप तो ऐसे ना कहे। मतलब मैं ये सोच रही थी कि ऐसे क्यों लगता है कि मतलब मैं कोई सियानी बात नहीं कर सकती, मतलब वाई मैं आजकल इस तरह की चीज़ें क्यों सुन रही हूँ, वाई दिस हिटिंग मी एंड हिंटिंग मी एज वेल, वाई हद होती है किसी बात की। ओके जी, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन के फेसबुक पे हमारे साथ कौन कौन है, बिकॉज 4471 वाला जो हमारा पेज है वो चल नहीं रहा है, ठीक है, उसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है मुझे बार बार, एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। कुछ तो चल ही रहा है, ईद का सेकंड डे है, रश है, गोश्त खाया हुआ है सिस्टम ने भी, कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। अच्छा, वो मैं ये कहने वाली थी कि आप लोग जो हैं सारे लोग गोश्त खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ भी बना रहे हैं, तो रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जो हैं वो भी पी लिए पिया करें साथ, उसका भी बहुत फ़ायदा है। अच्छा, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप पुदीने का पानी जो है वो बना के ज़रूर पिएं, एक खीरा उसमें डालें, थोड़ी सी अदरक उसमें डालें, लीमू डालें, और वो इतना रिफ्रेशिंग है, डाइजेस्ट हो जाएगा, आप ज़्यादा खा सकेंगे। अब्रार हीरो क्या कह रहा है, हैप्पी थर्सडे आपको भी जी, और अस्सलाम वालेकुम जनाब। फरहान कह रहा है हाउ यू फीलिंग टुडे, वेलकम टू द शो, यू आर आल्सो वेलकम ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। अच्छा जी, हामिद उल्लाह खेल, तमाम सुनने वालों को ईद उल अज़्हा मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, आरजे साबिर, ईद मुबारक आपको भी। अरहम मेहर, माशाल्लाह लुकिंग लाइक ग्रेट, एम आई कौन सा, हाँ छोड़ो। एनीवेज, शफकत अली हैं, ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। एनीवेज, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, क्या हाल है आप ठीक हैं, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह सही गुजर रही होगी। हाँ जी, बहुत ही सही, आप लोगों के साथ ही गुजर रही है। अकबर हैं कराची से हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। ओके जी, आप शिबा मलिक साहबा, मैंने दो प्रोग्राम ऐसे सुने हैं, सिर्फ आपकी आखिरी बात अल्लाह हाफिज़। आज इंशाल्लाह ज़रूर पूरा शो सुनूंगा, आपको सुनकर खुशी मिलती है और बहुत कुछ हासिल होता है, लाइक सीरियसली। अच्छा ओके, ठीक है, तो वो तो फिर आपने बहुत कुछ सुना होगा, जब मैंने सिर्फ अल्लाह हाफिज़ ही कहा, शो बंद किया, तो तब तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। मोहम्मद हफीज़ हैं हमारे साथ, वेलकम बैक टू द शो यू टू, और किंग अफसल हैं, वेलकम टू द शो, वेल थैंक्स अ लॉट आपको भी। मुंडा सियालकोटी, मलिक वसीम अवान, बहुत उमदा प्रोग्राम है, थैंक यू जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर उसके बाद है रियाज भट्टी, लाहौर वाले को सलाम कहा है उन्होंने, ठीक है रियाज भट्टी खुद कहाँ हैं। एस जानी ने मैसेज किया, सलाम अलैकुम, मैं ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। मोहम्मद हमज़ा हैं फ्रॉम मूसावली, ओके थैंक यू। मोहम्मद हफीज़ हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ यू जिन्होंने प्रोग्राम को ट्यून किया है, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमारे साथ हैं, थैंक्स अ लॉट। अच्छा ओके, लाइव कॉल्स लेंगे लेकिन 6 बजे के बाद लेंगे, सो प्लीज़ अभी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, बार बार कॉल करते हैं फिर ध्यान उधर जा रहा होता है कि हाय वो जो बातें आपने करनी हैं और जिसकी वजह से आप बार बार कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ फेसबुक पे आइए, फेसबुक हैंडल है facebook.com/fm101lahore, और 4471 पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपके आपका पैकेज नहीं है तो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, नो इशू। तकबीर, और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो नगमा भी प्ले किया था यौम तकबीर के हवाले से, सो ओके ये कौन सा गाना, अच्छा पीछे मैडम के गाने चली जा रहे हैं, ये कौन सा गाना है? आई वॉज ट्राइंग टू गेट वन ऑफ द सॉन्ग्स, लेकिन ये तो बहुत ही सारे गाने चले जा रहे हैं। ओके

आप लोगों ने शायद मेरी तरह आप लोगों ने भी वो जो है देखा होगा, मीम्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, कोई बना रहे हैं पुराने पुराने गानों के ऊपर वीडियोस, तो वो गाने देख के भी मैं भी सोच रही हूँ कि यार इतने साल हो गए हैं, मैंने वो गाने नहीं देखे ना हमने प्ले किए हैं, ये कौन से गाने निकाल निकाल के लोग वीडियोस बना रहे हैं लिटरली, मतलब हंसी आती है, वो भी हमारे म्यूजिक है. यस, वो भी हमारा म्यूजिक है. एनीवेज, हियर वी गो टू गो विद दिस सॉन्ग.

वेलकम बैक हो गई थी। महरीन भी हमारे साथ है, हमें ज्वाइन किए हुए हैं और शो जो है वो सुन रही है। महरीन थैंक यू सो वेरी मच, आपको भी ईद मुबारक। ओके 4471 वाले आ चुके हैं और जो है पेज हमारा रिफ्रेश भी वो हो चुका है। ओके जरियोन ने मैसेज किया है सबसे पहले, आज तो मैं आपके शो से पहले ही यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ओके ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो शिबा, थैंक यू सो वेरी मच जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। ओके एंड देन ओके यार ये पेज भी ना आज लो, इंटरनेट स्लो है ना, मतलब कम ही चल रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह पे हर चीज़ में जो है एडजस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। और कभी कभी कुछ लोग आपने सुना होगा आपके इर्द गिर्द ये भी कहते हैं कि यार हर वक्त हम एडजस्ट ही करते रहे, मतलब और कोई हमें कोई काम ही नहीं है। लोग इस चीज़ का बड़ा माइंड करते हैं कि हम ही सिर्फ क्यों एडजस्ट करें, अगला बंदा क्यों नहीं एडजस्ट कर सकता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, बड़ी खूबसूरती है किसी इंसान के अंदर एडजस्ट करने वाली जो एबिलिटी है, अगर वो हो ना तो यू कैन गो विद एनीवन, यू कैन लिव एनीवेयर, यू कैन स्टे एनीवेयर, यू नो आप किसी भी माहौल में किसी भी जगह पर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं अगर आपको एडजस्ट करना आता है एनवायरनमेंट से, कल्चर से। ये आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो आप ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा ओके रहना है। जैसे एक ही रूम के अंदर अगर 4 से 5 लोग हैं रह रहे हैं, 3 से 4 रह रहे हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, और फिर आप उनके कल्चर को यू नो डाइवर्सिटी को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छा लग रहा होता है। और ये एबिलिटी होनी चाहिए, सभी को आनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ख्वातीन के अंदर एडजस्ट करने की ये एबिलिटी होनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं हर बंदे के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए।

जी, सौ पिकर फॉर एक गाना है, न्यूज़ है, कमर्शियल है और कोऑर्डिनेटर हमारे काफ़ी एफिशिएंट हैं, सो ही इज़ ऑलरेडी देयर इन द स्टूडियो बिकॉज वो कहते हैं हमने प्ले करने हैं, तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम. ओके ऑलराइट जी, सो म्यूज़िक है, फिर साथ साथ हम जो है जारी रखेंगे लाइव कॉल्स, उसके बाद देखेंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले दैट विच सॉन्ग. चलो ठीक है, मीन माइल ये गाना चला रही हूँ. ठीक है, ओके ऑलराइट जी. सो आरजे शिबा मलिक आपको मिलती है न्यूज़ के बाद. लाहौर ऑन है, सेकेंड डे ऑफ ईद, वी आर सेलिब्रेटिंग. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक द लाइव कॉल, सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट.

0: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
0: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: FM 101 ki taraf se aap sabko Eid Mubarak.
3: 13 June, PC Hotel Lahore aaiye aur dein Al Shifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ticket aur table ki booking ke liye abhi hamari website visit karein. www.alshifaeye.org.
4: Sunte rahiye FM 101.
2: FM 101 ki taraf se aap sabko Eid Mubarak.
3: Sochiye, jab duniya sunai to de, magar dikhai na de. Lahore, jahan har gali mein ek kahani hai, lekin kuch aankhein aisi bhi hain jinki roshni dhundla chuki hai. Lekin ab nahi. 13 June. अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया.
5: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो. याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है. नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं. अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें. इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी. वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें. इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं. नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं. नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया. शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
2: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक.
4: सुनते रहिए FM 101.

Alright, जी, once again, assalamu alaikum and good evening all of you. 6:08 हो चुके हैं, 7 बजे तक मेरा आपका साथ रहने वाला है. सो कमर्शियल्स, कमर्शियल जिंदगी में ज़रूरी है, कमर्शियल लाइफ भी ज़रूरी है. हर वक्त नहीं, कभी कभी. शिबा मलिक और लाहौर रॉन है एंड ईद का सेकेंड डे वी आर सेलिब्रेटिंग. एक दो गाने प्ले करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे. आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो चुका है कल और आज क्या है, तबीयत आपकी कैसी है. प्लस वी आर सेलिब्रेटिंग योम तकबीर 28 मई और उसकी जो अहमियत है उस हवाले से ऑलरेडी हम लोगों ने तकबीर नगमा जो है वो भी प्ले किया है और कुछ गूगल भी कर लिया करें. आपको पता होना चाहिए, जैन जिस को तो बिल्कुल नहीं पता कि योम तकबीर क्या है, उनको बताना पड़ता है, उनको गूगल से दिखाना पड़ता है कि ये देखो ये है. अच्छा जी, और कौन है हमारे साथ 447 उन पे. एहतशाम ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम. आबिद अली ने मैसेज किया है, ईद मुबारक. आपको भी जी ईद मुबारक. एहतशाम कह रहा है कि शिबा आज का शो जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही घंटे का है. क्यों, ऐसे क्यों लग रहा है, आपने लेट ट्यून किया होगा. अच्छा जी, सिमरीन ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम. कल मैं शो में शामिल नहीं हो सकी, बहुत ही ज़्यादा बिजी थी. आज शुक्र है. आज का शो जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही घंटे का है. क्यों, ऐसे क्यों लग रहा है, आपने लेट ट्यून किया होगा. अच्छा जी, सिमरीन ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम.

स वेलकम बैक ओके जी। सो जिन लोगों को बहुत दिल कर रहा है कि उन्होंने लाइव बात ही करनी है तो ठीक है ओके लाइव बात कर सकते हैं 111-000-101 और आप आ सकते हैं लाइव बात कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक चीज़ स्टक हो गई व्हाइल आई वाज कमिंग एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कुछ लोग होते हैं बड़ी आसानी से किसी के मुँह पर भी कह देते हैं कि यार मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता या अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ। इज़ दैट सेंटेंस इज़ सो ईजी टू से टू समबडी? क्या ये जुमला इतना

0: आसान है कि आप किसी को भी बोल सकें और आसानी से डेलिब्रेटली जिसको कहते हैं ना, वो कह सके हाँ मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर सकता, या मैं बहुत मसरूफ़ हूँ इसलिए मेरे से बात नहीं हो सकती है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. पता नहीं किस किस को हिट करने वाली है. फिर लोग कहते हैं कि शीबा तुम ऐसे टॉपिक पे क्यों बात करती हो. मज़ा आता है. खैर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, तो हम लोग जो हैं आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना वो आसान होता है किसी को ये कह देना यार मैं मसरूफ़ हूँ यार, और हमने कौन सी प्रायोरिटी सेट जो है वो की होती है कि यार मैं फ़लाँ के लिए मसरूफ़ नहीं हूँ और फ़लाँ लोगों के लिए मैं बिज़ी नहीं हो सकता. कभी भी नहीं हो सकता, आप कहीं भी किसी भी हाल में हो, कुछ लोगों के लिए आप बिज़ी नहीं हो सकते. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट. लाइव कॉल्स लेंगे. सो लेट्स सी कॉलर कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: ईद मुबारक. मोहम्मद हनीफ से आपदा कॉलोनी गुड्डू जिला कश्मोर से.
0: जी, क्या हाल चाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, आप सुनाएं. खैर
0: जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. ईद मुबारक.
1: मुबारक आपको और आपके साथ साथ तमाम सुनने वालों को,
0: बहुत शुक्रिया
1: ईद
0: जी,
1: मुबारक.
0: बहुत बहुत शुक्रिया.
1: आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, ये तो कोशिश करें ताकि चैनल
0: आवाज
1: को
0: कम
1: ठीक
0: आ
1: कर
0: रही
1: दें.
0: है,
1: आवाज
0: मुझे इतनी ज्यादा आवाज आ रही है. लेवल बिल्कुल मेरे सामने और लेवल बिल्कुल सुपर चल रहा है. अब इससे ज्यादा
1: यहाँ पे
0: ब्लास्ट
1: मेरे
0: होगा.
1: वहां पे तो ठीक होगी, लेकिन हमारे पास जो आवाज आ रही है
0: अब
1: बिल्कुल
0: इतनी
1: कम आ
0: दूर
1: रही
0: से आप सुन रहे हैं तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही ना. थोड़ा तो फर्क
1: है.
0: पड़ेगा,
1: ये
0: समझे इस चीज को.
1: थोड़ा थोड़ा थोड़ा होता तो फिर ठीक है. टाइम अभी वो, मतलब क्या किया हुआ, मैंने मोबाइल में बैग की पिन लगा के वहां पे सुन रहा हूँ, वहां पे भी आवाज ठीक कम आ रही है.
0: आप सोचे हैं कि आप मेरी सारी बातों का जवाब भी दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको आवाज नहीं आ रही ठीक से. अब आवाज आएगी तो पता नहीं जो मैं नहीं कह रही वो भी सुनेंगे और जवाब देना शुरू कर देंगे.
1: नहीं, आवाज आ रही है लेकिन कम कम आ रही है, बिल्कुल कम कम आ रही है.
0: अच्छा, तो क्या ईद के दूसरे दिन क्या मसरूफियत है, क्या चल रहा है?
1: हमने पहले दिन भी सादगी से मनाई ईद, और दूसरा दिन भी सादगी से मना रहे हैं, और तीसरा दिन भी सादगी से मना रहे हैं, क्योंकि हमारे पिछली ईद पे अबू की वफात हो गई थी, इसलिए.
0: अच्छा, ओके, ठीक
1: जी, घर
0: है. हाँ, फिर तो जाहिर है ऐसे ही होता है. फिर आने वाली बहुत सारी
1: का
0: ईदें
1: बड़ा
0: ऐसी रहनी है.
1: ऐसे समझे, क्योंकि हमारा सारा तो ये था. आपको पता कि बाप वो दरख्त है, फल दे ना दे लेकिन साया जरूर देता है.
0: साया बिल्कुल ऐसे ही है. मैं समझ
1: जी
0: सकती
1: तो,
0: हूँ. चलिए जी, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए. ठीक है, और खुश रहें.
1: थैंक यू, बड़ी
0: ओके जी,
1: मेहरबानी.
0: अल्लाह हाफिज़.

मगर जिंदा हूं जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए हैं। पूछते हैं आप अच्छे तुम्हें, पूछते हैं आप अच्छे तुम्हें, जी मैं अच्छा हूँ।

0: क्या कहने, ऐसा कॉम्बिनेशन कि बस दुनिया जो है ना, जिनको शायरी का पता है, जिनको प्यार का, मोहब्बत का, क्रिएटिविटी का, सेंसिटिविटी का पता है, बस वो ना दी पहुंच रहे रिमिक नहीं बच सकता। अच्छा जी, लेट्स सी कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम शिवापी।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन?
1: हमना फ्रॉम जर्मनी।
0: हमना,
1: हाँ जी, फर्स्ट टाइम कॉल किया शिवापी, शुक्रिया।
0: ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी
1: जी।
0: वाओ, हाउ स्वीट। वेलकम, मोस्ट वेलकम, एंड इट्स लॉट्स ऑफ लव बिकॉज़ फर्स्ट टाइम कॉल कर रही है एंड ऑल द वे फ्रॉम देयर। ऐसा क्या हो गया कि तुमने कॉल ही कर लिया शो में?
1: आपको एक माह से सुन रही हूँ, इतना प्यारा प्रोग्राम करती हैं आप, माशाल्लाह। क्या बात है यार, कॉल की है। सेकंड डे ईद का बहुत बहुत मुबारक आपको।
0: आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या मिसरूफियत है आज के दिन के हवाले से?
1: कुछ भी नहीं है, मैं तो वेली हूँ, मम्मा ही है लगी हुई बस। मुझे
0: वेला होना भी एक काम है, एक आर्ट है, यू नो। और तुम भी एक आर्टिस्ट हो।
1: हम मेरे किसी बच्ची को क्या काम है, सारा दिन जस्ट रेडियो के साथ गुजरता है, बस क्या करना है। मैंने छुट्टियां, आपको पता है पाकिस्तान आई हुई हूँ मैं, तो नेक्स्ट जो फ्राइडे हम जर्मनी के लिए जाएंगे, फिर मैं वहाँ से आपका प्रोग्राम सुनूंगी। मतलब मुझे मैसेज नहीं करने की आदत, पता नहीं क्या होता है।
0: ये तो कोई बात नहीं है, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि दैट यू आर लिसनिंग। Not every time that I'm taking live calls, it's not like that also with me. So sometime that if there is something interesting, to फिर मैं ले लेती हूँ live calls. So हर week तो फिर वो भी नहीं होती हैं।
1: तो मैंने कहा चलो भाई, तो यकीन माने मैं दो तीन जब आई ना पाकिस्तान, तो मैंने रेडियो पे कॉल करनी स्टार्ट की। मेरी फ्रेंड भी जर्मनी से आपको इस वक्त सुन रही है इस वक्त।
0: Okay, that's great. ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी फ्रेंड का नाम क्या है?
1: उन्होंने ज़ैनब सुन रही है, सोबिया सुन रही है, शकीला सुन रही है, तीनों।
0: ज़ैनब, सोबिया, शकीला, थैंक यू सो वेरी मच गर्ल्स।
1: तो मुझे कहती तो कॉल भी ना, मेरे को ठीक है, मैं बिलाती हूँ। तो हम जर्मनियों के नाम अच्छा सा ट्रैक डेडिकेट करना है, फर्स्ट टाइम कॉल किया।
0: बताओ कौन सा
1: जो आपका फेवरेट है?
0: ना यार, ऐसे मत करो। मैं इस टाइम तो दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा है कि फेवरेट वाला फॉरन लग जाए, तो जस्ट टेल मी। अदरवाइज नेक्स्ट गाना जो क्यू है मैं वो प्ले कर दूंगी, डेडिकेट कर देती हूँ।
1: हाँ, नाम लेके हम चारों का आपने डेडिकेट कर।
0: नाम खुद ही ले लो, चार नाम है। अब मैं चार नाम याद रखने बैठ जाऊँ, हम ना याद है। आगे आगे बढ़ो, बताओ अब और कौन कौन है।
1: चलो चलो, मेरा नाम ले लेना, कौन नहीं कह रहा।
0: हम ना और उसकी फ्रेंड्स या
1: हाँ, उनकी अभी कॉल आ जाएगी। हमारा नाम तुमने क्यों नहीं लिया?
0: ना यार, ऐसे मत करो उनके साथ भी।
1: शिवाजी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट फ्राइडे चले जाना है बाहर स्कूल में, वहाँ पे छुट्टियाँ खुल गई। यहाँ पे तो 3 माह की छुट्टियाँ होती हैं, वहाँ पे इतनी लंबी छुट्टियाँ नहीं देते हैं मुझे। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं मेरी छुट्टियाँ खुल गई हैं।
0: ना यार, गुस्सा क्यों करना, छोड़ो, एंजॉय कर लिया है बस, ठीक है, अब जाओ पढ़ो। और क्या पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब, सुना नहीं हुआ?
1: हाँ, ये तो बात अच्छी है, मगर मैं कहती हूँ पापा पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान मेन आने की बात ये है कि रेडियो पे कॉल लगेगी
0: बस, इसलिए।
1: बहुत शुक्रिया, सभी सुनने वालों को ईद मुबारक।
0: ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय। Alright, Hamna, it's great talking to you, and the next song that is with me, Q है जो वो आपको और आपकी friends को dedicate कर देते हैं, ठीक है? और गाना मैं देख रही हूँ कौन सा वाला है। I'm just trying to see कि कौन सा गाना है, फिर वो ही dedicate कर देंगे, ठीक है?

राइट, सो इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज. कभी कभी हम हर किसी को मुंह उठा के कह नहीं सकते हैं कि हाँ जी हम बिजी और ओके. और उसके साथ साथ और ज़रियोन ने मैसेज किया है, शिबा अब इतना इंतज़ार किया है, इतने सारे मैसेजेस किए हैं, मुझे ये बताएं कि मेरी क्या सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो सज़ा दे नहीं सकते हम किस बात की. ओके, ज़रियोन ने मैसेजेस किए हुए थे कि मैं किसी को बिजी वाला लफ्ज़ नहीं बोल सकता, वो दुनिया में एक ही बंदी है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ उसको नहीं कह सकता कि मैं बिज़ी हूँ, बाकी दुनिया सारी के लिए मैं बिज़ी हो जाता हूँ. ओके, दैट्स माय पॉइंट. ओके, ठीक है ज़रियोन. सी, इस तरह के लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो आगे सीधा ही बताते हैं कि मैं फ़लां के लिए बिज़ी नहीं हूँ, बाकी वो जो आगे कहते हैं ना, होना चाहिए, करना चाहिए, आई डोंट लाइक दैट, यू नो, स्नीकिंग हियर एंड देयर, आई डोंट लाइक. हाँ, समरीन ने मैसेज किया है, मुझे नहीं पता कि ये आज किधर गायब हुई हुई है, मेरा इसने फ़ोन भी नहीं लिया, शिबा परसों से ड्यूटी स्टार्ट है, तो देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ. ओके, समरीन ने मैसेज किया एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट बतूल, डेफिनेटली. और देखा, मुझे तुम लोगों की इतनी रूटीन पता है कि तुम क्या बात कर रही हो, किसके बारे में बात कर रही हो. ओके जी, सो अब हम यार, एक तो आई डोंट लाइक, आई वॉज ट्राइंग टू टेक द लाइव कॉल, और ये मिस कॉल वाले जो बीच में आ जाते हैं ना, बाकी जिन लोगों ने बात करनी होती है उनका भी काम ख़राब कर देते हैं, सीरियसली. एहतशाम ने मैसेज किया है, एहतशाम कह रहा है कि शिबा मैं भी हर किसी के लिए बिज़ी नहीं हूँ, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बिज़ी होता हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर मैं उनको ये कह दूँ बिज़ी, तो आगे से 10 सवाल आ जाएंगे कि किधर, किसके साथ, कहाँ, क्या.

चीज है ना वो जबरदस्त है ओके और मजेदार भी है कि एक अगर पूछ लिया है कि जब बिजी थे अगले को सवाल आना ही चाहिए था क्यों कहाँ एंड ऑल दैट राइट. Anyways, all of you, जिन लोगों ने शो में पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम कॉल किया ऑल ऑफ यू थैंक्स अ लॉट ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी हमना एंड देन विकास फ्रॉम फैसलाबाद एंड हु एल्स दैट कॉल फर्स्ट टाइम जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम कॉल की थैंक्स अ लॉट गाइज शो में शामिल रहने के लिए टॉपिक को शेयर करने के लिए एंड देन प्रोग्राम में थ्रू आउट हमारे साथ रहने के लिए प्रोग्राम का लास्ट टैग जो है डेडिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है. और अच्छा ओके मैडम का गाना क्यों है चलें वही प्ले कर लेंगे. सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट ट्यूसडे. टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस. अल्लाह हाफिज़ एंड हॉट्स ऑफ लव्स.

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। 1998 में आज के दिन पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात की याद में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन कोशिशों में फाल किरदार अदा कर रहा है। आज मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और आयरलैंड के दरमियान ख्वातीन की 3 मुल्की T20 बैनुल अक़वामी सीरीज आज डबलिन में शुरू हो रही है। और अब खबरों की तफसील। 1998 में आज ही के रोज मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले एटमी तजुर्बात की याद में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। आज के दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और आलम इस्लाम पर जोहरी सलाहियत रखने वाला पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक मंद की क्यादत में पाकिस्तान के साइंसदानों की टीम ने बलोचिस्तान के जिला चागी की ड्राकोस पहाड़ियों में ये एटमी तजुर्बात किए। ये तजुर्बात पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, आजादी और खुदमुख्तारी के तहफ्फुज़ के लिए कौमी अज़्म का मज़हर और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बरकरार रखने की ख्वाहिश के अक्कास थे। भारतीय एटमी तजुर्बात के जवाब में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान की जानिब से एटमी तजुर्बात करने का जुरतमंदाना फैसला किया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101
2: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
3: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सुनते रहिए FM 101 101

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।
6: तेरह जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
7: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
8: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
9: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
10: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
11: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
12: कुंबे की तश्कील में बच्चों की

0: ये बड़ी यंग मतलब एक बड़ा बूढ़ा वो एक है बड़ा
1: ये अब आप दोनों बाद में तय कर लीजिएगा आपस में।
2: ये दोनों साथ में बहुत बूढ़े हैं
0: मतलब है, मेरे धर्म की बात फौरन आपकी बारी आ गई और सारू देखो आप जाति कर रही है।
1: लेकिन आप एक यंग पॉलिटिशियन है अब आप ये बताइए
0: नहीं
1: वो बहुत यंग है अब
0: यंग
1: है
0: यंग नहीं हूं मैं
2: पसंद करते
0: हैं मैं यंग तो नहीं हूं आई नो व्हाट आई एम।
1: सेलिब्रेशंस के हवाले से बताएं किस तरह से ईद टाइम ऑब्वियसली शेड्यूल बड़ा आप लोगों का टाइट होता है बहुत मसरूफ होते हैं तो क्या मसरूफियात
0: पहले तो बहुत शुक्रिया मधु करने का और आपके आपकी टीम को आपके देखने वालों और जितने पाकिस्तान के हैं और वो तीस पाकिस्तानी के हैं उसके मुसलमान सब की बाकी जो है आपने अपने उनकों में तनकीद जब मान ली क्योंकि ये आज हम ईद के एसेंस पे कुर्बानी के एसेंस पे बात करेंगे तो मुझे ज़रा थोड़ी एक बात याद आ गई बकर ईद का एसेंस क्या है गोटियाँ काले और खो जाती हमारे यहाँ मैंने क्या बनाया आपने कौन सा
1: हमने एक कल्चर
0: आपने नहीं आपने कौन सा मजहबी त्यौहार बना दिया इसको यही करते हैं सब लोग।
1: अच्छा ठीक है
0: भाई काल उतारो और इसके बाद बोटियाँ कुछ फ्रीज में डाल दो कुछ तकसीम कर दो और खुद खा के लस्सी पी के सो जाओ ये हमारे यहाँ बकर ईद जो है वो ईद उल फितर के मुकाबले में ऐसे मजहबी जोश और अफसोश से नहीं मनाया जाता ये हम एक रस्म हैं जो पूरी करते हैं जो कुर्बानी दी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हमारा बस यही ईद होती है हम कोई इसमें ना मुबारकियों के लिए जाते हैं ना ख़ानदान में फिरते हैं ये ईद उल फितर पे सब कुछ होता है।
1: हाँ।
0: और ईद उल अज़हा जो है ना गरीबों में गोश्त तकसीम कर दिया जानवर कितने में चार जानवर ज़बह करता हूँ और तकसीम करता हूँ इस साल चार करूँगा क्योंकि एक मेरा बेटा जो है वो अब उस पर बीप पर हो गया तो ये मेरी ईद है।
1: ठीक है
3: डॉक्टर अस्मा नाज़िमा साहब आप ईद किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं और ख़ासतौर पर जब इतनी हेक्टिक रूटीन भी हो इतने सारे काम इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ भी हों तो उसमें ईद सेलिब्रेशंस अब वक्त के साथ कुछ चेंजेस भी आए हैं।
4: जी बिल्कुल वक्त के साथ चेंजेस भी आए हैं लेकिन इसका मदद साहब ने कहा कि वो जो ईद है उसमें बड़ी मसरूफियात में गुजरती हैं और पहले दिन तो वाकई में बड़ा बिजी रहता है फैमिली के साथ भी और ख़वातीन आपको मोस्टली नज़र आती हैं किचन में और मुझे भी शौक़ होता है कि जो जानवर ज़िबा होके आ रहे हैं उनकी जो कलेजी है वो मेरे घर वाले मेरे बड़े शौक़ से खाते हैं हाथ से
1: अच्छा वो खुद बनाती हैं
4: आप खुद बनाती हूँ तो वो तो खैर पहले दिन तो बहुत ज़्यादा मसरूफ रहता है लेकिन सेकेंड डे मेरी
0: आप कलेजी का
4: मुझे बहुत शौक है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कलेजी का बनाती भी हूँ
1: कलेजा नहीं कलेजी बोल
4: और मैं बनाती थी जी डिफरेंट स्टाइल से मतलब पाकिस्तानी स्टाइल से मैं कलेजी नहीं बनाती।
1: अच्छा
4: तो बस सेकंड है फिर मुझे होता है कि जो पॉलिटिकल आप क्योंकि मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी रहती हूँ पॉपुलेशन पंजाब में तो मेरा मोस्टली कोशिश यही होती है हॉस्पिटल्स में जो भाई बहनें मरीज हैं उनकी जिम्मेदारी के लिए मैं जाऊँ फिर कुछ चीज़ वगैरह कुछ होते पढ़ाई देते तो उनका
1: ईद पे आप टाइम निकालते हैं
4: वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल और आपने देखा होगा कि हमारी जो लीडर हैं हमारी गाय हैं मतलब हिमाचल सर उनकी भी यही कोशिश होती है कि ईद पे जो है उन लोगों को जो उनकी खुशियों में नहीं मना सकते इस दिन अच्छी वजह से उनको अपनी उन खुशियों में
1: शामिल किया
4: शामिल
1: किया नहीं ये बहुत अच्छी बात है जो मैं पहले बात कर रही थी मेरा मकसद यही था कि असल जो एक एसेंस होती है ईद मनाने की ईद उल फितर की बात करें ईद उल जुहा की बात करें तो डॉक्टर साहब उसमें यही है हमारे लिए जो मज़हबी तौर पर जो उसमें एक मैसेज है दूसरों का ख्याल रखना ख़ास तौर पे वो बहुत ज़रूरी है और जो हम बकरा ईद की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक प्रॉपर एक पोर्शन होता है सारे हिस्से होते हैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए फिर आप उसको उसी तरह से अगर तकसीम करते हैं तो वो फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हम जो मज़हबी त्यौहार मना रहे हैं जो कुर्बानी हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है उसका हम सही हक़ अदा कर रहे हैं।

अज़हा पर गली के बीच में पड़ी अलाइशें सिर्फ गंदगी नहीं थी, वो पूरे मोहल्ले की आजमाइश थी। आवारा जानवर खींच रहे थे, बदबू तेज होती जा रही थी और लोग रास्ता बदल बदल कर जा रहे थे। जानवरों की अलाइशें और बाकियात को गलियों, सड़कों, नदी नालों और खुले मकामात पर फेंकना कानूनन जुर्म है और उस पर 50,000 रुपये जुर्माना है। जिम्मेदारी ये है कि अलाइशें महफूज तरीके से थैले में बंद की जाएं और सुथरा पंजाब वर्कर्स के हवाले की जाएं। अगर आपके इलाके में कोई ये खिलाफ वर्जी करे तो शिकायत के लिए सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन 1139 पर कॉल करें।

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
9: And now you are tuned into
10: FM 101.

0: It sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
4: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है.
5: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है.
6: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है.
7: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं.
8: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है.
9: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें.
10: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें. मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान. महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब.
3: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
4: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है.
5: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है.
6: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है.
7: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं.
8: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है.
9: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें.
10: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें. मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान. महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब.

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what you emotions are, I'm gonna call it a spade is a spade.

धक सा गया और चुप हो गया, मैं धक सा गया और चुप हो गया, मैं धक सा गया और चुप हो गया।

0: shit sucks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिल्म और स्टेज अदाकारा, टीवी की मेजबान और गुलुकारा मेघा। मेरी तरफ से एफएम 101 के तमाम लिसनर्स को ईद की बहुत बहुत

0: 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
1: Hello everyone, this is Sarish Sayed. I wish you and all of your family members a very happy Eid and may this be a very delighted and jaunty event for all the listeners of FM 101. Thank you.
2: आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन मौज मेला हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: सुनते रहिए FM 101.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं. 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
2: सुनते रहिए FM 101. 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके, आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: 9 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. Yom Takbir is being observed today in remembrance of the nuclear tests conducted by Pakistan on this day in 1998. The Deputy Prime Minister says Pakistan is playing an active role in regional and global peace efforts. Second day festivities of Eid al-Adha continuing today across the country. Hujjaj continue to perform Rami al-Jamarat on the second consecutive day today.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101. 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
5: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का.
6: 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
7: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है. इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है. निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है. लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं. नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है. यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान.
8: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है.
9: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है.
10: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है.
11: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं.
12: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है.
13: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें.
14: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें. मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान. महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब.
15: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून, अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
16: पाकिस्तान दी मशहूर तिब्बी इलाजगा दवाखाना प्रोफेसर सुलेमान वालों ताड़ी मेजबान ते ताड़ी खतां दी तर्जमान साइमा ताड़े सारे दी खिदमत विच बहुत सारे सलाम पेश कर दिए ते दुआ कर दिए कि सोहना रब तुहानू हमेशा सेहतमंद रखे ते तुसी अपनी जिंदगी नू खूब इंजॉय करो. सोने भैन भ्राओ, सेहतमंद जिंदगी वास्ते दो असूलों ते हमेशा अमल करना जरूरी है। नंबर एक, हिफजाने सेहत दे असूलों की पाबंदी, ते नंबर दो, बीमारी की सूरत विच फौरी इलाज। सोने भैन भ्राओ, इलाज बल्कि अच्छे ते मुस्तकिल इलाज के हवाले नाल प्रोफेसर सुलेमान साहब की जात किसी तारफ की मोहताज नहीं। सोने भैन भ्राओ, तुसी भी अपनी बीमारी के कामयाब इलाज वास्ते फौरन ही प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं मिलो, जिदे लई साडा पता ते फोन नंबर नोट फरमाओ। सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड, लाहौर। फोन नंबर 042-377-2760, यानी 042-377-2710। मोबाइल नंबर है 03-400-414-2608, यानी 03-400-414-2608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। जी सोने भैन भ्राओ, उड़ीकां मुक गईयां, क्योंकि हुण तुसी मिलोगे पाकिस्तान तिब्बी फाउंडेशन दे चेयरमैन, यूनानी मेडिकल कॉलेज दे साबिक वाइस प्रिंसिपल ते बैन अलकवामी शोहरत याफ्ता मौलिज हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं, जिन्हां नूं बेहतरीन तिब्बी खिदमात दे इतराफ विच गोल्ड मैडल भी मिलिया है। ते आओ हुण मिलने आ हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं। सुलेमान साहब, तुसी प्रोग्राम विच तशरीफ लियाए ते प्रोग्राम दी शान ते साडा मान वधाया, जिहदे लई मैं तुहाडी शुक्रगुजार हां।
17: सहमा जी, ए ते मेरा तिब्बी फरीजा है, ते मैनूं खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम दे जरिए अपने भैन भरावां दी तिब्बी खिदमत कर रहा हां।
16: जी बड़ी मेहरबानी सुलेमान साहब
17: जी।
16: मैनूं ना मिर्ज़ा गालिब साहब दा एक शेर याद आ रहा।
17: अच्छा।
16: बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। सुलेमान साहब
17: जी,
16: मिर्ज़ा गालिब साहब दी गल ठीक है, ते फिर दिल ने इन्नी खप क्यों पाई होई है?
17: वैसे सहमा जी, तानू दिल दी ऐस सरकत तू की शिकायत हो गई?
16: सुलेमान साहब, शिकायत मैनू नहीं है, बल्कि साडे इक भाई जनाब मुजफ्फर चौधरी साहब नू है, ते ए अपनी शिकायत इंज बयान करदे ने कि मोहतरम सुलेमान साहब, मैनू कुछ दिनां तों दिल दे करीब मिठा मिठा दर्द हुंदा है।
17: अच्छा।
16: ते किसे वेले बिल्कुल ठीक हो जांदा है। इहदे अलावा जदों मैं कोई जिस्मानी काम करना वां या फिर सीढ़ियां चढ़ना वां, ते दिल बड़ी जोर जोर नाल धड़कदा है। सुलेमान साहब
17: जी,
16: मैनू खाण तों पहलां सीने च जलन जी हुंदी है, ते खट्टियां डकारां वी आउंदियां ने, बराए करम दवाई पार्सल कर दिओ।
17: मोहतरम मुजफ्फर भाई, परेशानी दी कोई गल नहीं, इह बहुत मामूली जिहा मसला है, ते अलामात दे तहत तुहानू अलहमदुलिल्ला दिल दी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
16: चलो जी, शुक्र है।
17: बल्कि ए ते मेदे दी तकलीफ है। मेरे भाई, तुहानू गैस्ट्रिक ते तजाबीए दी तकलीफ है, जिंदे बाइस तुहानू दर्द फवे मेदा महसूस हो रहा है, जिन्हों अमूमन दिल का दर्द समझा जाता है।
16: बिल्कुल।
17: तुसी मुरगन ते मसालेदार खाने बिल्कुल छड़ दे हो, मैं दवाई पार्सल करा देंगा, जिंदे नाल मेदे दी तजाबीए दूर हो जाएगी, ते इनशाला चंद दिनों के इलाज तो बाद तुसी सेहत याब हो जाओगे
16: इनशाला ताला जी। जी मुजफ्फर साहब, शुक्र करो कि यह दिल का मामला नहीं सी, वरना तुहानू बहुत प्रॉब्लम हो जानी सी। सुलेमान साहब
17: जी,
16: इहनू कहिंदे ने कि खोदा पहाड़ ते निकला चूहा, यानी शोर ज्यादा ते बीमारी मामूली। सुलेमान साहब, अगली ईमेल पढ़नी आ जिहड़ी आफताब खान साहब ने तहरीर कीती है। फरमाउंदे ने कि मैं फोर्सिस ज्वाइन करना चाहना वा, लेकिन मैं मेडिकली अनफिट हो गया वा, क्योंकि मेरा कद भी छोटा है ते मेरा वजन भी घट है।
17: अच्छा।
16: यानी अंडर हाइट ते अंडर वेट। सुलेमान साहब, मैं अपनी इस खामी तो बहुत परेशान हाँ, मैं एक्सरसाइज भी की, दवाइया भी इस्तेमाल कर चुकी हाँ, पर फायदा ही नहीं हो। बराए करम ऐसी कोई दवाई पार्सल कर दो कि मेरी सेहत ते मेरा कद ठीक हो जाए।
17: बेटा जी, ये दोनों मसले फिक्रमंदी वाले ने, जिंदे लई तुहानू एक बारी दवाखाने ते आके मुकम्मल चैकअप करवाना पवेगा। बेटा जी, तुसी जो कैफियत लिखी है उनके मुताबिक मैनू यकीन है कि तुहानू हारमोनल प्रॉब्लम है, जिंदी वजह नाल तुहाडी जिस्मानी नशोनुमा रुकी हुई है। सोहणे रब दी करम नवाजी नाल हालत साडे नबाताती इलाज च मौजूद है।
16: बिल्कुल।
17: बेटा जी, तुसी फिक्रमंद नहीं होना, सोहणा रब चंगियां करेगा। तुसी फौरन ही दवाखाने ते तशरीफ लियाओ, मैं तुहाडे लई दवाई तैयार कर देंगा, जिंदे नाल जिगर ते मेदे दी सलाह भी होवेगी, ते हारमोनल निजाम मजबूत होने तो बाद इंशाल्लाह कद विच भी इजाफा हो जाएगा, ते तुहाडे जिस्म विच कुवत भी आ जाएगी।
16: जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला इसी तरह होएगा। तुसी प्रोफेसर साहब दी गल सुनी, ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
17: ਜੀ,
16: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨੱਵਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨਿਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮੀ ਨੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਰਸਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਨੇ।
17: ਮੁਨੱਵਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
16: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
17: ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ
16: ਹੋਵੇ।
17: ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਫਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ
16: ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
17: ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਯੂਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ।
16: ਬਿਲਕੁਲ
17: ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਸਪਰਮ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਸਪਰਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤਬਈ ਕੈਫੀਅਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਪਰਮ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
16: ਬਿਲਕੁਲ
17: ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤਬਈ ਕੈਫੀਅਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਪਰਮ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

Coming up next. Coming up next, 101 News Headlines.

0: 10 से 12 बन गई मशीन.
1: Coming up next, RJ Talks. On your video dial. Keep it locked. अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का.
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है.
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है.
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है.
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं.
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है.
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें.
8: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें. मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान. महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब.
9: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक. वन अबव एफएम 101.
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है.
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है.
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है.
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं.
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है.
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें.
8: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें. मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान. महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब.

0: बन गई मशीन।
1: Coming up next, RJ Talk. On your radio dial. Keep it locked. अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।

बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आपके मैसेजेस, आपकी फीडबैक का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार रहेगा। आरजे डॉक्स और आरजे रहमान अनवर दोनों रास्ते में हैं और जैसे ही वो स्टूडियोज में तशरीफ लाते हैं एक एक माइक उन दोनों के हवाले कर दिया जाएगा। हॉट सीट पे हम आरजे डॉक्स को दोबारा से बिठा देंगे और वो फिर इस ड्राइविंग सीट को संभालते हुए 12 बजे तक आपको लेके चलेंगे। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है। मेरा नाम ज़िया अंजुम है, लाहौर से इस वक्त हम बराह रास्त हैं। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईद के हवाले से बताइएगा, आपकी ईद कैसी गुजर रही है और ईद के क्या अहतमाम हैं, क्या क्या कुछ किया, नए कपड़े बनाए कि नहीं बनाए। ईद के ऊपर अक्सर लोग, इस ईद के ऊपर खासतौर पर बॉयज़ जो होते हैं, कपड़ों के हवाले से वो ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। वो कहते हैं कि यार इस ईद पे कुर्बानी और फिर उसके बाद काम शाम सिलसिले इस तरह से रहेंगे कि वक्त नहीं मिलेगा कपड़े पहनने का। मैं इस हवाले से काफ़ी बड़ी ईद के ऊपर लेजी हो जाता हूँ ज़ाती तौर पे। मुझे नहीं पता कि आप ऐसे करते हैं कि नहीं करते, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो बताइएगा, बताओ ना ज़रा, जवाब दो। कुछ मैसेजेस को शामिल करते हैं। मोहम्मद आरिफ हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आरिफ गुलशन म्यांमार कराची से, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं। ज़िया साहब पोस्ट तो आरजे डॉक्स की लगी है, बीच में आप कबाब में हड्डी बनकर आ गए हैं, लेकिन आपको भी दिल की गहराइयों से ईद के दूसरे दिन की बहुत मुबारक हो और तमाम खूबसूरत समातों को भी बंदा नाचीज की तरफ से ईद मुबारक। बाकी जहाँ तक आपकी नींद का सवाल है तो इसका जवाब देना लाजमी चाहूँगा, क्योंकि बेतहाशा खाया होगा आपने, इसीलिए आपको ईद के गोश्त के असरात लवाजमात चढ़ गए हैं। हमारी तो ईद काम काम और सिर्फ काम में ही गुजरी है, अभी भी ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहा हूँ, गाड़ी में ही आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। कितने बदगुमान इंसान हैं आप कैसे कर लेते हैं बताएं ना ज़रा आरिफ साहब, ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? अच्छा गुमान रखा करें, अच्छी बात सोचा करें। लेकिन खैर क्या करें, सोचों का क्या है, आ जाती हैं और अगर जहन में आ जाए तो फिर बाजू का जुबान पे भी आ जाती हैं। बहरहाल मैंने इस ईद पे बहुत कम खाया वैसे आपको बताऊं मैं। मरीना बिलाल ईद मुबारक कहती हैं, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। और कहती हैं आरजे डॉक्स एंड ज़िया वेलकम, अभी और मेरे बाकी दोस्त नहीं आए, मैं अभी इस वक्त आरजे डॉक्स के बीजीएम पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। और बहुत सारे दोस्त इस वक्त कह रहे होंगे कि यार ये क्यों बोल रहा है इस बीजीएम पे, ये आरजे डॉक्स का प्रोग्राम था, वहाँ पे उसको आना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, होता है, चलता है, कभी कभी होता है, वो लेट है, वो हमेशा की तरह लेट है, तो मैं ज़रा फिलर के तौर पे आया हूँ। अभी जैसे ही वो आ जाते हैं आरजे रहमान और आरजे डॉक्स, तो फिर इंशाल्लाह हम तीनों मिलके प्रोग्राम करेंगे ईद के हवाले से, हल्ला गुल्ला गपशप चलेगी। बिनते सदीक हमारे साथ हैं, साहिर लुधियानवी की एक गज़ल भेजती हैं, कहती हैं बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा, एक दिल था जो पहले ही तुझे सौंप दिया था, ये जान भी है राहते साथ लिए जा, तपती हुई राहों से तुझे आंच ना पहुंचे, दीवानों के अशकों की घटा साथ लिए जा। क्या बात है जी। फिजा राजपूत हैं, फिजा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और सलाम करती हैं, वेलकम कहती हैं। मोहम्मद अवैज कहते हैं कि मैं आपका शो बहुत शौक से सुनता हूं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नज़ीर खोसो कहते हैं बेहतरीन प्रोग्राम है, सोबतपुर बलोचिस्तान से, और जिस वक्त आपने मैसेजेस किए थे उस वक्त तो हमने प्रोग्राम शुरू किया भी नहीं था। अक्सर पोस्ट ना पहले लग जाती है, आरजेज लेट हो जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं उन्होंने कुछ चीजें ना कॉपी पेस्ट करके रखी होती हैं, वो सुन नहीं रहे होते लेकिन वो कमेंट्स कर देते हैं कैसे कर लेते हैं यार, कैसे कर लेते हैं।

वेल, अभी मैं एक गाने की तरफ बढ़ रहा हूँ। गाने से वापस आके आपसे बातचीत के सिलसिलों को यहीं पे जोड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस गाने के बाद तक आरजे रहमान और आरजे डॉक्स भी स्टूडियो में तशरीफ ला चुके होंगे और माइक को संभाल लेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिल के गपशप करेंगे। 12 बजे तक आपका हमारा साथ होने वाला है। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है। मुझे ज़ियान जुम कहते हैं, इस गाने के बाद मिलते हैं।

0: जी जनाब, वेलकम बैक। एक दफा फिर से खुशामदीद। 10:35 हो चुके हैं और आज हम आरजे डॉक्स के बीजीएम पे प्रोग्राम कर रहे हैं। रहमान अनवर,
1: अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है ज़ियान?
0: वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक सर आपको।
1: अरे खैर मुबारक, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
0: क्या बात है, मुझे बताएं कि कितने आपने प्रोजेक्ट्स उठाए इस ईद पे।
1: अगर मैं आपको सुबह के टाइम की एक तस्वीर आपसे अगर मैं शेयर करूं, जो कि मैं नहीं करूंगा।
0: नहीं, वैसे इस वक्त भी जो हालत बनी हुई है ना।
1: हाँ। वो अच्छा, वाकई में मैं आज, क्योंकि हमने आज किया कुर्बानी, आज की है तो उसमें आज इतनी थकावट है।
0: ओके।
1: मतलब हम जब भी कुर्बानी करते हैं तो हम खुद ही तमाम चीजें करते हैं, किसी कसाई को नहीं बुलाते।
0: क्या बात है,
1: खुद ही कसाई होते हैं हम, खुद ही वो बूटियां काटने वाले होते हैं।
0: आए हाय हाय, टोके चलते हैं फिर टोके।
1: तो आज का जो सीन है वो इतना ज्यादा, ये वाली बाजू लेफ्ट और ये कोहनी और ये हाथ,
0: नहीं, ये तो राइट नहीं है,
1: ये तीनों नहीं, लेफ्ट।
0: अच्छा, मेरा राइट है।
1: तुम्हारा राइट है। तुम्हारा राइट है कि तुम ये बात कह सकते हो। ये तीनों जगह मतलब इंजर्ड है, मतलब वो इतना पावरफुल था, माशाल्लाह वो इतना पावरफुल था।
0: अच्छा।
1: और इतना ऊंचा था, यानी कि अगर मैं 6'2" मैं अगर उसके साथ खड़ा हूं तो यहाँ पे मेरे तकरीबन कंधे कंधे तक वो आ रहा था।
0: क्या बात।
1: तो वो जब वो मैंने आगे से बिल्कुल नथ तो फड़ना ही, नथ तो फड़ना ही
0: है,
1: फेन ही हिलता। तो मैंने वहां से पकड़ा हुआ था, मेरे साथ एक मेरा कजन है उसने भी पकड़ा हुआ था, उसने हम दोनों को झटके लगाए हैं, पिछली जो टांगे हैं उसकी वो खुल गई रस्सी।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद उसने बस कोशिश की है कि मुझे गिरा ना पाए ये, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की कि अगर अब छोड़ा तो इसने वही हाल करना है, वो जो एक गेम नहीं होती जिसमें बैल उठा उठा के मारता है। तो इसने वो वाकई में वही हाल करने, वो गुस्से, मतलब गुस्से में फुंकारता नहीं, वो पूरी ताकत अपनी जमा कर रहा था, एक ही बार उसने हिलाया।
0: फिर करना।
1: तो मैं बिल्कुल वैसे ही लगा हूं।
0: वाह,
1: तुम क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ?
0: नहीं, मैं फील ले रहा हूं।
1: हाँ हाँ। और उस, यानी गुस्सा जमा करता है ना इंसान पहले, कि फुल जब पावर में मुझे लगे कि अब मैं कर सकता हूं, उसने फिर हमला किया। लेकिन उस वक्त तक ना हम इतने लोग थे, और मोहल्ले की सबसे खूबसूरत बात यह होती है, अगर हम किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां पे सब अपने आपके जानने वाले हैं, तो उसमें हर बंदा आ जाता है। हाँ भाई, वो मैं आ रहा, मैं टेंशन नहीं लेनी, मैं आ रहा। मैं हैगा ना, बिल्कुल नहीं आ रहा। ओए इधर आओ, ओए इधर आओ, रहमान साहब। सारों ने आके पकड़ा उसको, बस फिर वो, क्योंकि हम काफी लोग थे तो हमने उसको मतलब कि लिटा लिया, मैं गिरा लिया नहीं कहता लफ्ज ना। फिर मैंने उसको, उसके गर्दन पे प्यार किया, उसके कान में कहा कि तुमने कुर्बान होना है अल्लाह के रास्ते में। बस कुछ ही मिनटों का सफर है, फिर मैंने तकबीर पढ़ी और
0: माशाल्लाह जबरदस्त। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए।
1: आमीन सुम्मा।
0: ये बहुत सब की कुर्बानी हो।
1: आमीन सुम्मा, आमीन सुम्मा, आमीन सुम्मा, आमीन। और यकीन करें कि आज बहुत लंबे अरसे के बाद मतलब हिलाया है किसी ने प्रॉपर मुझे ना, मतलब उसने ऐसे नहीं कि, मेरे पास वीडियो भी है उसकी।
0: अच्छा।
1: उसने प्रॉपर हिलाया ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे।
0: एक बार मैंने कहा, ऐसी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं।
1: हाँ नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं वो अपलोड कर ली। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि वो कपड़ा। हाँ। क्योंकि मैं गर्दन वाली साइड पे था, जैसी तकबीर पड़ी तो वो जितने भी खून के छींटे थे वो सारे के सारे मेरे ऊपर। उससे क्या कहते हैं उसे, मैं सारी दुनिया में लगूं कि मैं ही हूं शायद। पाए जरा इधर भी करना, इधर भी आना पाए जरा। अच्छा। हाथ पवा देना थोड़ा यार।
0: इन दिनों में ना ऐसे बंदों की फुल शार्टेज हुई होती है, शार्टेज।
1: मैंने सोचा कि क्या ये कारोबार कर सकता हूं मैं।
0: नहीं तो डे वन पे आपने प्रोजेक्ट्स नहीं उठाए
1: भाई? हम देखें, कुछ बातें बताने वाली नहीं होती।
0: ओके।
1: कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन पे टैक्स फ्री करना चाहिए हमें।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: ये ज्ञान जो हम आपकी बताएं, आप, आपका ईद का ये दूसरा दिन कैसा बीता, क्या क्या?
0: आज का मेरा सारा दिन जो है वो सो के गुजरा।
1: अच्छा, सो के गुजरा। पहले दिन आपने अपनी तमाम एफर्ट्स, मतलब इकट्ठा करने वाली गोश्त मुख्तलिफ घरों से जाकर, बैल देकर, जैसे मतलब अंदर झांक कर, ऐसे नहीं कहते पहन तो सी क्या सीगा कि एक घंटे बाद आ जाना तो मैं आ गया।
0: नहीं रहमान भाई, असल में ना अब मामलात जो है ना अपग्रेड हो चुके हैं, अब मैंने टीमें तश्कील दे दी हैं। अब टीम्स बना ली।
1: अच्छा।
0: हाँ, और ग्रो बना ली, एजेंट्स होते हैं
1: ग्रो।
0: एजेंट्स हमको कहते हैं एजेंट्स। एजेंट्स जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ जगहों पे एरियाज में जाके
1: ठीक है
0: वो फिर अपने अपने काम
1: किस बीमारी का कौन सा एजेंट है
0: गोश्त इकट्ठा करने वाले एजेंट्स
1: ठीक है
0: गोश्त इकट्ठा करने वाले
1: इस तरह के लोग ना एवं जिथे बैठा हो रहा होना उसके कोल जाके ना एवं बैठे रहने कहने तुसी आंतरां की फिक्र ना करना मैं सुटिया वांगे एक किलो गोश्त दे ली बस ना एक दो बोटी
0: यार देखें जरूरी है
1: आज बिल्कुल ऐसे ही हुआ
0: जरूरी है
1: उसकी ना क्योंकि हम सब हम खुद ही करते हैं उसकी ओजड़ी निकालना ना एक सबसे बड़ा मरहला होता है उसके पेट को मुकम्मल खोल कर और अगर जरा सी भी छुरी किसी ऐसी जगह पे चाकू किसी ऐसी जगह पे लग जाए कि वो ओजड़ी में कोई सुराख हुआ तो सारे का सारा गोश्त बर्बाद हो जाता है
0: बिल्कुल ठीक
1: उसको निकालना पहले हमने उसको राइट साइड पे लिटाया तो हमें बाबे ने कहा वहां पे बाबा जी वो पुराने लोग होते हैं ना उन्हें बड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन भी होती है और फिर वो उन्हें बताना भी होता है सही से वो इस तरह नहीं निकलना वाकई नहीं निकली वो ओजड़ी उन्होंने कहा भाई इसको पलटाना पड़ेगा पलटाना उसको काम था एक दोबारा से उसको एक तरफ हमने कोशिश कर ली थी मुकम्मल जब दोबारा राइट लेफ्ट साइड पे उसको पलटाया फिर उसकी ओजड़ी निकाली तो पीछे से दो बिल्कुल एज इट इज तुम्हारी तरह ना जैसे तुम दो लोग खड़े थे कहने पहले सानू नहीं आना मैं जो सारा कर लिया फिर आना तुम पहले क्यों नहीं तुम क्या तुम आंदा उन्होंने सेकंड में ऐसे ऐसे दो छुरियां उन्होंने लगाई और इतनी तेज कि मैं डर हूं मैं क्या भाई भाई देख के ओजड़ी ना कट दी कि सारा इतने गोश्त खराब हो जाए तो उसने ना बड़े तरीके से उसको वो किया और एक सेकंड में उसने ऐसे हाथ मारा उसने निकाला और वो ये जा वो जा और मैं क्या एक मिनट ठहर जा कलेजी और फिफड़े तो दे जा कहना पाए नहीं सारा साडा ही है मैं क्या ले जा ऐसे हुआ
0: ये भी ठीक है यार देखे ना ये फिर कुछ मुआवजा भी तो होता है ना काम का
1: है
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: ठीक है
0: आपको ना
1: ये तो तुम्हें पता ही है फिर मुआवजा कैसे लेना
0: आपको ना मैं अगर आप चाहें
1: जी जी मैं नहीं
0: चाहता मैं आपको ना मुफ्त ट्रेनिंग करवाऊंगा
1: बाकी में
0: हाँ
1: किस चीज की ये ओजड़ी निकालने की
0: कसाई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग
1: अभी हम यार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं
0: जी
1: रेडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम जरा उसको जरा एक बार उरूज और उसके जवाल तक पहुंची उरूज की बुलंदियों तक पहुंच लेने दो उरूज का तुम्हें पता है ना उसकी बुलंदियों तक पहुंच लेने दो
0: क्या बात है क्या खूबसूरत जुमला आपने जो है वो फेंका
1: इरशाद फरमाया अच्छा तो इसका ट्रेनिंग कोर्स आपके पास मतलब की है ये जो कसाई का
0: कसाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम
1: कसाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम
0: ट्रेनिंग प्रोग्राम
1: ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा मतलब पूरा तश्कील दिया है लफ्ज़
0: जी हाँ उसके अंदर आपको छोटा जानवर उससे भी छोटा जानवर
1: हाँ।
0: और सबसे बड़ा जानवर ये सब कुछ जो है ना हम आपको
1: इस बार के रेट जानजुम इतने हाई ऊंट को करने के लिए 50,000 मांग रहे थे
0: अच्छा
1: और एक वैडे को करने के लिए 30,000 से 35,000 रुपए मांग रहे थे और गोश्त अलग से मांग रहे थे लोग
0: मुझे पता है मेरी टीमें थी मैंने तो टीमें तश्कील दे के जगह जगह
1: तो मैं शर्म दिलाना चाह रहा हूं कि उनको समझाओ कि ऐसे नहीं करते होते ऐसे नहीं करते हैं
0: यार जरूरी होता है ना देखिए
1: जैसे कहा जाए वैसे करते हैं
0: अम्मी जान कहती थी
1: अम्मी
0: कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता
1: आपको लास्ट मोमेंट पे जब आप उसको ज़िबा करने वाले होते हैं आपने उसको 10 से 15 दिन से उसको चारा उसको खल उसको मुख्तलिफ तरह के लवाजमात उसको खिलाए होते हैं और फिर आपको उससे एक उनसियत हो जाती है 10 दिन के अंदर मोहब्बत हो जाती है उससे ना जानवर से एक और फिर वो आपके आने पर इंतजार करता है वो उसकी एक झलक से आपको 10 दिन के अंदर ये पता चल जाता है कि उसको पानी की प्यास है इस वक्त या खाना चाहिए उसको और फिर ऐसे मौके पर वो आखिरी लम्हा जब आप छुरी वो तेज की हुई छुरी है उसके बिल्कुल गर्दन के ऊपर रखते हैं तो तब कलेजा अंदर से एकदम ना वो आवाज देता है तो वो उस वक्त वो मतलब हजरत इब्राहिम का वो सब्र याद आता है कि ये तो एक मेरा वो दुम्बा है जिसको 10 दिन पहले मैंने लिया वो जिस बच्चे को खुद पाल कर पैदा करके बड़ा किया और फिर उससे ये सुन्नत हम तक पहुंचाई तो वो जो हालत थी ना वो एक और फिर उसको जिस तरह से हमने लिटाया है इतने लोग उसको जबरदस्ती उसको वो नहीं लेटने की कोशिश कर रहा होता
0: डेफिनेटली
1: बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको, मैंने शुरुआत में ना सोचा कि मैं इसके कान में बोलूं और ये खुद ही लेट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मतलब कि हम इतने लोग और वो अकेला,
0: तो नहीं आप उस इतने भी जेन्युइन अफरीत नहीं
1: उस है। लम्हे हाँ
0: क्या आप कान में बोलने के
1: पहले ये मैंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी, लोग क्या कहेंगे कि ये अफरीत, कहते थे कि ये अफरीत है और ये उसके कान में कह के उसको लिटा ही नहीं पाया।
0: वैसे एक और भी सुन्नत इब्राहिमी होती है, पता है आपको, बीवी को रेगिस्तान में छोड़ के आना।
1: हाँ, तपते हुए रेगिस्तान में जहां पे पानी का कोई नामो निशान नहीं है।
0: ये बात मैंने कल अपनी वाइफ से कही।
1: पता नहीं किस तरह से आप मौत को छू के टक से वापस कैसे आ जाते हैं, मैं हैरान हूं है ना? कि किस तरह से आप आज मेरे सामने विराजमान हैं, आप हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं,
0: आपको क्या पता मेरे कहां पे दर्दें उठ रही हैं। ये तो मैं हूं जो मैं
1: ना जानता कोई पट्टी का, अच्छा ये बड़ा महारत का काम है कि पट्टी भी ना हो और दर्द भी मुकम्मल आए।
0: हां जी,
1: ये बीवी के पास ही है।
0: जी हां।
1: तो मैं ये बता रहा था कि उस लम्हे वो जो उसकी आंखों में मतलब आंसू, उससे दो दिन पहले से आंसू बह रहे हैं।
0: अच्छा,
1: यानी कि बाकायदा वाकई में आंसू बह रहे हैं। तो इस चीज को महसूस करना ना कि अब ये जाने वाला है एक दिन के अंदर दो दिन के अंदर, वो एक अलग तरह का एहसास है। तो ये एहसास दिलाता है कि कुर्बानी अपने सबसे, वो जो 10 दिन पहले आपने खरीदा है उससे इतनी उनसियत है, तो बच्चे के साथ कितनी उनसियत है।
0: बिल्कुल ठीक बात।
1: इस चीज को सोचते हुए बहुत सारे ख्यालात आते हैं जहन में। बहरहाल अभी मैं गोश्त भी उसका खा के यार नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए यार, एकदम से उनको रुलाया फिर मैंने पलटाया, ये गलत है। बहुत लजीज था उसका गोश्त, बहुत लजीज था।
0: क्या बात है, क्या बात है जी। और हमारे साथ अदील भाई भी आ चुके हैं।
1: अदील भाई वेलकम,
0: क्या आपको बात है। अदील भाई की तो क्या ही बात है, कैसे कर लेते हैं यार, कैसे कर लेते हैं
1: वो, ऐसे ऐसे है, वो बता रहे हैं हाथ के इशारे से। ध्यानजुम क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं होता, तुम्हें नहीं करूंगा मैं, तुम रो के मत दिखाओ कि मेरे साथ भी ऐसे करेगा। नहीं। कहाँ रह गए हैं ये डॉग्स, कहाँ रह गए हैं डॉग्स?
0: आएंगे
1: आएंगे,
0: मेरे डॉग्स आएंगे। अच्छा। धरती का सीना फाड़ के आएंगे,
1: फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे।
0: हाँ, मेरे डॉग्स आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे।
1: ठीक है।
0: अच्छा जी, फिजा राजपूत हैं। फिजा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। बहुत सारे दोस्त इस वक्त फेसबुक पे हमें मैसेजेस कर रहे हैं। रियाज भट्टी कहते हैं ईद उल अज़हा मुबारक, खुश रहें, खुशियां बांटें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मरीना बिलाल कहती हैं, जया आपने खुद ही कुर्बानी की है या कसाई को बुलाया था? लड़कों का हिडन टैलेंट होता है ये भी।
1: हाँ
0: अच्छा, वैसे हम लोग कसाई बुलाते हैं।
1: हाँ ठीक है,
0: बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है वो।
1: मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि अगर आपको इस चीज में स्किल नहीं है, अगर आपको महारत नहीं है, तो आप ट्राई ना करें।
0: हाँ।
1: क्योंकि लेने के देने भी पड़ सकते
0: हैं। नहीं, गोश्त खराब कर देंगे।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: बोटियां गोश्त
1: नहीं, वो मैं नहीं करता। वो शुरुआत में जो है ना, वो कुछ मतलब कि स्किल्ड वर्कर
0: है, वो हड्डियों की किर्चियां भी आ रही होती हैं। नहीं, कुछ, नहीं, कुछ नहीं। जगहों से ना गोश्त आता है जब, तो फिर बंदा कहता है हुन एदा की करना है, जेहो जेहो गोश्त आया।
1: हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता
0: होता है ना, ऐसे
1: ऐसा हो जाता है,
0: बिल्कुल ऐसे होता है।
1: लेकिन वक्त के साथ साथ ना फिर उसके बारे में पता चल जाता है, जब कसाईयों से ट्रेनिंग ली जाए ना, तुम्हें तो पता है फिर, तुम तो फिर इसका प्रोग्राम भी चला रहे
0: है ना, बस क्या करें, करना पड़ता है, जरूरी है। अमर उमेश कुमार हैं, कहते हैं कि बकरा ईद मुबारक, दूसरा दिन कबूल और बहुत सारी दुआएं सलाम और सारी चीजें कहते हैं अमर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिजा राजपूत कहती हैं, जिया कसाई रहमान कसाई।
1: अरे क्या रहमान,
0: ठीक है, वो एक डायलॉग भी है
1: क्या
0: रहमान का ना।
1: हाँ क्या,
0: रहमान बलोच का एक डायलॉग है।
1: अच्छा, बलोच तो है,
0: है ना।
1: हाँ क्या है बताओ।
0: रहमान बलोच की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। सुना है आपने डायलॉग, है ना,
1: मेरा ही तो डायलॉग
0: है ना, रहमान बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं यहाँ पे इस वक्त।
1: वैसे वाकई सही बात है ना, आज के लिहाज से सही है, वाकई कसाई नुमाई थी। कहाँ से निकाल लाते हो तुम ये बातें,
0: सामने पड़ी होती हैं, बस चुननी होती है। आरजे यू नो टॉप ऑफ द टॉप आरजे जरूरी है
1: होना है।
0: आरजे डॉक्स यकीनन हमें आते हुए गाड़ी में सुन रहे होंगे, आपसे गुजारिश है कि आ जाएं,
1: आ जाएं।
0: क्योंकि आप आएंगे तो फिर आएंगे तो फिर कुछ होगा ना।
1: हाँ सही बात,
0: कब तक मैं और रहमान एक दूसरे का चेहरा यूं ही देखते रहेंगे।
1: मैं तो तुम्हारे आंखों में देखते हुए जिंदगी बिता सकता हूँ।
0: झूठा जिया ना मैं,
1: वाकई गल सही है, मैं वाकई झूठा हूँ।
0: ओके एक गाना लगाते हैं।
1: लगाओ यार प्ले करो।
0: गाना लगाएं या कॉल उठाएं?
1: नहीं गाना एक प्ले करो उसके बाद कॉल, उस वक्त तक शायद डॉग्स आ भी जाएं।
0: ओके एक गाना प्ले करते हैं। कौन सा गाना प्ले करें? आजकल आपके बड़े पसंदीदा कुछ गाने चल रहे हैं।
1: हाँ यार कुछ प्ले।
0: केड़ा केड़ा?
1: उनमें से ही वो जो हमने
0: उस दिन सुने।
1: हाँ सोचा था
0: कौन से वाला?
1: कोई भी कोई भी, वो सारे ट्रैक्स दरअसल ना बड़े कमाल हैं। उसमें से मैं देखना चाहता हूँ ज़िया का फेवरेट कौन सा वाला है। बाय द वे आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं 4471 पे, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम अपना पैगाम और उसे भेज दीजिए 4471 पर। इस ट्रैक के उस पार आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421100101, हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर। अभी ज़िया ट्रैक की जानब लेके जा रहे हैं।

0: ओके जी, वेलकम बैक। 10:00 कितने मिनट हो गए हैं? 57 मिनट हो गए हैं। 1 घंटा तकरीबन गुजर चुका है।
1: अरे वाह,
0: रहमान साहब आपको हम वेलकम कहते हैं।
1: अरे थैंक।
0: और आपके पीछे पीछे एक और जो शख्सियत आन पहुंची है शीशे के उस पार से, जो देख रही है, आरजे डॉक्स आ गए हैं।
1: आ गए हैं, दुआ रंग ले आई। आ गए, आ गए। आ जा, आ गया।
0: बिल्कुल ठीक हो गया। आन दे जरा उन्होंने दसना मैं तानू।
1: अच्छा अच्छा, उन्होंने आन दिया, मैंने क्यों दसना, मैं की किता यार। इसके कुछ ही देर के बाद हमें न्यूज बुलेटिन की जाने बढ़ना होगा, ऐसे ही ध्यान जो।
0: नहीं नहीं
1: हाँ
0: नहीं नहीं
1: हाँ
0: वाकई
1: हाँ।
0: अच्छा, वो 12 से 2 का कर करके ना इतनी आदत
1: हाँ, आदत हो गई है कि अब लगता है कि 1 बजे हमने कोई खबरें तो प्ले करनी नहीं।
0: हाँ। हाँ।
1: लेकिन ये जो वक्त है ना, ये 11 बजे का वक्त है, और भाईजन वो हैं जो नहीं हमें करनी है।
0: हम दो मिनट हैं अभी।
1: यस,
0: और 2 मिनट में हम इंशाल्लाह
1: प्रोग्राम खत्म कर देंगे ना। अरे जबरदस्त, ये गलत बात है, वाकई में सही बात कि ये गलत कह रहे हैं।
0: बाहर कॉफी वाला कप है जी,
1: जैसे व्लॉगर नहीं आ रहा होता कैमरा लेकर। हाँ अच्छा, उधर को मुंह करके कर रहे हैं बातें आपस में, इतने रहना नहीं है फिर। अच्छा हाँ चलता रहता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक नहीं किया है ना। आज YouTube पे लाइव नहीं गए ना तुम? न्यूज बुलेटिन का टाइम है। ओके
0: जी, हमें न्यूज बुलेटिन की तरफ जाना होगा। 11 बज गए हैं।
1: ओके
0: 11
1: वापस आते हैं न्यूज बुलेटिन के बाद, फिर मजा आएगा।
2: 11 दे नाल 11 बज गए।
3: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। 1998 में आज के दिन पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात की याद में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने मुख्तलिफ शुबों में दोतरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया है। आज मुल्क भर में ईद उल अजहा की दूसरे दिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। और डबलिन में खवातीन की सह मुल्की T20 बैन अल-अक़वामी सीरीज के पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने आयरलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील। 1998 में आज ही के रोज मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले एटमी तजुर्बात की याद में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है।
4: दिस इज FM 101.1।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
7: Radio. 101 FM.
8: Be extra careful.
9: Rangi.

0: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वक्त हो चुका है 11:02, और सिर्फ 2 मिनट लेट हूँ मैं अपने टाइम से, और एक घंटा 2 मिनट पहले आ चुके थे दोनों हजरात। एंड यू आर लिसनिंग गीत स्पेशल विद आरजे डॉक्स एंड आरजे रहमान अनवर एंड ज़िया अंजुमन, टॉप ऑफ द टॉप आरजे। और हमारे एक वो आरजे हैं जो पहले आसमान पे रहते हैं, उन्हें बड़ी रिक्वेस्ट करके ईद उल अज़हा पे लाते हैं ज़मीन पर, और इसके अलावा अपने शोज़ के दिनों में ये तशरीफ़ लाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा फ्लाई कर जाते हैं। मैं अक्सर इन्हें आते जाते देखता रहता हूँ और इन्हें देख के हैरान होता हूँ, कहते बस तो मेरी आणियाँ जानियाँ मैं आणियाँ जानियाँ देखता रहना, लोग की समझते कोई सितारा टूट के आ रहा है
1: क्या,
0: और वो सितारा पहुँचते पहुँचते अपने ही आग में जल जाता है।
1: वैसे थोड़ा सा आपको तशनगी तो होती होगी, एकदम से तजस्सुस तो होता होगा कि यार ये क्या है, क्या वाकई में ये कुछ अजीब सा है, कुछ अलग सा है, कुछ ऐसा है जो हमने कभी इससे पहले इमेजिन नहीं किया था, एक्सपीरियंस नहीं किया था। अच्छा लगता है ऐसा लोगों के जहन में रह जाना।
2: मेरे जहन में ना बड़ी कोई अच्छी अच्छी बातें आ रही
1: है ना। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो। तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम्हारे जहन में कभी अच्छी बातें आ ही नहीं सकती।
2: नहीं आ सकती हैं।
1: इनके लिए आ सकती है, मेरे लिए नहीं आ सकती।
2: अच्छी और अदबी बातें।
1: अदबी बातें।
2: हाँ, अदबी।
1: अच्छा
0: अच्छा, मैं सुन रहा था आपने ईद पे कट्टा किया, ओ जाकर किया, और फिर सारा खून आपके ऊपर, और
1: फिर उसके बाद लोगों ने नहीं, वाकई में पूरे कपड़े मेरे खून से आलूदा हो गए थे।
0: कोई बात नहीं। और कवल
1: राक्षस
0: बिनते हवा कह रही है आज मैंने बर्तन धोए, मैंने झाड़ू लगाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
1: वाह वाह,
0: आपने टाट लगाया घर में?
1: यस यस यस।
0: आपने वाइपर?
2: मैं एसी की सर्विस करके आ रहा हूँ,
0: एसी की।
1: अरे ये
0: तो ये कौन सी नई बात है जो आपने की है? बर्तन तो मतलब रूटीन का मैटर है, मैंने खाने हैं, मैंने खुद ही अपने बर्तन धोने हैं, नहीं धोऊंगा तो मेरी माँ मुझे धोएगी तो वो तो धोने पड़ते हैं।
2: हमारी बेगमा धोती हैं।
1: अरे
0: धोती है ना, अब वो ट्रेंड बदल चुका है ना, अब वो कहती है तू डन अब रोटी तू खा दी तेरे बर्तन मैं तो
1: चल शाबाश
0: चल बर्तन तो
1: इस तरह ही है सही।
0: और कवल नाज ने सलाम किया, आपको तीनों को सलाम कह रही है।
1: वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच कवल। वालेकुम
2: सलाम,
0: चले मेहरबानी। कैसे हैं आप आरजे रहमान और ज़िया अंजुम?
1: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
0: और आपने ईद पे कौन से कपड़े पहने थे? मैं दिखाता हूँ अभी आपको इनके ईद ड्रेस दिखाता हूँ।
1: नहीं अब तो हम इस हालत
0: में हैं। वालेकुम सलाम, एनर्जी लेवल इज हाई, रोशनी रोशनी, क्या बात है। आरजे डॉक्स, आरजे रहमान एंड ज़िया अंजुमन, ईद मुबारक। यार आपको अंजुमन बोला जाने लग पड़ा।
1: खैर मुबारक,
2: बस क्या करें, कभी गरूर ही नहीं किया।
0: गौर करना भी नहीं चाहिए, गौर करना बुरी बात होती है।
1: गरूर पाएं, नहीं पाए ना, गरूर कह रहे हो।
0: ओ ये गौर,
1: नहीं नहीं पाए ना, गरूर कह रहे हो।
0: बंदा गौर करे तो
1: नहीं पाए ना, गौर करने वाला है बंदा, गौर करता है।
2: ओ माय गॉड,
0: माजबीन आई है, इस्लाम किया, वालेकुम सलाम। भैया दोनों के एनर्जी लेवल जो है ना थोड़ा डाउन है, मेरा ख्याल है आज ये दोनों के एनर्जी लेवल है में डाउन है, जिम्मे कल इन्हों की कुर्बानी होनी है। आपस बह के दोवें ले लगे ने यार, फिर कल पहले तू जाएंगे मैं फिर कहना अच्छा चले तो जाना ही है यार, तू जा या मैं जा, मैं नहीं, तुम्हें कुर्बान होते नहीं मैं देख सकता।
2: इसको तो पिस्तौलें भी नजर आ रही हैं।
1: पिस्तौलें
0: तो पहले लेटे लगा देंगे, क्यों थोड़ा नशे में रहना ना, पता नहीं चलेगा।
1: कितनी मजाली बातें
0: कर रहे हैं। मैं रहमान अनवर की हालत लेलो वाली क्यों हुई है?
1: नहीं सच में, एक तो कल रात प्रोग्राम करने के बाद मैं पहुंचा तकरीबन कोई 3:30-4 बजे घर, और फिर उसके बाद मैं बस लेट यहाँ पे बैठे रहे कुछ देर के लिए।
0: किसके पास?
1: अकेला यहाँ पे बैठे,
0: वो तो बोल अकेले रहे थे, आप किसके पास बैठे?
1: कौन बोला था अकेले?
0: वसीम साहब।
1: अच्छा नहीं, मैं तकरीबन यहाँ से निकला हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करता हुआ गया हूँ।
0: कॉल भी आती है? अभी
2: आती हैं।
1: क्या
2: होती है? साहब को
1: क्या क्या होती है?
0: पैकेज कॉल्स, पैकेज कॉल।
1: नहीं नहीं, वो बस बहुत तरसा गुजर गया।
0: अच्छा वाईफाई पे डायरेक्ट पैकेज के बगैर ही काम चला।
2: इनको मिस कॉल आती है, कॉल ये फिर खुद करते हैं।
0: नवाल नजीर ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओ यार हर बारी नुमान नजीर बोल जाता हूँ, लाडो रानी है और नुमान नजीर के आईडी से करती है मुल्तान से। आज ज़िया भाई
2: आपको याद है वैसे लाडो से? मुझे याद आया कि जब पीटीवी पुराना दौर हुआ करता था तो ईद के मौके पे ना इश्तिहार चलते होते थे लाडो साबुन बनाने वालों की तरफ से, तमाम तमाम अहले वतन को ईद मुबारक।
0: लाडो के लश्कारे दुश्मन सड़ जान सारे।
1: वाह,
0: एनीवेज आप सुन रहे हैं जी एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से, मैं हूं आरजे डॉक्स और मेरे साथ हैं ज़ियान जुमर रहमान अनवर, और बड़े अरसे के बाद हम तीनों इधर लाइव हुए, बट आई वंडर यहां पे पोस्ट सिर्फ मेरी क्यों है, हम तीनों वाली फोटो
2: लग चुकी हुई थी तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात
0: नहीं यार बदल देते हैं ना। एनीवेज आप हमें कॉल कर सकते हैं 0422111001 0042110001001, और इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है और अगर आपको गिला रहता है कि कॉल नहीं मिलती, आप हमें पैगाम भेजें, मैसेज करें, और मैसेज करने के बाद आप उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी, और ईद वाले दिन अगर आपकी शादी नहीं हुई तो किसके ख्यालों में आप खोए रहे, और किसको सुबह उठ के आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो भेजी है, किसकी फ़ोटो का इंतज़ार किया, और किससे लड़ाई की, झगड़ा किया, और अगर शादी हुई है तो फिर कैसी गुजरी ईद आपकी, जो भी वट एवर यू गाइस वर फीलिंग यू कैन शेयर इट विद अस एंड उसके लिए आपने अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना 4471 पर। अब की हो गया दोमन?
1: नहीं नहीं कुछ भी नहीं, हम आपकी ये जो इतनी खूबसूरती से आप लोगों को मैसेजेस के तरीके बता रहे थे उसमें खो गए थे।
2: आरजी हो ना इस वजह से बात घुमा दी।
0: सुनाए फिर कैसी रही आपकी?
1: सुनाए वाह वाह क्या लफ्ज है यार, ये अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुजरी, बस थकावट से इस वक्त बदन चूर है और कुछ जगह से डैमेज भी है।
0: सिचुएशन में दे रहा हूँ आप दोनों को।
1: हाँ
0: और कोई प्री प्लान नहीं, ऐसे जेन में आया मेरे ना।
1: हाँ सही है।
0: ईद से कुछ चंद दिन पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, इत्तफाक हुआ मुझे वल्ला एक वीडियो देखने का एक, और उसमें मैं काफ़ी वीडियो को देखने के बाद महसूस हुआ, और उसका जो भी सियाक व सबाक था वो तो था ही था, वो तो आप बताएंगे। उसमें दो बकरे,
1: ठीक है,
0: एक बैल है, गाड़ी के पीछे है,
1: गाड़ी के पीछे
0: लोडर के पीछे आगे एक बैल चला रहा है उसे लोडर को, वो आपस में गप्पे लगाते जा रहे हैं, वहां से एक बाइक गुजरती है, बाइक पे आगे बैल बैठा है, बैल के पीछे एक इंसान बैठा है, इंसान को उसने रस्सियों से बांधा हुआ है, और वो जब लोडर के पास से गुजरता है लोडर वाले पूछते हैं कितने का लिया इंसान।
1: वाह वाह वाह
0: वाह, वो कहता है 2 लाख का कह रहे थे 1.5 का लाया
1: हूं।
0: तो लोडर में से एक बकरा बोलता है एक बात कहूं तुझे, कहता अब ये ना कहना महंगा ले आया है।
2: वाह,
0: कहता नहीं महंगा नहीं लेकिन बहरहाल मार्केट में और भी सस्ते मिल जाते हैं।
1: हाँ।
0: तो वो जो खरीद के लाया होता है कहता तुम्हें नहीं पता इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आजकल इस तरह के, मार्केट में बहुत सारी बीमारियां आजकल इंसानों में आई हैं, शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है, और ये 1.5 लाख का मुझे क्यों मिला?
2: साफ सुथरा इंसान। हाँ।
1: दागी नहीं है ये।
0: उसने कहा अपेरेंटली दागी नहीं है, वैसे ही से बहुत सारे मैदे के मसाइल हैं जिसकी वजह से मुझे 1.5 लाख का मिला है।
1: ठीक है,
0: अब सिचुएशन ये है कि अगर हम रिवर्स इसी कंडीशन में चले जाएं तो क्या फील होगी आपको? हाँ। अगर कोई बैल चेक करने आएगा तो किस पैरामीटर पे चेक करेगा कि आपकी कुर्बानी वैलिड है कि नहीं?
2: सबसे पहले तो सालम आप बताएंगे।
1: अच्छा पहले तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि बैल के सामने मैं आराम से ही उसे कह दूंगा पाए ना लो देख लो इथे ही करना है कि ले जाना। जिस तरह बीन सिक्खी होंगी ना बीन बजाता तो एनाकोंडा बार आ जाता तो वो कहता कि हम इतें ही खाना है कि लैके जाना। उसके सामने तो मेरी क्या वक्त है क्या वजूद है?
2: वैसे आपको देख के सोच रहा हूँ कि मैं कैसे चेक करूंगा ये खीरा है दोंदा है।
0: आप इमेजिन करें आप बैल हैं आप इंसान खरीदने।
2: हाँ मैं मतलब कैसे चेक करूंगा मतलब
1: कैसे चेक? नहीं बता ना अपने दिल के ख्याल बता।
2: जैसे खीरे के सारे दांत इज इक्वल टू होते हैं है ना?
1: है ए ए आ ठीक है।
0: आप कैसे चाहेंगे आपको इवैल्यूएट
1: 32 पूरे हैं कि नहीं?
0: आप बताएं कैसे चाहेंगे।
1: अच्छा वैसे इस बारे में ना ये थोड़ा सा सीरियस कॉन्सेप्ट भी है ना?
0: है सीरियस कॉन्सेप्ट है।
1: हाँ।
0: इसके बहरहाल वो अलहदा चीज है।
1: नहीं ये थोड़ा सा सीरियस है मेरे नजदीक ना कि पहले उसने। हाँ
2: यार देखो आप जैसे इंसान को कभी कोई कुछ भी नहीं देता।
1: कुछ नहीं देता
2: उन्होंने सिचुएशन दे दी आपको। तो आप अपने आप को ना फीलिंग ब्लेस्ड।
1: ज्ञान जो मजाक कर रहे हैं, जुगत मार रहे हैं, वाओ,
2: मतलब देखो
1: कुछ भी नहीं देता कभी। हाँ,
2: कोई कुछ नहीं देता है, महरूम तरीन इंसान हो।
1: यानी कि वो अंडों वाला जब बाहर आता है वो कहता है गरम अंडे ले लो, गरम अंडे ले लो, तो मैं कहना क्यों सानू एहसास महरूमी का शिकार बनाना नहीं ले सकते असि भराओं के बीच। इस तरह ये वाली एहसास महरूमी की बात कर रहे हैं।
2: बिल्कुल
1: हाँ,
0: बताए ना।
1: नहीं, ये पहले इससे पूछा जाए, मुझे इससे पहले पूछा जाए, ये जो कह रहा है ना इसके दिल में ख्याल आता है,
0: सोचें उस कैसे कैसे लेते हैं हम ना
1: ऐसी पराओं के बीच। इस तरह ये वाली एहसास महरूमी की बात कर रहे हैं।
2: बिल्कुल
1: हाँ,
0: बताए ना।
1: नहीं, ये पहले इससे पूछा जाए, मुझे

0: नहीं अगर आप कहना चाहो यार हमको मुंह पे काट दिया।
1: वो तो मैं वैसे ही कह देता हूँ।
0: चले शुक्र है आप आ गए सर।
1: हाँ नहीं यकीन करे मैं आ गया,
0: वरना आपके आने से पहले ऐसे मैंने बंद कर दिया था और मजीद बंद रहता।
1: नहीं क्यों आपने बंद कर दिया था, मेरे दो प्यारे प्यारे से भाई थे आपके साथ।
0: आपके लिए होंगे सर, मेरे लिए नहीं।
1: नहीं ये तो अंसारी साहब ये तो सरासर आप गलत बात कर रहे हैं।
0: नहीं नहीं सर इनमें से एक साहब ने
1: नहीं छोड़ दें यार, छोड़ दें आप नहीं अंसारी साहब ऐसे ना करें। जब मैं कह रहा हूँ ना प्यारे भाई हैं तो आप भी प्यारा ही कहें, आप भी प्यारा ही।
2: वेट अ सेकंड, मुझे ये जानना है कि ये क्या कह रहे हैं
1: आप भी प्यारे
2: जी। अंसारी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप?
0: मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ एक माशाल्लाह रहमान अनवर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आवाज और ये ना चाहते हुए
2: ये हमारे वन की बड़ी खूबसूरत तरीन आवाज है, तो आपने इनको इज्जत और एहतराम के साथ बात करनी है हम सब के साथ।
0: नहीं नहीं नहीं जब उन्होंने मुझे
2: ये कॉल डिस्कनेक्ट कर दें आप डॉक्स, थैंक यू वेरी मच।
1: यार ईद का दिन है,
3: गिले शिकवे बाद में होते रहेंगे,
1: आप एंजॉय करें अंसारी साहब या कोई भी है। 100 बंदों को मेरे से भी मसाइल होंगे, 100 बंदों को हर किसी से मसाइल होते, लेकिन यहाँ पे बैठ के जब आप चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं ना 100 चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। सो दिस इज़ नथिंग अबाउट यू, नथिंग अबाउट मी, हम यहाँ पे यकीन करें आते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए और आप लोगों से गपशप लगाते हैं। अपना भी होता है, बिल्कुल होता है, हमारा भी उसमें थरक तो होता है, वी ऑल्सो इन्जॉय योर कंपनी। तो बाहैसियत इंसान 100 चीज़ें अगर आपसे ऊपर नीचे होती हैं तो यहाँ पे बैठे आरजे से भी हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप आरजे को ही वैल्यूएट करें। तो मैं तो मीरदाद की वो बात कहूँगा कि एक लम्हे में एक शख्स आपको बुरा लगता है, उसी लम्हे में किसी दूसरे को अच्छा लग रहा है।
2: बिल्कुल सही,
1: मतलब है एक ही लम्हे में कोई एक शख्स अच्छा और बुरा एक साथ नहीं हो सकता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मशहूर आज क्या हाल है आपके?
1: जी ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू वेरी मच। सिद्दीकदार साहब आप आए हैं, आयशा सुल्तान हैं, माला मुगल हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग जी। कौन है हमारे साथ?
0: अहमद रजा बात कर रहा हूं सुल्तान से।
1: अहमद रजा साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है, लेकिन गर्मी ने मजे करवाए हुए हैं।
1: मैं कह रहा हूँ बड़ा मजा आता है, नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, पसीना खुद ही आके पानी का काम करता है।
0: बस यार क्या करें,
1: वैसे गर्मी में नहाने का फायदा भी कोई नहीं होता, फिर पसीना आ जाता
2: है। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें,
1: फिर पसीना आ जाता
0: है। आपकी बात एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ,
1: है ना? नहीं आप एक ही ना करें, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं तो नेच भी ना लेना, मेनू गर्मी बहुत ही लगे है लंग दे हुए।
0: ये आप साथ कौन है?
1: मेरे साथ डॉक्टर ज़िया अंजुम है और हकीम रहमान अनवर।
2: अरे क्या नाम दिया आपने, थैंक यू थैंक यू। कहते हैं हकीम रहमान अनवर और डॉक्टर ज़िया अंजुम
1: अल हकीम। आप से हालचाल पूछ रहे हैं, जवाब दे।
2: कैसे मिजाज है आपके अहमद साहब, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं?
1: नीचे से आवाज।
0: अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। आप सुना, ईद की आपको मुबारक हो।
1: कम करो, ज्यादा करो।
2: फुल कर दिए, फुल कर दिए आवाज।
0: ये क्या बात कर रहे हैं, मुझसे तो बात करें।
2: जी जी आपसे ही बात कर रहे हैं जनाब, कैसे मिजाज है आपके, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? ईद का ये जो दूसरा दिन है ये आपका किस तरह से बीता है, क्या आपको बताना क्या चाहते हैं आप, ईद के हवाले से खुशियां कैसे मना रहे हैं आप?
0: मैं से मना रहा हूँ, आज चावल खाए बड़े गोश्त वाले और दावत चल रही है अभी, तो कल एक तरफ से थी दूसरी तरफ से दावत थी,
2: ठीक है, जबरदस्त
0: ऐसे गुजारा कर किया। लेकिन इसका काम देना चाहूंगा, आजकल जो ट्रेन चला हुआ है ना फ्रीजर भरने का, प्लीज मैं लोगों को लिस्नर को कहूंगा कि फ्रीजर न भरे गोश्त का क्लीन करें, क्लीन करने से माल में इजाफा होता है। जो लोग तकसीम नहीं करते उन लोगों के रिस्क के हालात में बरकत नहीं पड़ती, बड़ा मुझे इस बात का दुख होता है जो लोग किसी गरीब को गोश्त नहीं देते, बड़ा दुख होता है। लिहाजा इन लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के काम आए और गोश्त तकसीम करें, खुद भी खाएं और बाकी लोगों को भी खिलाएं, क्योंकि हम तो चलो अमीर लोग हैं ना, हम तो साल में कई दफा बड़ा गोश्त खा लेते हैं, वो गरीब लोग होते हैं जो कि साल में एक दफा गोश्त खाते, वो भी पता नहीं मिलता है।

0: थैंक यू वेरी मच, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया, सलामत रहें, आबाद रहें, आपकी कॉल का बेहद शुक्रिया।
1: आप भी खुश रहे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। और आज का मुझे नाम नहीं आता,
2: ज़ियान जो
1: आज का नाम बड़ा सुना, जो आपके साथ बैठे हुए आरजे,
0: मेरे साथ बैठे हैं आरजे डॉक्स 101 का फेस है, पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज है। हमारे साथ दूसरे आरजे हैं, आरजे ज़ियान जुम, और इस वक्त जो आपसे बात कर रहा है इसका नाम रहमान अनवर।
1: अच्छा, आप तीन मौजूद है मेरे साथ,
0: क्या कह रहे हैं
1: आप तीनों हमारे साथ मौजूद है?
0: बिल्कुल, हम तीनों आपके साथ मौजूद है।
1: एक फरमाइश है, नाराज नहीं होंगे, एक फरमाइश है।
0: जी जी, फरमाइश बताएं, क्या फरमाइश है?
1: अपनी इन तीनों में से फैसला कर ले, अपनी आवाज में कोई भी खूबसूरत गाना सुना दे,
0: अपनी आवाज में
2: हकीम साहब सुना।
0: चलें, कोशिश करेंगे, आपकी फरमाइश नोट कर ली है और हम अपनी मैनेजमेंट से इसके बारे में पूछेंगे कि क्या गाने के बाद वो हमको यहाँ पे बोलने की इजाजत दे पाएंगे, क्या उनके अंदर इतना सब्र है, क्या उनके अंदर इतनी सकत है कि वो इस आवाज की ताब ला सके, फिर उसके बाद हम करेंगे।
2: आज जाने की जिद ना करो कि गुनगुनाइए ना। सर आप यहीं पे रुकिए, अभी देखें हम अपना हकीम साहब की आवाज में आपको
0: सुनाते हैं। मशहूर कर देना हकीम साहब, लोगों ने हमें कही जाना यार हिकमत तो तू कर रही है, सानू भी कर दे यार।
2: अभी आपको सुनाते हैं, अभी सुनाते हैं जी, यहीं पे रुकिएगा जी। थैंक यू वेरी मच,
1: खुश रहे।
0: तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुझे, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम, जाने जा बात इतनी मेरी मान लो। मेरे सुर सारे खराब करते तुसी। आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
2: आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके,
0: मिलके या सुन के। आप
3: इसी वजह से मैं रेडियो पे गाने नहीं गाता
0: है ना। नहीं, मैं ये चाहता हूँ इसके बाद कोई फरमाइश ना करे, इसलिए मैंने गुनगुना दिया, लोग मुझसे कभी ना कहें।
3: अच्छे इंसान है आप, नाइस टू मीट यू,
0: अच्छा
3: लगा आपसे मिल।
0: ये तुम्हारे मुंह से अगर अप्रिसिएशन मिल जाती है ना तो मेरा दिन बर्बाद हो जाता। जी डॉक्टर,
2: ये जो आउटफिट है आपका, इसको प्लीज जरा बताएं, रेटिंग करें कोई।
0: ये क्या यार, एकदम बम भी फोड़े है यार, इतना बुरा तू लग रहा है, मैं तुझे बता भी चुका हूँ, लेकिन यार नहीं नहीं आउटफिट के बारे में
3: मुझे बताने दो। ये लेविस की पैंट है।
2: लेविस,
0: लेविस तुम जुड़ो छोटा मोटा ब्रांड तो तुम लेते नहीं,
3: मैंने वैसी शॉपर में डाल ली थी।
0: उन्होंने कहा था कि पैंट के साथ एक शर्ट फ्री है, जो तुम्हें अच्छा लगता है डाल।
3: वो मैंने वैसे ही डाल ली थी।
0: अच्छा,
3: रश ज्यादा था, उसको पता नहीं चला।
0: चोरी की तुमने, तुम चोर हो?
3: चोरी नहीं, इसको कहते हैं कि वैसे ही मतलब ना
0: आला ज़र्फी।
2: स्मार्ट बॉय। और रहमान अनवर, अब आप अपने दया करें
0: जी। दरअसल ये एक ऐसी शर्ट है जो मुझे पता नहीं है कि ये कितने की है, क्योंकि ये मैंने अपनी कभी खरीद के तो पहनी नहीं है।
2: ये वो रेडी पे नहीं आजकल लगी होती, 50-50 रुपए वाले संडे बाजार।
0: संडे बाजार अच्छा, ये ना कुछ डबल कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं, उस दिन को भी कह रहे हैं, ये पंजाबी में भी कह रहे हैं और इंग्लिश में भी कह रहे हैं एक साथ। अच्छा, ये जो शर्ट है ना, ये मुझे ब्रांड का नहीं पता, लेकिन ये 750 की शर्ट है।
3: ओ भाई, ऐसी बात ना करो, मुझे आपने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों के घरों की छत सारों की मिलती है, ऊपर किसी ने सुखने डाली।
0: लेकिन मैंने ये लेकिन मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि ये हमारी पर्सनल टॉक्स होती है, इनको हमने डिस्कवर नहीं करना।
3: 101 भी तो एक फैमिली है ना, तो फैमिली में तो आप इस तरह की बात।
0: लेकिन हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स में से कई कईयों की छतें मेरे छत के साथ मिलती हो, तो फिर वो
3: नहीं, वो और हैं। वो लोग नहीं सुनते।
0: 750 की शर्ट है जी, मैं नहीं इसको बोलने दूंगा। और पेंट जो है वो 3500 रुपए की पेंट।
2: और
3: ना कर।
0: और जो जूते, अच्छा जूते का तो बताया नहीं तूने, जूते का भी बताना।
2: जूता दिखाए
0: ये सिंपल एक,
2: ये कितने का है?
0: ये 3500 रुपए का है।
2: कितने का लिया भाई, कहाँ से लिया भाई?
0: कराची में चले गए यार। हाँ,
2: कहाँ से लेके आए?
0: ये हम पता नहीं कहाँ से, किसी ब्रांड से लेके आए।
2: हाँ दिखाओ जी,
3: ये देखें, ये मैंने सैंडल पहने हुए हैं, बड़े जबरदस्त। और ये
2: बिल्कुल मेरे तो बहुत अच्छे लिए हुए हैं, कहाँ से लेके आए हो?
3: ये जो पिछला जुमा गुजरा था तो मैं प्लास्कट की जूती पहन के गया था तो वहां भी फिर जब जुमा चल रहा था
2: तुम अभी भी नहीं बदले उसी तरह के,
0: उसी तरह से
3: उधर वो।
2: हम
3: फिर
2: तो समझे थे बड़े हो गए हो।
3: मैं पसंद करता हूँ वहाँ पे जुमे में ना, फिर बहुत अच्छे, किसी अच्छी आप DHA गुलबर्ग की मस्जिद में चले जाओ ना तो अच्छे पैर आए होते हैं तो अपने साइज के वास्ते निकाल।
0: अच्छा वहाँ से अपना साइज ढूंढना है ये भी एक महारत है।
3: हाँ
0: ये भी एक महारत है, एक अरसे के बाद ये पता चल जाता है।
3: पंचा पीस देख के ना वहाँ से अपना साइज ढूंढना होता है, फिर वहाँ से ले आता हूँ मैं, सस्ती पड़ जाती है।
0: अब जरा ये मुझे पकड़ा है ना, जरा आपसे भी तो पूछा जाए।
2: मेरे से क्या पूछना है?
0: हाँ खुद ही बताएं।
2: बात ये है, हम इस तरह की गपशप इसलिए लगा रहे हैं, ईद है ना, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, कभी इधर बात को घुमा दिया, कभी उधर घुमा दिया, कुछ ऐसे कुछ वैसे। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बेमकसद से गुफ्तगू होनी चाहिए, हर वक्त मकसद हयात ढूंढते हुए थक जाता है ये दिल। मत पूछा कर कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, बस मैं हूं तो मैं हूं।
0: सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अब मैं हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी,
2: मैं हूं तो हूं। फिर गालिब का वो शेर है कि डुबोया मुझको
0: अपने होने ने। अब पानी डुबोता है यार।
2: हाँ, डुबोया मुझको मेरे होने ने। थोड़ा सा इन्हें भी जगाने के लिए ना, क्योंकि थोड़ा मेरे देर से आने की वजह से लेजी हो गए थे ना, ये भी ढिल्ले हो गए थे। ओके जी, थोड़े से मैसेजेस रीड करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, आप लोगों की कॉल्स लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जाएंगे नहीं हम जब तक के आज धक्के मार के नहीं निकाले जाते। जाना
3: नहीं,
0: नहीं बिल्कुल नहीं,
2: मैं जाना है। अच्छा
0: यार ये वक्त पलटा देते हैं एकदम से हैं।
3: ईद पे हमें अक्सर कहीं ना कहीं से ना कोई खाना स्पॉन्सर्ड आता है, इस दफा नहीं आ रहा?
2: ये दफा मैं नहीं, जो खाना मैं आपकी मेहरबानी, बोटियां छोटियां
0: बस। हाँ बस बस,
2: देख देख कर
0: देख के, आज तो देख देख के ना
3: चाय बाकर खाने खिलाता
2: हूं। ये करने वाला काम है
3: ना।
2: माजवी ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, आज डॉग हाजिर रहमान अनवर आज दया, ईद मुबारक और FM
0: मुबारक
2: को। और मदीना बिलाल कहती हैं जी डॉग्स ने भी कसाई का रोल प्ले किया था। बिल्कुल मैन इमोशनली एंड फिजिकली दोनों तरह से कसाई का रोल प्ले कर लेता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
0: मैं तो प्ले करके आया हूँ इसलिए मुझे पता है कि हो सकता है प्ले।
2: ओके बिनते हवा कहती हैं जी मैसेज के लिए बैलेंस की भी ज़रूरत होती है, बैलेंस की बिल्कुल ज़रूरत होती है, लेकिन आप ईद वाले दिन इतना तो बैलेंस होता ही है, अगर आप दो मैसेज करें फी बंदा तो 7-8 रुपए का मैसेज पैंता है।
0: हाँ।
2: तो आप राइट मैसेज में जाना है, SMS करने के लिए 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम लिखना है और लिखना है आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और इसको भेज देना 4471 पर। लेकिन आगे फिर ये भी लिख देना है ईद मुबारक। ठीक है, इसको भेज दें और कभी कभी पैसे लगा लें, कोई मसला नहीं है, ऐसी कौन सी बात है। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ईद गेस्ट के साथ गुजरी, कवल कहती है ईद अच्छी गुजरी, अच्छा है यार, बड़ी बात है गेस्ट के साथ गुजरी। माजबीन कहती हैं सेकंड डे रेस्ट एंड थर्ड डे फिर गेस्ट आएंगे, किचन कुकिंग एंड लिसनिंग FM, ईद ऐसे गुजर जाएगी, ना कोई पैकेज है रहमान वाला, ना फ्री वाईफाई।
0: ये क्या बात हुई, रहमान वाला पैकेज क्या क्या मतलब है?
2: आइंदा के बाद खाली अगर रहमान बोला ना तो लड़ाई है, हकीम रहमान बोला
0: यार।
3: रहमान
0: तखल्लुस भी ये कैसे दे रहे हैं यार।
3: रहमान बलोच की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है।
0: और आज इतना सूट हो रहा है ना मेरे ऊपर, ये
2: हो जाएगा खुदा का नाम ले। बिनते हवा है हैंस प्रूवन ह्यूमन आ। आपने कहा कि जी इंसानों के बारे में आप बहुत अच्छा, صدیق ڈار صاحب نے اسلام کیا. محترم ڈاکس بھائی اینڈ آل سویٹ لسنر بہت شکریہ جی. ہم نیلم ویلی آپ سن رہے ہیں. عائشہ سلطان اسلام علیکم جیا بھائی, رحمان بھائی, آر جے ڈاکس بہت اچھا ہے. آپ تینوں کو عید کی خوشیاں مبارک. تھینک یو ویری مچ. مجھے آپ سے پوچھنا ہے ایف ایم 101 پر جو انٹرنشپ ہونے والی ہے اس کے لیے امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ کب ہوگی؟ جس نے ہمیں میسج کیا وہ شارٹ لسٹڈ سمجھے خود کو.
0: اوکے,
2: اچھا جی, آن لائن فارم فل کرنے کے بعد آگے کا کیا عمل ہے؟ کوئی کال موصول ہوگی برائے مہربانی مجھے ضرور جواب دیجیے گا, میرے لیے سنہری موقع ہے. بالکل جی. اور پھر سے یہاں پہ دہراتے جاتے ہیں, ایک لائن میں بولوں گا اور ایک رحمان بولیں گے اور ایک زیان جو بولیں گے کہ ریڈیو پاکستان لاہور جو ہے براڈ کاسٹنگ کی یہاں پہ انٹرنشپ کا آغاز کرنے جا رہا ہے, جس کا مقصد کیا ہے؟
0: جس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے ذرا بتانا.
3: جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو لوگ ریڈیو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا اس فیلڈ میں آگے ایکسیل کرنا چاہتے ہیں یا میڈیا کی کمیونیکیشن کی کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں, جس کے بعد آپ کو ریڈیو پاکستان پہ بھی موقع مل سکتا ہے مائک پہ آ کے بات کرنے کا, گفتگو کرنے کا. اس کے علاوہ اگر آپ خود بھی براڈ کاسٹر بننا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل براڈ کاسٹر بننا چاہتے ہیں, تو بھی آپ کو بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملے گا. یہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو کہ بالکل فری ہے اور یہ ریڈیو پاکستان کروا رہا ہے.
2: فری فری فری فری,
3: آج ہی آئیں, آج ہی پائیں. اور اس کا
2: ریڈیو پاکستان چوک شملہ پہاڑی,
3: اس کا پروسیجر بڑا سمپل سادہ سا ہے. ہمارے ایف ایم 101 کے پیج پر, فیس بک کے پیج پر آئیے گا, وہاں پہ آپ کو فارم مل جائے گا. اس فارم کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا آن لائن فل کر کے اس کو بھیجنا ہے. آپ کے تمام کوائف ہم تک پہنچ جائیں گے. ہم تمام کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر یقیناً آپ سے رابطہ کریں گے. ہوپ فلی یہ 15 جون سے اسٹارٹ ہو رہا ہے.
2: 16 اسٹارٹنگ فرام 16 جون.
3: ہاں 16 جون سے 2026 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تقریباً 15 دن مزید رہ چکے ہیں تقریباً یہ مہینہ تو ختم.
2: آن لائن فارم اویلیبل ہے اور ڈاؤن لوڈیبل بھی اویلیبل ہے. ایف ایم 101 لاہور سرچ کریں گے. اگر آپ فیس بک پہ, وہ پیج جس کے 18K فالوور ہیں وہ ہمارا آفیشیل ہے, باقی سارے نہیں ہیں, اس پہ نہیں ہیں. اینڈ یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں, ساگر کھتری ہیں, ہمیں سنتے ہیں انڈیا سے اور لسنر ہیں جی. عید مبارک کہہ رہے ہیں آپ سب کو, مہربانی پاک جی, بہت بہت عید مبارک جی, بڑی مہربانی جی, تانوں بھی خوشیاں مبارک. عید ہے سیلیبریشن تے ساڈے والوں ہمیشہ ٹھنڈی ہواواں نے تاڈے واسطے اور بہت ساری دعاواں نے. سناؤ کداں اور موسم کیسا, بارش وغیرہ کوئی, سب سین آل اوکے؟ اچھا جی رحمان بھائی, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ اباؤٹ دس انٹرنشپ؟
0: جی ہاں بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ انٹرنشپ پروگرام کرتے ہیں, اس کو جوائن کرتے ہیں, یہ ٹریننگ پروگرام, اس میں آپ آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, تو آپ کو نہ صرف میڈیا کی فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک بار آزمانے کا موقع ملے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نجی زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں.
2: اچھا جی,
0: جہاں پہ آپ صحیح طریقے سے اپنی آواز کو بلند نہیں کر پاتے ہیں.
2: یقیناً
0: یس, یہ تمام
2: مطلب جو شادی شدہ یا ریلیشن شپ میں مرد حضرات,
0: ان کے لیے تو اسپیشل ہے نا یہ, کیونکہ ان کی آواز بننا چاہتا ہے. یہ ریڈیو پاکستان
3: سکھائیں گے,
0: اظہار کرنا سکھائیں گے,
2: مطلب مرد اکثر
0: طریقہ اس طرح سے باتوں میں لپیٹنے کا سکھائیں گے, باتوں کو اس طرح سے کرنے کا ہنر سکھائیں گے کہ جو مرد حضرات شادی کے بعد اپنے, غور سے سن لو تم, ٹھیک ہے نا, آرجے بھی ہو تم لیکن سن لو غور سے, کہ اس کے بعد جو لوگ بول نہیں پاتے نا اپنی وائف کے سامنے, ایسا بولیں گے کہ وائف کہیں گے ہائے میں ہمیشہ بس اس کو نا سنتی رہوں. یہ صرف ریڈیو پاکستان کا خاصہ ہے.
3: اور جاؤ بھائی, ایسی بیگ میں ہوتی نہیں ہے, ایسی بیگ میں دنیا میں ہوتی نہیں ہے
0: یار. ہو سکتا ہے
3: نہیں ہوتی بھائی, یہ جھوٹ ہے.
0: تمہارا اگر ایکسپیرینس خراب ہو گیا ہے,
3: نہیں نہیں,
0: تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم یار دنیا کی ساری عورتوں کو, ساری لڑکیوں کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دو, ایسا نہیں ہے. لڑکیاں ایسی بہت ساری ہوں گی جو اپنے شوہر
3: تو بالکل ہی نہیں سنیں گی,
0: نہیں سنیں گی, وہ کہیں گی ہمارے لیے آواز بلند کی ہے. مرد نے, ایک مرد نے آواز بلند کی ہے, وہ فوراً سے آئیں گی زیان جم کٹ.
3: آپ مرد یار, خود کو مرد نہ کہا کرو, آپ فرشتے ہو, فرشتے ہو.
2: گل بات گئی جے,
0: کیا ہوا,
2: میسج مل گیا आपको मैसेज मिल गया यहाँ से, और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग और इसके बारे में बता दें जी, वो हैव डिसाइडेड कि यहाँ पे बैच जो बनने जा रहा है वो इनिशियली डिसाइड किया गया 50 लोगों का बैच बनेगा एक, और दो भी बन सकते हैं लेकिन अभी एक का है, और ऐसा जहाँ पे मसला है शॉर्ट लिस्टिंग का, ये एज उसमें वो कंपटीशन नहीं है, हमने आपको ट्रेंड ही तो करने के लिए बुला रहे हैं यहाँ
0: बिल्कुल पे।
2: बस कदगन जो है, जो लिमिटेशन है वो ये है 28 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
2: अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपने कम से कम बैचलर किया हो, अदरवाइज आप स्टूडेंट हैं बैचलर में इनरोल हों, और वो लोग जो इंटर में हैं लेकिन समझते हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं कर सकते हैं, उन्हें भी कहा वो सबमिट कर दें और उनको हम इंटरव्यू कर लेंगे। तो बाकी एक ग्रुप वगैरह इसका क्रिएट कर दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को सारों को इन कर लिया जाएगा, जहाँ पे कोई इस तरह की सेंस ऑफ कंपटीशन या ये चीज़ जो भी बनेगी बिफोर टाइम आपको इन्फॉर्म करके यहाँ पे बुला लिया जाएगा। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉप एनीवन अनलेस के कोई संजीदा या कोई पेचीदा मसला ना पड़े।
0: बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही,
3: बिल्कुल ठीक है। हमसे ना अक्सर लोग ये पूछते हैं, लिसनर्स भी पूछते हैं कि हम रेडियो ज्वाइन करना चाहते हैं या हम मीडिया की कोई फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। समझ ही नहीं आती उनको कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, या अगर उनसे कभी ये बात कही जाए कि रेडियो पे ऑडिशंस हो रहे हैं तो आप आए आके ऑडिशन दें, तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ऑडिशन क्या होता है, ऑडिशन किसे कहते हैं और ऑडिशन कैसे देना है जाके। क्या वो पैरामीटर्स हैं कि जिनकी बेसिस पे कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है या रिजेक्ट होता है किसी भी रेडियो स्टेशन पे या किसी भी टेलीविजन प्लेटफॉर्म पे। तो ये वो एक ऐसा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आपको ये तमाम स्किल्स, ये तमाम गुर सिखाएंगे कि अगर आप किसी भी मीडिया की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं स्पेशली रेडियो, तो आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, किस तरह से आपने स्टार्ट लेना है, और ऑडिशंस किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, किस तरह से देना है, उसके क्या लवाजमात होते हैं।
2: और फिर नहीं हो गया आप,
3: बताना जरूरी था ना। तो ये सारा सिलसिला है
0: बिल्कुल
3: उन तमाम लोगों के लिए।
2: जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात की, और बिल्कुल ऐसी है जी, वी आर गोइंग टू ट्रेन यू, और इसमें आपकी मुलाकात होगी, आपके फेवरेट आर्टिस्ट जो होंगे वो भी आएंगे सेशन में, और इसके अलावा जो बड़े नाम हैं कोशिश करेंगे वो भी जहाँ पे मुमकिन हो वो भी आके आपको कुछ ना कुछ गाइड करें इंडस्ट्री से। एंड जस्ट रिमेंबर दिस, एल्गोरिदम लर्निंग इज समथिंग एल्स। हम एल्गोरिदम आपको नहीं सिखाएंगे डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, हम आपको कम्युनिकेट करना सिखाएंगे।
3: Exactly.
2: एल्गोरिथम और चीज़ है। आप ये कहें मैं वो तो इंटर्नशिप कर गया मेरी वीडियो नहीं चल दी, वो तो मेरी भी नहीं चल दी। एनीवेज, माला मुगल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लिसनिंग फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग जी। और जी जरूर ज्वाइन करें, वुड लव टू रिसीव यू ऑल गाइज, और वहाँ पे आपको रहमान अनवर से भी मुलाकात होगी, ज़िया अंजुम से भी मुलाकात होगी, और इसके अलावा हमारे अच्छे आरजेस हैं फीमेल, और इस्लामाबाद स्टेशन से ज़ीशान नासिर हैं जी, वो भी यहाँ पे आएंगे एक सेशन में, और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री के, रेडियो इंडस्ट्री के और कम्युनिकेशन के और भी एक्सपर्ट्स होंगे, और कोशिश करेंगे हम आपको अच्छे तरीके से इक्विप करें।
0: जबरदस्त।
2: एंड डॉक्स रहमान ज़िया की साइड पे कैमरा करें, दिखा दिया मैंने, जिसको अभी तक ईद की वाइब नहीं आई, जानवर की जगह खुद को खुद लेट जाए, मेरे को वाइब आ रही। ये बात ठीक है। क्या सुना है, किस तरह ईद आती है परदेश की ईद, आंखों से आंसू निकल आते हैं जब याद आती है देश की ईद। वाह वाह वाह वाह,
0: मुझे करें वो बहुत खुश है वहां पे,
2: मुझे लगा देसी। आज आज डॉक्स रहमान भाई के दिल की बातें कह रहे हैं, पता नहीं वो तो कभी मनिया ही नहीं। अच्छा, और इसके अलावा जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप तीनों को ऐसे ही रखे, वो ज़रा वाइब मैच करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अस्मा फरकत सलाम करती हैं, माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ें, बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी मेहरबानी। और मैंने कहा ये मैसेज पढ़ लूँ, सागर खत्री साहब इंडिया से सुन रहे हैं, पाजी बड़ी मेहरबानी आप सुन रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा लगता है जब आपका पैगाम आता है, बरनाला से सुन रहे हैं। रोशनी कहती है अगर रहमान भाई को कोई बैल खरीदने कोई बैल खरीदने आएगा तो पहले सोचेगा यार ना तगड़ा बैल
0: मैं
2: उठावांगा। महंगा बंदा, महंगा बंदा होगा।
0: अच्छा ये ना, ये एक मुझे पसंद है ये बात।
2: अच्छा
0: कि मतलब वो आएंगे, वो अपने दिल में सोच कर ही वापस बैल चले जाएंगे, नहीं यार ये हमसे खरीदा नहीं जाएगा, ये खरीदा।
2: अच्छा ये बात की।
0: हाँ हाँ
2: रोशनी जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी और वापस मैं आऊँगा उस सिचुएशन की तरफ। आप वेयर इज़ योर ब्लैक कॉफ़ी? हियर इज़ माई ब्लैक कॉफ़ी, आई हैव इट ऑलरेडी इन माई हैंड्स। ओके दैट्स ग्रेट। अभी यहाँ पे अब मैं मैसेजेस शामिल बाद में करता हूँ। लेट्स कम टू द कॉल्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, सबको ईद मुबारक।
2: बड़ी मेहरबानी, कौन है हमारे साथ?
4: तीनों चांद जैसे भाई आए, मैं सबके आ रही हूं।
2: अच्छा जी।
4: हाँ जी, मेरी इन्नी लादमी भरावे ने
2: एक चांद जे पाएं ने पूरा कह लो 14वीं दा नहीं ते 13वीं दा ते होएगा ही।
4: नहीं नहीं माशाल्लाह,
2: एक जेड़ा बैठा है ओनू क अद्धा क ग्रहण लगा है।
4: नहीं नहीं
2: एक नु तकरीबन पौणा क लगा है।
0: तो वो चांद ही है ना।
4: मेरी बात सुनो, मैं ना थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन मैंने इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इतना प्यारा शो आना।
2: मैडम बुशरा है
4: तो मेरा, हाँ जी मेरा मूड खराब कर गया। बस बाद चो गल करांगी, पहले मैं ना अनवर आफत साहब को माफी मंगनी चाहवांगी कि इन्होंने मैं रात जरा गाना दसिया सी ना, वो मैडम का नहीं सी, वो नसीबो का सी। मैं अपने आप ने कोस दी, मैं कहा मैं अपने
2: भरा नूं दस्सी टैं की कर दे,
0: मैंने कोई गाना प्ले नहीं किया उनका।
4: नहीं नहीं कोई गल नहीं, मेरी गलती सी, सॉरी।
0: हां नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने मैंने बस
4: दूसरी बात ये मेरे को बर्दाश्त नहीं, मैं अगे बड़ी दुखी लम्मी पई
2: सी। बात सुने, मेरी बात सुने, ऐसे ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करे, आपकी मेहरबानी
4: कुछ भी
2: ना करो, तुम शो साडा बंद कराना जे। वैसे ही इतना अच्छा लगता है, खैर है वो भी एक अच्छे बंदे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, वो ये है कि मैं कल भी यही अर्ज कर रहा था अपने शो में, ये तीन चार आर्टिस्ट का मैंने बताया जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन होती है, अदर देन एफएम मेरे भाइयों की तरह मेरे दोस्त हैं, तो बाहैसियत इंसान एवेलिएट करना चाहिए। मैं भी बहुत सारी यहाँ पे बातें सुनता हूँ, ये भी सुनते हैं, कुछ लिसनर भी ऐसी कर देते हैं, मैं हंस लेता हूँ, ये भी हंस देते हैं, जो मेरी
4: नहीं
2: जात होती है, कोई बात
4: नहीं। मैं आपको कोई बात मैं आपको कहती हूँ कि बड़े दीवारा मेरा चौबीस चंद
2: कोई बात
4: हर गल हंस के टाल देना, तो देखो बस क्या बताऊं मैं, बस
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इस पे बात ही नहीं करनी हमने,
4: नहीं, हो
2: जाती है, बंदा बुरा कोई नहीं होता,
0: करतूतें
2: बुरी होती हैं, हमारी
4: हमारी करतूतें ही बुरी होती हैं।
2: हाँ जैसे यार रहमान अनवर को अक्सर हम अकेले में कहते हैं यार कुछ तो शर्म कर।
4: नहीं हाँ साहब मेरी बात सुनो, यहाँ कहाँ है आप भी मेरे से थोड़ी सी बात कर ले, मेरे प्यारे से भाई।
5: अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
4: ना ना ना अम्मी जान मैं अगे सुन रही सा, इन्नी खुश हो रही सा, मैं ना बड़ी इन्नी परेशान सा, तो बार मैं बड़ी अच्छी गल कहानी सी, मेरे ब्रेन चो निकल गई, तो ठीक है अल्लाह खुश रखे, खुश रहो, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ना मैं कसमें मेरा शो मिस करता थोड़ी जी गल
2: नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, खैर है वो भी हमारे अच्छे
5: जी, आप बस ना ईद का मौका है इन जवाय करें,
2: वो भी भाई है हमारे, कोई नहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, खैर
4: नहीं नहीं नहीं ये बात अच्छी है।
2: बाकी तुसी छड़ो जी, तुसी बस प्लानिंग करो, मेरी घोड़ी दे के तुसी नचना है, तुसी मेनू क्या होया सी,
4: इंशाल्लाह मैं ते रेस करनी शुरू कीती है
2: हुण, जांदी तुर पई बाजे नाल,
5: हाय मैं लुडियां पावा,
4: मेरा भतीजा तुरन लापेगा तो कॉल आएगी, वो भी चलो ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
2: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗਾਣੇ ਲਾਣੇ ਨੇ।
4: ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਉਹੀ ਲਾ ਦਿਓ।
2: ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ,
4: ਤੁਹਾਡੀ
2: ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲਾਈਨੇ ਲਗਾਉਂਗਾ।
4: ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ,
2: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।

0: अनल खिलर न जाए।
1: तुमने कहा तो था खिलरते नहीं होते,
0: खिलर जाते हो ना आप। मैं तो पुर्जे पुर्जे खुल गए। अच्छा। अभी ग्रीस दे के बांध किया था।
1: बहुत कोई चूड़ा है तू।
0: नहीं ऐसे नहीं कहते,
1: मैं कह सकता हूँ
0: मैं अपने किसी आरजे के खिलाफ ऐसे नहीं सुन सकता।
2: असद सरदार साहब ने मुबारक किया है, मुबारक तमाम सुनने वालों को। 4471 का मैसेजेस पढ़ो। गुलाम मुस्तफा साहब ने सरगोधा से मैसेज किया है, सर थैंक यू वेरी मच, आपको सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया फॉर लिसनिंग। आबिद अली मर्दान से सुन रहे हैं, अरसलान अरशद हैं और सरगोधा से सुन रहे हैं, ईद का सेकंड डे मुबारक, थैंक यू वेरी मच। आसिफा, वो दिन बहुत याद आते हैं जब ईद शो में मैंने उसको सुना था, फिर जल्द आने का वादा किया था मगर फिर लौट के ना आया, उसके बिना मेरी ईद कहाँ। ईद शो में उसको सुना था, कौन था वो, किन्नू सुन लिया सी।
1: ये तो वही
2: हाशमी साहब है रिवाज गार्डन से, सलाम कह रहे हैं, ईद उल अज़हा की मुबारक दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। उसे गवा के मैं जिंदा हूँ इस तरह मोहसिन के जैसे तेज हवा में चराग जलता है।
0: क्या बात है,
2: आपने रहमान भाई को बताया था। सिंगर कौन थी, अभी चलाया तो था मेरा ख्याल है।
1: हाँ, पहले हमने चला चुके हैं।
2: अभी सिंगर के ट्रैक का, ट्रैक के सिंगर का नाम बता दें, उनका नाम भी शहजादी है, पूरा नाम पता नहीं, आप ट्रैक के नाम से सर्च कर लें। अच्छा, सो कम टू द सिचुएशन, आपकी सेल परचेज हो रही थी। आपको बेच रहे थे।
1: हाँ।
2: आप इंसान खरीदने आए हैं, आप कटे हैं और मैं बैल हूं।
0: नहीं, मुझे छतरा बनना है।
2: हाँ जी,
1: फिर तुम खरीद नहीं पाओगे मुझे।
0: नहीं, मैं खरीद लूंगा,
1: मैं ही तुम्हें वहां पे भी अपने साथ ही रख लूंगा कि नहीं, नाली बिकाएंगे।
0: नहीं भाई, अभी हम ये इस जमीन की तो बात ही नहीं कर रहे ना।
2: जी जी,
0: हम किसी और जहान की, वो जो पहले आसमान के बाद।
1: हाँ, क्या बताओ।
0: हाँ, तो मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि इसके पाए
1: सही
2: है, क्या पाए बहुत बड़े हैं, इसमें पुट का गोश्त भी बड़ा निकलेगा।
0: वैसे रहमान अनवर के अगर स्टेक्स बनाए जाएं।
1: हाँ,
0: हाँ। ओए,
2: लाइव लाइव स्टेक,
1: इतनी कसम से हसरत है इनको, हसरत से इन्होंने कहा है इसके लाइव स्टेक बनाएंगे, लाइव
2: लाइव लाइव।
0: नहीं, वैसे इसमें सालम अगर रोस्ट किया जाए इसको, चावल भर के इसके अंदर वो जो वो नहीं होता,
1: मैंने मैंने अपने मालिक के साथ लिपट जाना, मैंने कहना इनके तो ख्यालात ही बड़े डिफरेंट है,
0: दम पोख,
1: ये तो मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ अजीब सी हरकतें करने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने लिपट जाना, रोपड़ना है मैंने। अच्छा, रोपड़ता है उसके दिल में ख्याल आ जाए।
2: जी आपने सलाम किया, वालेकुम सलाम, एंड आज के दिन जो है ना ऊटपटांग सी बातें चली, आपने बुरा नहीं मनाना किसी ने भी। अच्छा, फिर
0: कितना गोश्त निकल आएगा इसमें से
2: यार, उससे क्यों पूछ रहे हैं।
1: नहीं,
2: हम तो बात ही कर रहे होंगे, वो कह रहे होगा मैं कह रहे होंगे ना।
1: नहीं, मैं हरकतें ऐसी करूंगा कि आप लोग मुझे मतलब के ले ही ना सको, मैं चपेड़ा मार दूंगा, डंडा फाड़ लूंगा,
2: वो टोड मार देगा तेन, बह जा।
1: नहीं, मैं वो कपड़ा लिया होगा, मैंने टोड मारन लगेगा, मैं इदा हो जाऊंगा, निकल जाएगा। रेड कलर का कपड़ा है।
2: हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जी।
3: रहमान भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक।
2: रहमान भाई, आपकी कॉल है।
1: जी बाबा, कौन बात कर रहा है।
3: नवाब शाह से हाफिज दुर मोहम्मद खास के लिए आज डॉक्स को और आज ज़िया अंजुम को, तीनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक।
1: थैंक यू वेरी मच। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
3: बस प्रोग्राम सुन रहा हूँ आपकी, जब सब सुन रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम आप तीनों कर रहे हैं और हंसी मजाक आपकी अच्छी है माशाल्लाह। और
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस तरह की बातें भी पसंद आ रही हैं तो थैंक यू वेरी मच, आप हमें वाकई में मदद करते हैं लिहाज से।
3: यही तो होता है, सुनने का मजा यही तो होता है ना।
1: ठीक है,
3: क्योंकि आरजे डॉग्स का प्रोग्राम माशाल्लाह हम दोस्त का सुनते हैं, लेकिन आज दोनों को मैंने आज पहली बार सुना है।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: इन्हें नहीं सुना तो फिर आपने किसको सुना भाई, इन्हें तो जरूर सुना करिए।
3: नहीं नहीं, अल्लाह आपको तीनों को सलामत रखे, अल्लाह आपको और भी खुशियां मजीद अता फरमाए।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
3: अनिला आप ही को हाफिज दुरमोहन खासकरी के जाने से ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम।
1: थैंक
2: यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? रियासत फ्रॉम एबटाबाद जी, आप सबकी आवाज बहुत अच्छी है, मैं आपके प्रोग्राम सुनती हूँ बट कभी कॉल या मैसेज नहीं करती, आज कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। सिद्रा लाहौर से, सिद्रा थैंक यू वेरी मच, कुछ कहना चाहेंगे
1: जी? सिद्रा आप मैसेज क्यों नहीं करती पहले तो ये बताएं, आज मैसेज करने का किस तरह से आपका दिल चाहा
2: बताएं सिद्रा, क्यों नहीं
4: सिद्रा तुल

0: कैसे कैसे क्या पूछ रहा था
1: मैं, कलाम मेरे जेन में आ गया,
2: कलाम आ गया, आप बताएं वो आपसे पूछ रहा आप क्यों नहीं मैसेज करती।
0: सिद्रा, ये मेरा ख्वाब था जो आपने पूरा करवा दिया, ये मेरा ख्वाब था जो आपने पूरा करवा दिया, पूछा
2: क्यों मैसेज नहीं करती बताएं।
1: सिद्रा आप क्यों नहीं मैसेज करती
0: भाई, भाई तुम सिद्रा हो तुम मुझे बताओगी कि मैसेज क्यों नहीं करती तुम मुझे।
1: मैं सिद्रा न्याजी हूं।
0: बेशक जो मर्जी अपने साथ आगे लगा लो, कास्ट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: हम आपको बताया सिद्रा न्याजी का
0: है,
1: सिद्रा न्याजी का बताया आपको
2: यार, होर पास से निकल जाता है एक ट्यूनिंग सेट करा के। ये शो मेरा ख्याल है वो लाइन पे नहीं ना आ रहा, इसकी वजह से नहीं
0: नहीं आ रहे
2: है ना,
0: आ रहा आ रहा
2: नहीं आ रहा
0: तरीके से।
1: वो पिछले दिनों एक ड्रामा लगता था सावल पिया समथिंग कुछ इस तरह से।
0: अच्छा,
1: सावल यार पिया। उसमें वो एक पिया पिया एक और होती है ना, वो जो
0: लड़की होती है
1: सिद्रा न्याजी,
0: वो तुम क्या नाम है उसका, तुम्हारा क्या नाम है उसमें,
1: उसमें मेरा नाम क्या था
2: सिद्रा तुम खुद ही बता दो। रहमान ने पूछ लिया, इन्होंने इधर उधर की मारी।
1: अब करोगे मुझसे बात?
0: नहीं अब नहीं करूंगा, ना करना मैसेज।
2: सलाम किया जी, माय नेम इज तितली फ्रॉम लाहौर। तितली उड़ी,
1: तितली उड़ी, उड़ ना सकी।
2: और ईद मुबारक आप तीनों को, आप तीनों को एक साथ सुनकर बहुत अच्छा लगा, ईद बहुत अच्छी गुजरी है, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू वेरी मच,
2: थैंक यू तितली। और वैसे आपका पूरा नाम क्या होगा, मतलब इमेजिन तितली, आपके अब्बा का दैट कुड बी एनी नेम, आप इमेजिन करें इनके अब्बा का नाम लगा के क्या बनेगा।
0: नहीं रहने देते, इमेजिन नहीं करते। क्या बनेगा तू बता,
1: मुझसे ना पूछो फिर वो
0: मेरी तरफ नहीं है, तू तो बता सकता है कि क्या नाम होगा।
1: मेरी तरफ नहीं आना, मैं फिर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर
0: यही तो चाहता हूँ मैं, इसका ही तू बोल, ये तूने बताना है कि तितली का क्या बनेगा उसके बाद।
1: तितली बरखा,
0: तितली बरखा, अरे
2: अब्बा का नाम पूछा था,
0: बरखा नाम है ना उनके वाले,
1: बरखा सेठ, बरखा बरखा सेठ।
2: शाल अली मुबारक डॉग्स भाई, एंड आई एम अ न्यू लिसनर।
0: आज चंदे ने ना दिमाग जो चल रही है ना उसी बड़ी जुबान ना बोल रही है, ये चंदे ने कि मेरे दिमाग ना भी नहीं जुबान से लिंक हो जाए, सिंक हो जाए।
2: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। शाल अली वेलकम यार, और दिस इज आवर ईद शो, और ईद शो होता है बगैर किसी मौजू के। नॉर्मली हम लोग पता क्या कह रहे होते हैं, कभी मैं आगे बात कर रहा हूँ आपके
0: लगता माफिया मांग रहे हो ना, देखो लो ना कि भाई सॉरी सुन लो प्लीज।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं,
0: अच्छा लग रहा है यार, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है।
2: आसमान पे कोई बह रहा होता है कोई किधर, तो कभी कभी जो है ना इस तरह शुगल बेला चल रहा होता है, मैसेज आते हैं।
0: अच्छा,
2: और ओके ठीक हो गया जी तितली,
0: क्या बात थी, क्या बात थी ये बता रहा।
2: आप तीनों ये कैसे कर लेते हैं सर जी, आज फिर से लेट कर लेट आए।
1: लेट आए
0: कहते कहते लेट कर
1: लेट कर लपेट कर,
0: ये क्या हो रहा है यार। ठीक है,
2: स्लिप ऑफ टांग हो जाती भाई।
0: हाँ तो हो जाती है, ठीक है, कोई बात।
2: उर्दू में लिखा हुआ है, लव यू टू गना।
1: गन्ना
0: गन्ना गन्ना है, ये गन्ना बच्चा है
2: भाई, ये लिखा हुआ है,
0: ये उसे क्या गन्ना बच्चा हूँ मैं,
1: गन्ना शुगर केन।
0: अच्छा
2: आगे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ,
1: वो सेंसर ही समझे फिर।
2: जरबान सलाम अलैकुम, 30 स्टार को ईद मुबारक, वालेकुम अस्सलाम। ये जो कुछ भी बच्चे हैं ये यार बहुत मिस किया, मिस या इट्स NAC2MA
1: वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप, ठीक है?
3: अल्लाह पाक का शुक्र, सबसे पहले तो आप तीनों प्यारे प्यारे आदमियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे पता है रहमान साहब, अजहर साहब, दोस्त साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत हंस भी रही हूँ आपकी बातों से। जो आपने गुनगुनाया जबरदस्त, आप जाने की इज्जत भी
2: ना यकीन करें आप मैसेज शो नहीं करते आप आश्री
0: हमें रोक के टोक के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं बाहर नहीं निकल रहा है,
2: हम अफसुरदा रहे आप लोगों को परेशान और बहुत आप लोग
0: आंसू निकाले आपके हैं,
2: आंसू निकलते रहे आप सोच रहे मैंने क्यों।
3: आप बात तो करने को तभी आप मुझे ये बताए हमारे बहुत प्यारे से आप जी आए, बहुत प्यारे आप भी बहुत प्यारे हो, वकील साहब गए थे वो मेरे मेरे सुनाई नहीं दे रही उनकी
0: इन्होंने प्यारे बस मुझे प्यारे की समझ आई।
3: वसीम साहब कहाँ गए थे?
0: वसीम साहब कहीं भी नहीं गए, वो यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। कल रात उन्होंने मेरे प्रोग्राम के बाद 2 से लेकर 4 बजे तक आपको खूब जगा के रखा होगा, आपको पता होगा प्रोग्राम में।
3: आप उनको मेरा मैसेज देना, मेरा बहुत बहुत सलाम उनको बताइए, बहुत मुबारक आप लोग, बहुत अच्छा लगता है आपका शो, अब मैं बहुत खुशी हो रही हूँ। अभी आपने सिर्फ आधार का भी गाना चलाया हम देखने वाले नहीं है, हम गाने वाले भी हैं।
1: अच्छा तो सुनाएं कुछ गाना सुनाएं फिर आप।
3: नहीं अभी नहीं सुना सकती सबसे बेटी आपके शो सुनने के लिए।
1: चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आयशा आपने कॉल की।
3: और मुझे दोस्त ये सवाल है, मैंने कभी आपसे कहा ये इन्होंने आपका अपना नाम क्यों, दोस्तों का नाम तो इनका बहुत प्यारा अच्छा साहब है, इन्होंने नाम क्यों रखा?
2: मैंने इसलिए रखा था कि पहले सुन के आपके जहन में आए एक किस किस्म का बेहूदा नाम रखा है। पहली दफा सुनता ना बंदा एक्स को रिप्लेस कर देता है अक्सर ना, जहन में कुछ ऐसे ही अल्फाज आते हैं मेरे नाम।
3: दूसरी बात है आप कभी मेरा कह रहे ऐसे कर रहे जैसे नींद में शो कर रही हो।
2: क्या कह रही है?
3: नींद में शो कर रही दोस्त, जब मैं कभी सुनती हूँ आपका ही सुन के या सबका ही सुन के शो, मैं रात को 12 बजे लेकिन 2 बजे
2: नहीं, मैं अक्सर नींद मिस करता हूँ, आप सही कह रही हैं। नींद में चलने की आदत है मुझे ना, जिस दिन मैं शो होता है मेरी वालदा मेरी टांगों पे वो जो बांधती है ना वो पटा नहीं बांधती, वो पता नींद में चल के जाएगा शो करके आ जाएगा।
3: अभी अभी बता रही थी ना सब बैर को मोटरसाइकिल में बताया आगे दुम्बा बैठा था।
1: चले आयशा बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, आप जीती रहे सलामत रहे, ईद मुबारक
3: जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह
1: हाफिज जी, थैंक यू,
3: अल्लाह
2: फुरकत कह रही है हासकर रहमान बार बार कुर्सी से उठना आला।
0: अच्छा जी ये सब चल रहा था,
2: ये सारा
0: दास्ता दिया करो ना कम से कम यार, मैं कुछ चीजें
2: अभी आपको दिखाते, थोड़ी देर पहले ये लेटे भी हुए थे
0: वो कैसे दिखाएंगे आप
2: इधर से?
0: नहीं वो कैसे
2: दोबारा लेटा है
0: यार मैं कह भी रहा है यार, मेरे पाली गल में इन्होंने कह भी रहा है।
2: आई थिंक सो हकीम रहमान की अस्मा इस लाइव स्ट्रीम पर इन्हें देख रही हैं, जो भी आज आपसे आपसे बाहर हो रहे हैं, क्या मतलब
0: आप पे से बाहर हो? अच्छा अपने आप से बाहर हो।
2: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिया भाई, डॉग्स भाई, रहमान भाई, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, गन टेक अनदर कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
1: दोबारा बताइएगा कौन बात कर रहे
4: हैं
1: जी? सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं?
4: बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे मिजाज हैं?
1: अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप?
4: जी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका माशाल्लाह, तीनों ने बहुत अच्छी गुफ्तगु, और आप शायरी लेकर आया कभी कुछ मतलब ना शायरी के भी एक प्रोग्राम रखा करें, क्योंकि आज तो चलो आप गुफ्तगु कर रहे हैं जोक शोक
1: जी
4: तो शायरी जो है ना आपकी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि मैं तो बहुत पूरी गहराई तक सुनता हूँ आपकी शायरी को, और आजादार तो वाकई इंटरनेशनल माने हुए लाहौर के बहुत खूबसूरत जो है उनकी पहचान है अपनी, और रहमान अनवर भाई आप भी बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका, और
0: थैंक यू वेरी मच
4: अंजन भाई जी। तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शाना बिशाना होता हूँ और पूरा गदा आपको मैं कैप्चर कर रहा हूँ पूरी एक एक गुफ्तगू आपकी, और ये जो लोग बीच में कहते हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया, मैं इनको कहती हूँ कि आप माइंड में क्या करें, ये तो एक जोक होता है जरा एक बंदे को इस तरह रिफ्रेश करने का या आप समझ लें डिटेल करने का, ये तो माइंड करने वाली बातें नहीं होती, ये तो आप खुश रखने के लिए लोगों को डिटेल करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होता है।
0: बहुत
4: अच्छा
0: कम लोग होते हैं जो इन तमाम बातों को इस अंदाज में सोचते हैं समझते हैं, ऐसे ही तमाम सुनने वाले हो जाएं तो यकीन करें कि बहुत खुशी होती है।
4: बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ और हमेशा वन वन में बहुत अच्छा लोगों को डिटेल किया, और आज जो आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी कि आपने एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो लोगों को मतलब
0: ट्रेनिंग प्रोग्राम
4: जो आगे बढ़ने के, तो ये बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए अगर ये चीजें करके तो पाकिस्तान की तरक्की में इजाफा होता है, और तमाम लोगों की एक सोच को बदली करना चेंज करना उसको, ये बहुत अच्छी जो है ना इंसान की पहचान होती है। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि जो भी रेडियो पर आकर बात करें ना तो ये सोचें कि बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा कुछ जाप्तों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर बात करना सोच समझ कर बात की जाए कि जो बात जो है ना, क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही होती है आपको,
0: तो
4: उसमें ये है कि कोई ऐसी बात ना निकले जो मतलब दूसरे के लिए ऐसी बात बने जो बुरी लगे या कुछ हो, आप भी एंटरटेन अच्छी कर रहे हैं।
2: बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: एक सेकंड
0: जी जी कहिएगा कहिएगा।
4: मैं ये कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा गाइडलाइन जरा बेहतर करनी है, बस आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ दुआओं में। शान नासर भाई भी बहुत अच्छा, जो उनकी बड़ी गुफ्तगू अच्छी होती है इस्लामाबाद में, मेरी उनसे भी टच रहता हूँ, और तमाम मतलब आपकी सदर रानी जो है वो इस्लामाबाद से ऐड कर रही होती है प्रोग्रामों को, तो मैं बहुत अच्छा लगता है अगर ये कि आप लोगों ने लोगों को, क्योंकि जो भी अगर है कि आप लोगों ने हेडिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, तो बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
4: थैंक यू सो मच
2: सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा जी, बड़ी अच्छी लगी आपकी वैल्यूएबल सजेशंस और गुफ्तगू,
4: ऑल द बेस्ट,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम,
4: ओके अल्लाह
0: हाफिज़। अब मैं ना थोड़ा सा सीरियस हो गया, मुझे कुछ देर के लिए इस फेज में रहने,
2: जीता इंसान थे नहीं तो मेरा दिल किया मैं पूछूं शाना बशाना चलते हैं, अक्सर मैं कहूं मेरे शानों से किसका शाना टकराता है, मैंने पूछा, मैंने कहा जीता इंसान है, क्योंकि अक्सर चलते चलते ना ऐसे तक आता है।
0: ये कैसे किया?
2: हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
5: हेलो जी, आप सबको मेरी तरफ ईद मुबारक जी।
2: खैर मुबारक जी। शहजाद भाई कैसे हैं आप?
5: हाँ जी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा दिल बहुत दुख है आज।
2: सानू कुड़िया नहीं,
1: क्यों दुख है आपका दिल?
0: क्यों नहीं सोच रही
5: यार, आपको को जानते नहीं ना इसलिए वो बात कर गई है, लेकिन मैं तो आपको जान गया हूँ ना,
2: आप इतने तो क्या ही बात
5: प्यारे इंसान है और इतने सारे आज जो मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा दिल दुखा जी।
2: वो पता चला तो, पिछले दिनों आप रोटी भी नहीं खा रहे थे।
5: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, तो मैं तो आप सबसे प्यार करता हूँ मोहब्बत करता हूँ,
0: कि रोटी भी नहीं खाई है ना जियान जो।
5: हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जैन सही बात है, और कसम तो नहीं खा नहीं सकता,
2: बेइंतहा मोहब्बत
5: जी आप सब से मुझे मोहब्बत,
2: मुझे तो शुबा होने लगा गोया के आप इश्के ज़िया में मुब्तला हैं।
0: सुभान अल्लाह, क्या मिसाल है सरकार, क्या मिसाल
2: के जाया,
5: क्या बात है जी आपकी, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे।
2: कहीं जल्दी से आप ये इरादा है मुसम्मम तो नहीं रखते?
0: अरे अरे
2: ये जो आपने मुसम्मम डाला ना
5: बीच में,
0: सुभान अल्लाह,
2: वो जुमला याद आ
1: आ गया वो जूस पिला दो
5: मुसम्मी जो मुझे याद आए वो बताता हूँ
2: कहीं मुसम्मा इरादा तो नहीं बना लिया आपने दुपट्टा लेकर साथ समंदर पार
5: माशाल्लाह जी माशाल्लाह आप तो हमारी जान है और यकीन माने हमने आपसे बहुत सीखा है
2: अरे इसीलिए कुछ नहीं
5: माने जो नहीं समझती वो भी हमें समझ आ गई आपको सुन सुन के जी
1: नहीं शहजाद भाई
2: शहजादे
1: कमाल सिंगाड़े थे वो
5: अभी भी खिलाऊंगा जब
1: सिंगाड़े साना
2: अच्छा जी सैयद अली ज़िया साहब ने किया अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान वालेकुम अस्सलाम जी थैंक यू वेरी मच जी हाँ जी अच्छा जी
5: जी
2: शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया
5: ये मैंने ना आज बकरा जो खादा वो वाजे मुझे से निकल रही है आज सुबह बकरा खाया
2: निकाल के दिखाए ना बकरे की आवाज जरा अब वो छतरे अब छतरे की आवाज छतरे की आवाज छतरे की प्लीज
1: शहजाद साहब एक ना स्पेशल मनहूस बकरा भी होता है
5: अरे बकरे में अब कह रहा हूँ
2: चलो कट दियो देखी जाएगी
0: देखी जाएगी
2: नहीं नहीं हम नहीं कहते वो तो राजा है
1: ये चीज कुत्ता रह गया हूँ
2: यार
0: कर दे बाबू यार
2: अच्छा
0: ठीक है
2: ये एक्चुअली ना आपके वो सौदे पे बार्गेनिंग हो रही थी अब आप समझे ये
0: इसमें ऐसी हंसने की क्या बात दिल लेना ते दिल देना मैं सौदा इको जे ठीक है यार मैं अचानक से इतना दिल लेना ते दिल देना सौदा इको जे
1: वे सोने दिया कंगना
0: यार
1: सौदा इको जे
0: ये बंदे नु की आज यार
1: यार यार आप क्यों खलोगे हो बैठ जाओ
0: यार मुझे ना हंसी ज्यादा आ रही लगी थी ना रहमान बलोच याद आया मुझे कि ये कैमरा
2: मैं हैरान हो गया ये सोना अभी कुंदन बनने के मरहले में है
1: यार आपको सौदा का कोई शेर आता है
2: हेलो
0: हां सौदा का आता
2: है ओदे ते नहीं ओदे ते लड़के ग्रुप छोड़ देंदा होता जी
1: ओ माय गॉड
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम शेर नहीं पूछना मुझसे हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन है मरजा जी
0: यार कितनी गलत गल की थी ना यार दास्ता सारे यार किसी ग्रुप लेफ्ट कर देना होता यार
2: हेलो हेलो 1 2 3 आवाज आ रही है आपको
0: हेलो आवाज आ रही है अस्सलाम वालेकुम
6: 4 5 आ रही है
0: जी कौन बात कर रहे हैं जी क्या नाम है आपका
6: सबसे पहले तो आप लोगों मैं बार करता हूं
0: डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है आपकी आवाज में इसलिए ये वाली कॉल जो है ना डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी हमें
2: आई एम रियली वेरी सॉरी जी यहां पे गाना प्ले करते हैं अभी नहीं जा रहे वो स्टेइंग विद यू और एंजॉय करते हैं थोड़ा सा
0: ओ पप्पू यार
2: तू नकलाउंदा अभी आप लाइव देख सकते हैं आरजे ज़िया अंजुम को गाना गाते हुए
0: yes.
2: और आरजे रहमान अंजुम को मस्ती करते हुए आरजे स्पेस डी यू एक्स डॉक्स फेसबुक पर सर्च करें लाइव स्ट्रीम पर चलो जी

0: फिर चुपिश्ती के टीट लोग हैं हम अच्छे लोग हैं हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, हर रंग सच्चा होता है इंसान,
0: हर रंग सच्चा होता है, हम बड़े चुपिश्ती के
2: टीट लोग हैं। यहाँ पे सेल परचेज हो रही थी,
1: बस कर दे
3: लैला यार लैला
0: नहीं जी कर रहा मेरा लैन नू जानवर दागी ना भी हो लगता दागी
1: जुगत मारती है।
0: Oh my God.
2: Point is के आप जब मंडी जाते हैं तो क्या चीज इवैल्यूएट करते हैं?
0: पैसे,
2: मतलब जानवर जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता?
0: पड़ता है, जानवर जैसा भी हो फर्क तो पड़ता
1: ये
0: है।
1: ये हाथ मेरी तरफ करके इशारा क्यों करते
0: है? नहीं मैं वैसे ही कह रहा था, ये ऐसे ना।
1: अच्छा ठीक है,
2: ऑन अ सीरियस नोट, मतलब क्या बता रहा है? आप क्या देखते
0: जानवर, उसका कद काठ देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, उसका ये अंदाज़ा लगाया जाता है इसे कितना गोश्त निकलेगा, फिर दोंदा चोगा देखा जाता
2: भी है। अच्छा है
0: ये नहीं, ये जानवर नहीं है ना, असल में ये इंसान है, हम जानवर हैं सिचुएशन पे रहे आप जानवर हम हैं। अच्छा। ये इंसान है
2: चले फिर जानवरों वाली जुबान में कम्युनिकेट करें।
0: हाँ हाँ
2: मैं नहीं देना
1: नहीं लै लै के देख तो सही, एक बार लै के तो देख,
0: मुझे बहुत शौक है
1: हाँ खरीदने का, मैंने लफ्ज़ ना चेंज किया।
2: हेलो अस्सलाम
4: वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
4: क्या हाल है आज डॉग?
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेहरबानी।
4: फैसल हाजिर हुआ है आपके दरबार।
2: क्या हाल है फैसल साहब, आप खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो
2: जी? बड़ी मेहरबानी।
4: दो भाइयों को भी ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक जी,
1: मुबारक, थैंक यू वेरी मच।
0: आप बताएं आप ठीक हूँ?
4: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के बेशुमार एहसान हैं।
0: आप क्या कर रहे हैं?
4: मैं पोल्ट्री फार्म में हूँ।
0: अच्छा,
4: अपना मैं ब्रांड हूँ, पोल्ट्री फार्म चलाता हूँ।
0: क्या बात है, तो अब तक वो चल चल के किधर पहुंच चुका है?
4: अभी तो 3500 दिन है, मगर मार्केट बहुत ढीला चल रहा है।
0: मार्केट ढीली चल रही है?
4: हाँ ढीली चल रही है, नहीं है पर
0: गर्मियों में हो जाती हैं चीजें ढीली। मौसम ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा।
4: असल में यार ज्यादा शुमार नहीं है, एनओसी ये लोग बनाते नहीं है, इतने ज्यादा बयाक पर पहुंच जाते हैं कि फिर डिमांड नहीं होती ना।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
4: हाँ तो इसलिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, रूल रेगुलेशन नहीं है।
1: करो ना बात उनसे, करो ना बात। क्या क्या हंसी क्यों आ रही, क्या कह रहे थे आप दोबारा बताइएगा? ढीली होने के बाद जो बात हुई,
4: असल में ना कोई रूल नहीं है ना, इससे कोई कानून नहीं बना के इतने बनने चाहिए, इतने पहुंचने चाहिए, इतने इतनी की जरूरत है।
1: अच्छा सीरियस बात कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग।
0: चलिए अल्लाह खैर,
1: मजा आया आपसे बात करके, सलामत रहे आप, बात रहे।
4: आमीन आमीन आमीन,
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैसे हूँ मैं वैसे कुछ चीज़ों में व्यापारी?
2: आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं
0: बताओ जरा, किस चीज़ का व्यापार करते
1: हैं? कैसी
0: लफ्ज़ों के
1: बंदा एक यार थोड़ा
0: नहीं
1: सा...
0: लफ्ज़ नहीं बेचते यहाँ पे आके।
1: हाँ
0: ये अधूरी बातें हैं, प्रोग्राम लफ्ज़ बेचते हो, जज्बात बेचते हो, खरीदते
2: नहीं है। इसलिए तो कहा मैंने इसका चलना ही नहीं था, अधूरी बातें,
0: कच्चे खिलाड़ी।
2: इसने मार्केट में बेचना था आधा बकरा, इसी ईद पे ले जाएगा, आधा अगली पे मिलेगा, अधूरे बकरे।
1: नहीं नहीं ऐसे मैं नज़्म जब पूरी पढ़ता हूँ तो करे
2: कहना था
1: अधूरे कैसे हो,
2: ये बड़ा टेक्निकल।
0: इसके अधूरे बकरे होते मेरे बकरे जुनू
2: कहना
0: बकरे जुनू
2: बकरे जुनू
0: बकरा थेरेपी
1: अधूरे बकरे बकरे जुनू राइट बकरे
2: नहीं नहीं बकरा
1: थेरेपी

0: 막 그런 사람이.
1: ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
0: ਔਰ ਉਹ 101
1: ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ
0: 101 ਵਾਈਬਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈੜਾ ਵਾਈਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
2: ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ
0: ਬੱਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈੜਾ ਵਾਈਬਸ ਅਧੂਰੇ ਬੱਕਰੇ ਐਂਡ ਬੱਕਰਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵੈੜਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ
1: ਹੈ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਅਲੱਗ ਥੈਰੇਪੀ
0: ਚੱਕੀ ਦੁੰਬਾ
3: Anyways, let me read some messages from 4471.
1: ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ
0: ਨਹੀਂ ਹਮ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਤੇ
1: ਅੱਛਾ ਯੇ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਉਨਕੋ
0: ਹਮ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਤੇ
1: ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੁਣੇਗੇ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ
0: ਹਮ ਅੱਛੀ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਤੇ
1: ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਅਬ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਖੇਲ ਰਹਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ
0: ਹਮ ਬੜੇ ਸੁਪਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਹੈ
1: ਮਾਨ ਲੇਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ
3: ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਸਿਟੀ ਸੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਮਾਮ ਟੀਮ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ ਈਦ ਕੀ ਆਪਕੋ ਵੀ ਈਦ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰ ਜੀ ਬਕਰਾ ਈਦ ਇਸ ਲਈ इसलिए लिख के हमारा बकरा ईद का पहले दिन भाग गया था अच्छा इसलिए ने लिखा पहले दिन ईद का बकरा भाग गया और जो के बहुत दूर से ख़रीदा था जिससे ख़रीदा था आज उसने कॉल की कि बकरा हमारे पास आया वापस जाने से इनकार कर रहा है
1: ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
0: ਕਬੂਤਰ ਸੀ
1: ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਛੱਡ ਗਿਆ
3: ਦੂਰ ਸੇ ਖਰੀਦਾ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਕਰਾ ਭਾਗ ਗਿਆ ਉਸਕੀ ਕਾਲ ਆਈ ਵਗੈਰਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਸੇ ਤੁਮਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ
1: ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ
3: ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ
0: ਬਕਰਾ
3: ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਗਾੜੀ ਪੇ ਉਸਕੋ ਵਾਪਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾ
1: ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਘਰ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
3: ਕਹਤੇ ਕੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਹਾ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਯੇ ਰਹਿਮਾਨ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹਾ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी सिचुएशन है ये मैं नहीं बता सकता इस पे ये बहुत ज्यादा इसमें जज्बात इन्वॉल्व
0: नहीं बकरा भाग गया ये गलत बात है ये आशना के साथ बकरा भाग गया ये गैरत का मामला है ये पंचायत बैठेगी ये बड़े बैठेंगे फैसला होगा बहरहाल बकरे को वापस लेके आएंगे फिर उसके बाद फैसला होगा कि क्या करना
3: है इतने जिम्मे वो कह रहे हैं हमने उसकी एक दिन बाद कुर्बानी कर देनी है मार के दब देना उन्हें टेट दे अंदर
1: मैं भी यही कह रहे सी दब नहीं देना खा ही लेना
3: आपका क्या ओपिनियन है इस बकरे को साथ क्या किया जाए वो कहते हैं बकरा जाने
1: से देखिए जी मैं हमेशा
3: जुमले पे गौर करें मालिक जहाँ से खरीदा था वहां से कॉल आई उन्होंने कहा बकरा वापस जाने से इनकार कर रहा है यानी उसने कहा होगा चल जा वापस चली जा जा
1: नहीं कुछ नहीं होता
3: उन्होंने कहा मैं नहीं जाना वो क्या वजह थी उसने क्यों इनकार किया और वो भागा क्यों वहां से
0: अदालत से प्रोटेक्शन दिलवा देते हैं
1: हाँ और प्रोटेक्शन दिलवा देते हैं
3: इसी का रौला होगा इसीलिए भागा होगा
1: थोड़ी सी देर बाद समझ आती है लेकिन आ जाती है ये है अच्छा नहीं उसको मैं ये कहूंगा कि मैं विच पहनना कोई मसला नहीं मैं भी विच पवांगा
3: विच ना वही तेरी मेहरबानी
1: ऐसा कुछ नहीं होता तुमने इसके बाद जन्नत में मुलाकात करनी कुछ नहीं होता चाहूंगा
0: यार फिर लोग कहते हैं साड़ा केस वगाड़ता
1: केस
0: वगाड़ता ऐ बंदा विच पे ते साड़ा केस वगाड़ता
1: नहीं नहीं नहीं इस तरह मेरे नाल ते कदी होया ही नहीं ना कदी होया ही नहीं इस तरह मेरे नाल
0: नहीं होया
1: मेरे नाल इस तरह नहीं कदी होया मैं जदों भी किसी मामले च पिया वा ना फिर मैं ही लै गया नहीं मैनू वेच दिओ मैनू वेच दिओ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ
0: ਵੈਸੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ
1: ਕੋ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਔਰ ਨਹੀਂ
0: ਵੈਸੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਹਮ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ
1: हंसते भी नहीं है हम इतना,
0: और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हंसते
1: के तरफ
0: ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं।
1: यार एक मिनट है
0: ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हंसते
1: यार। अच्छा इसके बाद तेरी बात मान लेंगे ये हरफे जुनू में तीसरा बंदा कौन है जो बातें कर रहा है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है वो कौन है?
3: अच्छा जी, यहाँ पे गाना लगाते हैं जी, आप लोग सुन रहे हैं जी ईद स्पेशल विद आज डॉग्स एंड आज रहमान अनवर, और
1: सुन रहे हैं ना प्लीज बता देना।
0: वैसे
3: ऐसा प्रोग्राम नहीं करते, देखिए नॉर्मल डेज में तो हम बड़ी संजीदा बातें करते हैं,
0: अच्छे लोग हैं हम,
3: ईद पर फिर इतना तो चलता
1: है। करैक्टर असैसिनेशन हो रही है ये।
3: हाँ
0: क्या हो रही है?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, हो ही नहीं रही, दोबारा नहीं लफ्ज बोला जाता मुझसे।
3: तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है?
1: बड़ा गोश्त आपने अभी नहीं खाना, थोड़े से दिन बाद खाना। केला कभी भी एक नहीं खाना, दो साथ में लेके खाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि बीमारी जो है ना वो बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाती है। फिर भी बीमारी ठीक ना हो तो आपको पता ही है कि इन्होंने मेरा नाम हकीम रखा हुआ।
3: वक्त हो चुका है 12:25, हकीम साहब को लाइव अगर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं आर जे स्पेस
1: मतलब
3: वहां पे अभी गाना लगा के इंजॉय करवाते
1: साथ में, नोट भी होंगे ना थोड़े से।
3: Yeah.

0: All right, जी, welcome back. वक्त हो चुका है 12:29 and we have decided that हम
1: खत्म करते हैं.
0: हाँ, प्रोग्राम कल आपसे मुलाकात होगी. कल इंशाल्लाह मैं यकीनन पूरी कोशिश करूंगा कि वक्त पे पहुंच पाऊं. और आज मैं 2 मिनट लेट था, तो कल मैं कोशिश करूंगा पूरे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचूं. और कल 10 बजे हम शो शुरू करेंगे.
1: कल फिर प्रोग्राम है.
0: हाँ, इंटरनेशनल स्लॉट.
2: कल हम तीनों दोबारा से 10 से 12 FM 101 इंटरनेशनल पे आएंगे.
1: ओके, डन.
2: और प्रोग्राम करेंगे
0: कल. अच्छी अच्छी बातें, ऐसी बातें और
1: ऐसी बातें तो नहीं ना करेंगे.
2: अच्छे वाला प्रोग्राम करेंगे.
1: अच्छे वाला, बस सीरियस वाली टॉक होगी उसमें.
0: बहुत सीरियस, बहुत संजीदा.
1: वो तो आपने कभी रहने नहीं देना हमें.
0: नहीं, बहुत संजीदा, यकीन करें.
1: ओके, डन.
0: आप सोचें कितना का संजीदा कर सकते हैं आप.
1: मतलब लोग ना, जब हम बाहर निकलेंगे गेट से, वो मतलब छुरी पकड़ी होगी उन्होंने, वो कहेंगे यार क्या मजेदार प्रोग्राम था. आ मजा ही आ गया यार. क्या तू ही इटा, तू ही है साडे लिए. आ लाओ, इस तो बाद मैं जीना ही नहीं चाहता. इस तरह से करेंगे लोग.
0: हाँ,
1: ओके.
0: आयशा बासी का मैसेज आया.
1: ओके, डन.
0: ओके, जिशान नासिर नहीं आए. आई हैव नो आइडिया जी. हम लाहौर में हैं, वो इस्लामाबाद में है. अमरीन लाला ने सलाम किया था, वालेकुम अस्सलाम. 5 मिनट लेट हो गए. नो आइडिया जी, वो किधर हैं. और प्रोग्राम बेहतरीन है.
2: हम स्टिल अभी तक नेटवर्क में.
0: आई हैव नो आइडिया. चेक करें शाह जी, इफ वी आर ऑन नेटवर्क.
1: अभी चेक कर लेते
0: हैं.
1: नहीं,
0: वो दुशान आ चुके हैं मेरा ख्याल है वहाँ पे. चलो अभी हम अपने इधर के कमेंट शामिल कर लेते हैं जी. हले ना आ जाओ आज. डॉक्स वाइब्स ग्रेट शो. ना करे रहमान भाई प्लीज, मैं हंस हंस के दूरी हो ही जा रही हूँ. फिजा राजपूत कह रही है.
1: अरे थैंक यू सो मच. अगर मैं आपकी हंसी का सबब बना, देखो अब मैं सोफिस्टिकेटेड
2: दूरी
1: बातें.
2: दूरी
1: है,
2: हंस हंस के दूरी हो ही जा रही.
1: नहीं नहीं नहीं, मैं उनके हंसने का सबब बना, मैं सोफिस्टिकेटेड सी बात.
0: उन्होंने अलिफ हटा दिया है ना, अधूरी को दूरी कर दिया.
1: यार मेरे रेट बहुत गला. लेकिन ये लाइव होता है हमारा प्रोग्राम ना. यहाँ पे भी लाइव है.
0: आप लाइव हैं.
1: तो थैंक यू सो मच फिजा. फिजा नाम उनका बताया आपने, या जो भी नाम है उनका. थैंक यू वेरी मच. लेकिन वो वाले प्रोग्राम में आपने अपने आंसू तैयार रखने.
0: ओए ओए ओए, अशदीद वाले.
1: तशद्दुद वाले.
0: चले यहाँ पर. मैं वो एक्चुअली रिफ्रेश कर रहा था लोगों के नाम लिए जाए. हम काफी इधर उधर की बातें करते रहे हैं हम काफी देर तक.
2: ना हिलो यार, ऐसे ना हिलो, अच्छे नहीं लगते.
0: उस्मान बिन इमदाद हैं, जद्दा से सुन रहे हैं. इस बार ईद FM 101 के साथ गुजरी, बहुत एंजॉय किया. अल्लाह
1: वाइब के साथ अचानक थिरकने लगता हूं.
0: सबको बहुत खुशियां अता फरमाए. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. और अपने फैमिली के टाइम में से टाइम निकाल कर हमारे हमें टाइम दिया. उस्मान भाई, बात यह है, जद्दा से आएंगे जब तशरीफ़ लाएंगे, सीधा आपने लाहौर लैंड करना है. लाहौर लैंड करने के बाद मेरे ज़िया और रहमान के लिए खजूरें लेके आनी है.
1: यस यस यस,
0: 5 किलो तो काट दा पैकेट, ना काबिले कबूल है.
1: यस,
0: वाह वाह,
2: वेरी नाइस.
0: और हाँ, वो जो कावा है ना, क्या उस कावे का नाम,
1: कहवा
0: है?
1: कहवा,
0: वो स्पेशल वाला जो उनका होता, बड़ा मजेदार था. वो जरूर साथ एक एक पैकेट लाइएगा.
2: Yes, तीन बंदों की बात करें.
0: हाँ, तीनों
1: तीन ही बंदों की बात किया.
2: हाँ, बस ठीक,
0: तीनों के लिए. महजबीन, आपका मैसेज आ गया. उदास फरी.
1: उदास फरी,
0: फरी
1: ये अधूरी बातों वाली एक साइड पे लोग करते हैं.
0: अच्छा, ये उदास है सारे अधूरी बातों वाले. अभी यहाँ पे सेग्रीगेशन करते जाते हैं.
1: ठीक है,
0: ये अधूरी बातों वाली इसीलिए कह रही है. जानते हो रोजो शब कैसे गुजारे हमने.
1: या तो लड़के से नाम पढ़ो. यार तुसी नहीं पढ़ रहा.
0: जानते हो रोजो शब कैसे गुजारे हमने, तन्हाई में कितने आंसू बहाए हमने. सबके सामने मुस्कुराते हैं हम, अकेले में ना जाने कितने दर्द सहे हम.
1: ये बात बिल्कुल सच्ची है.
0: ये मैंने लिखी है, वो कह रही हैं.
1: नहीं, ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये मेरे भी मन की बात.
0: ओके,
1: यस.
0: मोहम्मद अवैस आए हैं, आपका शो बहुत अच्छा होता.
1: थैंक यू.
0: ये ज़िया
1: जो अंदर का इंसान होता है ना, वो किसी भी टाइम पे कुछ चंद सेकंड्स के लिए बाहर आता है, लेकिन आपने नोटिस करना होता है कि उसमें से असल
2: नहीं. अंदर का इंसान बाहर आ जाए तो फिर आ जाता है वो.
0: रोशनी,
1: अंदर का इंसान बाहर आ जाए तो बाहर आ जाता है.
2: जी हाँ।
1: आ जाता है ना
2: थोड़ी देर के लिए नहीं आता,
0: फिर कहते हैं बर्थडे,
2: वो मुस्तकिल आ जाता है।
1: ਐਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਥਡੇ।
0: ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕਲਬੇ ਮੋਮਿਨ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਆ ਔਰ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ।
1: ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਲਬੇ ਮੋਮਿਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੇ ਧੂਰੀ ਬਾਤ
0: ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ, ਫਾਤਿਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਸੁਨਤਾ ਹੂੰ,
2: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ,
1: ਹਾਂ
0: ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ। मोहम्मद आरिफ साहब हैं जी, इस्लाम कर रहे हैं, और आरिफ साहब बड़ी मेहरबानी दैट यू आर लिसनिंग। गुलशन मेमार कराची से आपके प्रोग्राम सुन रहा हूं। ज़िया साहब पोस्ट तो आज डॉक्स की लगी है पेज पे।
1: आप डॉक्स साहब को कसम एक बार उधर देखिएगा जरा, कैसे करना
2: था? नहीं नहीं
1: एक बार मेरे कहने
2: नहीं, वो
1: एक बार सर नहीं अब नहीं कर सकता, वो कुछ ऐसा कर रहा था।
0: ओके ओके एनीवेज जी, उन्होंने कहा
1: करीब करो ना कि
0: दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। हमारी तो ईद काम काम सिर्फ काम में गुजरी। अजीब ताज्जुब की बात है हजूर, इस कदर आप काम कर रहे हैं, सर अंजाम दिए जाते हैं, मगर फिर भी अभी भी कमी पाई जाती है, इस कदर काम मत किया करें।
2: सर और अंजाम
0: आयशा सुल्तान है। ओके, आपको वो हमने गाइड कर दिया। और आज डॉक्स वाइब्स कह रही हैं कमाल बीट, थैंक यू वेरी मच। अमर रमेश कुमार खत्री, बकरा ईद का दूसरा दिन मुबारकबाद कबूल कीजिए, नमस्कार सत श्री अकाल, जय लतीफ। ठीक है,
2: जय लतीफ जिए भुट्टो होता है,
0: चलो उधर होगा कोई। अच्छा जी, रियाज भट्टी साहब हैं, उन्होंने चाय का कप भेजा, ईद का दूसरा दिन मुबारक। मोहम्मद आरिफ साहब जी, मुझे एक बात बताएं, आप क्या आपके दांतों में दर्द है, इतना बता दें।
2: ये सेंसोडाइन के इश्तिहार आया डायरेक्ट।
1: किन किन किन से पूछा इन्होंने? डॉक्टर से पूछा?
0: हो सकता है मेरे से पूछा हो।
1: वो ना प्रोसेस कर रहे हैं, अल्लाह की कसम की यार ये क्या बात हुई।
0: नहीं मैं वो दोबारा खोल रहा हूँ, मैं टाइम देख के बताता हूँ।
1: खोल ले,
0: ये दो घंटे पहले की बात है हजूर। आप मुझे बताए। आई एम फैन यू प्ले लिस्ट या भाई, कमाल कमाल के ट्रैक चलाएं, फिजा राजपूत।
1: अच्छा ढोल है यार, कौन लोग है ये? ज़िया तुमने कमाल के ट्रैक चलाए हैं, रहमान तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, डॉग साहब क्या कर रहे हैं यार, ये क्या?
0: ओके, ये सब जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब आप असातज़ा की करम नवाजियाँ हैं, आपसे ही सीखते हैं ये सब करना बोलना, आप के दूर होते हुए भी आपके लफ्जों के साथ आपको तोलना। ऐ संजीदा जी गल कर रही,
1: अधूरी बातें कह ये लोग ना एक साइड पे।
0: ओ भाई साहब बहुत ही अच्छा, ठीक है। बिनते सिद्दीक टॉप ऑफ द टॉप आरजे ज़ियानजम, और उसके बाद सुपरस्टार आज रहमान अनवर, ग्रेट आज डॉक्स, थैंक यू वेरी मच। तीनों के नाम के आगे आपने आंखों में दिल आए, मेरे नाम दे अगे डॉलर वाला काल देते ज्यादा अच्छा लगता
2: भाई साहब।
0: आई हैव नथिंग टू डू विद द इमोशंस, यू नो आई एम अ गोल्ड डिगर।
1: अच्छा ही अच्छा अच्छा
0: है ना,
1: अच्छा अच्छा अच्छा इमोशन से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं पैसे का पुजारी यार, गोल्ड डिगर है
0: ज़िया,
1: फिर भी ऐसे की कर सकते हैं, गोल्ड डिगर भी हो गए
0: ज़िया, आपने भी खुद ही कुर्बानी की है। अच्छा, कसाई बुलाया था, पुरानी बातें हो गई। ठीक है जी, बिनते सिद्दीक ने फूल भेजा है गमले के साथ, फिर कहती हैं ओके फाइन, इश्क कयामत है, इश्क इबादत है, कोई तौबा करे कोई सजदा करे,
1: ये ना आवाजें उसमें जा रही होंगी, मैं तुझे बता रहा
0: हूँ। और इसके अलावा जी ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच जी एवरीवन, आप सबको बहुत शुक्रिया, आप लोगों के पैगाम मौसूल हुए, आ रही आवाज ना करे।
1: ये बड़ी मजे की आवाज
0: ना करे। चले जी, मेरा ख्याल है काफ़ी कोटा पूरा हो चुका है, और यहाँ पे इजाज़त लेते हैं, हमने काफ़ी इधर उधर की बोंगियाँ मार ली। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ ले जा,
1: अधूरी बातों के
2: साथ ले जा,
0: टूटा हुआ एक करारे वफा साथ ले जा,
2: साथ ले जा।
0: एक दिल था जो पहले ही तुझे सौंप दिया था, ये जान भी है जाने अदा, साथ लिए जा,
2: साथ ले जा।
0: तपती हुई राहों से तुझे आंच न पहुंचे, दीवानों के अशकों की घटा साथ लिए जा,
1: साथ,
2: साथ ले जा।
1: ओके।
0: शामिल है मेरा खून ने जिगर तेरी हिना में,
1: आए हिना में,
0: तुम्हें हिना लगी है?
1: क्या है, खून है
0: ये, कम हो तो अब खून वफा साथ लिए जा।
1: हम
0: जुर्म में मोहब्बत की सजा पाएंगे तन्हा, जो तुझसे हुई हो वो खता साथ लिए जा,
2: नो ले जा,
1: वो भी ना ले जा, मतलब वो भी ले जा, हाँ मतलब जो भी है
2: ले जा, ले जा।
1: दो बार उसमें उसका भी जिक्र है। बहुत प्यारी बातें की हैं।
0: क्या बात है, छा गई हैं आप।
1: अरे वाह वाह।
0: हेलो
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: अरे उनको बात कर ले तो।
0: रिमशा, रिमशा का परसों निकाह गालिबन हुआ है। परसों हुआ है?
3: नहीं, 25 को।
0: 25 को निकाह हो गया है।
1: अरे वाह, मुबारक मुबारक।
3: खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो।
1: अरे
2: हम तो दुख में हैं।
0: थैंक यू।
1: क्यों
3: आप लोग दुख में हैं? क्यों
1: क्यों क्यों दुख में?
2: बकरा
3: जिपा। मैंने कहा दुख की वजह क्या है?
2: हम तो
1: भाई के दुख में हैं, भाई के दुख में।
2: विदा हो रही हो ना अब तुम, फिर कैसे सुना करोगी हमें?
1: हाय
3: सुन तो नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं सुना करूंगी।
1: कान उनके बिल्कुल सलाम।
2: दुबई में नहीं आता ना सिग्नल 101 के?
3: कोई बात नहीं,
1: रेडियो पाकिस्तान की एप्लीकेशन है, मैं जरा थोड़ा सा इश्तिहार इसमें दे दूं। रेडियो पाकिस्तान की एप्लीकेशन radio.gov.pk www.radio.gov.pk, उस पर भी वो सुन सकती हैं, कहीं पे भी दुनिया में रहते हो तो मसले वाली बात नहीं, टेंशन ना ले।
2: वेरी नाइस,
1: रोना नहीं तुम।
0: थैंक यू वेरी मच।
3: नहीं नहीं, क्योंकि इस रेडियो ने मुझे बहुत बहुत मजबूत किया है।
1: अरे
3: मैं इतनी मजबूत इतनी पहले नहीं थी जितना इस रेडियो ने मुझे मजबूत कर दिया। आप लोग भी बातें सुन सुन के मैं मजबूत हुई, आप लोगों ने हौसला दिया। आप ये एक रेडियो ही होता है जिसे इंसान कुछ बर्दाश्त करना सब्र करना सीख जाता है।
2: रिमशा को तो पता है कि हम ऐसा प्रोग्राम नहीं करते।
3: नहीं नहीं, लेकिन ना भाई कभी कभार इंसान को ना थोड़ा सा फ्रेश मूड भी होना चाहिए, थोड़ा सा ना जो कहते हैं ना हल्ला गुल्ला मचा देना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी में इंसान को एक बार ही मौका मिलता है, बार बार मौका थोड़ी ना मिलता है।
1: इस करके मैं कदों कह रहा सी माफिया मंगन की लोड़ नहीं है लोगों को पता।
0: आपने रहमान कुसागर को सुना?
3: जी बिल्कुल, ये बैठे मैंने आपके पास।
1: हसन कुसागर थे वो, मैं रहमान।
2: ये तो रहमान
1: अनवर है, अनवर
2: रहमान।
3: लेकिन ये जो भी है, है तो रहमान भाई ना जो शो करते हैं
2: डकैत
1: क्या,
3: और आप तीनों बहुत ही प्यारा शो करते हैं। आप लोगों की बातें जो होते हैं बहुत मीठी होती हैं और बहुत मजा आता है सुन के। आज तो बहुत मजा आया, जो है ना रहमान भाई वाकई से धार से ही मारते हैं।
1: क्या मारते हैं?
3: धार
1: से ही मार
0: देते हैं ना। हाँ धार सही है ना, हम पेंडू ऐसी तारा कुछ और ही समझने।
1: कोई नहीं, कोई नहीं, कर लो माफी।
2: हम अच्छा प्रोग्राम करते,
1: अच्छा प्रोग्राम करते,
2: आगे पीछे हम
1: नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, डॉग्स कुछ नहीं हुआ। ठीक है रिमशा, झुकते मार रहे, झुकते मार रहे हैं।
2: रिमशा क्या हाल है?
1: कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, रोना नहीं है अपने। ये मैं ही हूँ जो ले जाता हूँ उधर। ठीक है रिमशा, थैंक यू।
2: बहुत जब्त है तुम्हारा, बहुत कंट्रोल है।
1: क्या क्या
2: है? बहुत जब्त है तुम्हारा, बहुत कंट्रोल है।
1: जब तो है फिर,
2: है ना। नाइस पर्सन यू आर।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: पिंड च जा ना सवेरे सवेरे उठा दें दी पोपो, और चल उठ जा अपने भरा दे नाल जा के तारा चो के लिया।
1: हां
0: पता कहंदा सोन दे लरवाए, जा
1: जा जा जा जा सिख किया
2: जावे कावा जा।
0: फिर उधर मेरे दे बंदे नु जुतियां भी बड़ी पैंदियां, तेनु माज थल्ले ठोरो कट्टे थल्ले जाना है।
1: Yeah.
2: यार ये जो हंसते हो ना ये जो टोन ये जो टोन है ना ये जो है ना मतलब
1: कह नहीं सकता लाइव है हम नहीं तो यकीन मानो मैंने तुझे कुछ कहना था यार अच्छा ठीक है कैसे कैसे
0: anyways जी आसमा फरकत कहती है रहमान के अंदर का इंसान आज बाहर ही है मस्ती ही मस्ती ओके मोहम्मद अबैस कहते हैं 2 साल से आपको सुन रहा हूँ आज डॉग्स बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना थैंक यू वेरी मच फॉर
1: अच्छा मैं यहाँ पे एक सीरियस एक बात करना चाह रहा हूँ
0: और बर्थडे अनाउंसमेंट किसी की करवाना चाहते हैं बिल्कुल आप बताएं यार कर देंगे क्यों नहीं करेंगे शकील अली नाइस बोथ ऑफ यू आप दोनों को शकील अली पसंद कर रहे हैं
2: हम दोनों को पसंद कर लिए शकील ने
1: ये वाली ना ये मुझे भी समझ आया तू ऐसा इंसान है ना नहीं यार ये शकील पसंद कर लिया ना मुकरना ना ठीक है नहीं नहीं मैं बस ये सीरियस बात ये कहना चाह रहा हूँ अमूमन जो है वो मिजाज जो है ना वो मेरा डिफरेंट है यार और मैं भी तो माफी मांग रही है ना
2: अच्छा
1: यार आप लोग मुझे क्यों नहीं सीरियस रहने देते यार मेरी बात सुने एक मिनट आवाज आ रही है अस्सलाम वालेकुम हेलो अच्छा उधर गल भी कर रही है ना अच्छा बीच में चपड़ी भी गल कर दे रही है ठीक है अस्सलाम वालेकुम मेरा एक यहाँ पे इम्तिहान लिया जा रहा है जी क्या हाल चाल है क्या नाम है आपका तो सोते हुए क्यों बात कर रहे हो जरा ऊंचा आवाज से बोलो ना ताकि मुझे तुम्हारी आवाज तो सुनाई देना यार ये डॉक्स ये थोड़े सा ऊपर करें लेवल इसका हाँ ठीक है ये लेवल ठीक है अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था यार तुम मेरे सीरियस रहने दे रहा एक मिनट हाँ ये देख
2: ऐसे हंसते होते
1: नहीं नहीं
2: हाँ
1: मैंने सीरियस होना था हाँ ये ठीक है यार एक मिनट यार तुसी हाँ कैसे अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था अमूमन जो
0: किसी ने पूछा था आपके वो जो फन कास्ट की दूसरी एपिसोड दी है
1: नहीं वो दरअसल किसने पूछा था
0: किसी ने पूछा था
2: वो हमने 3 दफा रिकॉर्ड की थी
1: हाँ उसमें जो पहली दफा था ना उसका
0: वो मामला 14 साल के सफर पे फंस गया
1: नहीं नहीं फंसा नहीं अभी क्योंकि वो यहाँ पे बैठा हुआ है कर रहा है प्रोग्राम पिछले 14 साल से 14 साल यार ये एक तवील अरसा है मैं ये बात बोलना चाह रहा था बहुत सीरियस इंसान हूँ मैं वैसे आम जिंदगी में लेकिन जब ऐसे दोस्त मेरे साथ होते हैं ना बिल्कुल नहीं आसाना यार मैं तुम्हें दस यार देखो मेरी बात सुन यार मैं सीरियस हूं यार इस टाइम यार
2: वाह
1: ये भी नहीं समझ आई यार
2: ऐसे बात भी निकाल लेते
1: ये मुझे करने ही नहीं दे रहे बोलने ही नहीं दे रहे ये लोग कौन है ये लोग है मैं ये बताना चाह रहा था मैं वैसे बहुत सीरियस इंसान हूं लेकिन अमून ऐसा होता है अस्सलाम वालेकुम जी कोई कॉल आई अच्छा नहीं ठीक है क्योंकि आप मेरे साथ ऐसे ही करते रहते हैं ना मेरे लफ्ज निकला लगा सी मेरे हाँ अस्सलाम वालेकुम जी आ देखिए आ गई ना कौन कट दो हाँ जी कौन बात कर रहे
0: हैं ये इसमें डिस्टॉर्शन है
4: सर जी मैं लाहौर चार ब्लॉक से मनवीर बात कर रहा हूँ
1: अरे क्या हाल चाल है आपका ठीक ठाक हो
4: ये दम खुश थे हर दम खुश मैं कहा लगता पता नहीं कैंची फड़ी थी मेरे भरावा ने फटाफट ही कॉल कटी थी
0: आवाज क्लियर नहीं आ रही
1: आवाज क्लियर नहीं आ रही थी आपकी डिस्टॉर्शन आ रही थी इस वजह से
4: अच्छा
1: दोबारा डिस्टॉर्शन शुरू हो गई आओ करना पड़ना था थोड़ा यार नहीं यार डिस्टॉर्शन आ रही है दोबारा से मुझे लगता है कॉल करनी पड़ेगी इन्हें मैं ये बता रहा था मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ जब ऐसे दोस्त मुझे मिलते हैं जिनके साथ बचपना बांटा जा सकता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है तो ये वो दो दोस्त हैं मेरे ज़ियानजुम और अर्जे डॉक्स जिनके साथ मुझे बोलते हुए किसी चीज़ का खौफ और डर नहीं होता बस मैं ये जानता हूँ कि मेरे इखलाकी तकाजे क्या हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे लाइव यार तू एक मिनट ठहर जा यार क्योंकि यहाँ पे लाइव हम जो है ना वो बात कर रहे हैं
2: अच्छे अच्छे आदमी
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे इस तरह से गपशप करना हंसना मुस्कुराना हर तरह की बात करना اور یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں کھل کے ہنسا ہوں. آج ویسے ڈاگس بھی کھل کے ہنسے ہیں کافی لمبے عرصے کے بعد نا,
2: چھپ چھپ کے ہنسے,
1: چھپ چھپ کے ہنسے ہیں, ڈیسک
2: کے نیچے جا جا رہے ہیں,
1: ہاتھ اوپر جوڑ جوڑ کے ہنسے. اچھا یہ میں نے پھر سے کیا
2: ہے نا,
1: یہ ٹھیک ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا ان دونوں دوستوں کے ساتھ, تھینک یو ویری مچ دوستوں, اسی طرح سے مجھے ہنساتے رہو. میرے اندر کا جو سیریس انسان ہے وہ بہت سیریس ہے, تو اس کو کبھی سیریس زیادہ مت ہونے دیا کرو جب میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا. ضیا رونا نہیں ہے اس بات پہ,
2: بڑی عید پہ کہلے,
1: بڑی عید پہ کہہ دیا کر, چلتا ہوا چلتی ہوئی بات پاک ہوتی ہے کہنا. یہ دوندا ہے تھوڑا سا, یہاں سے چوگا بھی ہے, اس کے دانت میں نے دیکھ لیے. بس یہاں پہ ختم کرتے ہیں میرے خیال سے ڈاکس پروگرام, کافی کافی لمبا ہو گیا
0: بھائی. میں نے تو بڑی دفعہ کہا آپ ہی باز نہیں آ رہے.
1: نہیں میں ختم کرتے ہیں یار, سوری یار میرے کو غلطی ہو گئی. بائی دا وے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جتنے بھی لوگوں نے اس پروگرام میں ہمیں سنا, برداشت کیا ہماری بونگیوں کو, ہماری مسکراہٹ کو, ہماری ہنسی کو.
5: گر پڑو
6: ابا, اب میں گدا نہیں راجا ہوں, راجا اب جاؤ مجھے سونے دو.
5: سولو بیٹا سولو, کیا پتا آگے
1: کتنی دیر سے پلان پورا مرتب ہو رہا ہے ان کے دماغ میں, کتنی دیر سے یہ خاموشی کے ساتھ مجھے بولنے دے رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں کہ کیڑا سیکھا کیڑا سیکھا کتنی.
0: یہ ڈیڈیکیشن ہے میرے اور ضیا کی طرف سے رحمان کو.
1: تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ, دھنی ہو گیا,
0: تھینک یو ویری مچ جی, ٹیک کیئر, کل ملاقات ہوتی ہے. And we are not saying anything sophisticated because we are not sophisticated actually.
1: ye baat bhi sahi hai, maan lena chahiye
0: waise hum theek hain lekin waise hum aisa show nahi karte. yakeen kare teri meri
2: film. bahut shukriya dosto, fi amanillah, allah hafiz, apna khayal rakhiyega, eid mubarak.
0: عید مبارک جی, ونس اگین کل ملتے ہیں, عید آپ کے ساتھ مل کے عید کو رخصت کریں گے ہم. اوکے بائے بائے. اب یہ رحمان آپ کے لیے شروع کے ڈائلاگ, پلیز غور کیجئے گا.
5: بیٹا اتنا اونچا نہ اڑو کہ گر پڑو.
6: ابا اب میں گدا نہیں راجا ہوں راجا, چلے ابا اب جاؤ مجھے سونے دو.
5: سولو بیٹا سولو, کیا پتا آگے چل کے نیند آئے نہ آئے.
6: بیچارے ابا گدے کے گدے ہی رہ گئے. چلو راجا صاحب سو جاؤ.

0: रेडियो पे कर रहे हैं।
1: भैया लाउड स्पीकर तो बंद करें ना आप। हाँ बोलें, क्या कह रहे थे?
2: प्रयास जॉनी सिंह।
0: जॉनी
1: उसको क्या
0: आपने सुना है?
2: असल में यार उनको शुगर हो गई, उनके पैर में जो है ना बहुत पेन हो रही है आजकल, पट्टियां वट्टियां करवा रहे हैं।
3: किसको शुगर हो गई?
1: अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा दे हुजूर, बड़ी मेहरबानी। खुश रहे, आबाद रहे। दुआ करते हैं, मेहरबानी, आबाद रहे, आबाद रहे। क्या मतलब हुआ इस बात का?
0: वो मैं गाना लगाए फिर बताऊंगा, लगाए कर रहा
1: हूं। नहीं कॉल लेते हैं ना, रुको यार। कौन सी लूं कॉल?
0: मेरी मर्जी ला लो, अकड़ बकड़ करके ला लो।
1: अकड़ बकड़ बबे बो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छा हूँ जी। कौन है, कहाँ से?
4: हमना फ्रॉम जर्मनी।
1: ये क्या बात हुई?
0: हमना फ्रॉम जर्मनी।
1: आप पाकिस्तान आई हैं, आपको वेलकम करते हैं। आप ईद गुजारने आई हैं?
4: फर्स्ट टाइम कॉल की है मैंने आतर भाई। आपको दिशान भाई आए हुए हैं?
0: दिशान भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम
4: दिशान भाई, से बात करवा दो प्लीज।
1: यार ये क्या बात है, ये क्या बात है मेरे।
0: जी वालेकुम सलाम।
1: मैं जा रहा हूँ यार।
0: खैर मुबारक आज हो यार। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक।
1: मैं नहीं बोलता,
4: मुझे यकीन नहीं आ रहा दिशान भाई आपसे बात हो रही है। मैं एक साल से दिशान भाई को सुन रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम मेरी इस्लामाबाद में कॉल लगी है।
0: बस देख लें आतिर भाई की मौजूदगी
1: बड़ी नहीं है वैसे, यकीन कर लो।
4: लाहौर में तो लगी नहीं, चलो इस्लामाबाद में लगी। मैंने बस सिर्फ दिशान भाई के लिए,
0: मैं लाहौर आ रहा हूँ कमी
4: भाई को बात करनी थी मैंने।
0: हाँ जी खैर, और सुनाए आप जर्मनी से इतने अच्छे एरिया से इतनी गर्मी में लाहौर क्या करने आ गई हैं?
4: छुट्टियाँ हुई है ना कॉलेज से, तो हम हर इवेंट पे पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान ही।
0: मुझे भी समझ में नहीं
4: आता है
0: कैसा सवाल है। अच्छा नहीं तो वो कॉलेज से छुट्टियाँ गुजारने आप पाकिस्तान आई हैं?
4: जी।
0: और उधर भी 3 महीने की छुट्टियां होती है जिस तरह पाकिस्तान में होती है, थोड़ा बताएं हमें, एजुकेट करें ना वहाँ के बारे में, ताकि हमें पता चले कि आप वाकई जर्मनी से हैं या वो वाली कॉल जो अक्सर कॉल करके कहते हैं।
4: मेरी छुट्टियां भूल गई हैं, नेक्स्ट फ्राइडे हम जा रहे हैं वापस।
1: फर्स्ट टाइम एक्साइटेड है, आप बातें क्या कर रहे हैं
0: यार? मैं अब क्या बात करूं, एजुकेशन
4: बात, एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं।
0: ये आतिर भाई और दिशान भाई दोनों मिक्सचर आपको आप तक पहुंच रहा है ना, आप बेफिक्र हो, टेंशन वाली बात नहीं। आज ईद है ना तो हम थोड़े से एक्साइटमेंट में।
4: अभी मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा दिशान भाई की आवाज लाहौर में नहीं आ रही, अभी लाहौर वालों ने पहले माइंड अप किया और जैसे ही आई है आवाज तो मैंने कॉल स्टार्ट करी, मैंने कहा दिशान भाई से बात हो जाए। और
0: अच्छा अल्लाह की कसम हमारे साथ एक और आरजे भी है,
4: वहां से मैं मैसेज नहीं करती, मेरी आदत ही नहीं है मैसेज करना ना।
0: हां नहीं सही करती है,
1: महंगा भी पड़ता है।
0: दूसरा आप बाकी पैकेज हो तो डायरेक्ट बंदा इंस्टा पे करे, इधर मैसेज करने का हमें क्या फायदा।
4: मैंने किया आपने
1: उसके बाद यकीन करो मैंने नहीं बोला।
0: अच्छा
1: जब मैंने सुना नुमान ने कहा मैंने नहीं बोला, मैंने कहा नुमान का पेटेंट हो गया ये।
0: अच्छा
1: जी क्या क्या कह रही हैं आप हमना?
4: मैंने कहा मेरी भी तो सुन लो यार।
1: हां जी सुना सुना सुना।
4: पूछ रही है दिशान भाई क्या कुर्बानी की है आपने?
0: यार हमने अगर वैसे आप पूछ रही हैं तो हमने वेड़ा ज़बा किया है, और अगर आप उस तरह से एक आर्टिस्टिक जवाब चाहती हैं तो मैंने अपनी अना कुर्बान की है।
1: नहीं
0: हां जी वैसे अगर आप जानवर का पूछ रही हैं तो हमने जो है वो काओ की है, पुकी काओ।
4: मुझे नहीं लग रहा है दिशान भाई की आवाज है।
0: आपको नहीं लग रहा कि अल्लाह की कसम है दिशान ना सर यार, ये कोई
1: क्या
0: आपकी सही कॉल
1: नहीं, क्या यार जी जिसको कसमें खा के बताना पड़ेगा।
0: नहीं नहीं
1: एक मिनट मैं बता दूं वो क्या अर्जे हुआ जिसको,
4: मुझे पता है निशान भी नहीं बात कर रहे हैं, ये किसी और की आवाज है।
1: मेरे भाई मैं बताऊं वो हमारे साथ गेम कर रही हैं, उन्होंने आतिर भाई से स्टार्ट लेके निशान भाई पे स्विच कर दिया और निशान भाई को कह दिया मैं आप वो है ही नहीं।
0: चले हम इनके साथ एक गेम खेलते हैं आपके साथ,
4: निशान भाई से बात कर रहे हैं प्लीज।
0: अच्छा सुने तो सही, हम ऐसा करते हैं कि तीनों बारी बारी आपसे बात करते हैं, आपने हमें बताना है कौन सा आरजे आपसे बात कर रहा है. लेट्स प्ले द गेम देन. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. हमने
3: हाँ. मुझे बताया कि जर्मनी से
0: यार उन्हें तो नाल गाल कर दूं मेरे नाल.
3: जर्मनी में फेवरेट आपका फूड कौन सा?
0: आलू छोले.
4: हेलो सर, आवाज डिस्टर्बेंस हो गई है. हेलो, क्या कह रहे हैं दोबारा मुझे
3: बताएं. जर्मनी में सबसे बेहतरीन मौसम आपका कौन सा?
1: पूछना आपने ये था मेरा नाम क्या है.
4: मेरा नाम क्या और आपसे पूछने लग गए हैं यार.
3: अच्छा हम ना, अच्छा बता दे मेरा नाम क्या.
4: क्या कह रहे हैं यार, समझ नहीं आ रही है. प्लीज सॉरी,
3: बस समझने की जरूरत है. मेरा नाम क्या है?
4: नुमानी वासी.
1: मुझे जानती हैं आप?
4: आते अली सैयद
1: भाई हैं. बंदे को बोले तो आवाज से पहचाने. आरजे उसको कहते हैं.
4: सैयद भाई की आवाज ना
1: पहचाने. अब बोलो.
0: सो हम ना, मुझे बताइए ईद कैसी गुजरी आपकी, और ये बताइए कि कौन बात करे आपसे अभी.
1: हम ना, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें आधा घंटा प्रोग्राम सुने ना, फिर दोबारा कॉल करें.
0: और
4: अभी तो लाहौर में आवाज आई है.
0: बल्कि आप कॉल के बाद अपना मोबाइल तोड़ दें.
1: आधा घंटे बाद
0: ऐसे जाकर दोबारा कभी कॉल.
1: अच्छा अच्छा,
0: अरे कितनी कौन सी निशान अवान की बात तो नहीं कर रही है.
1: अच्छा मैंने आपको क्या कहा, हम ना आप आधे घंटे बाद दोबारा कॉल करें, ठीक है? आपकी कॉल लेंगे इंशाल्लाह.
4: ठीक है, लेनी है.
0: लेंगे लेंगे लेंगे वो हम जो है. यार क्या इसमें यार, मेरी बात तो सुने. वो कह रही थी कि जब मैं बात करूँ, कहती नुमान भाई मजाक ना करे. मजाक मुझे नहीं पहचान रही, उसका इतना दुख नहीं हो रहा है. मुझे ज्यादा दुखी हो रहा है कि मुझे मेरी आवाज निशान वो नुमान समझ रही है मुझे.
1: नहीं ये नहीं वो समझ रही भाई, उन्होंने साफ साफ कहा है नुमान.
0: अच्छा दो मिनट यार, एक जब से आप बैठे हैं हेडफोन आपको तंग है या खुला है, क्या मसला? हर दो मिनट के बाद आप इसको दबा के क्या फील कर रहे हैं?
3: खुला है.
0: अच्छा खुला है. ये देखिए ना, साथ साथ बात आप नोट कीजिएगा. अभी हर पांच सेकंड के बाद ही ऐसे ऐसे करते थे.
1: हर आरजे का यार एक अपना अपना स्टाइल होता है.
0: जाहिर है स्टाइल.
1: लेकिन यार उस बंदे ने एडमिट किया कि उसने मेरा जुमला पकड़ा है.
0: अच्छा आप मतलब शो सुन रहे थे कभी आतिर भाई का, और आपको जुमला पसंद आया और आपने लिया?
3: नहीं नहीं.
0: तो फिर क्या ख्वाब में आए थे आतिर भैया?
3: नहीं तो मैं तो इसी तरह कहता हूं कि
0: सर फिर आपने लिया है.
1: नहीं
0: कह रहा है कि आपने जुमला लिया है.
1: नहीं अभी उसने एडमिट किया कि हां आंखें यूं करके, हां यार हुआ है मेरे से ये.
0: बता दे
1: वो मुकर गया.
0: नहीं अगर है भी तो
1: मुकर
0: गया यार. मैं बताता हूं बहुत जुमले ऐसे, मैं बहुत सारे जुमले ऐसे बोलता हूं जो मैंने मुख्तलिफ बोलने वालों से लिए हैं, तो अच्छे लगते हैं तो बोल लेते. तो आपने लिया जुमले?
1: कुछ जुमला था नहीं है मेरे से लेने वाला, अगर वो बंदा भी करते तो खैर.
0: नहीं वैसे आपने लिया
3: आपके शो का, मैंने एक लिया
0: आतिर भाई से
3: सुनने को सुना.
0: मेरे से तो लिया आपने, आतिर भाई से लिया आपने?
3: नहीं
0: यार जुमला नहीं लिया.
3: जुमला नहीं लिया ना.
0: अच्छा ठीक है ठीक है, वो कह रहे नहीं लिया मैंने.
1: कोई आदि कोई ऐसी बात भी नहीं थी बड़ी. अच्छा क्या करना है अभी? ईद ईद मुबारक
0: सर. चार बजे तक हमने यही करना है.
1: चार बजे तक?
0: हाँ वो बारह से चार है ना शो. हाँ चार बजे तक.
1: मतलब क्या तुम्हारे पास तुम आ गए हो?
0: सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी.
1: ओके तो फिर कॉल लूं एक और
0: जी.
1: अकड़ बकड़ मम्मी को
0: 80-90 पूरा 100.
1: अस्सलाम वालेकुम.
5: सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
5: सैयद इस्लामी कराची से.
1: जनाब कैसे हैं?
5: अल्हम्दुलिल्लाह. विशाल नाजिर साहब सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ईद मुबारक आपको.
5: आपको भी बहुत मुबारक हो.
1: यार तुमने 11
5: कैसे बकरीद गुजरी आपकी?
0: जी बहुत अच्छी गुजरी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं.
5: अच्छा ये थोड़ा सा एक फॉल्ट है, अगर इसको आप दुरुस्त कर दिया करें कि आप लोगों को करोड़ों लाखों लोग सुनते हैं, तो ये वक्तन को वक्तन बता दिया करें कि ये कॉल इस वक्त लाहौर पर प्रोग्राम चल रहा है या इस्लामाबाद से चल रहा है. ये इसमें हम लोग कॉलर धोखा खा जाते हैं, और कभी कहीं का नंबर मिलाना होता है तो कहीं और मिला लेते हैं, कभी 051 करना होता है तो 042 लगा लेते हैं. ये मतलब ये बताना चाहिए आपको थोड़े थोड़े वक्त के बाद.
0: इसका एक हाल तो सर ये है कि अगर आप सोशल मीडिया देखें ना, तो उसमें जो पोस्ट लगी होती है उस पर मेंशन होता है कि कौन से स्टेशन से प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपकी जो सजेशन है उस पर अमल होना चाहिए और हर दो मिनट के बाद बताना चाहिए कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं।
5: आपको जाहिर सी बात है कि ओल्ड सिटीजंस के लिए तो बताना चाहिए ना।
0: हाँ सही बात है, आप ओल्ड है नहीं
5: सर। अब हम आपकी तरह तो जवान है नहीं।
0: आपको कैसे पता सर हम जवान
5: नहीं? हमें पता है, आवाज बता दी, आवाज भी तो तस्वीर दिखाती है।
0: सही बात, सही
5: आवाज से भी पता चल जाता है। निशान भाई तो आपको तो पता ही है क्या शान है उनकी।
1: जान भाई बात कर रहे हैं आपसे।
5: उनके तो नाम के साथ ही शान है।
1: वो क्या रहा है यार?
0: यार ये मुझे लग रहा है माइक पे वॉइस चेंजर लगाया हुआ है इसने।
5: ईशान मास्टर साहब, आपने ना अपनी कुर्बान की है और इससे बेहतरीन कोई वजाहत नहीं है।
0: मैंने सर मार दिया
5: अपने नफ्स को कुर्बान कर दे
0: बस सर, बहुत
5: अपनी मैक की कुर्बानी दे
0: सर। मैंने मार दिए, आप यकीन करें मैंने मार दिए।
5: क्या
0: मैं कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं।
5: तो तबावे सीओ को करवटे हरसो बदलता हूँ, तबावे सीओ को करवटे हरसो बदलता हूँ, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलता हूँ। हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में एक वेव चल रही है। अब हमने कौन कबाब बना रहा है? सीख कबाब, हम खुद सीख कबाब बने हुए हैं आजकल।
0: हाँ, कराची
5: आपको पता है, कराची 44-45 इस तरह जा रहा है।
0: होए होए होए होए, सही बात है सर, सही बात है, सही बात है।
5: और यानी जलाग से निकल के शहर जाए राह में, जलाग से निकल के शहर जाए राह में, पड़ जाए लाश आवरे पाए निगाह में।
0: तो हमारा शायरी वाला आरजे भी स्टंट हो के रह गया की हो रहे हैं। जी सर।
5: और अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि पड़ जाए लाख आबले अकबर के बदन में, पड़के जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून।
1: किसके ऊपर?
5: बहुत बहुत गर्मी है
0: सर, अल्लाह आपकी गर्मी दूर करे और वो मतलब मौसम अच्छा करे कराची का। और अच्छा तो नुमान भी आप किसी कह रहे थे, पता नहीं किसी बात पे बात करने के लिए कह रहे, क्या आप कह रहे थे बोलिए?
3: योमे तकदीर के ऊपर जाहिर है,
0: थोड़ा ऊंचा बोलना यार।
3: कल 28 मई थी और योमे
1: आज 28 मई है भाई,
3: नहीं आज 29 हुई,
0: वो 12 बज गया।
1: अच्छा 12
3: बज गया, आज 28 मई थी और योमे तकदीर।
0: क्या हुआ था आज के दिन?
3: आज के दिन
0: पाकिस्तान
3: एटमी कुवत बना था।
0: मतलब थोड़ा सा करें ना, एक्सप्लेन करें, लोग आपको सुन रहे हैं, कहाँ पे धमाके हुए थे?
3: चागी के मकाम पे धमाके हुए थे।
0: गुड यार, वेरी नाइस। आगे आगे हैं क्या करवा ले?
1: इसके बाद मेरी वाली तस्वीर डिलीट ही करवा।
0: अच्छा चागी के मकाम पे, और चागी कहाँ पर वाकई है?
3: बलोचिस्तान।
0: अरे क्या बात है यार, तूने पाकिस्तान स्टडी सही पढ़ी है इसका मतलब। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे?
3: प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई थिंक नवाज शरीफ थे।
0: जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ नुमान के लाइफ में खुश रहने के लिए जरूरी क्या है, ये बताओ पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है यार जिंदगी में खुश रहने के लिए ये बड़ा जरूरी है?
3: खुश रहने के लिए,
0: हाँ जी,
3: खुश रहने के लिए सबसे पहले तो लाइफ जरूरी है, लाइफ के बाद खुश रहना जरूरी है।
0: आपने किसी मुर्दे से ये सवाल पूछा देखा है किसी को कि भाईजान खुश रहने के लिए लाइफ जरूरी है? क्या जरूरी है कि बंदा सर थाने में पड़ा और ठग ठग, भाईजान खुश रहने वास्ते की जरूरत है? हाँ जी,
3: ट्रैवलिंग जरूरी है,
0: ट्रैवलिंग जरूरी है। डू यू एग्री
1: खुश रहने के लिए? हाँ। नहीं नहीं, ट्रैवलिंग तो छोटा सा पार्ट है ना। तुम उसकी क्लास ले रहे हो, मैं इसमें क्या बोलूं, मैं को फलसफा दे दूंगा।
0: नहीं नहीं आप करें ना यार, अब बात से बात निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोग, अब जाहिर है
1: बात से बात। नहीं पहले कर लो थोड़ी सी।
0: अच्छा ट्रैवलिंग जरूरी है?
3: हाँ, ट्रैवलिंग
0: अकेले या किसी के साथ?
3: अकेले भी हो जाए किसी के साथ भी हो जाए, ये तो मैटर करता है
0: ना। आप लास्ट टाइम कहाँ ट्रैवल किया आपने?
3: मैंने लास्ट टाइम कराची।
0: किसके साथ?
3: अकेला गया
0: था। मतलब बाय ट्रेन गए थे, बाय बस गए थे? कैसे?
3: बाय बस
0: गया। कितनी देर में पहुंचे थे?
3: 21 घंटे में।
0: माशाल्लाह,
1: खुश हुए थे?
3: मैं आपको बताता हूँ
0: कहता नहीं है। ये फुटबॉल देखा हो ना, तो वो पास पास दे के एड पे आखिरी गोल जो करता है वो ही उन्होंने किया। हाँ जी, अच्छा हाँ कुछ कह रहे थे, कहने थे। हाँ जी,
3: वापस आके फिर जाहिर है
0: वापस आके खुश हुए थे। ऐसा कराची में क्या हुआ कि तुम वापस आ गए?
1: उसको था बीच का शौक, कराची जाके पूरा हो गया। वो आते वहां इसने फेसबुक पे देखी थी पतोंग बीच, ठीक है, थाईलैंड की बीच है, ये निकल गया बस पकड़ के कराची में अकेला, ठीक है, वहां पे रहते ऊंट,
0: ऊंट पे बैठे थे,
1: क्या करना था ऊंट में,
0: नहीं
3: जिस तरह बता रहे
0: घोड़े पे बैठे थे, घोड़े
3: मैं आपको बताता हूँ, घोड़े पे भी नहीं बैठा था
0: यार।

0: क्या किया
1: मैं
0: है तुम
1: आपको बताता
0: कराची
1: हूँ,
0: जाके
1: मैं
0: ना
1: बीच
0: ऊंट
1: पे
0: पे बैठ
1: गया,
0: ना घोड़े पे बैठ।
1: मैं बीच पे गया तो मैं बीमार हूँ।
2: सदमा। अब मेरी बात सुनो, सवाल तुम्हारा ये था कि यार जिंदगी में खुश होने के लिए क्या
1: खुश होने के
2: चाहिए।
1: लिए
2: वो कह
1: क्या
2: रहा है
1: चाहिए?
2: ट्रैवलिंग,
1: ट्रैवलिंग
2: फिर वो कह रहा है मैं गया
1: नहीं
2: कराची
1: नहीं
2: ट्रैवल
1: देखो
2: करके
1: देखो
2: 1 मिनट 21 घंटे की बस लेके।
1: हाँ
2: खुश हुए? नहीं खुश नहीं हुआ। क्या हुआ बीच में? क्या बीच में जाके बीमार हो गया ओ भाई।
1: इन्होंने कहा था लास्ट टाइम ट्रैवल कहाँ किया, तो मैंने वो बताया। बाकी
0: अच्छा
1: अगर बात करते चले
0: बीमार हो
1: ट्रैवलिंग
0: गए
1: की,
0: आप जाके?
1: ट्रैवलिंग इस वजह से मैं कहता हूँ खुशी
0: नहीं,
1: की
0: घोड़े पे
1: जिंदगी
0: बैठने
1: में।
0: की वजह से हुए थे बीमार?
1: नहीं मैं बैठी नहीं घोड़े पे,
0: नहीं बैठा गया?
1: नहीं बैठा गया।
0: अच्छा नहीं
1: तो
0: बैठा घोड़े
1: मैंने
0: पे। अच्छा
1: ट्रैवलिंग इसलिए कहा क्योंकि जब आप जाहिर है कहीं पे ट्रैवल करते हैं, आप डिफरेंट किस्म के लोग आपको मिलते हैं और एटमोसफेयर चेंज होता है। जब एक ही जगह पे आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं बोरियत होती रहती है, तो फिर ट्रैवल करना चाहिए, जगह को चेंज करना चाहिए।
0: कराची में क्या एक्सप्लोर किया आपने? कुछ थोड़ा बताएं ना जरा, हमें अपना सफरनामा बताएं कोई, मतलब एंजॉय। बंदा कराची जाए तो क्या करे जाके बीमार होने के अलावा?
1: हाँ बीमार होने के अलावा जाहिर है कराची अगर देखा जाए तो मैं ठहरा था डिफेंस में, साथ ही आपको
2: बस में
1: पता
2: जाके
0: अच्छा बस में ठीक है। आगे
1: साथ ही आपको बीच बीच है और साथ अब्दुल्ला शाहगाजी है,
0: माशाल्लाह
1: मैंने वहाँ पे भी गया।
0: अच्छा
1: और बीच पे भी जाता रहा 2-3 दिन
3: बीमारी,
0: इसलिए तो बीमार हुए हैं आप। 2-3 दिन गए हैं बंदा, एक आध दिन जाता है टाइम निकाल के आपने। और उसके अलावा
1: उसके बाद मिठाई खाई कराची की।
0: अच्छा दिल पसंद की?
1: हाँ वो एक बेकरी है सदर के अंदर, बड़ी मशहूर है।
0: अच्छा
1: वहाँ से जाके मिठाई खाई है।
0: क्यों मशहूर है इतनी?
1: जाहिर वहाँ से मिठाई मिलती है ना इस वजह से।
0: ओ भाई मिठाई तो कराची के हर दुकान से मिल जाती है, मतलब उधर की क्यों मशहूर है ये पूछ रहा हूँ। मजे की है?
1: हाँ कह सकते हैं कि यार जाहिर आप जिस तरह।
0: कितने दिन रुके थे आप कराची?
1: मैं ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए।
0: 6 दिन? और छह दिन आप डिफेंस में थे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अटैक पे क्यों नहीं थे, डिफेंस पे क्यों रहे?
1: डिफेंस पे ही रहा हूं मैंने कहा चलो डिफेंस पे बेहतर रहता ना, मतलब बचा रहता।
0: अच्छा। तो कोई शूट वगैरह होगा काम के सिलसिले में गए होगे? हां
1: भाई होता है।
0: अच्छा पहले इन्हें सोचे मैं झूठ मार ही लवा, फिर कहना है यार पढ़ा जाऊंगा। पहले 2 सेकंड ना ऐसे सोचा, कहता है कर देता हूं, ऐ फेंक दे तो क्या जाएगा इनको, गोदा भर गया नहीं आगे पकड़ लेंगे। अच्छा जी जी
1: भाई होते हैं,
0: भाई होते हैं वहां पे। तो फिर भाई डिफेंस पे रहते हैं?
1: डिफेंस पे रहते हैं भाई और काम भी अपना है कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली आधी हमारी फैमिली जो है कराची होती है।
0: पहला बासी जड़ा कराची दा?
1: नहीं नहीं हम बेसिकली यहाँ से।
0: अच्छा।
1: लेकिन हमारे जाहिर है दादा बू की वो पूरे खानदान की कृपा, आधा खानदान फिर वहाँ पे जा गया था और सुई गैस के अंदर थे।
0: अच्छा अच्छा ठीक जी। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
3: नहीं
0: कुछ आप जुमला है जो आपके मुंह में है आप कहना चाह रहे हैं मुझे महसूस हो? प्लीज
3: नहीं, वो बात जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे, वहाँ से
0: खुशी।
1: हाँ खुशी
3: खुशी वो नजर नहीं आई कहीं पे डिफेंस में भाई।
1: अच्छा,
3: है
1: भाई से नजर आ बीच में जाके खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए
0: जी?
1: चलो एक तो बात
0: वो पूछ रहा है आपसे।
3: नहीं सवाल तुम्हारा क्या था जीशान?
0: कि जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या जरूरी है?
3: ना फलसफा आ जाएगा, हंसी हंसी मजाक हो रहा है,
0: हो जाएगा वो बीच में खुद ही आ जाएगा। कुछ सीखना भी चाहिए ना हमें यार।
3: यार खुश रहने के लिए देखो
0: खुश रहने के लिए दो बड़ी बड़ी वजूहात का आपके पास होना जरूरी है। ये जो दो बड़ी बड़ी वजह है ना ये जिंदगी में आपको खुश रखती है, और वो दो बड़ी
3: कॉलर से पूछते हैं
0: तो रूहानी ताकत और दूसरा पैसा।
3: अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
3: वालेकुम अस्सलाम।
4: हमीद को दरस कर रहा हूं राहुल दिल्ली से।
3: कैसे हैं हुजूर? ठीक है
4: आप? ठीक हैं खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह जनाब।
4: आपने मुझे पूछा ना कैसे हैं हुजूर? ठीक है। मुझे अपने वो हमारे दोस्त थे SHO, उनका लहजा याद आ गया।
3: अच्छा SHO थे? ठीक है।
4: कैसे हैं? मैंने आज कॉल की नुमान निवासी के लिए, आपसे तो हमारी बात हो जाती है।
3: ईद मुबारक हुजूर।
4: ईद मुबारक आपको आखिर भाई।
3: खैर मुबारक
4: नुमान निवासी को।
0: बड़ी मेहरबानी सर। वो आप कह रहे थे कि आपने नुमान भाई के लिए कॉल की, ऐसे ही है?
4: जी जी मैंने स्पेशली जो मैं कहता हूँ वो कह देता हूँ।
0: कहीं कहीं सर
4: जी जी क्या कह रहे हैं आप?
0: मैंने कहा आप प्लीज कहिए कहिए, नुमान सुन रहे हैं आपको।
4: मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आवाज मुझसे पता नहीं क्यों कम आ रही। बहरहाल
0: यार इसका मतलब वो बच्ची सही कह रही थी, उसको आवाज
4: नहीं आ रही थी। मेरी बात थोड़ी कम हुई है जीशान साहब।
0: क्या मसला है इसको?
4: आखिर साहब से तो हमारी हो जाती है बात।
3: अच्छा
4: नुमान नवासी से कभी भी कह दो मेरे बात नहीं।
3: अच्छा
0: फिर हुई
4: ऐसे ही है नुमान नवासी।

0: मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एक दो मरतबा हुई है, शायद मैं भी हो सकता है, लेकिन वो एक दो साल हो गए।
1: नहीं, वो एक दफा परम साहब के साथ बैठे थे, मैं ये सोच रहा था एक छोटा अर्जी आपके दरमियान बैठा है और आप उससे सवाल जवाब कर रहे हैं।
0: नहीं, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एक दो मरतबा हुई है, शायद मैं भी हो सकता है, लेकिन वो एक दो साल हो गए।
1: नहीं, वो एक दफा परम साहब के साथ बैठे थे, मैं ये सोच रहा था

0: उसमें चीज क्या होती है, अभी तो इसमें खुशियां भी देखनी है और अल्लाह इसको ढेर सारी खुशियां दिखाए।
1: आमीन।
0: क्या ख्याल है आखिर साहब?
1: जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो
0: सिखा हौसला बढ़ाना चाहिए।
2: यार इसके ऊपर रहने दो, आवाज नहीं जाती। खोल दो इनको, खोल दो।
1: ये ना अमित भाई, हमारी हमारा सिखाने का तरीका ये है, हम ईद के ईद हम ईद के ईद सिखाते थे तो वो ये आज खुद हाथ चढ़ गए। नहीं नहीं वो
0: एक बड़े कंबाइन शो सुने
1: कहां,
0: और बड़े मतलब बड़े इमरान अली मानी और ये सारा बड़ा गप शप होते थे वही शेख साहब, जब यंगस्टर के भी और बड़ों के भी, तो बड़ा मजा आता था हमें। मैंने वैसे ही एक बात कह दी, मैंने फील किया, मैंने उसको आपके साथ शेयर किया।
1: नहीं वो हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन नुमान जो है ना वो अपनी फील्ड में बड़ा जबरदस्त पॉलिश्ड आरजे है और अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। हमने भी शायद जब आगाज किया होगा तो हम भी ऐसे ही ऐसे बुरे होंगे।
0: हम भी ऐसे थे जब इस दस्त में आए थे, सारे ऐसे होते।
1: मैं वैसे ऐसा नहीं था, ये हंसी मजाक है। पता क्या, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कई चीजें ऐसी होती है, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं और परफॉर्म करना है और एक ऐसा मौका जिसमें हंसी मजाक हो। अब पिछली दफा प्रोग्राम जो चल रहे थे उसमें हमारे साथ जिशान थे, जिशान भाई के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत इस तरह, मेरे ऊपर भी कुछ काफी सारी चीजें आई थी, यूसुफ भाई पे भी। तो वो असल में एक एक इमेज ऐसा जाता है कि वो अभी स्टार्टिंग है नुमान का, तो वो ऐसा के डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये हंसी मजाक है और कंसर्न भी साथ है।
2: गालिबन नुमान आपसे बात करना चाहते हैं, नुमान आपसे बात कर ले, फिर आपकी कॉल खत्म करके मैं इसको आंसर करूंगा। जी नुमान आप बताइए।
3: बात है कि आर्टिस्ट कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, आर्टिस्ट होता है। और मेरी फील्ड है, जाहिर है ये दोनों सीरियस है, सीनियर है और काबिल इज्जत है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है। और मैं जिन मराहल से गुजर के जा रहा हूँ, आगे निकल रहा हूँ अपनी फील्ड के अंदर, तो ये भी इन्हीं मराहल से गुजर के आए होंगे। तो मैं कभी भी कोई भी बात दिल में नहीं रखता, अगर यहाँ पे ये हंसी मजाक करते हैं थ्रू आउट माइक तक ही होती है, वो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो वैसे ही होते हैं। बाकी ऐसी अगर कोई बात होती तो मैं इनको ऑनर भी कह रहा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
0: अच्छा तो फिर आपको जवाब देना चाहिए था कि पूछी क्या होती है।
2: हाँ जवाब क्यों नहीं दे रहे?
3: बिल्कुल ऐसे। बाकी अमित भाई अच्छा लगा आपने कॉल की, थैंक यू सो मच।
1: सर आबाद रहे, अल्लाह हाफिज़।
2: ये बड़ी वैसे अच्छी बात की है उसने नुमान ने,
1: क्या
2: कि मुझे ऐसे वैसे कोई, मैं ऑन एयर जवाब दे देता इनको, तो ये बड़ी अच्छी बात की है।
1: उसने कहा मैं दिल में नहीं रखता,
2: अगर कोई ऐसी बात करते मैं अभी बता देता इनको।
1: करो ना जरा थोड़ी सी।
2: नहीं मैं तो डर गया हूं। अच्छा नाम क्या था साहब का?
3: हमीद गुल साहब।
2: हम अच्छा, एक तो नाम भी माशाल्लाह थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा हमीद गुल साहब, मैं आपसे ऑफ एयर इन अ सेंस के कॉल के बाद बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदाजा है तकरीबन 12-13 साल रेडियो करने के बाद जब लोग गुफ्तगू करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि क्या ये सुनेंगे या सिर्फ बोलेंगे। तो अगर मैं आपसे कॉल पर बात करता तो आपने मेरी सुननी नहीं थी, आपने बोलना था, तो अब आप चूंकि दिल खोल के बोले, अब सुन लीजिएगा एक मिनट। बात यह है कि जो शख्स हमारे सामने सीट के ऊपर बैठता है, हमारे जहन में ये कभी भी नहीं होता है कि वो छोटा आरजे है या बड़ा आरजे है। हम उसको यही समझते हैं कि वो इस सीट के लायक है तो यहां पर बैठा है, और हम अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर ये कोशिश करते हैं कि अपनी सलाहियतों को भी सामने रखें, उनकी सलाहियतों को भी सामने रखें, ताकि एक एंटरटेनमेंट बेस्ड एक मजेदार किस्म का प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पेश किया जाए। हम कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं एक अलग बात है। बाकी उससे पहले एक जो आपने गुफ्तगू की कि कुछ चार्जेस पहले प्रोग्राम करते थे ऑल दैट, तो हमेशा नए आने वाले लोग डिफरेंट बात करते हैं, हमारे बाद आने वाले जो है वो और डिफरेंट बात करेंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट लेकिन वो भी वही हम भी वही वो आपने खैर एनीवे हैविंग सेड दैट, बाकी हम नुमान को छोटा नहीं समझते, और सबसे अच्छी बात यह है कि नुमान हमें बड़ा भी नहीं समझता। उसने भी कहा है कि ऐसे वैसे भी बात करेंगे, मैं ऑन एयर इनको कह
1: दूंगा। बिल्कुल
2: चले मेरी तो खैर है, मैं तो अभी लेकिन आतिफ भाई कह रहे ऑन एयर आप
3: इसका मतलब
1: वो कह रहा था कि अगर अगर अगर बिलो द बेल्ट कोई बात ये मेरे से करेंगे तो वो बिल्कुल
2: गंदी बात करेंगे।
1: सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो ऑब्वियसली हम भी हिट नहीं करते हैं, लेकिन
2: वो
1: खुश रहने के लिए जो है कराची जा रहा नहीं होता।
2: अच्छा अच्छा हाँ, जाते हुए सबसे अच्छी बात जो आपने की, बिल्कुल ये बात हमीद साहब ने बड़ी अच्छी की, जब आपने कहा कि मैं वो, तो उसने कहा कि पर जब पूछ रहे तो पर जवाब दो आगे से, तो आप बताओ जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या जरूरी है?
1: पैसा जरूरी है, ट्रैवलिंग जरूरी है, खुशी का ताल्लुक

0: किसी भी चीज के साथ होता नहीं है बेसिकली। अगर आप एक कॉफी के कप को एंजॉय नहीं कर सकते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। जब आपने अगर लगा दिया, अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, फलसफा दे रहा हूं, मोबाइल छोड़
1: दो। जी मैं सुन रहा हूं, कान आपकी तरफ।
0: जहां आपने अगर लगा दिया वहां आप खुश नहीं रह सकते हैं। वो एक बड़ी आसान सी लाइन है कि व्हेन यू ईट, व्हेन यू ईट, व्हेन यू वर्क, व्हेन यू वर्क।
1: दोबारा कहिए, व्हेन यू,
0: जब आप, व्हेन यू ईट, व्हेन यू ईट,
1: ओके,
0: व्हेन यू ईट, नहीं गलत हो गया,
1: मैं वही कह रहा हूं कि
0: हाँ, मतलब अगर इसको उर्दू में कहे ना, जैसा कि आजकल के दौर में तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि वो ज्यादा ऊंचा फलसफा हो गया, ऊपर से निकल जाएगा। व्हेन यू ईट, व्हेन यू ईट का मतलब है कि आप अगर आजकल जो हम देखते हैं कि हम खाना खा रहे हैं तो हम सामने मोबाइल रख देते हैं, तो मतलब आप एक्चुअली में खा नहीं रहे हैं, आपकी तवज्जो वहां पे है, आप उस ईटिंग को एंजॉय नहीं कर रहे। तो आप उस टाइम पे खुश रह सकते हैं जब आप खाना खा रहे हैं और आप हकीकत में खाना खा रहे हैं। इसलिए जुमला दो दफा व्हेन यू ईट, व्हेन यू ईट रिपीट हुआ, ठीक है। तो अगर दूसरा मतलब इसको
1: इस तरह होगा, यू ईट व्हेन यू ईट,
0: हाँ यू ईट व्हेन यू ईट, ऐसे ही था कुछ था।
1: हाँ, ये जुमला
0: तो आप खुशी को जब मुख्तस कर देते किसी चीज के साथ कि अगर मैंने ये कर लिया तो, अगर कम मैंने जुमला कहा था कि अगर आपने लगा दिया साथ तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो वो आ जाएगा, आपका कोई नेक्स्ट शुरू हो जाएगा गोल, आप ट्रैवल कर लोगे वो नेक्स्ट हो जाएगा। ये जो आपने कहा ना, ये मैंने करके देखा है, मतलब इससे बहुत ज्यादा करके देखा है। तो वो पीचेस भी दूसरी थी लेकिन नहीं हुआ खुश, यकीन करो।
1: तो यानी कि इख्तिताम खुशी पर नहीं हुआ, देयर वाज नो हैप्पी एंडिंग।
0: देखो, हैप्पीनेस इज वेरी डिफरेंट थिंग। आप हैप्पीनेस जो है वो अगर उसके साथ अगर आप इसको जोड़ेंगे तो वो नहीं है, या एक एक इवेंट है, आप उसको एंजॉय करते हो, एंजॉयमेंट है, और आप उसके बाद नेक्स्ट उसमें चले जाते हो। लेकिन जो हकीकी खुशी है ना, वो आपको कह लेंगे, आपके पास मिसाल के तौर पे आज 50,000 रुपए है या 1,00,000 रुपए है, तो आप एक बिलियनर को, एक मिलियनर को अगर आप अपने जहन में रखते हो, जैसे आपने कहा पैसा, तो आप किसी एक ऐसे होटल में चले जाओ एक दिन के लिए, वहां पे आप रह लो और वहां का मेन्यू उधर से जाके कोई बफे डिनर कर लो, तो आपने वो स्पेंड कर दिया ना, तो अब आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा, तो आप फिर फील करोगे कि यार क्या हुआ, बल्कि उल्टा 1,00,000 रुपया खर्च होने का दुख हो जाएगा आपको। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी वही खाएगा जो आप खाते हो, वो भी वैसे ही रहेगा जैसे आप रहते हो। लेकिन हैप्पीनेस का ताल्लुक है कि जब आप भरपूर तरीके से किसी चीज को खुद करते हो, जैसे आप एक एक कॉफी का कप, एक चाय का कप भी अगर आप इंजॉय कर सकते हैं तो वो भी खुशी है। तो आप, और ये हर किसी की मुख्तलिफ है। अब हो सकता है जैसे आपने कहा कि ट्रैवलिंग के खुश रहने के लिए ट्रैवलिंग जरूरी है, लेकिन जब यूनिवर्सली आप अप्लाई करते हो, सब पर अप्लाई करते हो अगर कि यार इंसान के लिए क्या जरूरी है, तो फिर आप किसी एक चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक इंसान के लिए उसका, जब वो 9 to 5 की जॉब कर रहा है और वो कह रहा है कि यार कब 5 बजे के मैं घर जाऊं, कब 5 बजे मैं घर जाऊं, तो वो खुश नहीं है। और अगर वो, उसको बस ये है कि मुझे एंड ऑफ द मंथ क्या सैलरी मिलेगी, अगर वो ये कह रहा है कि यार 5 बजे पता भी नहीं लगा, तो वो कहते हैं ना, आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो बड़े खुशनसीब हैं आप। तो जब आपका आप इवेंट करते होगे तो आप उस फीलिंग को, उस एनर्जी को जब आप महसूस करते हो, वो एक मजेदार चीज है। मैं बिजनेस करता हूँ, जब मैं अपने बिजनेस को एंजॉय करता हूँ तो वो मेरे लिए एक मजेदार चीज होती है। मुझे ये नहीं होता कि यार किधर आके बैठ के हैं, क्या चल रहा है, वो तो वो खुशी है। और वो एक दिन, दो दिन ट्रैवलिंग होगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। एक दिन की करोगे, दो दिन करोगे, रोज तो नहीं कर सकते हो ना, तो आपको रोज खुश तो रोज रहना है।
1: अच्छा, मेरी थ्योरी इस पे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप जहनी तौर पर चीजों को एंजॉय करना समझ लेते हैं तो फिर आप छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी चीज से ही खुशी हासिल करनी है, देन ऑलवेज टाई इट विद अ गोल, नॉट फॉर एन इवेंट। बिकॉज जैसे एक शख्स है, वो कहता है यार मैं पतला हो जाऊंगा तो मुझे खुशी होगी, तो जब आप वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके रिजल्ट्स आते हैं आपको, तो आप खुश होते हैं। बहुत सारे लोग, जब जैसे आपने कहा पैसा, तो पैसा भी खुशी देता है। आप नई गाड़ी खरीदें, आप नई घड़ी खरीदें, कपड़े खरीदें, ट्रैवलिंग भी खुशी देती है। लेकिन जैसे भी आतिर भाई ने कहा कि आई डू एग्री विद दैट, कि अगर खुशी आपके अंदर कहीं नहीं है ना, तो आप सबसे अच्छी जगह पे भी चले जाओगे, या बोर ही है यार क्या। अब मैंने बहुत सारे लोगों को थाईलैंड जाकर वापस आया, जी कैसा टूर रहा हो यार, बस ये वैसे। और कुछ लोगों को मैंने जो है
0: बताया नहीं था किसी ने,
1: असल में मैं
0: आप नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हो,
1: सही है,
0: तो वहां बड़ी जबरदस्त नेचर है, हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ।
1: नहीं आप कह रहे तो मान नहीं,
0: हकीकत मैं तीन चार दफा गया हूँ तो वो आप क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊँ अब तो खैर वो वाली
1: अच्छा मैंने सुना है वहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिकेशन भी की हुई है, देखने से पहाड़ लगते हैं लेकिन होते मैदानी इलाका है, ये बात दुरुस्त है थाईलैंड?
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
1: बज़ाहिर पहाड़।
0: ओके हाँ
1: ये ठीक है।
0: मैं आपको एक बड़े मजे की चीज बताऊं जो मैंने
1: वही बताइएगा जब आप।
0: नहीं मैं मुझे याद आया वहां पे ना एक मैं आपको बताता हूँ थाईलैंड, हालांकि वहां पे एक क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स है ना तो वो एक आपको टूर सा लेके जाते हैं, आप कह लें कि किसी क्रूज पे या स्पीड शिप पे, वहां पे कुछ आइलैंड्स है। एक उसमें बड़ा मशहूर आइलैंड है जेम्स बॉन्ड आइलैंड, वहां पे उसकी शूटिंग हुई थी जेम्स बॉन्ड की, और वहां पे एक आइलैंड है उसको वो सजदा आइलैंड कहते हैं, और वो मैंने देखा, मेरे पास उसकी पिक्चर्स भी हैं, आप गूगल करेंगे आपको नजर भी आ जाएगा। वो आपको आप जब वहां से गुजर रहे होते हो ना तो वो दूर से आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सजदे में है कोई इंसान, उसकी शेप भी बिल्कुल ऐसी है
1: रॉक की।
0: हाँ उस रॉक की शेप
1: ठीक है,
0: दूर से वो आपको ऑब्वियसली जब आप बिल्कुल पास ले जाएंगे तो इतना बड़ा
1: है
0: लेकिन दूर से वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको वो टांग भी नजर आएगी यूं और सर भी सजदे में, और उसका नाम भी सजदा आइलैंड है
1: और नेचुरली है।
0: हाँ नेचुरली है, नेचुरली वो बनाया हुआ नहीं है, वो नेचुरली है। तो वैसे मुझे याद आया उसमें तो ऐसी जब आप एक्सप्लोर करने की बात की और वाकई में जो नुमान ने बात की वो एक वो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे आपको हर दुनिया का वो मिल जाएगा, हर जगह से आए हुए होंगे लोग,
1: हर मजहब के लोग मिलते हैं,
0: हाँ हर मजहब के भी कह लो और हर कंट्री से भी आए होते हैं, तो उस तरह से एक एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहा।
1: ठीक है अच्छा नुमान, सिंस माशाल्लाह यू आर डूइंग द रेडियो एंड ऑल दैट स्टफ, तो मेरा एक सवाल है फिर उसके बाद कॉलेज की जाने बढ़ेंगे, मतलब कोई ऐसा फैन मोमेंट बताओ कि मतलब तुम्हें याद रह गया होगी, होता ना क्रेजीएस्ट फैन मिलते हैं, तुम्हें तो जरूर मिलते होंगे, सो कोई बताओ ऐसा फैन।
2: अभी रिसेंटली मैं स्टेडियम
1: थोड़ा करीब होके माइक के, हाँ जी
2: आवाज सही जा रही
1: है, नहीं हमें तो सही जा रही है उधर
2: भी सही जा रही है, अच्छा मेरी कानों में आ रही है ना
1: बेटा, कानों में तो आपकी आवाज आ रही है, वहां पे ग्रैव खुदाई कसम मान लो कि नहीं आ रही है, ग्रैव ठीक नहीं आ रहा।
2: अभी रिसेंटली मैं स्टेडियम पे था और जाहिर है इवेंट था और वहां पे रेडियो लिस्नर ही थे,
1: पिंडी स्टेडियम में
2: नहीं नहीं पिंडी स्टेडियम
1: अच्छा अच्छा अपने ग्राउंड
2: में, ठीक है ठीक है, वहां से आए और उनने मिला, वो मिले मुझसे और उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं है कि आप इधर भी करते हैं कमेंट्रीज वगैरह, फिर वो बड़ा था मेरे लिए, पूरी फैमिली थी और बड़ा अच्छा लगा,
1: जाहिर उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह लिए होंगे, वेरी नाइस
0: अच्छा। ओए वो जो अमित भाई की कॉल थी उसके बाद मैं आपसे हम आपको सिखाएं
2: नहीं
0: आपका
2: नहीं सीख
0: फिर हम क्लास
2: जी आप बताएं आपका कौन सा कोई फैन?
1: यार आई डोंट हैव फैंस, मैं हमेशा से कहता हूं मैं आई रियली वांट, जो आप अभी बात बता रहे थे कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो कि मुझे कोई पहचाने और फैंस हो तो मैं आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दिस, लेकिन मेरे चुके फैंस इतने हैं नहीं तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया।
0: अच्छा
1: जी कॉलर यार ये ले ये बड़ा अच्छा
0: भाई, नहीं नहीं नहीं
1: 0049
0: नहीं नहीं
1: गलत कॉलर,
0: अच्छा मैं बता दूं आपको,
1: ये वाली ठीक लगी,
0: ये अकड़ वकड़
1: बॉम्बे वो
0: वो चली गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या कोई गाना शुरू करना?
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
3: ईद मुबारक हो आतिफ अली सैयद साहब और आपके कंपनी मुनव्वर गरीब के भाइयों को भी।
0: मुनव्वर गरीब के भाइयों
1: गरीब गरीब गरीब
0: मेरा
3: अच्छा, ये जो आसिफ मजाक है ना ये मुनव्वर गरीब से भी आगे निकल गए, बहुत खुशी हुई हमें सुन के, 51 टाइम कॉल की है जो आपको लगी है, मुझे शुक्रिया कि कॉल तो लग गई।
0: हजूर ईद मुबारक आपको,
3: आपको भी ईद मुबारक।
0: मेरा नाम आतिर है,
3: आतिर साहब,
0: आतिर ATIR
3: ATIR अच्छा
0: कैसी ईद गुजरी आपकी?
3: अच्छा अच्छा अच्छा हुआ कि मुझे आपने समझा दिया, मैंने ATM समझ लिया था।
0: नहीं आपने आसिफ बोला था ना?
3: जी जी आतर ATIR
0: ATIR पहले आपने आसिफ बोला था तो मैंने इसलिए ठीक किया।
3: अच्छा आपका शुक्रिया, आपका ये माहौल ये गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे बढ़ के शहरी बकरों की वो आवाजें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम तो देहाती लोग हैं, नाराज भगवान से बात करते हैं, हम तो देसी बकरों में रहते हैं ना, उनकी आवाजें ऐसी नहीं होती, ये तो और अच्छा लगा कि आपने बहुत माहौल को सस्पेंस कर दिया।
0: मैं देख रहा हूँ पहाड़ों का रंग कैसे चेंज हुआ,
1: वो चागी
3: जी जी जी जी जी रंग तो अल्लाह की तरफ से होते हैं।
0: नहीं नहीं वो टीवी
3: की आवाज है जो लोग बनती है ना ये अपनी तरफ से होती है, ये कुछ नेचर नहीं होती।
0: क्या चीज नेचुरल नहीं होती?
3: ये जो आवाजें बना के बकरों की और मेंढे की और गाय की मल्ले निकालते हैं ना, एक माहौल बनाते हैं
0: हजूर। आप लाहौर ट्रांसमिशन सुन रहे हैं इस्लामाबाद?
2: वो पहले कह रहे थे
0: आप इस्लामाबाद ट्रांसमिशन सुन रहे हैं लाहौर ट्रांसमिशन?
3: आवाज नहीं आ रही।
0: आप लाहौर ट्रांसमिशन सुन रहे हैं या इस्लामाबाद ट्रांसमिशन?
3: मैं वन एंड वन सुन रहा हूँ, इस्लामाबाद से हो या लाहौर से हो, मुझे
0: कौन सा मैनेज की आवाज आई आपको? ये वाली आवाज क्यों कह रहे?
3: मुझे वन एंड वन सुनना है।
0: अच्छा, आप ये जो आवाजें कह रहे हैं, अच्छा मेरी बात सुने, ये जो आवाजें आप कह रहे हैं, ये जो आप आवाजें नहीं, आवाजें आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे हैं बकरों की आवाजें और मेंढक की आवाजें, ये आप ज़राए तफन्नुन कह रहे हैं?
3: देखिए मैंने बहुत सारी आवाजें रेडियो के अंदर ही लोगों की जबान से सुनी है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा रेडियो आने और सुन के, ये सेम बकरों की आवाजें, सेम ही गाय की आवाज निकली।
0: ये क्या बात है,
1: क्लियर करें इसको जरा।
0: ये बात आपकी समझ नहीं आ रही हजूर, आपको कहाँ पे बकरों की और गाय की आवाजें आई हैं?
3: अच्छा मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही?
0: नहीं नहीं।
3: अच्छा तो जी। आपको ईद मुबारक कह दिया ना, बस काफी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज
0: हजूर। सदमा तो नहीं है बकरे के जुबाने का? ये कॉल लेते हैं, ये वन है टू है ईशान
1: जी,
0: ये टू है ना
1: जी,
0: ये क्या बात है यार। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप दो तीनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के प्यारे, पाकिस्तान के प्यारे आरजे, वेलकम वेलकम, और आप तीनों को बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां मुबारक हो।
0: निकला
4: क्या साहब?
0: जी जी हजूर, कौन बात कर रहे हैं?
4: मास्टर अब्दुल गफूर खारिया से। जीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। जीशान नासिर साहब है आप?
1: चल है। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम, वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है।
4: नासिर साहब भी बोल रहे हैं ना?
1: जी जी नासिर साहब घर हैं, मैं जीशान नासिर बेटा उनके सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप ठीक है सर? ईद मुबारक।
4: ठीक है ना शाह साहब, नमान बासित साहब, तीनों आदमी है ना आप?
0: जी जी हजूर तीनों है
4: जी सर। पहले तो शाह साहब आपके तीन नाम सुनकर मुझे खुशी हो रही है, आसिफ साहब और आतिफ साहब। आप आतिफ साहब है ना?
0: वो किसी को रेडियो पे अगर बकरों की और गायों की आवाजें आ रही होंगी तो उसको आतिफ और आसिफ ही समझ आएगा।
2: सही है।
0: उन रेडियो
4: अच्छा सर, प्लीज मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, जरा माजरत के साथ है। तो अगर कोई बात आपको बुरी महसूस हो तो मैं माजरत करता हूँ।
0: नुमान है हमारे
4: पास, खुशी हो रही है, बहुत कुछ सीख रहे हैं।
0: जी जी जी हजूर बोलिए बोलिए।
4: माशाल्लाह रिशान नासर साहब ने फरमाया है कि खुशी इस तरह हासिल होती है जिंदगी में।
0: जी जी,
4: तो उन्होंने फरमाया है कि एक तो रूहानी ताकत होनी चाहिए,
0: बोला तुमने
1: जी,
4: दूसरी रुपया पैसा
0: जी, ये भी बोला
1: जी, बोला।
4: मैं उनको सलूट करता हूँ,
1: खड़े हो गए करें यार।
4: दोनों हाथों से,
0: दोनों हाथों से गुड।
4: ये मैं खड़ा हो गया हूँ सर।
1: हाँ बस बैठ जाएं।
4: आपकी पूरी इंतजामिया को मैं सलूट करता हूँ।
1: नहीं सिर्फ मुझे ही करें यार, मैंने बात की है, ये बसारों ने थोड़ी की है।
4: क्या साहब को?
1: नहीं नहीं सिर्फ मुझे करें ना सलूट, मतलब बात मैंने की है, आप सबको क्यों सलूट करें? सारा सलूट मेरी तरफ ही रखें अपना बस।
4: नहीं सारे आप तीनों सारे इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे हैं, तीनों भाई।
0: चलो तीनों को कर ले,
4: चले तीनों की बात है सर। तीनों से मैं बहुत आदर कर रहा हूँ, नवाब नवाब अब्बासी साहब से भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और नवाब अब्बासी साहब को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि ये इतने बड़े आर्य से, आप दोनों आर्य से बहुत कुछ सीख रहे हैं अब्बासी साहब।
1: वो अगला कह रहे हैं, मुंह तो सुना देंगे।
2: नहीं नहीं मैं सीख रहा हूँ।
4: बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मैं बात से
0: ट्रांसमिशन। और जीशान नोमान और आतिर आपके साथ है इस ट्रैक के उस पार, मिलते हैं, सुनते रहिए है।

0: कोक स्टूडियो सीजन 15।
1: और लिस्टर वेलकम बैक कहते हैं आप सुन रहे हैं इट्स स्पेशल ट्रांसमिशन और मेरे साथ आज ज़िशान नासर और आज आदर अली सैयद मौजूद हैं और जाहिर है ईद की खुशियां और हम आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। जी ज़िशान भाई
2: जी बिल्कुल ऐसे ही है और कॉलर्स भी साथ साथ है 0511111001 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन और इसके ऊपर आप कॉल करिए। अच्छा लेट्स हैव समथिंग इन दैट सेंस के हमने चुके थ्रू आउट ट्रांसमिशन करनी है भाई तो मुझे मजा आ रहा है वैसे प्रोग्राम करने का सारा और मेरा अभी दिल मुझे एक वो फील भी आती ना बीइंग अ प्रेजेंटर मुझे लग रहा है कि अगला जो डेढ़ घंटा है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। तो कोई भी कॉलर कॉल करना चाहता है या हमें कोई नसीहत करना चाहता है तो जरा कॉल करे जरा आप चलें जी प्लीज 0511111001 एंड तैयार जी सही
3: अस्सलाम वालेकुम
4: हम
2: ना जी अस्सलाम वालेकुम जी
4: आप निशान भाई है उसको मैं जान के आई
2: हूँ जी बड़ी मेहरबानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका
4: आज क्या कहते हैं आदर भाई मैं निशान भाई के नाम एक शेयर करना
2: चाहूंगी करो करो करो करो
3: कीजिए कीजिए
4: जान कहने से कोई जान नहीं होता जान कहने से कोई जान नहीं होता अगर कोई कह भी दे तो नुकसान नहीं होता अगर कोई कह भी दे तो नुकसान नहीं होता ये तो मैं हूँ तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया ये तो मैं हूँ
2: जान कहने से कोई जान नहीं होता वैसे जी जी
4: मुबारक
2: आप सबको मुबारक जैसे जान कहने से कोई जान नहीं होता वैसे भाई जान कहने से भी कोई भाई जान नहीं होता
3: थैंक यू जिशान थैंक यू वेरी मच
2: यू वेलकम थैंक यू अमना बहुत
3: मेरे हिस्से का जवाब क्यों
2: बस ना
3: नसीहत नहीं लेनी
2: नहीं नहीं मैंने कहा था अगर कोई करना चाहता है वो नहीं करना
3: चाहता आपको नसीहत करना चाहती है
4: जिशान को एटीएम
3: बातें सारी समझ में आती है उनको हमारी बारी बात नहीं आ रही
4: मैंने आपको एटीएम बना दिया
2: देखिएगा आप हजार वाले नोट ना ले लें आप
4: क्या कह रहे थे सर आप क्या करेंगे
3: आप कोई नसीहत करना चाहती हैं जिशान को
4: नहीं
3: नोमान को
2: अकल मान नहीं
3: ये एक नहीं है
2: है
3: एक नहीं है
2: ज्यादा
4: और मेरे नाम को नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट कर दे
2: हम चला ही नहीं रहे हैं डेडिकेट कर
4: रहे हैं सुन रही हैं आपको आते भाई
3: जी जी ठीक है सुने सुने बिल्कुल सुने
4: और वो सुन रही हैं और उन्होंने कहा कि तुमने ना ट्रैक डेडिकेट करवाना है हमें तो मैंने कहा मैं जरूर करवाऊंगी उन्हें कह के ना
3: ठीक है बहुत
2: शुक्रिया वी हैव अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू एंड वी हैव द डीजे डॉग्स विद अस अस्सलाम वालेकुम सर
5: अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है मेरे भाई का ईद मुबारक
2: सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ईद बहुत बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको और कैसी रही ईद आपकी सर
5: यार अभी अच्छी अच्छी लग रही है अभी भाई को कॉल की है
2: ओके और सर हमें भी बहुत खुशी हुई इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू हैव यू इन द शो सर मुझे ये बताइए कि हमें कितना मिस किया सर आपने लॉ स्टूडियो में हम तो आपको यहाँ पे बड़ा मिस कर रहे हैं
5: यार ये मैं नहीं बताऊंगा ये ज़िया बताएंगे आपको
2: ज़िया साहब साथ हैं
5: हाँ सारे तीनों
2: अरे अरे अरे अरे यानी कि गैंग मुकम्मल है हाँ अलहम्दुलिल्लाह जनाब अलहम्दुलिल्लाह आप सुनाएं कैसी रही ईद मुबारक सबसे पहले आपको और कैसी रही ईद आपकी
5: ईद बड़ी मजे की रही और आपसे पहले भी हम ही प्रोग्राम कर रहे थे और आपका जिक्र भी हुआ उस प्रोग्राम में
2: अरे जनाब
5: बड़ा मजा आ रहा है ईद बड़ी अच्छी गुजरी और अभी तक गुजर रही है अभी हम बैठे थे गेमिंग बना के और
2: अब कहीं तवा चिकन खाने तो नहीं जा रहे आप ये ना कहिएगा अब सारे मिलके तवा चिकन खाने जा रहे हैं आप लोग
5: तवा चिकन अब आपने जब लाहौर आना ना ट्रेनिंग सेशन देने के लिए तब खाना
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह
5: रहमान भी सुन रहे आपको
2: रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक
5: कैसे मिजाज है आपकी
2: जनाब जनाब अल्हम्दुलिल्लाह खैर मुबारक और सुनाएं सर ईद कैसी गुजरी आपकी
6: बहुत बहुत जबरदस्त ईद गुजरी, बल्कि कल तो आपके बारे में जिक्र भी हो रहा था और प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ, कल का भी एक बड़ा खूबसूरत सा इंटरनेशनल प्रोग्राम था ईद के हवाले से, तो बड़ा बड़ा मजा आया। और वो जो पहली मुलाकात थी आपसे, मैंने उसके हवाले से भी डिस्कशन की कि कितना मजा आया।
2: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड एक्चुअली वी आर वेटिंग कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात हो एंड वी रिक्रिएट द मेमोरीज।
6: मुलाकात हो उसी तरह से हम मिलकर बैठकर एक प्रोग्राम,
2: ऐसा ही है। और स्टूडियोज में मेरे साथ आरजे आतिर अली सैयद मौजूद है, नुमान मौजूद है, एनीथिंग। जी आतिर भाई
3: जी, अस्सलाम वालेकुम।
6: आतिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
3: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं जनाब, आप ठीक हैं? ईद मुबारक आपको।
6: आपको भी ईद मुबारक, नुमान को भी ईद मुबारक कहिएगा मेरी तरफ से।
1: मुबारक, थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक।
6: थैंक यू बड़ी। आतिर भाई आपको पहले भी एक दफा सुना था और आज भी सुना, बहुत अच्छा लगा
3: सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आबाद रहे, खुश रहे।
6: और मेरे प्रोग्राम में तो आतिर भाई अक्सर आपकी शायरी, आपका तलफ्फुज़, आपका बोलने का अंदाज डिस्कस होता रहता है लाइव प्रोग्राम में भी। मेरा नाम रहमान अनवर है और बड़ा खूबसूरत आपका एक लहजा है, बड़ा खूबसूरत तरीके से आप प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, बड़ा मजा आता है
3: सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका हुस्ने समात है सर। मेरी एक छोटी सी काविश होती है बस, और आप जैसी समातें जो है वो हौसला बढ़ाती रहती है।
6: सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे।
3: बहुत शुक्रिया सर, और इंशाल्लाह
6: आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
3: सर मुबारक, और अब तिश्नगी रहेगी इंशाल्लाह मुलाकात की, और जरूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
6: जी इंशाल्लाह आतिर भाई आपसे मुलाकात भी रहेगी, लंबी बैठक भी होगी, और इंशाल्लाह खाबे भी चलेंगे साथ।
3: जी जरूर जरूर सर, जरूर जरूर।
6: जीशान भाई
2: जनाब,
6: मुझे ये बताएं आप फिर तशरीफ ला रहे हैं ट्रेनिंग करवाने?
2: सर वो एक शेर है, कहते हैं कि तू सद के वेक में भज दी आसा, जे मैं जुत्ती पावा ते काफिर आखी।
6: आए, आए, यार ये ना, ये जिशान अक्सर सुनाता है और आई लव दिस शेर।
2: अरे सर सर सर,
6: बहुत अच्छा लगता है, इसका थॉट बहुत अच्छा है। एंड ये मैंने प्रोग्राम में अनाउंस भी किया हुआ है कि हमारे आरजे जो आएंगे उनमें जिशान भी होंगे, और इसके अलावा डू रिकमेंड समवन,
2: डेफिनेटली
6: आई शेयर यू द कोर्स डिटेल,
2: डेफिनेटली,
6: और वो आप देख के किसी और को भी अगर आप इसमें रिकमेंड करो, डू टेल मी यार।
2: डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
6: एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर एवरीवन
2: सर, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर, ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू इन द शो सर, ऑलवेज।
6: Thank you buddy, lots of love for you. Once thank again, mubarak.
2: Khair mubarak, khair mubarak. Thank you ji, thank you. Allah Hafiz, Allah Hafiz. Okay guys, that was RJ Dogs, Irfan and Zianjum, badi prominent aur badi behtareen voices from our station of FM 101 Lahore, aur yakeeni taur par jis tarah tareef kar rahe the Aatir bhai ki, aur Numan, to be very honest and to be very frank, agar mujhe नासिर महमूद खान साहब के बाद एफएम 101 इस्लामाबाद की स्पेसिफिक अगर बात करूं, मुझे लगता है कि यार हु गॉट अ थ्रिल इन पोएट्री, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि अगर हम आतिर भाई को पेश कर सकते, भाई आतिर इज द पर्सन जो कि पोएट्री में जिनको कमांड हासिल है, जिसको थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मैं ऑन एयर बता दूंगा अगर कोई गलत बात की तो।
3: आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं जरा ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता जो मेरी तारीफ हो रही थी। तो हम कॉलर की जाने बढ़ते हैं जी।
2: जी
3: अस्सलाम वालेकुम,
2: नंबर का पहला हिस्सा देखें कोड के बाद।
3: वालेकुम अस्सलाम,
4: कैसे आते हैं
3: आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी,
2: हम जाएंगे घर,
3: एट है कैसी है वनीला, आपको भी मुबारक हो।
4: थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अच्छी रौनक लगी है अभी लाहौर में, बड़ी सुपर डुपर रौनक चल रही थी। आज डॉक्स, आज रहमान अनवर, आज ज़ियानजुम, बहुत खूबसूरत, आज सभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू वाले, और आप लोग भी यहाँ पे बड़ी अच्छी रौनक लगा के बैठे हुए, और जिशान तो आएंगे ही, आतर आप भी आए लाहौर, जरूर आए, खुरम बेग को भी लाए, जिशान अवान को भी लाए, आप लोगों को बड़ी अच्छी जैसे कहते हैं ना कम्बाइंड शो, बहुत जबरदस्त होता आपका,
2: एक कोस्टर कर
4: होता है, सब आए, बहुत अच्छा लगेगा लाहौर के स्टूडियो में आया।
3: जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। ईद कैसी गुजरी आपकी?
4: जी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी, कुछ थोड़ा सा डाउन भी हो गए, बहुत ही दौड़ा ला लगे।
3: अच्छा,
4: तो फिर ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि खवातीन के लिए तो किचन मेन डिपार्टमेंट जो है।
2: लेकिन वैसे सुन के बहुत हैरानी हो रही है कि किचन डिपार्टमेंट आपने संभाला है सीट पे, वरना अदरवाइज जितनी स्टोरीज हम देख रहे हैं वो तो यूं ही है कि कुर्बानी का गोश्त देखकर बीपी डाउन हो जाता है और खाया नहीं जाता है और गोश्त को हाथ नहीं लगाना, कोई इस तरह की स्टोरीज हम देख रहे हैं। अब तो मार्केट में ऐसी खवातीन नहीं आ रही है जो कि खाना पकाना और यू नो वो एक अनवर मसूद साहब ने कहा था ना कि ऋण ना पकाना भी तो कोई कोई जानता है, वो वाली बात है।
3: और आज तो मैंने खबर भी देखी थी कि वो गोश्त ले, अब ऐसा भी चल रहा है कि रेस्टोरेंट्स आपको पका के दे रहे हैं।
2: हाँ,
3: वो लेके जा रहे हैं और आप उनको डिशेस बता रहे हैं।
4: देखिए जो ये हम सुन्नत इब्राहिमी मनाते हैं, इसमें आप देखिए कि गोश्त जो है ये कुर्बानी का गोश्त, इसमें शफा है तो ये तो खाना चाहिए, बल्कि
3: और ये जो
4: जनरेशन जरा जो जैसे कि शान कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं गोश्त को हाथ ही लगाना है, हमारा दिल खराब हो रही है, नहीं ये तो बस अपने एक स्टाइल ही होना नहीं चाहिए, वैसे
2: आजकल जरा वो
4: बतानी चाहिए।
2: सही कह रही है। मेरा यकीन करे दोस्त बेहोश हो गया कि मैं बकरे का खून नहीं देख सकता, वो बकरे को उसको पकड़ाया जबा किया तो बेहोश हो गया, मैं खून नहीं देख सकता, मैं बड़ा नाजुक हूं यार।
4: मां सदके जाए, और इस कौम ने मुल्क की दौड़ भाग संभाल लिए है।
2: हाँ, भाग दौड़
3: भाग दौड़ नहीं लेकिन वैसे ये कुछ लोगों
4: को जी जी नहीं यहाँ तो सही कर रही
2: है, सही है नहीं
3: वो जिशान ने किया,
4: सॉरी
3: जिशान ने किया भाग दौड़।
4: अच्छा थैंक यू, तो वही भाग दौड़ संभालनी है हमारी न्यू जनरेशन ने, तो इनके हौसले तो ज्यादा मजबूत होने चाहिए। अच्छा प्रोग्राम है, चार लाइनें सुना हुआ आते
3: जी जी सुनाइए जरूर जरूर
4: जी। रंजे बेअदाई क्या, जोमे आशनाई क्या,
3: वाह वाह वाह,
4: माँ सिवाय तन्हाई इश्क की कमाई क्या, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, वे यकीन रफाकत में बस क्या जुदाई क्या,
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
4: सबसे तकल्लुम तक सबका सभी धोखा है, जब से तकल्लुम तक का सभी धोखा है, दिल में क्या समाया था लब पे बात आई क्या,
3: वाह वाह
2: भाई क्या कहने,
3: दिल में क्या समाया था लब पे बात आई क्या, बहुत अच्छा
4: लब पे बात आई क्या, और खूबसूरत और नुमान जिंदाबाद बड़ी बहादुरी से चल रहे हो आगे, अच्छी बात है।
3: जॉन जॉन वाला शेर भी सुना देना, जॉन वाला शेर
4: जॉन जैसा हुलिया बनाने से जॉन तो नहीं बने,
3: मुझे पता था इस पे फंसेगी
4: और मुझे पता आप नहीं है कि मेरी मिस्टेक पकड़ दी है अगली लाइन आप खुद ही बोल दे,
3: जॉन जैसे हुलिया से जॉन तो नहीं बनता,
4: जॉन तो नहीं बनता,
3: दश्ते राय गानी में खाक भी उड़ाई क्या,
4: खाक भी उड़ाई क्या, वाह वाह बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है जी। सर खुश है आप सबके लिए, बहुत सी दुआएं, मेरी मिस्टेक पकड़ने को जिशान थैंक यू, सीखने को मिलता है हमें आप सब से,
2: बहुत शुक्रिया,
4: बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह
2: बहुत बहुत शुक्रिया यार। नहीं हकीकतन आसिफ भाई क्या खूबसूरत जुमला है ना, मतलब दश्ते राय गानी में खाक भी उड़ाई क्या, जॉन नाम रखने से
3: जॉन तो नहीं बनता, जॉन जैसे हुलिया से,
2: भाई वाह वाह वाह क्या कहने के बला, क्या कहने,
3: क्या दिखा रहे हो,
2: अपनी अपनी किस्मत है ना मेरी जान, तू भी सुबह की ड्यूटी लगवाता अपने
1: किस्मत है
2: और नुमान भाई
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई फिर अल्हम्दुलिल्लाह है।
2: अच्छा अच्छा, तो नुमान भाई आप स्पोर्ट्स शो करते हैं,
1: स्पोर्ट्स
2: करते हैं, इतनी उदासी के साथ करते हैं,
1: इतनी उदासी के साथ,
2: मेरा ख्याल से जब पाकिस्तान मैच हारे तो इसको शो देते हैं जी,
3: तो ये मैच के बाद शो करते हैं,
2: मैच के बाद मैच से पहले जब मैच खत्म हो जाता है फिर शो करते हैं,
1: मैच से पहले कर लेते हैं ना,
3: तो कैसे पता कि हारेगा,
1: वो पहले ही पता होता है ना,
2: ओके
3: तुम क्या रहते इनका अपना स्टेडियम है,
1: वो तो इंटरनेशनल मैचेस तो नहीं ना होते उसमें,
3: अच्छा अच्छा,
2: मतलब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम हारती है तो फिर लोगों को जरा थोड़ा सा
1: ऐसा, आपको पता है मैं खुद भी खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि जिशान भाई को तो मैंने बताया भी था
2: जी,
1: आतिर भाई के साथ तो क्रिकेट की कोई लगाव ही नहीं है
3: मुझे,
1: ऐसे इस मरतबा आप खेलने आएंगे
3: देखने की हद तक नहीं है मुझे, खेला तो है, खेला तो है
1: जब... आतिर भाई टीम का इस... आज बल्कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम टीम बनाएंगे तो डबल विकेट खेला के दो दो प्लेयर्स होंगे और हम उसमें टूर्नामेंट,
2: पिच कैसी है ग्राउंड की,
1: ग्राउंड की
2: घास तो नहीं है,
1: छह विकेट है,
2: घास तो नहीं है,
1: नहीं सम टाइम होता है ना जब आपको बनानी पड़ती है
2: पिच भी ग्राउंड की आप ही आप ग्राउंड में मतलब ग्राउंड में इन अ सेंस के पिच की भी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है
1: क्रिएटर्स मैं ही हूं
2: नहीं रिस्पांसिबिलिटी तो आपकी होगी ना ग्राउंड से रिलेटेड
1: नहीं मैं मीडिया
2: तो आप क्या पसंद करते हैं कि कैसी पिच होनी चाहिए
1: दोनों साइड को होना चाहिए कि दोनों साइड को फेवर जाना चाहिए अच्छा इतनी ज्यादा विकेट पे नमी भी ना हो और
2: अच्छा गीली पिच ना हो
1: गीली पिच ना हो ड्राई होनी चाहिए
2: जी यात्र भाई आप कुछ
3: मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: क्रिकेट की बात कौन कर रहा है
1: विकेट की बात कर रहे
3: विकेट
2: हम
3: खेल
2: की बात
3: देखने देखने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है खेल
2: खेलने में है देखने में तो हमें भी नहीं है मैं काफी अर्सा हो गया नहीं खेला आपने लास्ट टाइम कब क्रिकेट में बहुत अर्सा हो गया नहीं खेला आपने कब खेला रमान
1: मैंने लास्ट ईद से दो दिन पहले ही खेला
2: इसीलिए थके हुए हैं
1: अभी तक
2: नहीं वो फील्डिंग करता रहा होगा वेरी नाइस और ये जो एक पॉज सा आता है ना ऑकवर्ड सा वो नहीं आना चाहिए आप माशाल्लाह हॉट सीट पे बैठे आज हॉट सीट पे नुमान अब्बासी हैं और मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है दैट आई एम शेयरिंग स्टूडियोज विद नुमान भाई जी नुमान भाई
1: मेरे लिए ऑनर की बात है कि आतर भाई प्रोग्राम में शामिल
2: हैं आतर नहीं है यार
1: आतर
2: आतर आतर
1: आतर
2: आतर जैसे आप ये कह रहे हैं ऐसा होता है उसी तरह आतर कहें ठीक है जैसे आप ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होता है आप कह रहे हैं ऐसा होता है तो इसी तरह आतर भाई
3: मैं शामिल नहीं हूँ इसमें
2: जी कॉलर ले यार मैं दिल कर रहा है कोई कॉलर आए कोई ऐसी गुस्सा करे हम पे प्लीज एनीवन कोई अगर सुन रहा है और हमें सिखाना समझाना चाहता है प्लीज जनाब कौन कहाँ से
7: जी आमिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से
2: आमिर साहब कैसे हैं आप
7: जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि निशान भाई बात कर रहे हैं
2: जी आपको बिल्कुल सही लग रहा है निशान ही और सुनाए आप कहाँ ऊँचे हैं
7: सर मैं अपने घर में होता हूँ
2: अच्छा घर ऊँचे आप अच्छा तो सर ईद मुबारक सबसे पहले तो सर
7: ईद माने के जो भी लाहौर में आप ऐसा जज आ रहे हैं
2: जनाब
7: तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपसे मिलने का मुझे मौका मिले
2: जरूर सर
7: और मैं वहाँ पे आपको ऑडिशन दूँ
2: अरे सर
7: ये मेरी दिल की ख्वाहिश है
3: क्या जज करने जा रहे हो मुझे नहीं पता
2: वो मैं ऑन एयर बताता हूँ
3: अच्छा
2: मैम भी सुन रहे हैं बल्कि ऑफ एयर बताऊंगा
3: अच्छा,
2: अच्छा तो वो हाँ जी नहीं आप जरूर करें वेल चले मैं ऑन एयर भी हम बता देते हैं लाहौर जो हमारा स्टेशन है दे आर ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम और बड़ा बेहतरीन टैलेंट हंट प्रोग्राम जो कि मुमी तौर पर एफ एम 101 का खासा रहा है यहाँ पर भी हर जगह पर भी लेकिन अब थोड़ा सा आई थिंक शायद एक ग्रैंड लेवल के ऊपर इस चीज़ को किया जा रहा है तो वो तमाम तर लोग जो कि लाहौर से ताल्लुक रखते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो एफ एम 101 का हिस्सा बने
3: अच्छा
7: तो अच्छा मेरा ये निशान भाई ऐसा था कि मैं जब लाहौर में रहता था तो थोड़ा उस टाइम तो ये चीजें नहीं थी अलहमदा में परफॉर्मेंस वगैरह के लिए जाता रहा लेकिन जब मैं अल्लाह ताला की तरफ से ये शायद इम्तिहान होते हैं जब मैं यहाँ पे आया इस्लामाबाद में तो जब ये अलाउंस हुआ आरजे डॉक्स जो है उन्होंने अलाउंस किया तो जब आपका नाम आया तो यकीन माने कि ये अल्लाह ताला जानते हैं मुझे बहुत खुशी हुई
3: तो वो आपने प्रेजेंटर के लिए ऑडिशन देना
7: जी बस वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ
3: आप अभी थोड़ा सा ऑडिशन दे दें जान को
2: आतिर भाई बैठे हैं इवन यू कैन गाइड यू
7: जी आतिर भाई तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको काम बदल के ये बहुत अच्छे शायर भी हैं और अच्छे आरजे भी हैं
2: इंसान भी बहुत अच्छा है
7: इंसान भी बहुत अच्छा है इसमें नो डाउट कोई दूसरी राय नहीं है
3: सर बहुत शुक्रिया आप कुछ कोई लाइंस जो आपने तैयार की हो कि जिशान आएंगे तो तुम जाओगे
2: कुछ शायरी अच्छी हां कुछ शायरी अच्छी अगर आप सुना सकें
7: जी शायरी छोटी सी
2: से बाहर नहीं आया क्या खूबसूरत शेर था यार क्या खूबसूरत शेर था
7: और आपकी इजाजत से
3: जी जी इरशाद
7: जिस दिल विच हुब है दर्दी नहीं
2: भाई वाह
7: जिस दिल विच हुब है दर्दी नहीं वो है बख्तां दा डिल्ला
2: भाई वाह
7: वो अपने आप नु जींदे आ जी समझे तालु इन्ना लिल्ला
3: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
2: ये उस्ताद अल्लाह देता लूने वाले साहब ने अपने एक कलाम में बकायदा तरन के साथ इसको पढ़ा अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया जी जी आमिर
7: जरा सोच समझ के छोड़ बंदे
2: हाँ हाँ
7: उस बंदे दे की है गिला
2: हाँ हाँ
7: ये तो पीर होवे असनैन दा बाबा
2: जन्नत क्यों ना आखे बिस्मिल्लाह
3: वाह वाह वाह वाह बहुत अच्छा
2: बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई और क्या खूबसूरत आपने بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر بھی عطا کرے اور انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی.
3: آباد رہے حضور, آباد رہے.
7: جی انشاءاللہ ضرور, انشاءاللہ ضرور. اصل میں ذیشان بھائی معذرت کے ساتھ میرے پاس تعلیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں.
2: پھر تو ضرور آرزے بنیں گے.
7: اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے نا
2: پیسے بھی نہیں.
7: اچھی بات بتاؤں, نہیں پیسے الحمدللہ میرے پاس مولا کا بدر کرم ہے.
2: پھر تو ضرور آرزے بنیں گے آپ, تعلیم کی خیر ہے پیسے ہونے چاہیے.
7: لیکن میرے پاس جو حوصلہ ہے نا,
2: حوصلہ
7: مصطفیٰ والے, مرتضیٰ والے,
2: میرے وارث نے کربلا,
7: میرے وارث نے کربلا والے.
3: اچھا آپ آڈیشن حضور عربی اور یہ کیا ہے پنجابی میں دینا چاہتے ہیں یا اردو میں دینا چاہتے ہیں؟
7: آدر بھائی ذہنی بات اردو ہی میں دینا پڑے گا.
2: نہیں پڑے گا, نہیں آپ
3: جو پنجابی میں بھی دے سکتے ہیں. پنجابی کا پروگرام ہوتا ہوگا؟
2: ہاں ضرور ہوتا ہے.
3: پنجابی کے بھی
2: شوز کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے جو
3: پنجابی کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں.
7: سر بس کیا کہتے ہیں کہ پنجابی اردو ہمارا مکس ہی ہے, کیونکہ میری جو بیسیکل لینگویج ہے وہ ہے اٹک سائڈ کی نا ہند کو.
3: میں آپ کو مشورہ, ویسے اگر جسارت کر سکتا ہوں میں آپ کو مشورہ دینے کی,
7: جی جی,
3: آپ پنجابی میں یا اپنی مدر ٹنگ میں جو ہے نا اس میں آڈیشن دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا.
2: صحیح بات,
7: تو وہاں پہ اس آڈیشن کو
3: وہ ذیشان بتائیں گے.
2: وہ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے پیسے ہیں تو بس بات کرتے ہیں. ملاقات ہوگی آپ سے, ٹھیک ہے,
3: آباد رہے, خوش رہے, بہت شکریہ.
2: اچھا نعمان تھوڑی سی یار اپنی جرنی شیئر کرو, کہاں سے سٹارٹ لیا, کیسے کیا, کہاں تک پہنچے, کیا سین ہے, کیا نہیں, ذرا بتاؤ, تھوڑا بولو زیادہ, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ گفتگو کر رہے ہیں, پلیز زیادہ بولو ذرا. 3 2 1 تے گو
8: چلیں. میں نے
2: اس کو چھوڑ کے بات کرو,
3: نہیں اس کو کرنے دو نا, جیسے وہ
2: یار اس کو پکڑ کے بات کرے نا,
3: خیر ہے نا, ہیڈ فون ہی ہے نا.
2: اچھا چلو ٹھیک.
8: میں نے ایف ایم کا آغاز سننا سٹارٹ کیا تھا تقریباً 2017 میں.
2: ماشاء اللہ, یعنی کہ 9 سال پہلے.
8: ہاں 9 سال پہلے, اور کرتے کرتے پھر آج الحمد للہ یہاں پہ
2: 9 سال سے کر رہے ہیں آپ؟
3: نہیں
2: میں تھوڑا سا یار ماڈریٹر بنتا ہوں یہاں پہ. اور دیکھیں اگر آپ کو آواز ٹھیک نہ جا رہی ہو تو نعمان بھائی نے کہا کہ میں نے 2017 سے سننا شروع کیا اور آج یہاں پہ تو آتر بھائی کہہ رہے کہ جرنی ختم. ختم
8: نہیں,
2: اچھا اسٹارٹ. کرنا کب سے شروع کیا؟
8: میں نے 2021 میں, 21-22 میں,
2: 17-21, 4 سال سنا آپ نے؟
8: ہاں 4 سال سنا.
3: اور 4 سال ہو گئے کرتے ہوئے؟
2: 4 سال ہو گئے کرتے ہوئے. 26-25
3: پانچ ہو
2: گئے, زیادہ ہو گئے. ہاں 5 سال ہو گئے کرتے ہوئے.
8: 22-23 سال.
2: اوکے, اور کیا کہنا چاہیں گے جو ینگسٹرز آپ کو سن رہے ہیں نا, گفتگو کریں. مطلب میرے پاس تو اگر آپ 8 سال کی جرنی کے لیے 8 جملے تو ہونے چاہیے. آپ تو بہت کم موڈ نہیں, مطلب آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ پینلسٹ پہ اتنے مطلب کون بیٹھا ہوا ہے اکثر, مطلب یا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ پینلسٹ میں کون ہے؟ سمجھ گئے ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ کال کر کے پوچھیں گے تو نہیں کہ شو کے پینلسٹ میں کون ہے تب میں آؤں؟
8: اس میں کون سی بڑی بات ہے.
2: تو
8: اچھا اپنے کہا تھا ینگسٹر کو میسج ہے.
2: نہیں میں نے پوچھا جرنی بتائیں اپنی.
8: تو جرنی ظاہر ہے 4 سال سنا,
3: جرنی بتا چکے
8: سننے کے بعد, پھر 4 سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے,
2: کوئی مشکل نہیں آئی لائف میں, مطلب کوئی آپ نے محنت نہیں کی, کوئی مطلب مطلب جو ینگسٹر سن رہے ہیں وہ اگر بننا چاہتے کیسے بنے, کوئی تھوڑا سا بتائیں نا اس کے اوپر, مطلب آن ایئر ٹائم ہے آپ کے پاس, یوٹیلائز دیٹ.
8: آکے آڈیشن دے, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ تو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اسٹڈی کو پورا کریں, کیونکہ میں اگر بات کرتا چلوں تو کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا جب میں آپ کو بھی,
2: کیمیکل انجینئرنگ
8: کر رہا تھا اور میں اس ٹائم آپ کو سن رہا تھا. میں نے آپ کو تقریباً 2-3 سال سنا, ایون عمران علی مانی
2: اللہ جنہ نصیب
8: کرے, ان کے ریگولر لسنر ہوا کرتا تھا آپ کا. آپ اس سے پہلے ایک پروگرام کرتے تھے سونا میں نے, آئی تھنک میں غلط نہیں ہوں تو.
2: نہیں نہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ اگر یہ جملہ نہ بھی کہیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اکثر لوگ یہ جملہ ایڈ کرتے ہیں کہ میں یاد نہیں, ویسے میں سنتا جی پلیز, نہ یاد ہے لیکن میرے خیال سے آپ بزی ہوتا تھا نا تھوڑا تو کبھی کبھی سن لیتا تھا. ہاں جی پلیز کریں آپ.
8: نہیں تو غلط بھی تو ہو سکتا.
2: نہیں نہیں سونا منع ہے, بالکل ٹھیک ہے.
8: آپ وہ پروگرام کرتے تھے وہ سنتا رہا, ایون پھر شوق پڑا اور بس الحمد للہ
3: شوق پڑا.
2: नहीं, इमरान को सुन के.
8: हाँ दोनों को सुन के, दोनों को सुन रहा था. इमरान इमरान भाई की बात करते जो शान भाई की करें, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह माइक पे आ गए. और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यंगस्टर हैं मैं उनसे कहूँगा कि एक उधर पैशन और पैशन को प्रोफेशन. और माइक के साथ अब मैं डिफरेंट जगह पे कमेंट्रीज करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ. और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप स्टेडियम की बात कर रहे थे तो स्टेडियम में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मीडिया हेड के तौर पर उस पूरे स्टेडियम को देख रहा हूँ और सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं.
2: वेरी नाइस यार, बहुत खूब बहुत खूब. तो यंगस्टर जो सुन रहे हैं और आना चाहते हैं इस फील्ड में तो क्या किस चीज़ पे फोकस करें वो अपने?
8: ज़ाहिर है पहले स्टडी और उसके बाद फिर आके ऑडिशन.
2: अच्छा आतिर भाई कुछ आप प्लीज़ पूछिए, नुमान भाई आज मौजूद है हमारे दरमियान.
3: वो बता रहे हैं ना कि
2: नहीं, आप भी कुछ पूछे ना अगर आपके जहन में, बिकॉज आपका भी एक एक्सपीरियंस रहा है, आप प्लीज़ उनसे अगर कोई सवाल करें तो.
3: आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया सुनने के बाद? क्योंकि देखिए हम सुनते भी हैं और मूवीज भी देखते हैं, ड्रामास भी देखते हैं, बहुत कुछ होता है. तो स्पेसिफिकली आपको रेडियो पे किस चीज़ ने मजबूर किया कि एक स्पार्क होता है इंसान के अंदर, क्या मैं ये करूँगा?
8: नो, मुझे अगर देखा जाए तो मैं एक छोटे से फ़ोन से सुना करता था. और जब मैंने उस टाइम सुना था तो मैंने कहा था कि यार मैंने
2: बड़ा फोन लेना,
8: नहीं बड़ा फोन तो लेना ही लेना है वो
2: अच्छा.
8: लेकिन बात है कि अब बात
2: यार खुल कैसे रहा आतिर भाई, आप गलत बात रही है. क्या बात, मुंह पे क्यों हंस रहे हैं? मैं मुंह के अंदर ना हंस पूरा हंस.
8: मैंने उस टाइम कहा था कि मैं यहां पे आके बैठ के प्रोग्राम करूंगा. अल्हम्दुलिल्लाह
2: कर रहे हैं, डन इट, बस दैट्स इट, खत्म. मतलब वो एक बिन देयर डन दैट वाला साहब हो गया ना, मतलब आपने एक चीज करनी चाहिए वो कर ली है, इसको आप प्रोलॉन्ग एज अ करियर करना.
8: करियर लेके चलूंगा और रेडियो को तो नहीं छोड़ूंगा.
2: रेडियो को नहीं छोड़ेंगे?
8: हां नहीं छोड़ूंगा.
2: बाकी आपने कहीं का नहीं छोड़ा इसको? नहीं बहुत.
8: आप अपनी जर्नी बताएं
2: यार. इट्स बिन 14 ईयर्स नाउ. और मैंने सुना शुरू किया तो राजा हैदर साहब एक आरजे हुआ करते थे, अभी भी वो हैं आरजे, खैर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बोलते थे. फिर नासिर महमूद खान साहब, फिर इमरान हसन डीजे मानी, अब अमेरिका में होता. तो ये वो चंद आवाज़ें थी जिनको सुन के मुझे ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी गुफ्तगू करूँ. और आपने शायद थोड़ा सा आप कह लें कि मॉडेस्टी का मुजाहरा किया, आजजी का मुजाहरा किया, लेकिन मैं बींग वेरी ओपन, मुझे हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि मैं स्टैंड आउट करूं. और सुनने वाले अगर 1000 हैं और बोलने वाला एक है तो आप तभी स्टैंड आउट करेंगे ना जब आप बोलने वालों में शामिल
8: होंगे.
2: तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही कि मैं स्टैंड आउट करूं, मैं बोलने वालों में हूं. तो अल्लाह ने फिर उसमें मदद भी की और उसके बाद जर्नी बहुत अच्छी रही. आपकी तरह इवेंट्स तो नहीं मतलब इतने ज़्यादा कर पाता मैं, और किसी ग्राउंड का मीडिया हेड भी नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली. लेकिन और पैकेज भी मेरा आपसे कम ही है, लेकिन स्टिल आई एम हैप्पी इन इट.
8: हां अदर भी अब आप बता
3: क्या
8: कि आज के बनने का कैसे एक्सपीरियंस अपना बता.
3: एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत खुशी से प्रोग्राम करता हूं मैं. और हमेशा हर दफा जब भी प्रोग्राम करता हूं ये लगता है कि पहला प्रोग्राम है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और अगर आप ये कहें कि एक ज़िंदगी में सोचा था कि आरजे बनूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है, और ना मैंने रेडियो सुना टू बी ऑनेस्ट. ये भी नहीं कहूँगा हादसाती तौर पे मैं रेडियो पे आ गया, ऐसा भी नहीं है. मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक था बचपन से, मतलब लाइक इवन जो स्कूल टाइम पे हमारी लाइब्रेरीज होती थी उसमें मैं शायरी की बहुत किताबें पढ़ता था वहाँ से लेकर. तो उसके साथ साथ आवाज़ का कॉम्प्लीमेंट मिलता रहा कुछ दोस्तों से, और उस पर कहा गया मुझे. और आप शायद जानते हों, मुझे नाम भूल रहा है,
2: कोई हवाला दें.
3: आप दुबई में होते हैं, वो यूएई में,
2: एजाज वारिस?
3: नहीं नहीं, पन्नी, फहद पन्नी.
2: फहद पन्नी बिल्कुल,
3: फहद पन्नी
2: वरना फिल्म में भी आए थे.
3: हाँ फहद पन्नी साहब के वालिद साहब से मेरे वालिद साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक है, दोस्ती है. तो वो एक उस टाइम मैं बहुत छोटा था, लाइक आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में था या मैट्रिक में था ऐसा कुछ था. तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया था कि वो रेडियो प्रेजेंटर है. मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था रेडियो प्रेजेंटर क्या होता. तो उस महफिल में वो एक शादी में मुलाकात हुई थी, تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا بتایا کہ اس طرح پروگرام ہوتے ہیں, اور انہوں نے مجھے یہ پہلا کمپلیمنٹ دیا تھا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے, اور میں نے ان کو یہ بات میں نے کہی تھی کہ شعر و شاعری میں پڑھتا ہوں کیونکہ انٹرسٹ وغیرہ کی بات, تو انہوں نے مجھے اس طرح کی چیز پہ کہ آپ ریڈیو پہ یہ چیز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بہت چھوٹی ایج میں بزنس اسٹارٹ کر دیا تھا, تو میری وہی فرسٹ پرائرٹی رہی ہمیشہ, اور اس کو الحمدللہ میں نے پھر لے کر چلا اس طرح کہ جب شوق تھوڑا سا آیا بہت زیادہ دوستوں کی طرف سے کہ آپ اس کو ٹرائی کریں, آپ کی آواز اچھی ہے اور شاعری میں عبور ہے کچھ, تو میں نے ٹرائی کیا اور بس پھر اس پہ الحمدللہ یہاں آ گیا.
9: ویری نائس. اور جرنی ادھر,
3: ہاں وہ تو چلتی رہے گی نا.
9: اچھا ہاں, وہ کہتے ہیں once a soldier always a soldier, once an RJ is always an RJ.
3: اور ہاں ایسا ہے, اور وہ جو آپ نے کہا کہ اس کا مجھے کوئی خاص نہیں ہے شوق اسٹینڈ آؤٹ کا, اور نہ میں نے اس میں کبھی ٹرائی کیا, اور ایونٹس وغیرہ اور یہ وہ میں نے اس میں کبھی ٹرائی بھی نہیں کیا, مجھے اس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ نالج بھی نہیں ہے.
9: اچھا ہمارے
3: لیکن وہ بڑی اسکل ہے, میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ آپ ریڈیو پہ جو میں فیل کرتا ہوں کہ ذیشان آپ جو کرتے ہیں اور جو نعمان نے کہا وہ ایونٹس کرتے ہیں, تو ایک خالی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ کے سامنے مائک, وہ بھی ایک اسکل ہے, لیکن آپ کے سامنے ہزار لوگ ہیں اور ایکسپریشنز ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو میں فیل کرتا ہوں نا وہاں پہ ایک شور ہے, اور اس شور میں آپ مائک پہ ایسے بول رہے ہو کہ آپ نے صرف اپنی آواز پہ فوکس کرنا ہے, اس شور میں آپ کو جو بھی آواز آ رہی ہے, کچھ ہوٹنگ ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ بڑی اسکل ہے, اور آپ وہ کرتے ہو اور بہت اچھا کرتے ہو.
9: سر تھینک یو. اچھا مجھے تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جو آج کل کے پریزنٹرز اب آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں یا نئے ہیں, آپ تو ماشاء اللہ نعمان کافی سینئر ہیں, جو اب آنے والے ہیں میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں, کہ سب سے بڑا پرابلم آج کے آنے والے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہ شاید وہ اپنے آپ کو مارکیٹ صحیح نہیں کر پاتا. میں نے جتنے لوگ مشہور دیکھے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی ریڈیو پریزنٹرز ہیں یا ہوسٹ ہیں, ون وے اور ادر ایک ہی بات کرتے ہیں. آتے بھائی آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ مطلب اگر کربلا پہ کوئی بات کرے گا تو وہ الفاظ شاید رد و بدل ہو سکے, ورنہ واقعہ تو سارا وہی بیان کرے گا کوئی بھی شخص کرے گا, لیکن آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کیسے کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کس طرح سے رجسٹرڈ کرواتے ہیں, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور بینگ این آر جے, اب جو ینگسٹر سن رہے ہیں, جیسے ابھی ایک بھائی عامر شاید آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بالمشافے کسی سے سیکھیں, آپ بنا ملے بہت کچھ. آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے, لوگوں نے اپنے کروڑوں روپے کے بزنس کھڑے کر لیے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ دیکھ کے. یہ جو کمبائنڈ شوز ہوتا ہے نا آتر بھائی, اس کے اوپر آپ ضرور اپنی سے دیجیے گا جو بھی آپ محسوس کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ریڈیو پریزنٹر کے لیے ایک ورلڈ کپ کی مانند ہوتا ہے. جو آپ کا سولو شو ہے وہ ایک لیگ ہے پی ایس ایل کی, جو کمبائنڈ شوز ہیں وہ ایک ورلڈ کپ کی طرح ہوتا ہے. جیسے بابر اعظم پی ایس ایل میں جتنا بھی اچھا پرفارم کریں, بہت اچھے بیٹس مین ہیں, لیکن جب ورلڈ کپ میں وراٹ کوہلی ہوگا, اسٹیو اسمتھ ہوگا, ہاردک پانڈیا ہوگا, جتنے بڑے بڑے بیٹسمین ہیں, وہاں پہ آپ کیسا پرفارم کر رہے ہیں ان بڑے بیٹسمینوں کے ساتھ, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, کاؤنٹ کرتا ہے. اپنی لیگ پہ تو ہر بندہ ہی پرفارم کر سکتا ہے, تو اس لیے میں نے جب مجھے کمبائنڈ شوز کا موقع ملا, چاہے جب میں ینگسٹر تھا یا اسٹارٹنگ میرا کریئر تھا تب بھی, اور جب بعد میں تھوڑا سا لوگوں نے سننا شروع کیا, چار پانچ لوگ سننا شروع کیے, تب بھی میں نے ہمیشہ کمبائنڈ شوز کو بہت بڑی اپرچونیٹی مانا ہے, کہ آپ اس میں بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں, بہت کچھ بولنے کا بھی آپ کو موقع ملتا ہے, اور آپ کو اپنا بھی پتا چلتا ہے میں کتنا پانی میں ہوں, ورنہ لسنرز کے ساتھ تو چھیڑا چھاڑی کرنا بہت آسان ہے. کیوں آدر بھائی؟
3: ہاں بالکل, آپ کا ایک ہاتھ ہے بٹن پر, اور آپ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ کال کو ڈراپ کر سکتے ہیں, اور لیکن کسی چیز کو فیس کرنا اور اس کو آگے لے کر چلنا, اس پہ ایک دیکھیں حاضر دماغی. میں نے ایک چیز سیکھی تھی جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ریڈیو پہ, کہ ریڈیو میں یہ تو سیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا بولنا ہے, ریڈیو یہ ہے کہ آپ نے کیا نہیں بولنا. اور ایسا ٹائم جس ٹائم پہ آپ کمبائن شو کر رہے ہیں اور آپ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, سوری, تو وہ بیسیکلی سننے والوں کو یہ امیج جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ڈومینیٹ کر, لیکن ہماری یہ جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ذرا اسپائسی بنا سکیں, ذرا ایسا بنا سکیں کہ سننے والے انگیج رہیں, اب کیا بات ہوگی, اب کس بات پہ کچھ ہنسی مذاق ہوگا, ایک خوشی کا موقع ہے. جیسے ابھی ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ کچھ ایک دو کالرز آئے اور انہوں نے اس چیز کے اوپر کہا بھی کہ شاید انہوں نے تنزیتن کہا,
10: तो हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि हम कहाँ से आते हैं और क्या चल रहा होता है लाइफ में और हम यहाँ पर आकर कैसे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक आर्ट होता है. और आपको जैसे जिशान आप कह रहे हो कि वो एक मौका होता है आपको अपना आर्ट परफॉर्म करने का. और रेडियो की जिस तरह बात कर रहे थे कि हम कहाँ से आते हैं और क्या चल रहा होता है लाइफ में और हम यहाँ पर आकर कैसे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक आर्ट होता है. और आपको जैसे जिशान आप कह रहे हो कि वो एक मौका होता है आपको अपना

0: उसको चैलेंज करते हो, क्योंकि जिशान की और मेरी मुलाकात लास्ट ईद के शो के बाद आज हो रही है,
1: ऐसा ही है, ट्रू।
0: लेकिन एक केमिस्ट्री अगर मैच कर रही है
1: ऐसे ही है,
0: तो वो कुछ कुछ ऐसा है कि आप जिसको लेकर चलने की कोशिश करते हो,
1: ऐसे ही है।
0: और आप आज नुमान है हमारे साथ, पिछले कई प्रोग्राम में
1: बहुत सारे लोग और बहुत सारे, और एक चीज मैं आपकी इजाजत से ऐड करूं कि जैसे वो सर भी बात कर रहे थे ना कि वो न्यू है, आप उनको सिखाएं, ये सोच हम नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर ये सोच हम रखें और मैं ये सोचूं कि जो मेरे सामने बैठा है ये यंगस्टर्स है, इससे मैंने कोई इस तरह बात, फिर तो शो ही बड़ा लो हो जाएगा ना। अगर मैं ये समझूं कि मैं तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं मजाक करूं या इंटेलेक्चुअलिज्म अपना दिखाऊं, तो इसलिए हम बिल्कुल, अब जितने नुमान तो आई थिंक स्पोर्ट्स का शो करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे सोलो शो सुने तो कभी भी हम इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर रहे होते।
0: अब स्किल की, देखिए स्किल की बात करें, अब मैं जितनी दफा आप लोगों ने बात की, मैंने कहा मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, क्या कि मैं मुबर्रा तो हो रहा हूँ, लेकिन उसका नॉलेज रखते हैं वो, और वो उस पर एक पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, स्किल है ना। तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जो कर सकते हैं उसमें आप, अगर अब मैं नुमान को कहूं कि आप शायरी का प्रोग्राम करें, शायद वो सीख कर बहुत अच्छा कर लें। अगर मुझे कहा जाए कि आप क्रिकेट का प्रोग्राम करें, मैं सीख के भी अच्छा नहीं कर सकूंगा, ठीक है, क्यों, मैं जानता हूं मैं नहीं कर सकूंगा। तो और जो आपकी एक वो है, वो मैं अकेले नहीं कर सकता, जो यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है मैं अकेले नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। तो एक मौका जब ऐसा आता है जिसमें हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह बैठ के बात कर रहे थे, तो उसमें ये चीजें मेरा ख्याल है इतना कोई मैटर नहीं करती हैं कि हम अपने उसी उसमें रहें जो हम जिस तरह रेडियो पे आकर परफॉर्म करते हैं। इस वक्त हम ऐसे ही हैं जैसे अपने घर में बैठे हैं, और हम, हमारी फैमिली है ये सब जो सुन रहे हैं, और यहाँ पे भी जो लोग मौजूद हैं,
1: ऐसे ही जी नुमान। माइक थोड़ा ऊपर कर लें, वो आवाज नहीं सही जा रही, कसम से देखा, अब आपने देखा ना, नहीं सही जा रही थी ना, कसम उठाएं अल्लाह की कसम, नहीं सही जा रही थी, कहो ना माइक पर नहीं सही जा रही थी,
2: नहीं सही जा रही,
1: देखा हम आगे, उन्होंने कॉल बोलर से दिंदा यार। जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, करम अल्लाह का, हम बहुत अच्छे हैं सर, आप ठीक है?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो तीनों भाइयों को सर मेरी तरफ से ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक।
2: और सर क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक,
1: ठीक है भाई जान, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
2: शुक्र सर, दमदम खुश से हरदम खुश हुए।
1: चलो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी, अल्लाह हाफिज हो गया। चलें जी नवान, आप कुछ कह रहे थे?
3: मैं कह रहा था कि आप जब जाहिर इवेंट्स होस्ट करने जाते हैं तो क्राउड होता है, और जिस तरह अदर भाई ने बात की है,
1: अच्छा नहीं कॉलर नहीं है यार, हम
3: नहीं,
0: आप अपनी बात करें,
3: आप बात की कि ज़ाहिर आपके सामने
1: कॉलर नहीं है, होता है,
3: और उस क्राउड को फिर किस तरह हैंडल करते
1: हैं, कॉलर कहां से आएगा? अच्छा जी जी, प्लीज प्लीज, सॉरी, हाँ जी, नहीं आप बात करें, वो मैं तो
3: समटाइम ऐसा होता है कि क्राउड बहुत ज्यादा होता है, और आपके ना जब आप एक
1: कॉल कहाँ से आई थी? नहीं यार एक सेकंड, अच्छा जी जी प्लीज, क्राउड बहुत ज्यादा,
0: जर्मनी से,
1: जर्मनी से, जी जी प्लीज, हाँ जी,
3: तो क्राउड होता है उसको फिर कैसे हैंडल करते हैं? आपने तो एक माइंडसेट बना लिया ना,
1: नहीं तो फिर अब क्या करना है अब इसके बाद? अच्छा वो क्राउड को हैंडल कैसे? जी जी जी जी नुमान प्लीज, सॉरी जी जी,
0: बता ये रहे थे कि मेरी किताब छपने वाली है।
1: आपकी किताब छपने वाली?
3: नहीं नहीं, आदर भाई की,
0: जाहिर है आमिर भाई कह रहे
1: थे। अच्छा आमिर भाई की किताब छपने, अच्छा नहीं सॉरी, आप प्लीज कुछ कह रहे थे?
3: कॉलर ले लेते,
1: नहीं कॉलर है ही नहीं, होता तो हम आपसे थोड़ी सवाल कर रहे होते। जी जी प्लीज बोलिए।
3: नहीं नहीं होगा
1: जी जी, आप बात करें ना यार, सवाल कुछ पूछे थे, 1000 का क्राउड आगे,
3: तो मैंने कहा आप जाहिर एक माइंडसेट बना के गए और आपके माइंडसेट के मुतरादिफ आ जाता है,
1: हाँ हाँ हाँ।
3: तो फिर आप किस तरह हैंडल करेंगे, क्या करेंगे
1: यार? वो आपके सवाल, यार कॉल ले लें, कॉल है
0: वही है,
1: खैर उठा लें, कोई मसला नहीं है, वही है, तो केड़ा कोई
0: जवाब तो दे दो,
1: जवाब मैं कॉल के बाद देता हूँ,
0: खत्म होगी कॉल,
1: खत्म होगी कॉल। अच्छा
0: देखो खत्म होता है, हम खत्म बोल रहे हैं, इससे साबित होता है कि हम ओरिजिनलिस्ट हैं।
1: हाँ ऐसे ही, हम बनावटी नहीं है। सॉरी आपका सवाल ये था कि क्राउड अगर मुतरादिफ हो, ऐसे ही है यार, इसकी सबसे कि मतलब फॉर एग्जांपल आप ये समझ के गए क्राउड बहुत एनर्जेटिक होगा, लेकिन आप गए तो बोरिंग निकल आया, तब आपने जो है उसके अगेंस्ट हो गया ना वो,
0: अच्छा।
1: मतलब बोरिंग निकल आया, आपने समझा कि वो आपको साथ देगा लेकिन वो आपको हूट कर
0: रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन।
1: अच्छा यार इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आदर भाई ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ऑल दो के कहा कि मुश्किल है, जो कि है अपनी जगह पर, लेकिन मुझे, मैंने थोड़ा बहुत ड्रामा भी किया, थिएटर किया स्टार्ट में, स्टेज अभी किया, लाइक इवेंट्स वगैरह और फेस्टिवल, रेडियो, मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो रेडियो लगता है। उसकी रीज़न ये है कि आप अकेले हैं, व्हेन यू आर विद द क्राउड, तो बड़ी चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है।

0: आपसे फंबल भी हो गया ना,
1: पकड़ लिया
0: कुछ
1: ना कुछ, पकड़ लिया
0: कुछ, कुछ पकड़ लिया। म्यूजिक है, नहीं बोलने को आ रहा लिसनर, वो म्यूजिशियंस हैं वो आ गए, उन्होंने परफॉर्म कर, लेकिन जो रेडियो है ना उसमें आपने अपनी बात को पहुंचाना, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जैसे भी आतिफ भाई ने भी बात की कि जब हम स्टूडियो से निकलते हैं तो हमें खुद भी कहीं ना कहीं पता होता है आज हमने अच्छा प्रोग्राम किया कि नहीं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक शायरी थी जो कि मैं बड़ा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको पढ़ूँ, और मैं जब पढ़ता था एंड में मुझे भूल जाती थी, तो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि एक दिन मैंने वो शायरी पढ़नी है, और जाहिर है अब उसका मैंने बैकअप ही रखा हुआ था कि मैं जहाँ तक रहती थी याद मैं उसको जुबानी पढ़ लेता था, जहाँ मुझे वो भूलने लगती थी मैं साथ ही वो मैंने ओपन की हुई होती थी यहाँ पे, ताकि एटलीस्ट ऑन एयर जो है वो बुरी ना लगे ये बात। लेकिन दिल ही दिल में ये था कि यार क्यों नहीं मैं इसको वन गो में पढ़ सकता। फिर एक टाइम आया कि जब मैंने वन गो में पढ़ा, और
1: हसन कुजागर,
0: हसन कुजागर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो आपका भी ये
1: नहीं,
0: क्योंकि हसन कुजागर एक ऐसी,
1: मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने गाड़ी में सुना है तुम्हें पढ़ते हुए वो,
0: अच्छा अच्छा,
1: और मैंने उस चीज को फील कर लिया कि ये इसको ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा है।
0: तो हसन कुजागर जो है वो लाइक जिस दिन मैंने फिर जुबानी पढ़ी सारी, और जिस दिन मैं स्टूडियो से निकला तो मुझे फील हुआ कि यार नाउ आई हैव डन समथिंग। बाकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। और द अदर डे आई वाज लिसनिंग शाहरुख खान, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर का बहुत बड़ा वो ग्लोबल स्टार है, उसने एक बात की यार मेरे दिल को लगी बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि ये जो चीज़ है कि करोड़ों लोग मेरा नाम पुकारते हैं, मुझे स्टार कहते हैं, ये जब चली जाएगी तो मैं बड़ा मिस करूंगा। मतलब इवन द शाहरुख खान नोज के एक दिन ये चला जाएगा। तो आप कभी इस चीज को अगर सर पे सवार ना होने दें तो क्राउड जैसा भी हो आप वो करता है, जो अक्सर आप लोगों को बदतमीजी करते देखते हैं वो कहीं उनके जहन में ये हो जाता है कि हम सुपीरियर हैं, और जब आप सुपीरियर होते हैं और आपके सामने कोई, आपको ये लगे कि जो अगला बंदा है वो इनफीरियर है, तो फिर आप को ये लगता है यार मैं ऐसे बात क्यों करूं, जो कि वो साहब हमें करने को कह रहे थे अतर भी ऐसा ही है। हाँ। कि मतलब हम उस सोच के साथ आगे बैठे कि मैं सुपीरियर हूं, और नमान इसको अगर शो करते हुए 2 साल या 3 साल हुए हैं तो ये इनफीरियर है, मैं इससे क्या इंटेलेक्चुअल बात करूं या मैं इससे क्या मजाक करूं। सो हमारे लिए वंस द पर्सन इज सिटिंग ओवर देयर, और आप तो आज मार्शल हॉट सीट पे, तो यू आर द सेम फॉर हर्स। कॉलर है हमारे साथ, बड़ी अच्छी बात
1: है। आप कुछ नमान
0: ड्यूटी रोस्टर पर
2: नाम लिखता नहीं, वैसे शायरी के वाले से अब पूछ रहे हैं तो
0: सुन भाई सुनाएं अब
2: नहीं लिखता
1: उगड़ा जा रहा लड़का। चलो खैर
0: जी,
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तीनों भाइयों से बहुत कुछ हासिल हो रहा है सर, तो जीशान नासिर साहब से मैं ये एक सवाल करूंगा, शादी होगा सर, ये ट्रेनिंग जो होती है ये कितनी जरूरी है मौजूदा दौर में किसी भी शो पे, खासकर रेडियो के लिए, ट्रेनिंग के बारे में आप बता दें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: बड़ी मेहरबानी यार, किसी भी शोबे के लिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहें और आबाद रहें। बाकी किसी दिन प्रोग्राम की प्रॉपर ऐसा हुआ जिसमें भी गुफ्तगू हुई तो जरूर करेंगे, अभी इधर क्या लेक्चर दूंगा। जी सर, नेक्स्ट कॉल।
1: नहीं, मेरे जहन में जो बात आ रही थी वो
0: आप करें ना।
1: नहीं, वो
0: ऑफर करेंगे पहले।
1: अच्छा, ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग ली थी रेडियो की कुछ?
0: नहीं,
1: मैंने भी नहीं ली।
0: ट्रेनिंग ली थी वो,
1: मैं आपको बताऊं, मेरा जो
0: दूध ले आओ, पकोड़े ले आओ, समोसे ले आओ, प्राइवेट चैनल पे बैठे हो,
1: 6 महीने
0: उन्होंने ये ट्रेनिंग दी थी।
1: मेरा जो पहला प्रोग्राम था ना उसमें मैंने स्पीकर्स लगाए थे कि ये माइक है, ये फेडर है, ये कॉल्स है, और वो जो बैठे हुए थे ड्यूटी पर उन्होंने मुझे कहा कि आपका पहला प्रोग्राम है, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आप ट्रेनिंग के बगैर क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने कहा मैं कर लूंगा, वो कहते हैं देख लें आपकी जिम्मेदारी है, कॉल्स नहीं लेनी आपने, तो मैंने कहा चलें देखते हैं, और मैंने कहा बता दें कॉल्स का बटन कौन सा है, तो उन्होंने मुझे बता दिया, मैंने उस पर वो स्टिकी नोट्स होते हैं ना वो लगाए, तो मैंने उस प्रोग्राम में कॉल्स ली, आधे घंटे बाद मैंने कॉल्स लेना शुरू कर दी, और वो कॉम्प्लीमेंट था निकलते, वो कहता है मैंने आपका पहला प्रोग्राम ही था, तो एक मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि यार मैंने उस चैलेंज।
0: अच्छा, आतर भाई मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी जिंदगी की सीख भी है, कि दो चीजें ऐसी हैं अनुमान भाई के, वो आपके अंदर जितनी भी खामियां हो, कमियां हो, उसको छुपा देती हैं। एक पैसा, अगर आपके पास है तो ठीक है, अब पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अब अगर आपके पास जति पूछती है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो कमाने में टाइम लगेगा,
1: दिख भी जाता।
0: दूसरी चीज़ यह शोहरत, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखा कि अगर आप मशहूर हो गए हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जायज़ हो जाती हैं, लोग उसको अच्छा ही समझते हैं। उसको बेहतर ही समझ। मतलब अगर आप शोहरत मिल गई आपको तो आपको ऐसी फजूल बात भी करेंगे तो लोग कहेंगे यार वेरी गुड यार वेरी नाइस ये स्टाइल है। तो इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी है ना कि हमेशा खुदा से किस्मत तलब करो, किस्मत की दुआ करो कि अच्छी किस्मत। और ये दोनों चीजें किस्मत से रिलेटेड है। दौलत का ताल्लुक ना मेहनत से है ना तालीम से है, इसका ताल्लुक आपकी किस्मत से है और शोहरत का ताल्लुक भी आपकी किस्मत से है। कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हेलो
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
4: हमीद गुलार कर रहा हूं
0: जनाब।
4: मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा मैं आपको गजल सुनाऊं।
0: सुनाए।
4: बड़ी देर से वो आप नौमान वासी कह रहे गजल सुनाए, देर पड़े, मैंने कहा कोई शेर सुनाए। शेर सुनाना चाहिए।
0: सुनाना चाहिए सर, सुनाए आप।
4: आखिर भाई
1: जी हुजूर,
4: आपके लिए नौमान भाई आपके लिए और निशान साहब आपके लिए, एक शायर हैं जिनका नाम है विष्णु वारिक।
1: ठीक है,
0: जानते हैं आदर भाई आप।
4: विष्णु वारिक।
1: विष्णु वारिस।
4: वारिस वारिस।
1: अच्छा जी।
4: शायद एक नए पैराए में मेरे सामने एक बात आई, देखिए इस गजल को, कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे। दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे। निशान साहब, दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, हम है कागज वो कैंचियां देंगे।
1: ठीक है
4: आखिर भाई, शेर देखें कि जुगनियों ने शराब पी ली है। जुगनियों ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे।
1: बहुत अच्छे।
4: अब ये सूरज को गालियां देंगे और आ गई इश्क पे वो नौबत, अब डाकिये तेरी चिट्ठियां देंगे।
1: डाकिये तेरी चिट्ठियां देंगे।
4: चिट्ठियां देंगे और हाँ सुना है वो फूल जैसी है, उसको तोहफों में तितलियां देंगे।
1: ठीक है,
4: उसको तोहफे में तितलियां देंगे और आप जो बैठे, आप जो बैठने नहीं देते। आखिरी शेर है, आप जो बैठने नहीं देते आप एक रोज कुर्सियां देंगे। आप जो बैठने नहीं देते आप एक दिन कुर्सियां देंगे। बात यह है, खुशी पे नुमान साहब से पूछा गया तो खुशी पे शेर सुनाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए खुशी पे शेर के लिए।
0: तेरे हाल हो गई। सही बात है सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी पढ़ी आपने।
4: नहीं, शायरी तो हम अच्छी पढ़ी लेते हैं, वो शायरी पढ़ना कोई कमाल नहीं है। शायद हो किसी के लिए, मेरे लिए नहीं है।
0: अच्छा,
4: चार निशान साहब आपकी नजर कर रहा हूँ अपनी।
0: जी जी,
4: ये मैं कभी कभी उल्टा सीधा लिख लेता हूँ, पता नहीं मुझे लिखने आता है या नहीं आता, बार लिख लेता हूँ।
0: वो तो आप सुनाएं तो फिर हम बताएंगे ना।
4: हाँ चले, मैं आपको ऑडिशन दे रहा हूँ कि तीर नजरों के खाए बैठे हैं।
0: भाई वाह।
4: तीर नजरों के
1: खाए बैठे
4: हैं, जख्म दिल के सजाए बैठे हैं। ये रहा दश्त, ये रहा सहरा। ये रहा दश्त,
1: ये रहा
4: सहरा, खाक इनमें उड़ाए बैठे हैं।
1: वाह वाह वाह।
4: और खुशी पे जो बात हो रही थी तो खुशी पे भी मेरे शेर सुनते जाइएगा, कि खुशी मयसर आ गई थी मुझको। ये नौमान के लिए, कि खुशी मयसर आ गई थी मुझको, हाँ एक पल और जी लिया मैंने।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे।
4: थैंक यू सलामत रहें,
1: खुश रहें।
0: अच्छा यार, ये शेर व शायरी से और भाईजान ने जिस तरह की सुनाई है उससे मुझे एक चीज याद आई कि हम सब अच्छी शायरी सुनते हैं, कहीं ना कहीं हमें पसंद भी आती है। बट आतिर भाई, हो सकता है ये सवाल आपसे किसी ने ना किया हो तो मैं आप कर रहा हूँ, और नुमान आप भी इसमें शामिल हैं तो याद पहले से कर लीजिएगा। सबसे बेकार या बेवजन शेर आपने जो सुना हो, मैं शुरुआत कर देता हूँ। वैसे मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आजकल के दौरे हाजिर में जो लिखने वाले हैं उनमें चंद बेहतर शायर और मशहूर भी बहुत हैं, तहजीब हाफिज साहब। उनका एक शेर है कि तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी मैं सालगिरह का केक क्या काटता।
1: तो बता दिया तुमने
0: जी, आप बताएं। जी
1: यार, ऐसे है कि मेरा गला बहुत खराब है।
0: हाँ जी,
1: खांसी बहुत हो रही
0: है। हाँ जी,
1: शेर हो गया ना।
0: अच्छा, अच्छा ये भी सुना है आपने?
1: तो जैसा आपने सुनाया वैसा मैंने
0: नहीं, मैंने ये शेर है। अच्छा हाँ
1: जी। नहीं शायर का असल में जो दिल करता है ना वो लिख देता है कुछ भी जो उसके जहन में आ रहा होता है। और इस अगर मैं इसको उस तरह से अगर आप सीरियस नोट्स पे शायरी के हवाले से अगर बात करें तो मैंने जितना पढ़ा है ना उसमें मैंने कई बहुत बड़े बड़े शोरा को भी कुछ वजनी बात कभी कभी ऐसा है कि उन्होंने नहीं लिखी। लेकिन जो बात अभी आपने की थी ना कि मशहूर हो गए तो फिर आपकी कोई भी बात अब देखिए काम काम काम कह दें आप या मैं तो कुछ नहीं है लेकिन चिन्ह कहते हैं तो वो कॉल बन जाता। ठीक है तो उसके लिए वो शाहरुख को भी आपने कोट किया तो उसने उसका भी एक जुमला है कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। तो उसने उस अपने पैराए पे बात ठीक की। तो जब आप कह दें कि नाम कर लिया तो फिर अभी आपने शेर सुनाया है इस शेर पे आपने कोई 50-60 लोगों को झूमते हुए भी देखा होगा। ठीक है तो उनके नजदीक तो शायद ये बहुत सारों ने किसी की सालगिरह पे भेज भी दिया होगा लिख के शेर अपने चाहने वालों को या जिनको वो चाहते हैं तो वो उसको उनके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन क्लास जहां पे आप किसी चीज की लेते हैं ना कि ये क्लास क्या है तो वो आपको हर जगह पे ऐसी ही नजर आएगी। इंसान है खता का पुतला है कहीं भी खता करेगा।
0: थोड़ा सा शायद आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए। ये सवाल मैं किसी ऐसे शख्स से कभी भी नहीं करूंगा जो कि शायरी नहीं जानता। बिकॉज आप देखें मैं कभी भी उस शख्स से क्रिकेट की बात नहीं करूंगा जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला। लेकिन सिंस यू आर द वन हु गॉट एन इमेंस इमेंस फीलिंग फॉर द पोएट्री ना तभी आप करते भी बहुत मुश्किल काम है। सो बेशक शेर शायर का नाम ना बताइए लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल एक शेर है कि मेरे मेरे सब काम खुदा करता है उसके खुद ब खुद हो जाते हैं। ख्वाबों का कारोबार करती हो कितने पैसे हो जाते हैं। ये एक शेर है और बकायदा इस पे लोग झूमते भी हैं। देखिए लोगों का झूमना किसी चीज का मयारी होना तो नहीं है। तो और द अदर डे आई वाज रीडिंग के
1: देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या मैं क्यों कह रहा हूं ये। आपने किस मेरा एक मिजाज है ना अब आपने एक नाम लेके बात कह दी और शेर भी सुना दिया लेकिन मैं उसको ओवरऑल अप्लाई करके बता रहा हूँ आपको। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी शायर का। शेर भी नहीं सुनूंगा। नहीं शेर भी नहीं शेर पकड़ा जाएगा ना शेर पकड़ा जाएगा शेर भी सुनूंगा लेकिन मैं
0: ओनू देहांग और अच्छा तुमने कह रहा मैं शेर नहीं सुनाऊंगा। अच्छा चलो
1: मैं शेर भी नहीं सुनाऊंगा लेकिन मैंने कहा आपको कि आप तो मौजूदा दौर के शोरा की बात करें चले मैं रेफरेंस के तौर पे कह रहे तो जो इस दुनिया से जा भी चुके हैं ना और नाम करके गए हैं किताबें छाप के गए हैं और उनकी किताबें पढ़ी जा रही हैं उनका नाम शायरी आप लफ्ज बोलेंगे तो आपके जहन में आएगा। तो मैंने ऐसे भी शायरों के कलाम देखे हैं जिस जो बेवजन थे और ख़ास तौर पे उनकी आज़ाद नज्म जिसको कहते हैं आज़ाद नज्म के नाम पे कुछ भी लिख दिया। ठीक है क्योंकि मैंने कोशिश की थी एक दफ़ा और मैं लिखता हूँ खुद भी लिखता हूँ लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा कहीं पे मैं अपना शेर कह रहा हूँ मैं अपना शेर कुछ सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको नहीं पब्लिक करना चाहा। मैं मतलब मैं अगर करना चाहूँ तो शायद किताब भी छाप लूँ और मैं खुद भी पब्लिशर हूँ मुझे मेरे लिए वो भी बड़ा इशू नहीं है लेकिन मैंने नहीं उस चीज़ को समझा। लेकिन आप जब एक नाम एक चीज़ में बना लेते हैं और आप फिर कुछ भी कह देते हैं तो वो है ना एक चलो एक शेर सुना देता हूँ इस बात पे कि मेरी तो मेरे तो लफ्ज़ भी कोड़ी के नहीं तेरा जुमला भी सनद है हद है तो किसी का
0: सबसे अच्छा
1: तेरा नुक्ता भी सनद है सॉरी मेरे तो लफ्ज भी कौड़ी के नहीं तेरा नुक्ता भी सनद है हद है तो किसी का नुक्ता भी सनद हो जाता है लेकिन बात यह कि वो लोगों के दिलों में कितना घर कर चुका है और फिर कैसे कर चुका है वो एक अलग टॉपिक है।
0: अच्छा ये थोड़ी सी खतरनाक अप्रोच
1: एक मिनट पिछले प्रोग्राम में एक शेर हमारे यहाँ से जाने के बाद आपने बहुत दफा रिपीट किया था छेड़छाड़ में वो शेर बेवजन है।
0: कौन सा
1: अब याद करो लास्ट टाइम जब हमारी मीटिंग थी हम यहाँ से उठ के जब जा चुके थे वो था कि खत्म कर दो तो खत्म हो चले गए वो शेर पे वजन
0: है। यस यस यस
1: वो शेर पे वजन है उसमें वजन नहीं है
0: और इतने बड़े शायर
1: इतने बड़े शायर का वो बेवजन शेर है।
0: ट्रू ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा कम मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा वो शेर सुना दीजिएगा अभी तक जो आपने सुने जो सबसे अच्छा है आपके दिल के करीब है वो बताइएगा। जी रमान कोई ऐसा शेर जो आपको लगा होगा यार क्या शेर है यार पसंदीदगी भी होती है हो सकता है वो शेर अच्छा हो आपको पसंद ना आया। जी
5: यार शेर मैंने एक सुना था आप सही तौर पे तो कि दिल की बंजर जमीन में क्या शिकवा आई थिंक मैं सही तरह तो शायद ना पढ़
1: सकता, सुना है आप सुना है
5: सही की बंजर जमीन में क्या शिकवा हुसन का, आई थिंक इस तरह कुछ था, मैं सही तरह
0: पता नहीं, दिल मतलब ये सही नहीं लगा आपको, इसलिए आपने सही पढ़ा भी नहीं है। अच्छा अच्छा जो लगता है वो सुना दें
5: यार। अच्छा मुझे लगता है इमरान अली मानी का लगता
0: है, माइक थोड़ा सा ऊपर कर ले,
5: इमरान अली मानी का लगता है।
0: जी जी अल्लाह जन्नत नसीब करे।
5: मेरी वफाओं का एहतसाब कर दो तुम, सोचो मत बस बर्बाद कर दो तुम, रोज जीता हूँ फिर से मैं मरने को माने, अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो तुम। अब मुझे इसका नहीं पता कि वजन में है या नहीं है, बेवजन है ये तो अतर भाई, क्योंकि जाहिर है उनका
0: आतर
5: शायरी, आतर भाई शायरी से उनका लगाव है, तो मुझे ये अच्छा लगता है उनका एक शेर।
0: सही अच्छी बात है जी। आप सबसे पसंदीदा शेर जो आपके दिल के बड़ा करीब हो यार।
1: जो रुके तो कोहे गिरा दे हम
0: भाई, वाह।
1: जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। बहुत खूबसूरत शेर,
0: बहुत खूबसूरत,
1: मतलब इसमें अपनी पूरी लाइफ कवर कर देता है शायर। जो रुके तो कोहे गिराते।
0: अच्छा मैं जो खैर बात कर रहा था कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग एन पर्सन जिसके पास माइक है, ये मेरी ज़ाती राय है और हो सकता है गलत भी हो, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी है वो अगर किसी चीज़ को लेट इट गो भी कर दे, खासतौर पर जो आर्ट से रिलेटेड है, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई शख्स जिसके पास माइक की ताकत है और ऐसे दौर में जहाँ पर फैज़ मौजूद हैं, जहाँ पर अहमद फराज साहब मौजूद हैं, जहाँ पर अलामा इकबाल साहब मौजूद हैं, जहाँ पर मीर मौजूद हैं, गालिब मौजूद हैं, मुनीर नियाजी साहब मौजूद हैं, एंड द लिस्ट इज़ लॉन्ग, वहाँ पे अगर आप उनके साथ कंपैरिजन करें उन शौरा का, जो कि देखें एक तो ये बात टेक्निकली भी अलग है, मैं द अदर डे आई वॉज रीडिंग कि अशार सिर्फ हम अल्फाज हो जाना शेर नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान में शायद 99.9% मेरे समेत शायद लोग ये समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कह दिया कि मैं वहां पर जाऊंगा देखूंगा तो मर जाऊंगा, ये शेर है क्योंकि हम अल्फाज हो गए ना। लेकिन द अदर डे आई वॉज रीडिंग, वो एक बड़ा अच्छा लेक्चर दे रहे थे शायरी के ऊपर, गालिबन मैं गलत उनको कोट नहीं करना चाहूंगा, फरहत अब्बास साहब मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद है वही थे, तो वो उसकी बकायदा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर, बकायदा वो बता रहे थे कि शेर के लफ्ज बराबर होने चाहिए, लाइन बराबर होनी चाहिए, अल्फाज बराबर होने, फिर वो एक शेर के मयार के ऊपर आता है।
1: कभी आमिल सावल यार में उनका लिखा हुआ,
0: हाँ देखे ना, हाँ ये अब देखें। तो अब बात ये है कि ये भी एक वे ऑफ एजुकेशन है, और ऐसा भी नहीं कि हर नया आने वाला सही नहीं है। अभी जैसे एक लड़का है ज़ाइम नाम है शायद, हाँ, उनका अब्दुल्ला ज़ाइम, बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब वो खास तौर पे उनका एक वो एक शेर है कि परिंदों को ये ऐलान गया है सयाद नशेमन का पता जान गया
1: है, ये दूसरा है लड़का, इसका नाम भी अब्दुल्ला है, हाँ।
0: है ना, हाँ। तो वो बड़ा वो है, और खास तौर पे इसका है कि ये नाम होना सब जाके दुनिया को बताओ, हाँ मफ़ूर परिंदों को ये ऐलान गया है सयाद नशेमन का पता जान गया है, नाम होना सब जाके औरों को बताओ, फकीर तो दस्तक सही पहचान गया। मतलब बहुत सारे अशआर ऐसे भी जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉल आउट करना बड़ा जरूरी भी है।
1: लेकिन मैं थॉट, आपने ये गजल जो पॉइंट आउट किया ना, एक थॉट जो आता है शायर के जहन में, इसी गजल का एक शेर, वो कहते हैं कि अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया, मतलब वो थॉट क्या थॉट होगा, क्या कैफियत होगी जब वो चीज,
0: और बड़े यंगस्टर हैं वो,
1: और वो क्या थॉट होगा जब काट रहे होगे
0: वही ना, अब आप ये देखेंगे तेरे होते हुए मोमबत्ती बजाई किसी और ने। हालांकि डिस्पाइट बीइंग द मैटर ऑफ द फैक्ट, मैं ये बात ऑन एयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे अशार मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, चलें आतिर भाई का तो हो सकता है चुके शौरा के साथ उठना बैठना होगा थोड़ा सा वो मोहतात रवैया इख्तियार करें, लेकिन मैं खुद बहुत सारे अशार ऐसे हैं हाफिज साहब के जो मुझे पसंद हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं उन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज को भी एक्सेप्ट करना हमारे मुआशरे में मियार को गिराता है। फिर जब आप देखें, एक टाइम था मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब मैं पहली दफ़ा लाहौर गया अपने वालिद साहब के साथ, तो मैंने उनसे ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं स्टेज ड्रामा देखना चाहता हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार सोहेल अहमद साहब का ड्रामा देखते हैं, तो मैंने उनसे, हालांकि मैं बड़ा छोटा था उस टाइम पे, मेरा हजरत 10-11 साल का होगा, तो उस टाइम सोहेल साहब करते थे थिएटर, तो मैंने उनसे पूछा कि सोहेल अहमद साहब ही क्यों, मुझे लगा शायद फैन है उनके अबू, तो उन्होंने कहा कि यार वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि गंदी हो, मयार है ना,
1: मयार
0: ठीक है। उसके बाद देखिए कहां ये मयार कि कोई ऐसी बात नहीं करते जो गंदी हो, और आप यकीन करें कि आज आप थिएटर चले जाएं पूरे ड्रामा में अगर एक बात ऐसी हो जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुन सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है वो बात
2: ऐसे ही,
0: जहां से आम अल्फाज में उसको गालियां कह सकते हैं, जुमानी बातें कह सकते हैं जिनको वो झुकते भी कहते हैं, तो वो हुआ क्यों? क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो जब आप किसी चीज मीडियोकर माइंडसेट को एक्सेप्ट करते हैं, और ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी है, जिंदगी में आदर भी आप जरूर इसके ऊपर अगर कुछ कहना चाहें, मुझे ऐसा लगता है हर कामयाब आदमी, बहुत सारी उसके अंदर अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें एक आदत जरूर होती है जो कि मैंने कंबाइन हर कामयाब आदमी में या हर बेहतर जिंदगी गुजारने वाले आदमी में मुश्तरका देखी, और वो ये है कि वो जो एक मीडियोकर लाइफ है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। दे ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, वो गुड के ऊपर वो नहीं करते हैं यार बस ठीक है हो गया यार कंफर्ट, वो हमेशा बेस्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर आज आप तहजीब हाफिज साहब को सुनते हैं, जो कि अच्छे शायर हैं, सुनना चाहिए। अभी रिसेंटली एक मुशायरा यार रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में हुआ, शायद आपको खबर होगी, आप यकीन करें कि मैं वहां पर गया तो बैठने की जगह नहीं थी, मतलब मैं ओवरऑल बात करूं मतलब क्राउड भरा हुआ था, और जब हाफिज साहब आए लोगों ने वो किया। लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मैंने रेडियो नया नया शुरू किया, तो कोई साल गुजरने के बाद मैं, अब तो खैर वो चीज़ रही भी नहीं नुमान, जैसे ही बात हमें कही जाती थी, मतलब कहना मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ कि अब वो उतनी मुश्किल नहीं रही हॉट सीट पे बैठना या ये या वो, लेकिन ये हकीकत भी है यार भाई कि आज से अगर आप 6-7 साल पहले चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो अब अलाउ हैं वो उस टाइम नहीं थी। ठीक है, मतलब मैं ऑन एयर जाहिर है वो चीज़ पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं थी। तो अखबार क्या है, वो जब मैं शो करके बाहर निकला तो मैंने उनसे कहा कि वो प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर आज कॉलर्स ने बड़ी तारीफ की मेरी। तो कहा यार ये वो कॉलर हैं जो 8वीं के बच्चे हैं मैट्रिक, कोई ऐसा कॉलर आया जो कि डॉक्टर था, वकील था, कोई मुसन्निफ था, मतलब आप ये तो देखें ये बिल्कुल ऐसी। फिर उसने मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी जो कि उस टाइम मुझे बुरा भी लगा कि यार लोग कभी खुश नहीं होते, लेकिन बाद में वाकई मुझे समझ में आई। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे सिंगर हैं, ये तारीफ तब काबले कबूल है जब कोई अच्छा गवैया आपको ये कहे।
1: हाँ।
0: मतलब अगर एक मैकेनिक आपसे कह रहा है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो वो किस बेस के ऊपर कह रहा है? ठीक है, तो इसी तरह मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैंने एक वीडियो देखी, मैं बड़ा हंसा उसके बाद, फिर आगे बढ़ते हैं कि बबू राणा साहब एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, आजकल बहुत फेमस भी हैं, मेरी बल्कि चंद कॉमेडियन जिनसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मिलूं, फिर मैं मिला भी उनसे लाहौर में। तो उन्होंने राहत फतेह अली खान साहब के सामने, अब ये देखिए ना ये भी एजुकेशन भी बड़ी जरूरी है कि आपने कौन सी बात, जैसे आपने कहा था कौन सी बात आपने कहा नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कहे भी, वैसे तो किसी ने नहीं कहा आज तक, लेकिन अगर कोई कहे भी कि आप जो है वो नासिर महमूद खान साहब जैसा बोलते हैं, तो अगर नासिर साहब मेरे सामने होंगे तो मैं कभी उनको ये नहीं कहूंगा कि लोग मुझे कहते हैं मैं आपकी तरह बोलता हूँ।
1: ठीक है,
0: ठीक है, ये एक मयार नहीं है गुफ्तगू, आप जिसको अडोर करते हैं आप उसके। तो खैर राहत साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि राहत भाई जो आफ्ताब इकबाल है जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं के शो में चुके, वो कॉमेडी भी करते हैं ज्यादा बबू राणा। तो उन्होंने कहा कि राहत भाई जो आफ्ताब भाई है ना, आफ्ताब इकबाल साहब ने मुझे खिताब दिया है कि तुम दौरे हाजिर के जो राहत फतेह अली खान है, तुम समझ लो कि तुम उसके नायब हो, या तुम मेरे शो के राहत फतेह अली खान हो, या बबू राणा राहत फतेह अली खान से कह रहे हैं। अब वो भी चूंकि राहत फतेह अली खान थे और फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने आगे से कहा कि आफ्ताब इकबाल केड़ा शहनशाह कवाल ने। सो बात ये है मेरी जान कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अब मैं अब इस चीज को बहुत देखता हूँ कि जब भी मेरी कोई तारीफ करे, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैं जब भी इवेंट होस्टिंग पे जाता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं जी बहुत अच्छा किया एंड ऑल दैट, क्यों? क्योंकि उनके लिए तो इतना भी बहुत है कि एक बंदा स्टेज पे चढ़ के बात
1: है,
0: और उनके लिए तो ये बेसिक भी बहुत है। द अदर डे मैंने एक इवेंट होस्ट किया, तौसीक हैदर साहब बहुत बड़ा नाम है, ही सेड के यार आप बहुत अच्छा करते हैं, वो मेरे लिए एक मोमेंट था। कॉलर लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
6: जी वालेकुम अस्सलाम सर, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, बड़ी मदद के दायरे में, क्योंकि मौका ऐसा है ये बात हो रही है
0: जी सर,
6: तो इस बात से मुझे तकरीबन 30-35 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस बात को लेकर, तो काफी मैं उलमा के पास भी गया, काफी लोगों से भी मिला, जो क्योंकि मैं कुरान पाक सुनता हूँ, तो कुरान पाक में शायरी जो है उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शायरों की बात ना सुनना। ठीक है, माजर के साथ आप नाराज की
0: बात करें,
6: और मैंने जब ये बात सुनी, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे शायरों को पसंद करता हूँ और सुनता भी था, फैज अहमद फैज साहब को और जितने भी शायर उनको सुनता भी हूँ और बड़ा लाइक करता था उनको मैं, लेकिन जब ये बात मैंने अल्लाह ताला की जब सुनी तो मैं डर गया, तो मैं सिर्फ काफी उलमा के पास की, लेकिन किसी ने अपने पॉइंट से बात की, किसी ने कहा जी ऐसे नहीं, किसी ने कहा ऐसे नहीं. लेकिन अगर आप प्लीज निशान भाई और शाह साहब दोनों अगर इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि आप इंशाल्लाह करेंगे, तो ये किस कॉन्सेप्ट में उन्होंने अल्लाह ताला ने बोला है और किस वजह से कहा है, ये प्लीज मुझे, मैं कॉल बंद करता हूँ मुझे लाइव.
1: ठीक है, थैंक यू थैंक यू.
0: आज भी आप कर ले पहले.
1: एक तो उन्होंने बात किया कुरान के हवाले से, तो वो एक मैं उसको चाहूंगा कि अगर मैं करूं तो मैं प्रॉपर रेफरेंस के साथ करूं उस आयत को कोट करके, अगर वो कर अगर उस जिसकी बात कर रहे हैं आयत की. लेकिन जहां तक मेरा नाकस इल्म है उसमें मैं थोड़ी सी एक बात बता देता हूं कि कुरान मजीद एक जिंदा किताब है, और शायरी, जब आप शायरी या कोई भी इल्म आपके सामने आता है या किसी इंसान की कोई तख्लीक आपके सामने आती है ना जब, तो आप उसमें उतार चढ़ाव देखते हैं. वो एकदम से अपनी पीक पर नहीं जाता. जैसा कि आप गालिब को अगर पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो गालिब ने जहां से आगाज किया था वो बिल्कुल कुछ और होगा, और जहां पे गालिब मशहूर हो रहे हैं और वो एंड कर रहे हैं वो बिल्कुल कुछ और है. आप इकबाल को पढ़ना शुरू करेंगे तो जो आगाजी उनके कलाम थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जब आप एंड पे जा रहे हैं वो जब देख रहे हैं, जब वो किताबें छाप रहे हैं और किताबें क्या छाप रहे हैं, जब वो उनकी मशहूर हो रही हैं चीजें, और इकबाल एक नाम कर चुके हैं उनके बारे में, मैं बात भी क्या कर सकता हूँ, जसारत क्या कर सकता हूँ अलामा इकबाल के बारे में बात करने की. लेकिन आप आगाज का कलाम देखेंगे तो एक इर्तका के अमल से गुजरेगा, वो एक चेंज आ रहा होगा. आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये मुदल्लल और मुकम्मल बात कर रहे हैं. एक कलाम में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है. आप बल्कि रिक्रिएशन ऑफ ऐसा करके कोई किताब का नाम है, एंड पे अगर आप आखिर में रिक्रिएशन ऑफ या रेजोल्यूशन ऑफ इस्लाम करके कुछ नाम है, तो आप उससे पहले भी इकबाल की कुछ शायरी पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बहुत तारीफ की है, और वो आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा कि आपकी कही हुई बात से आप आगे जाके इख्तलाफ कर जाते हैं अपनी कही हुई बात से. अब बीइंग एन आर्टिस्ट में आपसे हम लोअर लेवल पे आ जाते हैं, अपनी बात करते हैं कि आपने भी जिशान जिंदगी में ये महसूस किया होगा कि कभी आपने कोई बात कही है और आपने बड़े वसूख से कही है कि मैं सही कह रहा हूँ, और आगे जाके आपने उसको महसूस किया कि नहीं मैं गलत था उस पर, और फिर आपने उस चीज को ठीक किया और कहा कि मैं अपनी बात से उसको चेंज कर लेता हूं. तो अब जो जिस जितना मेरा इल्म है ना, वो जहां पे रेफरेंस दिया गया वहां पे जब ये कलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से सादिर हो रहा था, जबान से सादिर हो रहा था, तो कहा ये जाता था कि कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये जादू है, कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये शायरी है. उस कॉन्टेक्स्ट में आके ये बात कही गई शायरी के हवाले से, और उसको अगर क्लियर किया जाए ना, तो शायरी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो एक फनून लतीफा में आती है. ठीक है, तो फनून लतीफा को कहीं पर भी कंडेम नहीं किया गया. अगर वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो जहां तक मुझे समझ में और जितना मैंने सुन रखा है, जितना मेरा नाकिस इल्म है, उस हवाले से वो शायरी की बात की गई, उसका कुछ सियाको सबाक है. आप वहां से कोई एक जुमला, एक आयत उठाकर अगर बात करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी. आप उसकी कॉन्टिन्यूटी में अगर बात देखेंगे, उसका सियाको सबाक किया, तो बात आपको मुकम्मल तौर पे समझ आएगी. तो जहां तक मेरा इल्म है, और अगर जो अगर इन्होंने तवज्जो दिलाई है तो उसको जरूर मैं पढ़ना भी चाहूंगा. जैसे मैंने आगाज में कहा कि मैं रेफरेंस के साथ बात करूं, तो जो मैंने बात की, तो कुरान एक जिंदा किताब है, उसमें कहीं पर आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी. ठीक है, तो जो बात कही गई उसमें, अब एक आयत का रेफरेंस मुझे याद है, तर्जुमा मुझे याद है, उसका मफहूम ये है कि ये कहते हैं कि मैंने एक उम्र तुम में गुजारी है. नबी सल्लम कह रहे हैं, ये कुरान की आयत है, लेकिन रेफरेंस ऐसे दिया जा रहा है कि मैंने एक उम्र तुम में गुजारी है, क्या कभी तुमने मुझे ऐसी बात करते देखा है कि वो इस चीज की दलील है कि ये अल्लाह का कलाम है, जो नबी सल्लम की जात से सादिर हो रहा है, जबान से सादिर हो रहा है, वो अल्लाह का कलाम है, ये दलील है. शायरी जो है वो इंसान से सादिर हो रही होती है, उसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो अल्लाह ताला की जात से आ रही है, वो उसका एक फन है, उसके एक जज्बात है जो बयान कर रहा है. तो जो इस चीज को क्लियर करने के लिए कि ये कलाम जो तुम्हें सुनाया जा रहा है, जब कह दिया गया ये शायरी है, और दूसरी वो जो थी एक आयत है जो उसका तर्जुमा आपने सुना ही होगा, बड़ी मशहूर आयत है कि अगर तुम ऐसा लिख सकते हो तो एक आयत ही लिख लाओ, ऐसा कुछ मफहूम है. तो ले और तुम यकीन नहीं ला सकोगे। तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं शायरी से मंसूब हूँ और मैंने भी एक दो दफ़ा ये बात सुनी और काफ़ी पहले की बात है जब मैंने इसके बारे में तहकीक करने की कोशिश की तो मुझे ये तीन चार पॉइंट्स मिले।
0: अच्छा आदर भाई, बहुत सारी चीज़ें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर कवर करती हैं। जो कुरान है, इवन हदीस के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं, ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे माशरे में मिसकोट की जाती है, क्योंकि कुरान भी एक रेफरेंस, एक कॉन्टेक्स्ट, एक मौके पर उतारा गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कुरान पाक नाजिल हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, यानी कि 40 और 63 23 साल का ये वो दुरानिया है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है। अब वो मुख्तलिफ मौक़ों पर हुआ, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में हुआ। अब एक हदीस है, एक आयत है कुरान पाक की कि तुम नमाज के करीब मत जाओ, लेकिन अगर आप उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो ये है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। अगर आप सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट को उठा लेंगे, तुम नमाज के करीब मत जाओ, और कहें कि देखें जी कुरान में तो लिखा है कि तुम नमाज के करीब मत जाओ, इसी तरह ये जो शायरी वाली बात है कि शायरों की बात ना सुना करो, ये वो दौर था कि जब बहुत सारे लोग माज़ल्लाह कदगन लगाते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि ये कलाम लिखवाया जाता है। इट्सेल्फ ये इस बात की दलील है कि खुदा ताला ने अपना कलाम भी एक वजन के साथ उतारा है। देखें, अगर कोई कह रहा है कि ये शायरों से लिखवाया जा रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो कलाम भी वजन के अंदर मौजूद है। मैं मिसाल देता हूँ, आप कुलू अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, वजन में सूरह रहमान अगर आप पढ़ें तो किस तरह से, अब देखें जहां पर यकूत मरजान तो कज़्ज़बान, मैं अल्फाज को जोड़ रहा हूँ, उस किसी और पत्थर का भी तो नाम लिया जा सकता था, बाकी हिकमत अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन एक जहनी सतह पे जो चीज आप सोचते हैं कि किस तरह से अल्फाज का चुनाव, उसमें बैलेंस, उसमें एक राइमिंग वर्ड्स का होना, उसके बाद जब आप कहीं पर स्टक हो जाएं, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फॉर्मूला रखा हुआ है कि जहां पर मैं कन्फ्यूजन का शिकार हो जाऊं कि यार इस हवाले से ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, तो फिर मैं ये देखता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या उन्होंने इसको पसंद फरमाया या ना पसंद फरमाया। तो हमें बहुत सारे सहाबा ऐसे मिलेंगे जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे, जो कि बहुत बेहतर अशार लिखते थे, जिसमें हजरत हसान शामिल हैं। हजरत हसान रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो सहाबी थे जो कि रसूल अल्लाह के लिए नात लिखा करते थे, रसूल अल्लाह के लिए अशार लिखा करते थे, और रसूल अल्लाह ने पसंद फरमाया उनको, बहुत सारे मकामात पर महफिल में उनसे वो अशार सुने। तो अगर कोई चीज ऐसी होती कि तुम शायरों की बात ना सुना करो, तो फिर यकीनी तौर पर रसूल अल्लाह उसको मना फरमा देते। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है जैसे हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सुन रखा है कि गाना हराम है। गाना इट्सेल्फ हराम नहीं है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें सियासत्ता में मौजूद हैं, जहां पर बकायदा यहां तक उन्होंने फरमाया कि एक निकाह में जो फर्क है वो गाने का है। मतलब अब गाने से मुराद देखें, जो आजकल का गाना है उसकी बात नहीं, गाने से मुराद तरन्नुम में गाना, खुशी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके पास क्या अल्लाह ताला ने क्या मौजज़ा अता किया था, ठीक है, हज़रत सुलेमान की अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला ने उनको क्या मौजज़ा अता किया था, कलाम अल्लाह पढ़ा करते थे और इस तरह पढ़ा करते थे कि परिंदे रुक जाया करते थे। सो किसी भी चीज को जनरलाइज कर देना, उस टाइम अगर शायरों की बात हो रही है तो वो उन शायरों की बात हो रही है जो माज़ल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पे खड़े हैं। सो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। बाकी हाँ, आजकल के दौर में अगर आप ये चीज देखें तो थोड़ा सा आपको उस हवाले से मोहतात रहने की जरूरत जरूर है कि आप वो शायरी ना पढ़ें जो कि ना सुने ना पढ़ें जो कि जिसमें शिर्क का एलिमेंट हो। अब क्योंकि बहुत सारे अशआर ऐसे भी हैं जो कि लोग कहते हैं यार कहने वाले ने पता नहीं किस मकाम पर जाके लिखे हैं। अब वो जिस मकाम पर भी जाकर लिखे हों, लेकिन मेरे ख्याल से उनको पढ़ते हुए, और खास तौर पर जब आप ऑन एयर पढ़ रहे हैं उसको, मैं खास तौर पर यंगस्टर्स की बात करूंगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, कोशिश करें, या तो फिर आपके पास इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप उसके लिए तैयारी कर लें, कोई आपसे सवाल कर ले, फिर आप उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका बयान कर सकें, समझा सकें। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो फिर देन गो फॉर इट, अदरवाइज मेरा ख्याल से शायरी को सुनने में, पढ़ने में या शेर सुनाने में कोई ऐसी बीमारी
1: नहीं। एक वाक्या भी है ना कि एक ऐसा कुछ वाक्या मैंने सुना था, पढ़ा था कि एक शख्स आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मेरा बाप मुझसे मेरा माल ले लेता है
0: जी।
1: और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तलब किया कि उसके बाप को बुला लो। अब वो वाक्य में ये था कि वो आते हुए चंद अशार पढ़ रहा था
0: जी
1: रास्ते में, जो उसका बाप है, और जब वो पहुंचा तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम और तुम्हारा माल दोनों तुम्हारे बाप के हैं। ये आपने सुन रखी होगी। तो वो अशार पढ़ता हुआ आ रहा था और यही मैंने किताबों में पढ़ा है। और दूसरी जो बात आपने की बिल्कुल ऐसे ही है, वो कोई भी चीज़ है वहां पे अगर अखलाकियात का पहलू गिर रहा है तो आप उसको कह लें कि वो गलत है, या आप उसको हराम का लफ्ज देते हैं या कुछ भी, लेकिन वो गलत है। फिर वो कुछ भी है, आप शायरी में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि गैर अखलाकी है, तो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। आप कारोबार में कोई ऐसा काम कर रहे हैं, देखिए कारोबार तो जायज है, कोई भी कारोबार है ना, तजारत है, जायज है, लेकिन किस चीज की तजारत कर रहे हैं ये देखा जाएगा ना, कि आया कोई ऐसी चीज है जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। अब आप कहें कि ये कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आप किसी चीज का नुकसान है, किसी मेडिसिन का नुकसान है, तो आप हमें ये लगता है कि शायद हमें इस चीज से मना कर दिया गया, ये चीज नहीं करनी, लेकिन अगर आप उसको ऐसे देखने की कोशिश करें कि वो आपको बता क्या रहा है, बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अभी बात पहले जब मैं कर रहा था तो मैंने बताया कि वो जिंदा किताब है, आप उसको एक वाकयात की किताब के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, आप जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपको दौरे हाजिर में बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जैसा कि मैं छोटी सी एक बात आपको बताता हूँ कि खुमर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है हराम के लिए, खुमर का लफ्ज। अब आप ये देखिए, खुमर वो कैफियत है जिसमें आपको, जो मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा, वो ऐसी कैफियत है जिसमें, अगर उसको आसान अल्फाज में कहें तो, ऐसा वक्त, ऐसा नशा जो आपके ऊपर तारी हो जाए जिसमें आपको अपनी कही हुई बात समझ ना आ रही हो, आप ना समझ पा रहे हो कि उसमें आप क्या बोल रहे हैं, आप हवास में नहीं हो, होशो हवास में नहीं है। तो आप देखिए कि आजकल के दौर में कितने ही ऐसे नशे हैं जो बन चुके हैं। अब आप उनका रेफरेंस तो नहीं ढूंढ सकेंगे ना किताबों में, उनके नए नाम हैं, उनकी कोई नए फार्मूलाज हैं, इवन टैबलेट्स भी, कोई छोटी सी टैबलेट भी हो सकती है, तो अब आप उसका रेफरेंस तो नहीं ढूंढेंगे। तो वो एक, लेकिन जब खुमर का लफ्ज आप देखेंगे तो वो हर चीज को कवर करता है, ठीक है। इवन अगर आप किसी लिक्विड की बात भी करते हैं तो वो हर चीज को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में सिर्फ आपको नशा नहीं मिल रहा, वो हर फॉर्म में, तो वो उसको कवर करता है खुमर का लफ्ज। इसी तरह कोई भी चीज होगी जो मेरी नाकिस समझ है, अकल है, उसमें ये बात आती है कि कोई भी चीज जिसमें अखलाकियात का पहलू गिर रहा है वो समझ में आता है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो आपकी सामाजिक जिंदगी है, वो गलत है,
0: चाहे वो शायरी है।
1: हाँ, चाहे वो शायरी है, सीरियस नहीं हो गया।
0: नुमान, कुछ आप इस पे ऐड करें, करना चाहिए।
1: तो कॉल्स भी कहते हैं कि आप लोग बातें ऐसी, जब हम ऐसी बातें करने लगते हैं कोई आता नहीं है।
0: हाँ जी नुमान भाई, आप ऐड करें।
2: शायरी की बात हो रही थी, इतनी सीरियस बात हो रही थी, और यहाँ पे तो लिसनर्स को भी शामिल कर लेते हैं वैसे, और कॉल्स का आपने कहा लिसनर्स को भी शामिल कर लेते हैं।
1: अच्छा चलो यार,
2: फिर मैं बात करूंगा, बात फिर लंबी होती
0: है। नहीं हो, लंबी हो,
1: चलो
2: यार।
1: हेलो, वालेकुम अस्सलाम
7: आतिर भाई।
1: जी जनाब।
7: हाँ जी, निशान भाई और नमान बासी को भी सलाम। और सबसे पहले मैं अपना तारक बरादू अब्दुल नूर हाशमी, रिगाज गार्डन, लाहौर से।
1: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है, ईद मुबारक आपको।
7: अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। तो बात हो रही थी शायरी पे।
1: जी जी।
7: तो फनून लतीफा में शामिल है शायरी, जो कुरान की आयत का हवाला दे रहे थे ना, शायरों की जो मैद करते हैं वो गुमराह लोग करते हैं, वो वादियों में फिरते हैं। तो नबी सलम ने फिर आपने सहाबा को उनकी तशरीह भी कराई, हजरत हसन साबित का जिस तरह नाम लिया रजी अल्लाह ताला अन्हु निशान नासिर ने। तो ऐसी शायरी जो इस्लाम के नस के खिलाफ ना हो वो मुस्तैद है, और उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल।
7: तो आज मैं चाहता हूँ, आज ईद का मौका है, बहुत अच्छा, अच्छे दिन है, खुशी का दिन है, मैं एक नजम शामिल करूँ।
1: जी इरशाद,
0: कोशिश कीजिएगा छोटी। रहमान भाई ने इसके बाद बात करनी है।
7: जी,
0: मैंने कहा कोशिश कीजिएगा थोड़ी छोटी हो, नुमान भाई ने असल में बात करनी है, वो हमने समाप्त किया नहीं, वो नुमान भाई ने समाप्त करना है, कंक्लूड करना है।
7: दो चार शेर।
0: जी जी जी जी जी
7: काश मैं तेरे ऐसी हाथ का कंगन होता,
0: हाय वारिस शाह,
7: जो बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ आपकी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको,
0: हाय हाय,
7: और बेताबी के से फुरकत के खजा लबों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता जब कभी भूल गया अगर तुझे क्षमा करती,
0: कॉल के बाद आपकी
7: तेरे होंठों की हिद्दत से देख सा जाता,
0: वाह,
7: रात को जाती तो नींदों के सफर पर जाती,
0: थे रख मलंगी,
7: शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। जी नवान भाई प्लीज सम अप करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बोलेंगे तो टाइम जाया होगा, हम सुनने के लिए
2: नहीं, टाइम नहीं जाया, जिस तरह
0: आपने कहा ना बात प्रोलॉन्ग होगी,
2: तो आप सीरियस बात हो रही है, तो जिस तरह आपने कहा कि कुरान पाक में कहा गया, तो और पिछला एक दो एक टाइम ऐसा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की अगर बात करते चलें, तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि डिफरेंट शुरा या डिफरेंट, अब सम टाइम मैं इतना कोई परफेक्ट बता भी नहीं सकता, हम में से कोई भी नहीं बता सकता कि यार इतनी वजन में और जिस तरह कुरान पाक की जो किताब उतरी थी, तो क्या इसको भी शायरी की तर्ज पे ही उतारा गया था या फिर उसके बाद फिर डिफरेंट शुरा आए, और उन्होंने तो जाहिर है कुरान पाक तो एक जिंदा किताब है ना जिस तरह आपने बात की, लेकिन शायरी की जो है वो डिफरेंट शुरा ने की है और एक वजन के साथ की है, तो कुरान पाक की भी जो किताब है वो वजन के साथ है, तो इसमें और उसमें तो फर्क किया ही नहीं जा सकता ना किसी शायरी की किताब में या फिर कुरान पाक, क्योंकि कुरान पाक एक जिंदा किताब है और अल्लाह ताला ने जो हम तक पहुंचाई है, तो मुझे बताएं कि जो शायरी बहुत सारे शुरा ने भी की है, तो इसमें और उसमें कितना एक फर्क है और किस तरह इसको हम देख सकते हैं।
1: मैं एक बात कहूंगा यार, हम ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, हम इल्म नहीं रखते, हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, वो एक जितनी थी और मैंने जो बात कही है जितनी एहतियात के साथ वो रेफरेंसेस के साथ जो मेरे पास थे, लेकिन अभी मौका जरा डिफरेंट है और हम बहुत ही उसमें जा रहे थे सीरियस।
0: नहीं, मैं इसको जरूर एड्रेस कर दूं जो नुमान ने बात की है, अगर कोई सुनने वाला सुन रहा है, समटाइम ऐसा होता है कि कहने वाला अपनी बात शायद उस तरह से बयान नहीं कर पाता जिस तरह उसको करनी चाहिए, तो इस वक्त हम जितने लोग स्टूडियोज में मौजूद हैं हम सब इस बात के ऊपर कायल हैं, इंक्लूडिंग नुमान, मैं एंड आतिर भाई। आतिर भाई थोड़ा सा इन मामलात में एहतियात बरतते हैं, मेरा थोड़ा सा इस हवाले से कह लें कि मामला और है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब हर टॉपिक पे गुफ्तगू कर सकते हैं तो वाई नॉट इस्लाम, वाई नॉट कुरान, वाई नॉट मज़हब। आपका जो सवाल था उसका तो कैटेगोरिकली आंसर है कि दुनिया में हर किताब के अंदर ऐब हो सकता है सिवाय कुरान पाक के, कुरान पाक ऐसी किताब है जो ला रहा है, उसमें कोई ऐब नहीं है, तो किसी भी किताब का मुकाबला कुरान पाक के साथ तो हो ही नहीं सकता। जो आपका सवाल था वो बेसिकली सवाल भी नहीं है अगर हम आम अल्फाज में उसको कहें, तो शायद कम इल्मी आप उसको कह सकते हैं या शायद आप अपने सवाल को बना नहीं पाए, तो कुरान का मुकाबला तो किसी भी किताब और से
2: वो तो मैंने
0: नहीं है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कुरान एक वज़्म के साथ उतारा गया, तो ये तो हकीकत है, ये आपका सवाल था, ये एक्चुअली बात करनी जरूरी इसलिए थी कि कोई भी जो मैसेज ऑन एयर जा रहा है वो किसी जी वो कोई ऐसा गलत मैसेज,
1: मैंने असल में जो टू बी ऑनेस्ट नोमान हमारे भाई छोटा भाई है, लेकिन वो उस चीज को एड्रेस नहीं कर पाया,
0: इसलिए मैं उसको
1: तो मैंने उसको थोड़ा सा एक वो
0: जी
1: देने की कोशिश की,
0: हाँ, लेकिन बिफोर हम आगे बढ़े इस चीज को, जैसे भी नुमान भी कह रहे हैं आप बयान नहीं फरमा पाए सही, तो मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहें कि क्या कुरान में वजन, तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बहुत सारी जो सूरतें हैं उनका वो दिया, लेकिन इस किताब का इवन चले मैं आपको एक कदम और आगे बढ़ के बात करता हूँ, इस किताब का उन किताबों से भी कोई कंपेरिजन नहीं है जो कि बाकी आसमानी किताब है, चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारे अंबिया हैं और उनके ऊपर जो किताब उतरी है वो जिस तरह रसूल अल्लाह सब अंबिया से अफजल है, वैसे ही किताब भी सभी आसमानी किताबों से अफजल है, तो दैट इज द आंसर। आगे बढ़े,
1: हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, और इसको क्लोज करने से पहले मैं ये बात कहता चलूं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमें कभी बताया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया और हमें ये तहकीक हमने कभी की भी नहीं। वो एक शेर बड़ा प्यारा लिखा एक शायर ने कि हर शख्स अपने बाप के फिरके में बंद है, परवरदिगार तेरे सहीफे नहीं खुले,
0: हाय हाय हाय,
1: तो हम उस पर कॉमेंट करने तो आ जाते हैं, उसको पढ़ा नहीं होता, तो जब पढ़ेंगे ना तो उस ये वो मौजूदाती किताब है क्या। अब आप, मैं पिछले दिनों ना एक ऐसे दौर से गुजरा کہ میری زبان پہ یہ آیت بہت زیادہ آ گئی, ان الانسان لفی خسر. اور اب جس کانٹیکسٹ میں میں اس کو دیکھ رہا تھا نا, آپ یقین کرو کہ وہ اتنی تسکین پہنچاتی ہے ذات کو, اتنی تسکین پہنچاتی ہے ذات کو یہ ایک آیت. کہ آپ کے سامنے ذیشان, میں تھوڑا سا اس کہ آپ کو کہیں پر خسارہ ہو رہا ہے نا, کہیں پر خسارہ ہو رہا ہے اور آپ اس سے بڑے دل برداشتہ ہو, اور اس وقت میں یہ آیت آپ کے سامنے آتی ہے, آپ کو یوں لگتا ہے جیسے کچھ سامنے کھڑا ہے اور وہ آپ کو ڈھارس دے رہا ہے. اب میں اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتا ہوں چند آیات کا, اس میں ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو پریشانی تم پر آتی ہے وہ تمہاری بنائی ہوئی آتی ہے. اور یہ یقین کریں کہ پروگرام کرنے کے دوران یہ بات مطلب ذہن میں آئی اور کہی کہ جو پریشانی تم پر آتی ہے وہ یہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو پریشانی آتی ہے وہ تمہاری بنائی ہوئی ہوتی ہے, اور اس وقت تم مجھے پکارتے ہو اور جب وہ پریشانی تم سے دور ہو جاتی ہے تو یوں منہ پھیر لیتے ہو جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دوسری آیت ایک جگہ پڑھتے ہیں آپ کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب یہ اس وقت میں ایسے زندہ کتاب جو سامنے آپ کے کھڑی ہے اور زندہ الفاظ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں وہ مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو پریشانی تم پر آتی ہے وہ تمہاری بنائی ہوئی آتی ہے, تو میری اوقات ہی کیا اور میں بنائی کیا لوں گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی, اور آسانی وہ دیتے ہیں, وہ آسانی دیتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہوں گے, یعنی کہ پریشانی میری اوقات کے مطابق ہے اور آسانی ان کی شان کے مطابق ہے. تو کتنی تسکین پہنچتی ہے ذات کو. پھر آپ ایسی بہت ساری آیات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنے سامنے زندہ کتاب نظر آتی ہے. تو یہ والی بات جو ایڈریس کی جا رہی ہے شاعری کے حوالے سے, یہ تو کسی نے اٹھ کر بات کہی جب کہا گیا کہ یہ جادو ہے, کھلا جادو کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ شاعری ہے, تو اس کو ایڈریس کیا گیا, امپورٹنٹ بات تھی اس کو ایڈریس کیا گیا. جیسا کہ ایک جگہ پہ ایک آخری میں یہ کوٹ کرتا جاؤں گا کہ آپ اگر پڑھیں گے کہیں پر آپ کو یا آپ قرآن میں یہ ڈھونڈنا چاہیں گے تو کہف والوں کی تعداد پوچھی جا رہی ہے کہ وہ تین تھے, وہ چار تھے, وہ چھ تھے یا سات, ایسے کر کے اور پھر بتایا نہیں جا رہا کہ کتنے تھے, قرآن میں نہیں بتایا گیا. تو اس میں کہنے والے, اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے تھے کہ بتایا کیوں نہیں گیا, وہ یہ کہہ رہے یہ کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے, پیغام کیا دیا جا رہا ہے اس کی طرف غور کرو, تم کہہ رہے ہو کہ کتنی تعداد کتنی تھی. یہ ایک وہ دیکھیں وہ ایک ہائر لیول کا لٹریچر ہے, وہ ایک بہت ہائر لیول کا لٹریچر ہے جو آپ کو ایسے سمجھنا نہیں ہوگا کہ یہ تعداد کیوں نہیں بتائے گی, آپ یہ اعتراض کریں گے یا وہ آپ کو یہ ایسی باتیں کہہ دے گا کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے یہ کرنی ہے. اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, آپ اس کانٹیکسٹ کو جب انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ بات کہاں سے آ رہی ہے, اور پھر آپ اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرتے ہیں, اپنی سوچ کو اس میں شامل کرتے ہیں, تو آپ کو دھیرے دھیرے وہ, اور یقین کریں کہ پھر وہ آپ کو خود سمجھانے لگ جاتا ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات سنی کہ سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے, یہ کام کیا تھا وحید الدین خان صاحب نے, اللہ ان کو جنت بخشے, انہوں نے ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے فری قرآن ہر زبان میں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی تبلیغ یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان تک اس کی زبان میں جس زبان کو وہ سمجھتا ہے آپ قرآن پہنچا دیں. وہ جرمن زبان ہے, وہ جاپنیز ہے, وہ چائنیز ہے, وہ اردو ہے, وہ کوئی بھی زبان ہے, آپ اس کا ایک اچھا ترجمہ اس تک پہنچا دیں, وہ کتاب اپنا کام خود کر لے گی. تو ہم اس کو, یہ تو ایک بڑی ایک جگہ پہ بات کی گئی شاعری اور اس چیز کو ایڈریس کیا گیا. کمپیریزن تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے نا
8: کسی کتاب کا,
1: وہ آپ کسی بھی کتاب کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. زندہ کتاب ہے, معجزہ, ایک معجزہ ہے جو آپ یوں کہیے کہ اگر میں اس کو میٹافوریکلی کہوں تو ہوا میں معلق ہے. آپ کسی بھی زمانے میں اس کو پڑھیں گے آپ کو اس میں ارتعاش نظر نہیں آئے گا.
8: اور یہ واحد چیز ہے جس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے, اللہ نے کہا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت میری ہے. کالر لیتے ہیں جی, آئی تھنک وی ہیو کالر 051-111-000-101 دیٹ از دا نمبر ٹو کال ایٹ, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی نعمان بھائی آگے بڑھیے, کیا کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ؟
1: لکھتا رہوں.
9: मोहब्बत के साथ, आशा है आपकी मोहब्बत में से इस बार आपके पास पर मजबूर किया इस रात को। जाहिर आप जैसे मिशनरी लोग जागते हैं या हम जैसे जो प्रदेश में होते हैं, जाहिर अपनी धरती माँ का एक कर्ज है कि हमारे जो इतवार गुजर रहे हैं
1: सलामत रहे हुजूर, सलामत रहे।
9: पहले थोड़ी सी आपसे ऑफलाइन बात हुई थी तो आपने कहा था कि अगर हो सके तो आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, इसीलिए दोबारा एक बार मुखलिस बोल रहा हूँ जर्मनी से।
1: जनाब जनाब
9: दोस्त, चंद एक दिन आते हैं ऐसे जब पर हम कुछ ना कुछ अपना तौर पर जो हमने जिंदगी में सीखा है वो देने की कोशिश। आप माशाल्लाह मैं आबादों की जो सहारत कर सकता हूँ तो आप तकरीबन 25 से लेकर तो 40-45 के इस घर की उम्र में है दोस्त।
0: सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, अगर आप मुद्दे की बात कर सकें मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी घंटे में हैं। तो
9: मैं बात उसी तरफ आ रहा था।
0: जी जी प्लीज आप आ जाएं।
9: सर नजर किया था
0: जी जी
9: कि इसके अल्फाज अगर बाकी माशरों की बेहतरी के लिए मुस्बत न साबित हो पा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं लर्जश आ जाती है या कमी आ जाती है या उसको सही तौर पर इस्तेमाल, डॉक्टर के पास आपको दवाई लाते हैं और उसकी हदायत के मुताबिक आप नहीं इस्तेमाल करते तो बजाय वो आपको फायदा देने के माशरे को नुकसान देती है। यहाँ पर ये चीजें जो अदब होता है, इल्म होता है, शायरी होती है, कोई भी सिंफ है, अल्फाज मैंने पहले आपको एक लफ्ज में अर्ज किया था, वो सिर्फ और सिर्फ माशरों की बेहतरी के लिए मुस्बत साबित होने की सही होती है जो मुखलिस लोग होते हैं। अदरवाइज अगर कारोबारी लोग वो शायद जो है वो जाहिर अब उसमें मलाकूती आई और उन्होंने इस चीज को किस तरीके से कहां तक हमें पहुंचाया, इससे आगे आप बच्चों का फर्क है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
1: क्या कहा आखिर में उन्होंने?
0: मेरा ख्याल से शायद शुरू से एंड तक जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है शायद वो ये कह रहे हैं कि जो हम लोग हैं या जितने भी फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों को बेहतरीन बात समझाने की कोशिश करें या उनको समझाएं। लेकिन मैं इससे बड़े ही नुमान अगर आप फोन छोड़ दें तो फिर आपको पता होगा किसके बारे
1: में
0: अच्छा ये मैं इस पे पता नहीं, अब मुझे पता नहीं आप कौन से मैसेज की बात करें। बहरहाल जो इन्होंने आकर सवाल किया और वो सवाल ये था कि या इनकी जो राय है वो ये है कि जो लोग फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है उनके ऊपर कि वो माशरे की बेहतरी के लिए कोई एजुकेशनल बात किया करें ऐसी। किसी हद तक तो ठीक है कि मतलब अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो 10-15-20% बात तो आप इस पर करें तो बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे से ये बात पूछें, बहुत सारे लोगों को मेरे से शिकायत भी होती है कि मैं बहुत थोड़ा सा ब्लंटली बात करता हूँ, लेकिन ये ज़िम्मेदारी आर्टिस्ट की नहीं है। आर्टिस्ट की जिम्मेदारी लोगों को एंटरटेन करना है। दो घंटे के प्रोग्राम में अगर आप स्कूल ओपन कर लेंगे तो नोबडी विल लिसन यू, कोई नसीहत नहीं सुनना चाहता। अमल तो खैर उसके इख्तियार में है लेकिन नसीहत नहीं कोई सुनना चाहता। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी को नसीहत करते हैं तो अगला बंदा शायद ये समझ रहा होता है कि मुझे कम अक्ल और अपने आप को अकले कुल समझ रहा है। तो वो आपने बात अपनी पहुंचानी भी कैसे है शुगर कोट करके, ये एक बहुत बड़ा टैलेंट किसी भी प्रेजेंटर में या किसी भी ऐसा आदमी जो कि फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक रखता हो उसमें है। अब अगर आतिफ असलम सिंगर है तो वो कॉन्सर्ट पे गाने ही गाएगा, वो ऐसा नहीं होता कि वो जाकर ही कहे कि भाई आप ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो किया करें, आप जो है वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज द पीपल वर देयर फॉर हिम एज अ एंटरटेनर। सो जो लोग और ये भी बात मैं इससे भी एग्री नहीं करता, ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि अक्सर ये आपको बात सुनने को मिलती है कि यार टीवी पे ये दिखाया जा रहा है तो मुआशरा ये बन रहा है, ऐसा नहीं है। टीवी पे तो अब्दुल सत्तार ईदी भी दिखाए गए, मुआशरा अब्दुल सत्तार ईदी क्यों नहीं बना?
2: सही बात।
0: यूट्यूब पे अगर रजब भट्ट दिखाया जा रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि सर्वर हिशाम सर्वर जिन्होंने 200 से ज्यादा बिजनेस जो है वो ओपन अप करवाए हैं लोगों को सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस बना के। वो आपको यहां से बताते हैं कि आपने 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक किस तरह बिजनेस करना है, कौन सी चीज कहां से बाय करनी है, कैसे आप जनरेट करना है रेवेन्यू। आपने सारे लोग बिजनेसमैन क्यों नहीं बन गए? सो ये तो आपका अपना इख्तियार है कि क्या चीज आपको इंटरेस्ट, आप किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो। सो एज एन एंकर या एज एन समवन जो कि मीडिया में काम कर रहा है उसका पहला प्राइम जो फैक्टर होता है या उसकी जो कोशिश काविश होती है वो ये होती है कि लोगों को एंटरटेन करे, और जब वो नहीं कर पाता है तो फिर वो दूसरी अच्छी चीजों की तरफ आता है जो कि अभी हम आज के प्रोग्राम में आए। पहले हमारी कोशिश थी तो फिर हमने दूसरा मोड शिफ्ट किया। जी सर
1: नहीं मेरा मूड खराब हुआ
0: ये इनकी कॉल के बाद
1: नहीं नहीं
0: हाँ
1: کچھ دو چار چیزوں سے
0: جی.
1: ایک جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام تھا
0: جی,
1: میں اب ریفرنس کے طور پہ بات کروں گا,
0: کریں کریں سر, کریں,
1: نام نہیں لوں گا, آپ کو پتا میں احتیاط کرتا ہوں, تو ایک ساتھ اٹھ کے چلے گئے تھے
0: جی,
1: تو ہم نے تو اس کو بھی سیریس نہیں لیا واپس آنے کے بعد اس کے, تو انٹرٹینمنٹ ہے, اور جو آپ نے بات کی وہی بات میں کرنا چاہتا تھا, اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے کی, بہت اچھے طریقے سے, ہر ڈومین نہیں ہوتی آپ کی
0: جی,
1: ہر جگہ پہ آپ کہیں کہ معاشرے کو ہم سدھارنے کے لیے ریڈیو پہ آ گئے, ایسا نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو سدھار لیں بڑی بات ہے, اور ہمارا جو آرٹ ہے, مجھ سے آپ شاعری کی بات کریں گے, میں اگر شاعری میں کرنا چاہتا تھا, اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے کی, بہت اچھے طریقے سے, ہر ڈومین نہیں ہوتی آپ کی
0: جی,
1: ہر جگہ پہ آپ کہیں کہ معاشرے کو ہم سدھارنے کے لیے ریڈیو پہ آ گئے, ایسا نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو

0: वो साहब गए उसमें और बहुत सारे लोग शामिल थे उस मुशायरे में, और बहुत सारे लोग आए और उन्होंने भी
1: जी
0: जराई की होगी
1: जी जी
0: यार। वो आपको किसी टिकटॉकर की भी मिल जाएगी,
1: एग्री
0: वो
1: एग्री
0: आएगा अपनी एक V8 में और उसके V8 के साथ साथ लोग भाग रहे होंगे, वो बोलना भी नहीं जानता होगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने
1: श्योर
0: देखा वो एक उसको कह रहा था कोई जुमला, और उसका एक लफ्ज था वो बड़ा अजीब से तरीके से प्रोनाउंस कर रहा था, मुझे अब याद नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ ऐसे करके, वो चैलेंज का लफ्ज जो था वो ऐसे कर, उन लोगों ने नीचे कमेंट्स किए थे और वो मिलियंस में थे, उसके व्यूज मिलियंस में। ये अभी खुशी की चले कंक्लूड करता चलो सारी बातों को,
1: श्योर
0: कि आपको मिलियन व्यूज आ रहे हैं एक अगर फजूल सी बात करने पर, तो फिर अगर आपको लगता है कि आपकी वो खुशी है मिलियन व्यूज, तो वो आप किसी भी तरह ले। जिशान मुश्किल है आपके लिए मिलियन व्यूज लेना? नहीं मुश्किल। आप कुछ ऐसा करो जो एक अटेंशन सीकर कर सकता
1: एग्री
0: है।
1: एग्री
0: हम बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते हैं। आप यकीन करें, मेरा एक दोस्त, उसने एक पॉडकास्ट शुरू किया, और वो उसने ऐसे ऐसे शख्सियात को बुला के पॉडकास्ट किया कि यार आप तसव्वुर नहीं कर सकते यार इसने बुलाया कैसे होगा
1: ऐसे
0: इनको।
1: एक सेकंड रुकिए, मैं सिर्फ एक बात इंक्लूड आप ही
0: हाँ
1: की करके फिर आप इसको फॉलोअप कीजिएगा।
0: हाँ
1: हम अभी रास्ते में क्या बात करते हुए आ रहे थे,
0: एग्जैक्टली
1: ठीक है। मैं इसको कोट भी कर दूं कि हम जब अभी रेडियो आ रहे थे, जब हमने कॉफी पी की, तो शायद कोई मैसेज आया होगा आतिर भाई को, तो आतिर भाई ने कहा यार कितने अजीब से लोग होते हैं जो अपनी वाइफ का तारुफ करवा देते हैं। और ये हकीकत है, ये मुझे इवन इटसेल्फ, बल्कि मैंने आगे पलट के आपको जवाब भी दिया कि यार बड़ी अजीब सी बात। अब आप देखें कहां ये अप्रोच कि आप तारुफ नहीं करवा रहे, कहां आप फैमिली व्लॉगिंग करें,
0: हाँ
2: सही बात है।
1: गेटिंग माय पॉइंट, कितना फर्क है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसमें भी जो लोग भी यहां बैठे होते हैं जो कि बहुत ही बड़े अखलाकियात का दर्स दे रहे होते हैं, मैंने पहले भी कहा कि मैं थोड़ा सा ब्लंट हूं, तो मेरी गुफ्तगू बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आती है। जो लोग अखलाकियात का दर्स दे रहे होते हैं, यही लोग होते हैं जो व्यूज दे रहे होते हैं ऐसी चीजों को।
0: एग्जैक्टली
1: मुझे एक बात बताएं, अगर रजब भट्ट, मुझे जाती तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं है उनसे, ना मैंने कभी उनका कोई व्लॉग पूरा देखा है, वैसे क्लिप्स वगैरह देखता हूँ, जो वो काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, अल्लाह ने उनको पैसा दिया है नसीब करे, लेकिन जो लोग उस पर एतराज करते हैं उसकी एक एक वीडियो पे 30-30 करोड़ व्यूज हैं,
0: हाँ
1: तो वो कहां से, नेपाल से कोई आया है, हिंदुस्तान से कोई आया है, जहरा पाकिस्तान के, मेजरली पोर्शन तो पाकिस्तान के लोगों का है ना। सो आप एक चीज को देखें, किसी भी चीज को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यह है कि आप उसको देखें ही ना।
0: बिल्कुल
1: देखें, आप उसको देखेंगे ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैंने क्यों कहा कि चीजों को कॉल आउट करना चाहिए, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको आपने कॉल आउट करना है। कॉल आउट करेंगे वो चीज एटलीस्ट अगर खत्म नहीं भी होगी तो कम से कम कम तो जरूर हो जाएगी।
0: एग्जैक्टली
1: दिस इज हाउ इट इज।
0: बिल्कुल
1: जी
0: सही।
1: प्लीज आप
0: आप अगर देखें ना, मैं अगर इसको एक, आप किसी भी सक्सेस को देखें, चाहे वो अमीर तरीन लोग हैं चाहे वो कामयाब लोग, हम कहने चले सब कहते हैं दरिया को कूजे में कैद कर लें, वो आपको दुनिया में 1% पॉपुलेशन के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक क्राइटेरिया हमारे यहाँ बन गया है शायद, कि मेजोरिटीज अथॉरिटी जो हम सुनते आए हैं बचपन से, नो मेजोरिटी इज नॉट ऑलवेज अथॉरिटी। आपको मेजोरिटी व्यूज आ रहे हैं डजंट मीन कि आपकी बात वैलिड थी, ठीक है। वो किसी भी चीज को आ सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा था कि मेरे दोस्त ने एक पॉडकास्ट शुरू किया, और वो इंतहाई इंटेलेक्चुअल बात है, बहुत सीखने वाली बात है, लेकिन आपको व्यूज क्या मिलेंगे, 426 व्यूज, 800 व्यूज, और वहीं पे एक इंतहाई फजूल सी बात जिस पे आपको मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। तो भाई हमारी कौम फिलहाल जो देखना सुनना चाहती है वही उसको मिल रहा है।
1: और
0: टू बी ऑनेस्ट
1: सर, एज अ पर्सन आप इज्जत भी उसको देते हैं, लेट्स कॉल अ स्पेड, मुझे बताएं क्या आप उस शख्स को ज्यादा, लाइक आतिर भाई कहीं चले जाएं, मैं कहीं चला जाऊं, हम पे ज्यादा रश लगेगा कि रजब भट्ट कहीं आ जाए वहां पे ज्यादा रश लगेगा। देखिए, और ये भी नहीं है कि मैंने चूंकि डिफरेंट जगहों पर होस्ट किए हैं डिफरेंट इवेंट्स, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गांव की ऑडियंस तक, सर 5-स्टार होटल्स में बैठे हुए लोगों को मैंने देखा है कि एक पिक्चर के लिए तरस रहे हो। क्यों? क्योंकि दे एक्चुअली वॉन्ट टू शो टू देयर सोशल मीडिया। ये जो एक वैलिडेशन की आदत है हमारे अंदर ना, सबसे हैंडसम आदमी औरत या मर्द वो होगा जिसको वैलिडेशन ना चाहिए हो।
2: सही बात है।
1: ये हम अक्सर, आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे मशहूर लोगों के साथ तस्वीर लेके फटाफट डाल देते हैं, चाहे हम उनके साथ अच्छा, और तनकीद भी उसमें ही कर रहे हैं। अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो फिर तो आपको उस बंदे को अवॉइड करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं अभी जैसे आपने मेजोरिटी एंड अथॉरिटी वाली बात की, अगर इस पैरे पे चले तो फिर तो करबला का पूरा ऑर्गेमेंट ही फॉल डाउन कर जाएगा। एक साइड पे 72 है, दूसरी साइड पे कम से कम तादाद 4,000 है और ज्यादा से ज्यादा 9 लाख है, फिर तो पूरा ऑर्गेमेंट ही खत्म हो गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि नहीं, इमाम हुसैन अलैहि सलाम हक पे थे, और मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़े होकर तस्वीर लगा रहा हूं जो कि करबला को फॉर एग्जाम्पल निगेट करता है, तो इट मीन्स कि मैं तो उसको एक वैल्यू दे रहा हूँ, उसको एक वर्थ दे रहा हूँ ना।

उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि परवरदिगार मुझे अपने हिसाब से औलाद सालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है।

ज़करिया ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुड्ढा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है।